0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: वेदर का हालचाल 20 डिग्रीज आज का मैक्सिमम टेम्परेचर रहने वाला है, 15 डिग्रीज आज का मिनिमम टेम्परेचर रहने वाला है, 30% चांस है बारिश के आज, लेकिन यस सनसेट होगा 7:35 PM पे, सो यस आज पकौड़े और चाय पीने का दिन है।
0: लंच बॉक्स विद केतन,
2: ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज मेरी आवाज गूंजेगी।
0: लंच के मंच पे
1: क्या नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। आप बने रहिए, बहुत सारी खबर आपके साथ शेयर करनी है। शुरुआत करेंगे इस गाने से जो कि हमारे मिलेनियल के लिए काफ़ी नॉस्टैल्जिक है, एक्चुअली हम ही नहीं उससे पहले भी जो थे जनरेशन उनके लिए भी होगा, बिकॉज इतनी जगह ये गाना चलता था। इनफैक्ट जो आर्टिस्ट जिसने गाया है, जिसने कंपोज किया है, रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्ड करता है बैक टू बैक 37 म्यूजिक हिट देने का। So yes, I am talking about none other than Himesh Reshmiya. And ये गाना आपको पता ही है, इतना ज़्यादा वायरल हुआ गाना कि अगर आप गाते थे तो लोग बोलते थे कि भाई ये गाया मत कर रात में, नहीं तो सही में भूत आ जाएगी तेरे पीछे। Well, पता नहीं वो सच था नहीं था, I have no idea, but डर तो ज़रूर लगता था हमें, एक पल के लिए तो हम मान भी गए थे। Any idea? कौन से गाने की बात कर रहा हूँ मैं? बताइए। एक का आया है सही आंसर, प्रकाश भाई का मैसेज आया, सही आंसर आया। अंजू का भी आया है मैसेज, वो भी कह रही है सेम, मैं नाम नहीं बता रहा हूँ अभी, नाम मैं प्ले करूंगा, देन यू विल गेट इट। आकाश का भी मैसेज आया है, एंड देन प्रियांश उन्होंने भी मैसेज किया है, वो भी कह रहे हैं दिस इज द सॉन्ग, एंड यस दैट यू आर एब्सोल्युटली राइट, लेट्स प्ले दिस सॉन्ग।
0: बचाओ क्या,

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स और थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। अभी हम बात करेंगे बहुत ही जल्द एक ऐसी स्टोरी की, हॉरर स्टोरी है, जहां पे तीन जो लाइट हाउस कीपर थे वो सडनली वैनिश हो गए थे। इस बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे, तो आप बस बने रहिए और याद रखिए लंच टाइम रेंट लाइन के लिए भी आप मुझे मैसेज भेजिए 5599 पे, ताकि आप अपनी बात जो है शेयर कर सकते हैं यहाँ पे। इन केस अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ही परेशान किया हो कुछ दिनों में, वीकेंड में अगर आप कहीं गए हो, कुछ ऐसी चीज़ फेस की हो जो आपको सचमुच इरीटेट की हो, तो यस यू नो द नंबर, आप मुझे कॉल भी कर सकते हो 800-004-866 पे, बट नॉट नाउ, थोड़ी सी देर में। बट अभी के लिए आप वेट करिए हॉरर कहानी की। जी हाँ, तीन लाइट हाउस कीपर गायब हो गए, किधर?
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
1: इसके पीछे
3: हम
1: इस दिवाली सिर्फ

0: Get ready for massive savings at Carpet Court and Curtain Studio. Save on carpet, hard floor, rugs, curtains and blinds. Don't miss these unbeatable deals. Only at Carpet Court and Curtain Studio. 3 days only. Starts Thursday.
1: 35 minutes and we've moved 3 kilometers. Welcome to Peak Hour Commute, babe. Maybe I should use this time to check if I'm eligible to vote.
2: Over 18? Lived here for more than a year? And a resident for electoral purposes?
1: Yeah, that sounds like me.
2: Then why don't you enroll now? Only takes a few minutes.
1: Well, you're driving, so I'll do it now. That was quick and easy.
3: Last chance to enroll is midnight 25 October. Enroll now at vote.nz. Brought to you by the Electoral Commission.
4: How does one person finance on a new Jayco sound? Right now at West City Omura Jayco, get one person per annum fixed finance for 36 months with a 20% deposit on the Jayco J7 SHS. And it's just dropped $2,000 in price, now starting from $47,990 plus on-road costs. Talk to Jimmy Taylor and team at West City Omura Jayco. For full terms and conditions, head to westcityautogroup.nz.
5: Welcome back. You are listening to Lunchbox और यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ ऐसी कहानी की. मैं कोशिश करता हूँ कि हर मंडे, हर ट्यूसडे, आई मीन एवरी डे ऑफ द वीक आप सबके पास एक खबर लेके आऊँ जो सचमुच आपको थोड़ा सा यू नो हटके आपको बताए. सो आज की जो कहानी है वो बेसिकली आप सबसे पहले तो सोचिए कि आप एक ऐसे लैंड, ऐसे आइलैंड पर हैं जहां दूर दूर तक सिर्फ समुंदर है, चारों तरफ तेज़ हवा है और रात के अंधेरे में आपकी रोशनी जो है वो शिप्स को रास्ता दिखा रही है. लेकिन एक दिन अचानक आपकी लाइट हाउस की रोशनी बंद हो जाती है और जब लोग आपको ढूंढने पहुंचते हैं तो वहां एक भी इंसान नहीं मिलता. आखिर क्या हुआ था उन लोगों के साथ? ये एक फिक्शन कहानी नहीं है बल्कि स्कॉटलैंड की हिस्ट्री का एक रियल मिस्ट्री है जिसे फ्लेनन आइलैंड लाइट हाउस डिसअपीयरेंस के नाम से जाना जाता है. दिसंबर 1900 में स्कॉटलैंड के वेस्ट कोस्ट से दूर फ्लेनन आइलैंड नाम के रिमोट आइलैंड पर एक लाइट हाउस था और इस लाइट हाउस पर 3 कीपर्स ड्यूटी कर रहे थे, जेम्स डकेट, थॉमस मार्शल और डोनाल्ड मैकऑर्थर. एंड उनका नाम जो था, उनका काम लाइट हाउस की रोशनी को जलाए रखना था ताकि समुद्र में सफ़र करने वाले शिप्स को खतरनाक यू नो जो वहाँ की जो चट्टानें होती हैं उसे बचाया जा सके. लेकिन 15 दिसंबर के आसपास पास के आइलैंड से लोगों ने नोटिस किया कि लाइट हाउस की रोशनी जो है वो नज़र नहीं आ रही और समुद्र के बीच एक लाइट हाउस का लाइट बंद होना बहुत ही सीरियस बात थी क्योंकि उस पर कई लोगों की सेफ्टी डिपेंड करती थी. और ये बातें 26 दिसंबर 1900 की भी जब लाइट हाउस की जो रूटीन इंस्पेक्शन के लिए हेस्प्रेस नाम के वेसल आइलैंड पर पहुंचा और असिस्टेंट कीपर जोसेफ मोरे लाइट हाउस की तरफ गए लेकिन वहां पहुंचकर जो उन्होंने देखा वो उनको काफ़ी शॉक कर चुका था. वैसे लाइट हाउस में तीनों कीपर्स में से कोई भी मौजूद नहीं था और उनके गायब होने की कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं थी, ना ही कोई ऐसा जवाब मिला जो पूरी तरह बता सके कि आखिर उनके साथ हुआ क्या था. एक रिमोट आइलैंड, एक खाली लाइट हाउस और 3 लापता आदमी, ये मिस्ट्री आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करती है. समय के साथ इस इंसिडेंट के बारे में कई थ्योरीज जो है वो सामने आई. कुछ लोगों ने सुपरनैचुरल पॉसिबिलिटीज़ की बात की जबकि दूसरों ने माना कि ख़राब मौसम और समुद्र की डेंजरस वेव्स की इसमें रोल हो सकता है, यानी कि उन्हें उन्हीं झटकों से बह दी हो. बट ये लाइट हाउस के आसपास की जो चट्टानें थी और रफ सी किसी भी रेस्क्यू को मुश्किल बना सकती थी. लेकिन दोस्त, यहाँ एक बात समझना बहुत ही ज़रूरी है कि इस डिसअपीयरेंस को लेकर कई ड्रामेटिक स्टोरीज सुनने को मिलती हैं लेकिन किसी गोस्ट या सुपरनैचुरल फोर्स का प्रूफ अभी तक तो नहीं मिला है. तीनों कीपर्स की एग्जैक्ट फेट आज भी कंफर्म नहीं हुई है कि वो आखिरकार उनके साथ हुआ क्या था. बताइए क्या लगता है आपको, वो जो 3 कीपर्स थे लाइट हाउस पे, क्या हुआ होगा उनके साथ? एनी आइडिया आप मुझे 5599 पे बता सकते हैं.
6: लंच के मंच पे टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स.

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: वेल चलिए बात करते हैं एक फेस्टिव फॉर्च्यून यहाँ पे आप शेयर जीत सकते हैं $5,000 का जी हाँ $5,000 के वर्थ ऑफ प्राइजेस आप जीत सकते हैं दिवाली विद हम फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून और ड्रॉ जो है वो 30 अक्टूबर को होने वाला है सो यस ये रहा मौका आपको मुझे टेक्स्ट भेज देना है NZPMI स्पेस अपना नाम और मुझे 5599 पे भेज दीजिए ताकि ड्रॉ में शामिल हो जाए और ये ड्रॉ आपको जितवा के देगा $1,000 वर्थ ऑफ Mitre 10 वाउचर्स वन विनर ओनली को Unlock your property true sale value with NZPMI, your local development experts for a free site assessment. आप उनकी वेबसाइट बोले तो nzpmi.co.nz पर जाइए और या फिर उन्हें कॉल करिए 0800-4-NZPMI 0800-4 NZPMI. Terms and conditions do apply. आप जा सकते हैं और पढ़ सकते हैं हमारी वेबसाइट से hum.ro.nz. नोट करिए अभी मैंने अनाउंस किया यानी कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट ही बाकी हैं टू सेंड अस द टेक्स्ट एज मैनी एज पॉसिबल
0: दिवाली रामायण गाथा ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून फूड्स विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरी विन बिग बाजार योर वन स्टॉप दिवाली सुपरस्टोर शॉप ऑनलाइन एट bigbazaar.co.nz इंडेलिबल होम्स योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सब डिविजन्स विजिट indelibleHomes.co.nz फाइनेंस वर्ल्ड योर ट्रस्टेड फाइनेंस एडवाइजरी इन साउथ ऑकलैंड लोटस फॉरन एक्सचेंज गेटिंग मोर वैल्यू फ्रॉम योर मनी अर्जुन सुपर मार्केट एंड फूड फॉर लेस लोकेटेड इन न्यू लिन एंड बॉटनी सोना संसार परंपरा की चमक त्योहार की पसंद शाइन आउट विद स्पेशल्स विजिट सोना संसार पापा टॉय एंड माउंट रॉस्किल एंड रामायण मूवी रिलीजिंग दिस दिवाली थ्रू फोरम फिल्म्स
2: वेलकम बैक चलिए यहाँ पे बात करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत मौके की यानी कि एक दिया एक कहानी दिस दिवाली ऑन हम इस दिवाली हम पर सेलिब्रेट करिए हमारे साथ एक स्पेशल इंसान के साथ जो आपकी लाइफ में बहुत ही खुशियां और रोशनी लेकर आता है वो दोस्त कलीग या कोई स्पेशल पर्सन जो फैमिली बाय ब्लड नहीं लेकिन फैमिली बाय हार्ट है और जिसने आपको काफ़ी सपोर्ट किया है इंस्पायर किया है या मुश्किल वक्त में आपके चेहरे पर स्माइल की है स्माइल लेके आया है So, अभी आपको क्या करना है अभी आपको मुझे कॉल करना है 0800-004-866 पे 0800-004-866 पे और हम के साथ शेयर कीजिए अपनी कहानी बताइए वो कौन है और आपकी लाइफ में उनकी क्या स्पेशल जगह क्या वैल्यू रखते हैं एज आई सेड चाहे वो दोस्त हो चाहे वो कलीग हो या फिर कोई स्पेशल पर्सन जो आपके ब्लड रिलेशन से नहीं हो बट दैट पर्सन इज मोर देन दैट सो आप मुझे कॉल करिए 0800-004-866 में और बताइए आपकी कहानी आपकी स्टोरी आपके स्पेशल पर्सन को देगी एक प्यारा दिवाली शाउट आउट और आपको मिल सकता है $300 जीतने का मौका वाओ वेल विनर जो है वो फ्राइडे को यानी कि 6 नवंबर को बताया जाएगा बट यस इस दिवाली आपकी ग्रेटिट्यूड शेयर कीजिए और किसी की लाइफ में खुशियों का एक और दिया जलाइए एक दिया एक कहानी ओनली ऑन हम सो जल्दी से फोन लगाइए 0800-004-866 पे और बता दीजिए हु इज दैट वन पर्सन एंड व्हाई बिकॉज ये मौका आपको मिलेगा अगर आप होते हैं तो शाउट आउट भी मिलेगा उन्हें और यस उसके साथ ही आप जीत सकते हैं $300 यार अभी तक तो फोन आ जाना चाहिए यार मतलब डेफिनेटली कोई ना कोई होगा राइट जैसे मैंने अपने केस में बताया था कि आई एम गोइंग टू शाउट आउट माई फ्रेंड सुदीप ही हैज़ बीन ऑलवेज देयर सिंस माई आई थिंक वॉट सिंस आई वॉज इन 9th स्टैंडर्ड मैं शायद 2002 या 2003 से उसे जानता हूँ अभी ऑब्वियसली हमें गैप आ चुका है इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी यू नो टच नहीं है बट आई स्टिल थिंक ऑफ हिम एवरी टाइम और ऑल प्रेयर्स ही इज़ ऑलवेज देयर व्हेनेवर आई डू सो बट यस अभी ये मौका आपके लिए है मेरे लिए नहीं है मैं तो यहाँ पे आपको मौका दे रहा हूँ ताकि आप जीत सकें सो यस पहला कॉल आ रहा है जल्दी से बात करते हैं हेलो अरे फोन कट गया मिस कॉल मेरे को ना आज ही मेरे दोस्त का फ़ोन आया था उसका फ़ोन आया पहले उसने फ़ोन किया फिर मैंने फ़ोन किया फिर उसने फ़ोन किया फिर मैंने फ़ोन किया ऐसे 3-4 बार चला और फिर फाइनली उसने जब उठाया तो मुझे बोलने लगा भाई तू इंडिया छोड़ के आया लेकिन हरकतें तेरी इंडिया जैसी ही है मैंने कहा भाई क्या हो गया तो बोले भाई इंडिया में नहीं करते क्या मिस कॉल मैंने कहा ये तो आप भी कर रहे हो तो फिर वो हंसने लग गया। बट यस 0800-004-866 पे आप शेयर करिए। दिस इज मैं 10 सेकंड वेट करने वाला हूँ। अगर आप कॉल कर रहे हैं तो प्लीज कॉल करिए और आप इस ड्रॉ में शामिल हो सकते हैं जहां पे आप जीत सकते हैं $300। सो बेसिकली आपको फोन करके ये बताना है कौन सा वो शख्स है जो आपकी लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंड दैट पर्सन शुड नॉट बी योर डायरेक्ट रिलेटिव या फिर यू नो ब्लड रिलेशन वाला नहीं होना चाहिए। सो यस, आप मुझे बताइए 0800-004-866 में, एंड दैट विल गेट यू चांस टू विन $300 और एक शाउट आउट भी मिलेगा उस पर्सन को जिसके बारे में आप हमें बताएंगे यहाँ पे। क्या यार, अभी तक तो कॉल्स आ जाते, कॉल्स, अब उनका फोन भी आया था बट ऑब्वियसली जैसे मैंने उठाया हेलो बोला वो डर गए शायद। पर चलिए, लगता है इस मौके को अभी तक हाल फिलहाल कोई अवेल नहीं कर पा रहा है या फिर पता नहीं शायद टेक्निकल इशू होगा तभी फोन लग नहीं रहा है, बट शुड नॉट हैपन यार, ऐसा होना नहीं चाहिए। 0800-004-866 पे आप कॉल कर सकते थे, बट कोई बात नहीं, आप सुनते रहिए, ये मौका फिर से आप तक पहुंचाने वाले हैं हम।
3: 14 वर्षों का कठिन वनवास समाप्त होने को था, अयोध्या नगरी की सांसें थमी हुई थीं और भरत जी का

0: केतन।
1: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
0: हम ड्राइविंग यू होम ड्राइव शो विद सैंडी एंड रुस्बी।
2: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हुआ।
3: ये गलत बोल दिया यार।
2: और पहनता भी नहीं है उसको।
3: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं अभी, बेचने के लिए कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ।
2: इंटरेस्ट
4: ब्रांड हो गया
3: अभी, ब्रांड हो गया ना
2: रुस्बे के बाल लगे उस।
0: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Monaco and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Monaco and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
5: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111. Indelible Homes, your building expert.
6: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे।
7: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
6: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है। शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो।
8: सोना संसार 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो। सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर गोल्ड।
9: 3, 2, 1 रश। Rewards Rush is back at BP. Get double everyday rewards points on fuel and shop, plus score 10 times points on selected items. Whether you're fueling up, grabbing a coffee, or stocking up on your favourite snacks, there's more to score at BP. Scan everyday rewards today. Offer ends 13 October. Terms, conditions and exclusions apply. See bp.co.nz/rewardsrush.
10: The ultimate pro iPhone, iPhone 18 Pro. With a big leap in battery life, new 48-megapixel Fusion main camera with variable aperture for more creative control, and 4 gorgeous colors. Be the first to unbox it with a great deal at Spark. Plus, save even more with trade-in. Do more with iPhone 18 Pro on an eligible pay monthly mobile plan with Spark. Order online or in-store. Spark terms and credit criteria apply. Delivery times may vary.
11: Tired of compromising between taste and nutrition? Introducing Amma's Foods Multigrain Dosa Batter. Made with 8 super grains, it's packed with the goodness your family deserves.
12: Busy subah ho ya sham ka jaldi ka khana, Amma's Foods Multigrain Dosa Batter banaye. Har meal healthy aur delicious. High protein, rich in fiber aur swaad se bharpoor. Ye hai har ghar ka best choice. Amma's Foods Multigrain Dosa Batter, 100% authentic aur maa ke pyar jitna shuddh. Aaj hi kare try, aapke nazdeeki store mein uplabdh hai. Swaad bhi, sehat bhi.
13: क्या आपका लोन डिक्लाइन हुआ है? क्या आप हिम्मत हार चुके हैं? तो एक मौका मुझे देके देखिए। हाय, मैं हूँ गुरु खंडोला फ्रॉम लॉजिक फाइनेंस। जो लोन्स डिक्लाइन और डिफिकल्ट होते हैं उनके अप्रूवल का मैं स्पेशलिस्ट हूँ। लॉजिक फाइनेंस के गुरु खंडोला बातों में नहीं काम में विश्वास रखते हैं।
14: टर्म्स, कंडीशन, फीस एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई। कॉल लॉजिक फाइनेंस के गुरु खंडोला को ऑन 0800 लॉजिक जी, विच इज 0800-564-424।
15: दिवाली आई, खुशियाँ लाई, PFSL स्पेशल ऑफर लेकर आया है। अपने ड्रीम होम का सपना सजाएं, PFSL के साथ होम लोन करवाएं, $400,000 या उससे ज्यादा का एलिजिबल लोन सेटल करें और $250 का गिफ्ट कार्ड घर ले जाएं। 50 इंच टीवी के लकी ड्रॉ में भी एंट्री पाएं। तो इस दिवाली खुशियाँ बढ़ाएं, PFSL के साथ अपना ड्रीम होम सजाएं। सर्च PFSL और कॉल ऑनलाइन 8469934। टर्म्स एंड कंडीशंस एंड लेंडिंग क्राइटेरिया अप्लाई।
16: लंच बॉक्स विद केतन।
17: इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं।
16: इसके पीछे
0: हम
16: लंच के मंच पे।
18: चलिए बात करते हैं बॉलीवुड की। प्रोड्यूसर कुमार थुरानी ने फाइनली वाशु बगनानी के साथ चल रहे लीगल डिस्प्यूट पर अपनी चुप्पी तोड़ दी है। ये कंट्रोवर्सी फिल्म बीवी नंबर 1 के पॉपुलर सॉन्ग चिनरी चिनरी एंड इश्क सोना है को वरुण धवन की फिल्म है जवानी तो इश्क होना है में रिक्रिएट करने को लेकर है। वाशु बगनानी का कहना है कि इन सॉन्ग्स के यूज के राइट्स को लेकर डिस्प्यूट है, जबकि टिप्स म्यूजिक का कहना है कि उनके पास रिक्वायर्ड राइट्स हैं। कुमार तुरानी ने कहा है कि उनके कॉन्ट्रैक्ट्स 20 से 25 साल पुराने हैं और उनके मुताबिक एग्रीमेंट्स में लीगल डिस्प्यूट्स के लिए मुंबई ज्यूरिडिक्शंस स्पेसिफाई की गई थी। उन्होंने सवाल उठाए कि केस बिहार में क्यों फाइल किया गया। कुमार ने यह भी बताया कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रिलीफ मिला और उनके हिसाब से मैटर मुंबई में परस्यू किया जाना चाहिए था, लेकिन इस लीगल डिस्प्यूट के जो सबसे इमोशनल एस्पेक्ट्स हैं, दोनों फैमिलीज की पुरानी दोस्ती। कुमार तुरानी ने कहा कि उन्होंने और उनके भाई रमेश तुरानी ने वाशु के साथ सालों तक काम किया है और उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में आगे बढ़ने में सपोर्ट भी किया। अब जब सब उनसे पूछा गया कि क्या वो अभी भी बात करते हैं, तो कुमार ने कहा अभी थोड़ी दूरी है। उनका कहना है कि अगर वाशु को कोई प्रॉब्लम थी तो वो सीधे बात कर सकते थे। फिलहाल सॉन्ग्स के राइट्स को लेकर डिसएग्रीमेंट के साथ साथ एक पुरानी प्रोफेशनल फ्रेंडशिप भी टेंशन में आ चुकी है।
16: दिल से दिल तक, अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स। फॉर अ फ्री साइट असेसमेंट विजिट nzpmi.co.nz और कॉल 0800 4NZPMI।

0: Jackie.
1: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
2: वेलकम बैक. यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स. वेल, न्यूजीलैंड के आज के दिन 7 नवंबर 2026 के जनरल इलेक्शन से पहले पॉलिटिकल कैंपेन जो है उसमें इकोनॉमी, कॉस्ट ऑफ लिविंग और रिटायरमेंट जैसे इश्यूज पर फोकस बढ़ते नजर आ रहा है. आज के दिन नेशनल के फाइनेंस स्पोक्स पर्सन निकोला विलिस और लेबर के फाइनेंस स्पोक पर्सन बाबरा एडमंड्स के बीच कुछ Q&A भी हुआ था. फाइनेंस डिबेट पर दोनों ने रिटायरमेंट सिस्टम के फ्यूचर पर एक क्रॉस पार्टी एग्रीमेंट को सपोर्ट किया है, जिसमें सुपर एनुएशन, कीवी सेवर और ओल्डर न्यूजीलैंडर्स के हाउसिंग जैसे टॉपिक्स डिस्कस होंगे. लेकिन पेंशन की एलिजिबिलिटी एज को लेकर दोनों पार्टीज के व्यूज जो है वो काफ़ी अलग है. नेशनल फ्यूचर में पेंशन आगे बढ़ाने की बात कर रही है, जबकि लेबर का कहना है कि रिटायरमेंट सिस्टम को ओवरऑल देखना चाहिए. इलेक्शन कैंपेन के दौरान लेबर ने स्कूल यूनिफॉर्म की कॉस्ट जो है उसे भी प्रपोज किया है, अनाउंस की है, और इस पॉलिसी के तहत स्कूल को कंपलसरी ब्रांडेड यूनिफॉर्म आइटम्स की संख्या लिमिट करनी होगी ताकि पेरेंट्स की यूनिफॉर्म के लिए ज़्यादा पैसा खर्च करना ना पड़े.

0: with Ketan.
1: मुझे पसंद है लड़का।
0: हाँ।
2: वो दिन जब मोहब्बत खतों में होती थी।
3: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना।
2: और गानों में जस्ट

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: रिवाइंड सिर्फ रोवा पर।
1: मैं हरीश लोढ़िया आप सबको दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ। मैं आप लोगों को इस समय नहीं बतलाऊंगा कि क्या क्या नया इस धनतेरस और दिवाली के लिए आया है। मैं आपको और आपके परिवार को आमंत्रित करता हूं कि आप आए और अब तक का सबसे बड़ा और बढ़िया ज्वेलरी कलेक्शन एक बार जरूर देखें। तो मिलते हैं सोना संसार 190 स्ट्रडा रोड माउंट रॉस्किल या 138 ग्रेट साउथ रोड पापाटोईटोई में।
2: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88600.
3: इस Mental Health Awareness Week में एक पल निकाल कर देखिए कि आप कैसा फील कर रहे हैं। Sleep, mood, appetite या routine में changes इसका sign हो सकते हैं कि emotional support मदद कर सकता है। आप किसी अपने से एक सिंपल चेक-इन के साथ रीच आउट कर सकते हैं। एशियन फैमिली सर्विसेज फ्री कॉन्फिडेंशियल इमोशनल सपोर्ट देता है। एशियन हेल्पलाइन 0800-862-342 पर कॉल करें। अगर आप या आपका कोई जानने वाला इमीडिएट डेंजर में है तो 111 पर कॉल करें।
4: Check. Brought to you by Maan Tyres. For all kinds of tyres and mechanical services. Open 7 days. Call Maan Tyres on 0800-00010.
5: Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
6: Good afternoon, I'm Bridget Hasty with the latest at 2. National says it's prioritising debt over tax cuts as it sets out its fiscal plan. Included is more than $14 billion in health spending and a $2.4 billion operating allowance for future budgets. Finance spokesperson Nicola Willis says she's found $254 million in savings.
7: National will deliver by reducing welfare expenditure for long-term beneficiaries and reducing spending on foreign aid.
6: Parents could be allowed to buy non-branded alternatives to certain school uniform items if Labor gets into power. Spokesperson Jenny Anderson says these substitutes could easily stand in for the pricier versions.
8: Those things which are able to be purchased at a much cheaper price from, say, Kmart or from a warehouse, that should be available to parents.
6: A petition has been launched to fly the Māori flag on Auckland's Harbour Bridge permanently. Advocates point out that the Aboriginal counterpart now flies full-time on Sydney's bridge. Those wanting retail work over the Christmas period are advised to start putting feelers out now. And Retail New Zealand's Carolyn Young says the stores themselves could also be thinking about getting new hires up to speed before the rush begins.
9: We've got lots of resources on the Christmas Hub on retail.kiwi. Everything in one place, just really easy to access.
6: To Rugby League with Machinery House in a league of their own, and Knight star Kalyn Ponga will be one of the first Kiwis players picked for Thursday's World Cup opening clash with Australia. He's played 3 games for the Māori All-Stars, but will be making his debut for New Zealand in Sydney.
10: Connecting to my culture is a journey for me. I've been in Australia for a while, but who I am is back home, and it's going to be just as special, to be honest. Representing Māori or representing Kiwis, same thing.
6: And Rugby World Cup winning Black Fern Cheryl Walker has died at the age of 56 from cancer.
5: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papatoi and Mount Roskill. Weather update. Brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800-462626.
11: वेदर के हालचाल 20 डिग्रीज आज का मैक्सिमम टेम्परेचर रहने वाला है एंड 15 डिग्रीज आज का मिनिमम टेम्परेचर रहेगा। वैसे 30% चांस है बारिश के। चाय और पकोड़े खाने का एकदम परफेक्ट टाइम। सनसेट होगा 7:35 पे।

0: Namaskar, namaste. Welcome back. You are listening to Lunchbox. My name is Ketan. And yes, thank you so much for keeping yourself active for this show. I was here at 12 o'clock. After that, Sandy will be coming on for the coffee break. And after that, Ruz will be with him the drive show. But yes, how's your day been so far? कॉल भी आया था मुझे उस कंपटीशन का जो कि मैंने आपको बताया था दिवाली गीता वाला जहां पे आप $300 जीत सकते हैं बट यस आई नीड टू टेक अ कॉल ऑन एयर जी हां आप ऑफ एयर हमें कॉल करेंगे तो उसका कोई हम रजिस्टर नहीं कर पाएंगे सो यस मेक श्योर करें कि आप मुझे कॉल करें व्हाइल आई एम रिकमेंडिंग टू कॉल उसके आफ्टर या फिर उसे पहले वो कंपटीशन से कॉल एक्सेप्ट नहीं की जाएगी एंड सेम गोज टू द मैसेजेस एज वेल अगर हमने 5 मिनट बोले हैं तो 5 मिनट मतलब 5 मिनट अगर आप बाद में थोड़ा लेट भेजते हैं तो दैट विल नॉट गोइंग टू कंसीडर टू बी ड्रॉन एज इन द कंपटीशन बट एट द सेम टाइम आपको ये भी बता देते हैं कि अगर आप मिस आउट करते हैं तो डोंट वरी हम उसको फिर से दोहराएंगे अलग अलग टाइम पे तो उस जब भी दोहराएंगे तो मेक श्योर करना कि आप एक्टिव रहें और हमें सुनते रहें वैसे यस लेट्स स्टार्ट विद भांगड़ा पाके विशाल ददलानी दिव्य कुमार की आवाज़ में आप ये एंजॉय करिए गाना लेटेस्ट खबर लेके आऊंगा मैं थोड़ी सी देर में
1: बचाओ क्या

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। चलिए अभी की लेटेस्ट खबर पे थोड़ी नजर डाल देते हैं। नॉर्थ कोरिया ने समंदर की तरफ प्रोजेक्टाइल फायर किया है। वेल, नॉर्थ कोरिया ने मंडे यानी कि 12 अक्टूबर आज के दिन को अपने ईस्टर्न वाटर्स की तरफ कम से कम एक अनआइडेंटिफाइड प्रोजेक्टाइल लॉन्च किया है। साउथ कोरिया की मिलिट्री ने लॉन्च डिटेक्ट किया, लेकिन अभी कंफर्म नहीं किया है कि ये बैलिस्टिक मिसाइल्स था या कोई दूसरा वेपन था। जापान ने भी लॉन्च डिटेक्ट किया और इसे सस्पेक्टेड बैलिस्टिक मिसाइल बताई गई है। ये लॉन्च ऐसे वक्त हुआ है जब कोरियन पेनिनसुला में मिलिट्री टेंशन्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है, और कुछ दिन पहले 3 अक्टूबर को नॉर्थ कोरिया ने एक मिसाइल टेस्ट की थी जिससे उसकी स्टेट मीडिया से हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम्स का हिस्सा बताया। दूसरी तरफ साउथ कोरिया ने भी रिसेंटली अपने डोमेस्टिकली डेवलप्ड हाइपरसोनिक वेपन्स को फ्लाइट टेस्ट किया था। वैसे नॉर्थ कोरिया लीडर किम जोंग उन अपने कंट्री के न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम को एक्सपेंड कर रहे हैं, जबकि साउथ कोरिया और अमेरिका के साथ डिप्लोमेटिक टॉक्स अभी तक रिज्यूम नहीं की गई है। फिलहाल लेटेस्ट प्रोजेक्टाइल की एग्जैक्ट टाइप और उनसे कितनी दूर तक ट्रैवल किया है इसकी जो डिटेल है वो सामने नहीं आई है, तो जैसे ही आएगी हम डेफिनेटली हम आपको बताएंगे। बट यस, आप कनेक्टेड रहिए बिकॉज स्पोर्ट्स की खबर हम आपको बताने वाले हैं कुछ ही पल में।
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा तो भी इससे बड़ा लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
3: हे चैट जीपीटी, दिवाली आने वाली है, ऐसा कोई आइडिया है कि मेरा दिवाला भी ना निकले और दिवाली भी मन जाए?
4: अगर आप अपना लिस्ट शेयर करेंगे तो मैं आपको पैसे बचाने के आइडियाज दे सकता हूँ।
3: बढ़िया है। अच्छा, ग्रोसरीज लेना है, पूरे घर की पेंटिंग करवानी है, नया सोफा लेना है, इतनी भाग दौड़ करनी है तो नेचुरली गाड़ी में फ्यूल भी तो चाहिए। और हाँ, कोई ऐसा स्कीम है क्या कि मेरे पैसे अकाउंट से जाए नहीं बल्कि अकाउंट में आए?
4: इंटरेस्टिंग, और कुछ?
3: बस इतना ही।
4: सर, मैं चैट जीपीटी हूँ, अंबानी नहीं, हमसे ना हो पाएगा।
5: दिस दिवाली लिसन टू हम ऑन 104.2 FM और रोवा एंड टेक पार्ट इन फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून एंड गेट इन द ड्रॉ टू विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस लाइक ग्रोसरी वाउचर्स, फ्यूल वाउचर्स, होम डेको एंड फर्नीचर वाउचर्स, बिल्डिंग एंड गार्डन सप्लाई वाउचर्स एंड कैश। फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स, हैरिंगटन लिविंग, मनोको, ब्यूटिफुल फर्नीचर विद 60 मंथ्स इंटरेस्ट फ्री, NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स, लॉजिक फाइनेंस एंड गुरु कंडोला, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री, एंड फॉर्चून, ब्रिंग होम द फॉर्चून।
6: Did you get my text about eggs?
7: New World Express Delivery. Get your groceries in as little as 60 minutes. T's and C's and exclusions apply. See online for details.
8: The enrollment deadline's coming soon, pup. We better remind people before voting starts.
9: Enrolled yet?
8: How about you? Are you enrolled?
7: Last chance to enroll is midnight 25 October. Enroll now at vote.nz. Brought to you by the Electoral Commission.
10: It's New Zealand Wool Month, so don't miss sheepishly good deals on wool carpet at Flooring Extra. Shop the wool sale now and save on a range of luxurious New Zealand wool carpet. Warm, durable and beautifully sustainable. Plus, you can enjoy 36 months interest-free. So discover the comfort and style of wool that suits your space and budget. Visit your local Flooring Extra showroom today for expert advice you can rely on. TC's fees and credit criteria are apply.
11: Flooring Extra. Adore your floor.
12: Settle, win, escape. Finance World is about to take you further with a trip to Bali. Settle kijiye apna home loan of 500,000 ya usse zyada Finance World ke saath, and you're automatically in the draw to win a trip to Bali for 2, 5 days, 4 nights. Do lucky winners. Har eligible home loan of 500,000 ya usse zyada automatically aapko draw mein enter karta hai. Terms and conditions apply. Visit financeworld.co.nz/Bali. Finance World Limited is a registered financial advice provider.
6: Be in to win one of five $10,000 My to 10 gift cards. Zara socho, isse kya kya ho sakta hai? Apna ultimate backyard hangout bana sakte ho. Camping ka pura gear le sakte ho. Ek room ka makeover kar sakte ho. Ya apne garden goals ko reality banao. The possibilities are endless. Bas $20 ya se zyada spend karo, apna receipt code online enter karo and you are in the draw. Plus club members get their entries doubled. T's and C's apply. Ends 1st November. Shop now at My to 10.

0: केतन,
1: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई है।
0: इसके पीछे
2: हम
0: स्किप या रीप्ले।
3: वेल, चलिए स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे डेफिनेटली इसको तो स्किप नहीं कर सकते हैं, और रिप्ले तो डेफिनेटली कर सकते हैं। आप अगर यूट्यूब पे जाएंगे तो वहाँ पे इसकी यूट्यूब कहेंगे ऑफिशियल जो वेबसाइट है बीसीसीआई की, वहाँ से भी आप हाईलाइट देख सकते हैं। बट येस, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया वर्सेज वेस्ट इंडीज, जो कि 14th, sorry, 3rd T20 इंटरनेशनल उन्होंने खेला है आपस में इस 5 T20 इंटरनेशनल सीरीज में, और इंडिया ने ये मैच जीत लिया है और 2-1 से बढ़त हासिल कर ली है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। 14 रन से जीती है। पहले खेलते हुए इंडिया ने 223 रन बनाए, जिसके तरफ से सबसे ज़्यादा रन अभिषेक शर्मा के थे। 30 बॉलों पे 69 रन, 230 के स्ट्राइक रेट के साथ, 5 छक्के 6 चौके के साथ। उसके बाद ईशान किशन ने भी ठीक ठाक खेला है, 18 बॉलों पे 37 रन बनाए है, और श्रेयस अय्यर कप्तान 1 रन पर आउट हो गए। बट यस, इन टोटल 223 रन बनाए, और लग रहा था कि शायद वेस्ट इंडीज जीत जाएगी बिकॉज ऑफ द लास्ट मैच जो इतना आसानी से उन्होंने जीत लिया था। और यस, वेस्ट इंडीज लेकिन नहीं बना पाई और 209 पर ही ठहर गई, यानी कि उनकी तरफ से सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं कमल पूरन, जो कि 42 रन बनाए हैं, और शिमरॉन हिटमेयर 43 रन बनाए हैं। और यहीं से थोड़ा सा ऑब्वियसली आ चुका था फेवर, लेकिन शेमर स्प्रिंगर ने 11 बॉलों में 35 रन बनाए, यानी कि 300 से ज़्यादा की स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन बनाए थे, जो कि थोड़ा सा हार्ट बीट कर रहा था। बट अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट भी लिया और उस वजह से भी मैच जीत गए इंडिया। बट यस, और कौन से मैचेस हैं जो आप एंजॉय कर सकते हैं आज के दिन? इफ़ यू लव टू सी द क्रिकेट देन आज तो वैसे कुछ नहीं अभी हाल फिलहाल, बट लेट्स सी, 9 अक्टूबर को है एक्चुअली, नहीं यार है 12 अक्टूबर को, पता नहीं क्यों वो आ रहा है। मलेशिया सिंगापुर का भी लाइव चल रहा है मैच, मलेशिया 16-0, हांगकॉन्ग मालदीव्स के बीच में मैच हो रहा है, हांगकॉन्ग ने 1 विकेट खो लिया है 11 रन पे। उसके बाद चाइना वर्सेस सऊदी अरेबिया भी खेल रहे हैं, सऊदी अरेबिया अभी खेलना शुरू करेगी ऑलरेडी ऑन द पिच, और उसके साथ ही मंगोलिया कतार का भी मैच है, थाईलैंड म्यांमार का भी मैच है, कुवैत भूटान का भी मैच है। ये T20 वर्ल्ड कप एशिया सब रीजनल क्वालिफायर के लिए मैच हो रहा है। सो यस, लेट्स सी कौन जीतता है कौन कौन से मैचेस में, बट यस आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। अगर वुमेंस की अगर बात करें तो वुमेंस में आज सिर्फ एक ही मैच है जो है श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान के बीच, तो आप उसे एंजॉय कर सकते हैं। अंडर 19 की बात कर रहा हूं मैं।
0: टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। वेल, एक बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल मैं लेके आया हूँ। काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि क्या बेटर है मील के लिए, प्रोटीन या फिर फाइबर। मैं अभी पोस्ट भी डालने वाला हूँ, सवाल भी करूँगा वहाँ पे मैं हमारे सोशल मीडिया से। बट यस, पेट ज़्यादा देर तक क्या भरा रखता है? आजकल हाई प्रोटीन फूड्स और प्रोटीन सप्लीमेंट काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं, लेकिन न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि हमें फाइबर को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। प्रोटीन बॉडी को रिपेयर करने में और मसल्स मेंटेन करने में काफ़ी हेल्प करता है, साथ ही ये मील के बाद पेट भरा हुआ भी फील करता है और नेक्स्ट मील तक हंगर कंट्रोल करने में भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है। लेकिन फाइबर भी इस काम में इक्वली इम्पॉर्टेंट हो सकता है। फाइबर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ओट्स, होल ग्रेन्स, ब्रेड, बीन्स और चिकपीज में मिलता है। ये डाइजेशन को स्लो कर सकता है, पेट में फुलनेस बढ़ाता है और गट हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल है। एक स्मॉल स्टडी में प्रोटीन और फाइबर को कंपेयर किया गया और दोनों ने फुलनेस मेंटेन करने में सिमिलर रिजल्ट दिखाया, लेकिन अभी तक रिसर्च नहीं है कि कॉन्फिडेंटली कहा जा सकता है कि इन्होंने इनमें से कौन सा ज़्यादा फिलिंग है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई एडल्ट्स अपने डाइट में ऑलरेडी इनफ प्रोटीन ले रहे हैं, लेकिन फाइबर की क्वांटिटी रिकमेंडेड लेवल से कम है। इसीलिए एक्सपर्ट्स सजेस्ट करते हैं कि सिर्फ प्रोटीन या प्रोटीन पे फोकस मत करिए, प्रोटीन और फाइबर दोनों को डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। दाल, राजमा, चना और नट्स जैसे फूड्स दोनों तरह के न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। सो व्हाट यू हैविंग राइट नाउ, व्हाट यू गाइस आर हैविंग राइट नाउ, इट इज़ मोर ऑफ अ प्रोटीन और इट इज़ मोर ऑफ फाइबर? 5599 से नंबर जहां पे आप मुझे भेज सकते हैं।
1: बॉलीवुड के सबसे बड़े हिट गाने,
2: yeah.
1: हम

0: rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: Hum. The sky cracks open. Your nemesis descends. He's brought an army.
2: It's a bit dramatic.
1: And there you are, cape billowing, jaws set, underwear over your pants. The fate of Tamaki Makoto rests on your buff shoulders, so you leap into the sky, adjust your underwear, and shout!
3: The next station is Te Waihorotiu.
4: Watch, scroll, draw, game, relax. Hop on for some me time on AT, buses, trains, and ferries.
5: Get ready for massive savings at Carpet Court and Curtain Studio. Save on carpet, hard floor, rugs, curtains and blinds. Don't miss these unbeatable deals. Only at Carpet Court and Curtain Studio. 3 days only, starts Thursday.
6: There's more to your everyday rewards. From points on weekly shops to cents off at fuel stops. Get more value on everyday spending. It really is never ending. Enjoy more rewards and more value today. T's and exclusions apply.
7: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and on-site cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88600.
8: Welcome to Kebab's Kitchen. I am Chef Alex and this is my guest, Sarah.
9: What do you make in Kebab's special, Chef Alex?
8: Perfect blend of spices, tender meat and fresh vegetables. Every kebab is made with love and passion.
9: Wow, these kebabs are amazing. Spices eat them right and meat is so juicy.
8: Yeah, Amma's Kebabs promise delivering happiness bite by bite. Amma's food at your nearest Indian grocery or halal butchery stores.
9: 100% authentic and pure as mother's love.
10: I was 11 when I was put into an induced coma and airlifted to Starship. I have a rare lung condition and my family gathered to say their goodbyes. But instead,
11: I woke up. The people at Starship saved my life. And now I have two beautiful kids of my own. Looking back, seeing how far I've come, I think little me would be so proud.
12: Mercury, helping Starship turn little into big for 25 years.
13: What could I be? A teacher? A scientist? A builder? But first I need a chance. A chance to feel safe, to learn, to believe in myself. That's why Barnardo's is asking you to invest in children. Because when you invest in a child today, you can help them build a future full of possibilities. Invest in children at investinchildren.nz. Because the returns last a lifetime.
14: सुनो आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया घर बेचने को कह रहे थे
15: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं डेवलप करना बेहतर लगता है पर पैसों का डर है
14: इसीलिए NZPMI से बात कर लो वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं
16: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए NZPMI टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस कॉल पॉल ऑन 0800 4 NZPMI
17: Non-stop Bollywood.
18: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
17: हम playing Bollywood's biggest hits. Lunchbox with Ketan.
19: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं.
17: इसके पीछे.
18: हम.
17: Tech Talk.
20: वेल टेक टॉक बताऊं से पहले ये अनाउंसमेंट देता हूं इस दिवाली हम के साथ सुनिए रामायण की अमर कहानियां रामायण एक गाथा में मंडे से दिन में तीन बार 8:20 AM 1:30 PM 6:45 PM सिर्फ एक से दो मिनट के लिए स्पेशल स्टोरी टेलिंग सेगमेंट जो आपको रामायण के मेमोरेबल कैरेक्टर्स इंस्पायरिंग मोमेंट्स और टाइमलेस लाइफ लेसन से रूबरू कराएंगे और इस फेस्टिवल में इस फेस्टिवल ऑफ लाइट्स सेलिब्रेट कीजिए जनरेशन से आज चली आ रही कहानियों को रामायण एक गाथा ओनली ऑन हम साथ में कहानी से लेबर कैंडिडेट सॉरी टाकानिनी से लेबर कैंडिडेट खरक सिंह से हमने बहुत ही अच्छे से बात की है रिगार्डिंग कैसे कम्युनिटी से जुड़े इंपॉर्टेंट सवाल और कुछ स्मॉल बिजनेसेस जो काफ़ी प्रॉब्लम्स में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग सुपरमार्केट कंपटीशन एटसेट्रा ये सारी बातें की है यहाँ पे तो आप डेफिनेटली हमें ड्राइव लिखिए 5599 पे भेज दीजिए ताकि जो सवाल सैंडी और उसमें को मिले थे और उन्होंने आपकी आवाज़ बनके उनसे पूछे भी थे उन्हें भी जानने के लिए आप हमें ड्राइव लिखिए और 5599 पे भेज दीजिए ताकि आप तक ये लिंक भी पहुंच जाए एंड येस ऑन अदर साइड देयर इज वन मोर चांस जहां पे आप जीत सकते हैं शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस दिस दिवाली विद हम मुझे लिखिए लॉजिक और अपने नाम के साथ भेज दीजिए 5599 पे बिकॉज 30 अक्टूबर को अनाउंसमेंट होगा कौन है विनर तो जल्दी से फोन उठाइए और मुझे 5599 पे भेज दीजिए $1,000 वर्थ ऑफ न्यू वर्ल्ड वाउचर्स जीतने के लिए लॉजिक लिखिए अपना स्पेस और अपना नाम के साथ मुझे भेज दीजिए 5599 पे लॉजिक फाइनेंस एट गुरु कैंडोला अ हाउसफुल नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री कॉल 0800 लॉजिक जी टर्म्स एंड कंडीशन डू अप्लाई आप hum.roa.nz पे जाके देख सकते हैं यस यू ओनली हैव 5 मिनट्स फ्रॉम नाउ टू सेंड मी द टेक्स्ट एंड यस हम FM जी हाँ वॉन्ट्स टू सेंड यू अ बिग टू द बिग मैच फुटबॉल फैंस गेट रेडी ऑल वाइट्स आ रही है टेकिंग प्लेस इंडिया अगेंस्ट इंडिया इन ऑकलैंड थर्सडे को 12th November जो बहुत ही बढ़िया मैच जाने वाला है सो मेक श्योर आप एक्टिव रहें और हमें सुनते रहें यू कुड बी देयर लाइव एट गो मीडिया स्टेडियम और हम आपको देगा डबल पास यहाँ पे न्यूजीलैंड टेक ऑन इंडिया अगर आप चाहते हैं इस एक्शन का पार्ट बनना तो यस आप हमारे फेसबुक पेज पे जाइए और पोस्ट हमने डाला है टैग अ फ्रेंड यू वांट टू गो अलोंग विथ एंड टेल अस योर प्रेडिक्शन फॉर द फाइनल स्कोर क्या रहने वाला है वो आप वहाँ जाके बता सकते हैं और हम यहाँ पे ड्रॉ में शामिल हो जाएंगे और उन्हें पिक करके बताएंगे हु विल बी द विनर सो यस द गेम्स वर अनाउंस्ड बाय हॉन मार्क मिशेल एज पार्ट ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट टू New Zealand and will form part of a series of sporting events to celebrate 100 years of unity through sports. So yes, yaad rakhiye, All Whites versus India, November 12th at Go Media Stadium.
2: Dil se, dil tak. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800 4NZPMI.

0: 꿈쟁이.
1: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
2: Welcome back. Well, yes, it's time to say goodbye to you and I will see you tomorrow. Same time, 12 se 3, ek nai baaton ke saath, nai lunch ke andar, lunch ke dabbe ke andar, nai khane ke saath, nai pakwan ke saath. Toh kal baat karenge iske baare mein ki kal kya aap leke aane wale, kal main kya leke aane wala hoon. Waise aaj main leke aaya tha pulao. Specially mummy ko bola maine, mummy pulao bana do, mera bahut man kar raha hai ekdam dahi laga ke. Aur ek hamare surprise visitor aaye the yahan pe. उन्होंने बहुत सारे ढेर सारे समोसे लेके आ गए थे. तो यस, जैसे कि मैंने कहा था, चाय पकोड़े का वैसे तो दिन था, लेकिन यहाँ पे चाय तो नहीं था, पकोड़े तो नहीं था, लेकिन समोसों ने काफ़ी हद तक वो जो एनवायरनमेंट चल रहा था, जो माहौल हो रहा था, उसको फुलफिल करने में हेल्प करी. बट यस, टिफिन अभी देखते हैं, मे बी ऑन द वे और मे बी वंस आई रीच टू यू नो शूट, तो मैं उससे पहले खा लूँगा. वो भी खाना ज़रूरी है. बट टू बी ऑनेस्ट, बहुत ही यम्मी था, बहुत ही यम्मी. But yes, that's all from me and I will see you tomorrow. Sandy will be joining shortly for the coffee break and I take care, bye-bye and love you.

0: मुझे पसंद है लड़का।
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja।
2: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
3: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
4: That is very that is a very acceleration.
3: That's a very acceleration. Yeah.
4: Amazing acceleration.
3: This is my fancy English. That's a very.
4: अरे होता है यार, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
0: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Monaco.
1: Weekdays 6 to 10 a.m. इस दिवाली घर को दियो के साथ सोना संसार के गहनों से भी रोशन कर डालिए।
5: अरे तेजल, चल जल्दी जाइए धनतेरस माटे शॉपिंग करवा सोना संसार में। तने जे पसंद पड़े ए बाय करी लेजे। लेटेस्ट ज्वेलरी कलेक्शन के लिए एक ही पता, सोना संसार।
1: दिल वाली दिवाली सोना संसार के साथ 190 स्टोला रोड माउंट रॉस्किल। कॉल 09629333।
0: Comes to town, Aotearoa ka feel hi kuch alag ho jata hai. Tickets ab available hai nzc.nz par. Be there, kyunki ye sirf cricket nahi, ye hai Black Caps versus India.
6: इस मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वीक में एक पल निकालकर देखिए कि आप कैसा फील कर रहे हैं। स्लीप, मूड, एपेटाइट या रूटीन में चेंजेस इसका साइन हो सकते हैं कि इमोशनल सपोर्ट मदद कर सकता है। आप किसी अपने से एक सिंपल चेक इन के साथ रीच आउट कर सकते हैं। एशियन फैमिली सर्विसेज फ्री कॉन्फिडेंशियल इमोशनल सपोर्ट देता है। एशियन हेल्पलाइन 0800-862-342 पर कॉल करें। अगर आप या आपका कोई जानने वाला इमीडिएट डेंजर में है तो 111 पर कॉल करें।
7: बिग बाजार में बिगेस्ट रेंज ऑफ पूजा घर मिल रहे हैं। प्योर मार्बल मूर्तिज, कॉपर मूर्तिज, गन मेटल मूर्तिज, देवी देवताओं के वस्त्र, सभी तरह के हार एंड एक्सटेंसिव रेंज ऑफ पूजा आइटम्स, बिग रेंज ऑफ कंसोल टेबल्स, मिरर्स, कर्टन्स, सोफा कवर्स, बीना एंड लाहौर ब्रांड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी अवेलेबल है। बिग बाजार 302 ग्रेट साउथ रोड पापटोईटोई, योर वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन दिस नवरात्रि।
8: न्यूजीलैंड के रीसेंट फ्लड्स ने काफी डैमेज किया है। फोकस किचन सारे न्यूजीलैंडर्स की तरह इन विक्टिम्स के साथ खड़े हैं एंड आर हेल्पिंग देम गेट बैक टू नॉर्मल लाइफ बाय हेल्पिंग देम आउट विद देयर किचन कैबिनेट्स। फोकस किचन प्रोवाइड कर रहे हैं अ वेरी स्पेशल प्राइस फॉर पीपल विद फ्लड डैमेज किचन्स। कॉन्टैक्ट फोकस किचन ऑन 09281-3050, यूनिट के 33 वॉम्सली रोड, ओटाहू। फॉर इन्फो एंड डिजाइन आइडियाज विजिट focuskitchens.co.nz।
9: Brought to you by Mann Tires. For all kinds of tires and mechanical services, open 7 days. Call Mann Tires on 0800-00010.
1: Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
10: Good afternoon, I'm Bridget Hasty with the latest at 3. The Greens want to bring in tighter rules around the impact of data centres on the environment. The party is promising mandatory assessments on how the facilities will affect nearby nature, while also making sure operations don't use up too much water or power. Co-leader Chloe Swarbrick says AI is not just a digital tool.
11: It has real world impacts. Therefore, regulations must be in place before we start building more hyperscale data centres.
10: A man has been charged with murder over a fatal crash in Te Puke. It happened on Saturday morning with just one vehicle involved. A 25-year-old is due in court today. The RSA is urging local clubs to strengthen their systems after a review into the Papa Nui branch's finances. It found major gaps in governance after it emerged money raised through the Poppy Fund was loaned to the chapter to support operations. RSA board chair Rhys Jones encourages others to take note.
12: It's more a case of have a look at your own individual clubs and see whether there's anything you can do to improve.
10: A Northland state school has become the first in the country to convert to a charter school. Pakaraka School will see students take a hands-on approach to learning about things like food growth, harvest and storage. To sport the Chiefs, battle is in court today in Wellington. New Zealand Rugby is seeking an interim injunction to prevent the use of PNG Chiefs, Chiefs or similar names in New Zealand. To motorsport with Magan Turbo's 80,000k tyre warranty and fallout from the Bathurst 1000 yesterday. Team 18 has apologised for the final lap fuel botch-up that cost driver Anton De Pasquale his first ever win in the great race.
1: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
13: मौसम के हालचाल मेट सर्विस के अनुसार इस समय टेम्परेचर बाहर का 18.7 डिग्रीज और आज को वो नाइट 14 डिग्रीज टेम्परेचर रहने वाला है.
1: The beat of Bollywood.
14: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
1: Coffee break with Sandy.
13: 3:02 हो चुके हैं. अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू. कॉफी ब्रेक शुरू हो चुका है. यू हमिंग अलोंग विद सैंडी एंड अभी से लेके 4 तक मेरा और आपका साथ यहाँ पे रहने वाला है. 4 के बाद यहाँ पे ड्राइव शो में मेरा साथ हो जाएगा रूजबे के साथ. सो कैसे हैं आप और आपका वीकेंड कैसा गया? माइन वॉज लिटल बिजी आवल से, हैक्टिक आवल से, नॉट एट ऑल रिलैक्सिंग. वॉट अबाउट योर वीकेंड? आप भी बताइए, यहाँ पर ज़रूर शेयर कर सकते हैं. एंड मैंने रियलाइज़ किया वीकेंड भी इट वॉज क्वाइट हॉट वेदर. ह्यूमिडिटी था कल वैसे, लेकिन सैटरडे को गर्मी ऐसा लग रही थी, फुल और गर्मी वाला वेदर था. सो आपने कुछ किया, कहीं पर गए, कहीं स्पेशल जगह पे आप गए? आप भी इसके बारे में ज़रूर यहाँ पे शेयर कर सकते हैं. एंड हम पे हमने डिफरेंट कैंपेन्स भी लॉन्च कर दी है, डिफरेंट चीज़ें आपके लिए हमने यहाँ पे लॉन्च कर दी है. दिवाली के मौके पर आपको यहाँ पे पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है, कुछ ना कुछ जीतने का मौका मिल रहा है, जिसकी जानकारी आपके लिए डिटेल में थोड़ी देर में.

3:12 हो चुके हैं, कॉफी ब्रेक फिलहाल आप यहाँ पे सुन रहे हैं। दिवाली के मौके पे फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून में पार्टिसिपेट करने का मौका भी आज आपको 4 बजे के बाद मिलने वाला है। आप $1,000 वर्थ ऑफ फ्यूल वाउचर जीत सकते हैं। इस ड्रॉ में शामिल होने का मौका आपको मिलेगा। $1,000 कैश आपके नाम हो सकता है। इस ड्रॉ में शामिल होने का मौका भी आपको मिलने वाला है। सो फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून में यू कैन विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस। तो सुनते रहेगा, डिफरेंट टाइमिंग्स में आपको डिफरेंट ड्रॉज में पार्टिसिपेट करने का मौका यहाँ पे ज़रूर मिल रहा है। एंड एक और स्पेशल आपके लिए हम लेके आए हैं, एक दिया एक कहानी। सो एट होम हम आपके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं समवन स्पेशल इन योर लाइफ, नॉट बाय फैमिली, नॉट बाय ब्लड, बट फैमिली बाय हार्ट। सो क्या होता है ना, परदेश में आके, एक डिफरेंट कंट्री में आके हमारे बहुत सारे रिश्ते बनते हैं, जहाँ पे

0: friends, they become more like a family. And ye friends ho sakte hai, aapke colleagues ho sakte hai, aapke mentor ho sakte hai, wo koi bhi ho sakta hai. So this Diwali hum aapko mauka de rahe hain unko unke upar, you know, wo aapki life mein kaise light leke aaye hain unko shout out dene ke liye. So someone who has supported you, inspired you, made you smile, ya fir simply made your life brighter by being in it. तो क्या होगा कि आज ड्राइव शो में आपको मौका दिया जाएगा दिवाली शाउट आउट के लिए. यू कैन कॉल ऑन 0800004866 पर एंड टेल अस वो कौन है जिसके आप जिसको आप दिवाली शाउट आउट देना चाहते हैं एंड व्हाई यू अप्रिशिएट हैविंग देम इन योर लाइफ. एंड आपका नाम इस ड्रॉ में जाएगा जहाँ पे यू कैन विन. ऑफकोर्स अगर आप यहाँ पे दिवाली की कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं यू आर विनिंग समथिंग. सो जब आप कॉल करेंगे आपका नाम इस ड्रॉ में जाएगा जहाँ पे यू कैन विन $300 cash. Now with this $300 cash, actually you can do something for the person you are talking about. Ya fir nahi, wo aapke upar hai. Draw jo hai, ye 6 November ko hone wala hai. So this Diwali, we are also celebrating the people who light up your lives. To ye sab bhi hum yahan pe karne wale hain. Aur usi ke saath saath, jaise aapne subah bhi suna hoga, aapne lunch box mein bhi suna hoga, is Diwali pe hum ek timeless story of Ramayan bhi leke aa rahe hain. सो रामायण एक गाथा एक्स्पेशली प्रोड्यूस 1 to 2 minute के एपिक स्टोरी टेलिंग सेगमेंट्स है. सो ये डिफरेंट टाइमिंग्स पे रहता है, सुबह 8:20 पे, देन 1:30 PM दोपहर लंच बॉक्स के टाइम पे एंड अभी शाम को 6:45 PM पे. ये शॉर्ट पावरफुल स्टोरीज है जहाँ पे वैल्यूज़ एंड टाइमलेस विजडम है रामायण की जो हमारी एवरीडे लाइफ में यूज़ भी होती है. So this Diwali, we are also celebrating in a very different way also. Ramayana ek gatha bhi aap ke liye leke aa rahe hain. In case aap yahan pe miss out kar lete hain, don't worry. Rova pe jaiye, wahan pe ek Diwali podcast hai, uske upar click karo. Wahan pe jaake bhi aap sun sakte hain. Otherwise, just type Diwali on 5599, to aapko link mil jayega kahan pe jaake aapko sunna hai. Coffee Break with Sandy.
1: इस दिवाली सिर्फ घर नहीं रिश्ते भी रोशन करें. एक दिया एक कहानी के साथ जुड़िए दिवाली पूजा, पूजा विधि, दिवाली पूजा सामग्री और दिवाली रामायण गाथा के साथ. हर दिया एक कहानी कहेगा और हर दिल अपनों के और करीब आएगा. हम की ओर से आपको और आपके परिवार को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं. ब्रॉट टू यू बाय फाइनेंस वर्ल्ड, रामायण मूवी बाय फोरम फिल्म्स, इंडेलिबल होम्स, लोटस फॉरेन एक्सचेंज, एबीसी बिजनेस कंसल्टेंट्स, सोना संसार, पैशन लैंडस्केप, अम्मास फूड, पीएफएसएल, अर्जुन सुपरमार्केट, बिग बाजार एंड फॉर्चून फूड्स. Be in to win one of $5,10,000 MyTitan gift cards. Zara socho, isse kya kya ho sakta hai? Apna ultimate backyard hangout bana sakte ho. Camping ka pura gear le sakte ho. Ek room ka makeover kar sakte ho. Ya apne garden goals ko reality banao. The possibilities are endless. Bas $20 ya se zyada spend karo, apna receipt code online enter karo and you are in the draw. Plus club members get their entries doubled. T's and C's apply. Ends 1st November. Shop now at MyTitan.
2: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं. पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना, बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस, ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस, और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन साइट क्रेमेटोरियम, और जब भी जरूरत हो, दिन हो या रात, हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा. मॉरिसन फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए.
3: कॉमनवेल्थ वॉल्ट आपके प्रेशियस बिलोंगिंग्स को रखता है सेफ और सिक्योर. गोल्ड, बुलियन और प्रेशियस मेटल्स की वैल्यू जब ऑल टाइम हाई पे है, तब ये पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है कि आपके एसेट्स थेफ्ट और नेचुरल डिजास्टर से प्रोटेक्टेड रहें. जब आप अपने वैल्यूएबल्स कॉमनवेल्थ वॉल्ट को इंट्रस्ट करते हैं तो आपको मिलता है पीस ऑफ माइंड, ये जानते हुए कि वो सेफ, सिक्योर और प्रोटेक्टेड रहेंगे. कॉमनवेल्थ वॉल्ट, सिक्योरिंग योर वैल्यूएबल्स फॉर अ लाइफटाइम एंड बियॉन्ड. डिटेल्स एट commonwealthvault.go.nz. दैट्स commonwealthvault.go.nz.
4: At Spotlight for 48 hours only, save a mega 30% off store-wide, including Manchester Home Decor, Fabric Craft, Knitting Yarn, Party, Curtains and Blinds. Yes, that's 30% off. Sale on now. At Spotlight, it's what you make it. Discounts apply to full price products. Excludes clearance. See website for details.
5: How does one person finance on a new Jeku sound? Right now at West City Omura Jeku, get one person per annum fixed finance for 36 months with a 20% deposit on the Jeku J7 SHS. And it's just dropped $2,000 in price, now starting from $47,990 plus on-road costs. Talk to Jimmy Taylor and team at West City Omura Jeku. For full terms and conditions, head to westcityautogroup.nz.
6: दिवाली आ रही है और फॉर्च्यून ला रहा है आपके लिए जीतने का मौका. लोटस मैनिकाओ, माउंट रॉस्किल या बोटनी एंड नमस्ते इंडियन सुपरमार्केट से कोई भी टू फॉर्च्यून या सिंपली प्रोडक्ट्स खरीदिए और जीतिए $501 का ट्रॉली डैश. साथ में हर हफ्ते 10 विनर्स को $101 का इन स्टोर क्रेडिट. बस एंट्री फॉर्म भरो, रिसीट लगाओ और एंट्री बॉक्स में डाल दो. फॉर्च्यून दिवाली, बी इन टू विन, एंड्स 15th November. टीज एंड सीज अप्लाई.
7: Get fresh dinner deals at New World North Island, like skinless chicken breast fillets, $12.99 per kilo, and loose or truss tomatoes, $6.99 per kilo. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
8: Reliance Ventilation System.
9: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
8: Moisture और ventilation का problem लगता है.
9: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
8: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
10: Contact Reliance Ventilation System on 0800 787 111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.

0: कॉफी ब्रेक फिलहाल आप यहाँ पर सुन रहे हैं एंड रिमेम्बर मार्च 2027 कुछ ही महीने बाकी है, हमारा जो एपिक ट्रिप है ये शुरू होने वाला है. सो टू कंट्रीज और एक एपिक एडवेंचर, जीरो स्ट्रेस इसमें रहेगा. वी टॉकिंग अबाउट बाली एंड बैंकॉक, पहले बाली फिर बैंकॉक. योर ईस्टर 2027 एकदम सॉर्टेड हो सकता है. 50% ट्रिप इज ऑलरेडी सोल्ड आउट, सो अपना स्पॉट आप सिक्योर कर सकते हैं. नाउ इमेजिन की बाली की ट्रॉपिकल बीच, स्टनिंग सनसेट, लेड बैक आइलैंड वाइब्स, और उसके बाद एंड नॉट जस्ट दैट, बाली में एक्चुअली में जो स्विंग है वो सारी एक्टिविटीज़ भी, यू नो, वो सब कुछ इस पैकेज में रहेगा. देन फॉलोड बाय बैंकॉक की बजिंग स्ट्रीट्स, टुक टुक एडवेंचर, इनक्रेडिबल शॉपिंग, मैसेजेस एंड अनफॉरगेटेबल नाइट लाइफ. सो यू डोंट हैव टू सेटल फॉर वन ड्रीम डेस्टिनेशन अगर आपको घूमने के लिए जाना है. और कई बार क्या होता है कि जब आप सोचते हो कि यार दो कंट्रीज़ में जाना है तो हम प्लानिंग कैसे करेंगे, सब कुछ कैसे होगा, दैट्स वाई दिस गेटअवे इज़ क्वाइट अ गुड थिंग, बिकॉज इसमें सब कुछ आपके लिए प्लान्ड है. सो एक्टिविटी से लेके, वाटर एक्टिविटी से लेके, सफारी एंड एवरी थिंग इज़ प्लान्ड इन दिस फुल पैकेज. सो अगर आप इसमें जाना चाहते हैं मेरे और रुजबे के साथ, बिकॉज मैं और रुजबे भी इसमें जा रहे हैं, सन टूअर्स ने इस पैकेज को बनाया है, तो आप इसकी बुकिंग करवा सकते हैं. एंड डू इट एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज वी सॉ अ रिसेंट रिस्पॉन्स, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी स्पॉट्स इसमें जाने वाले हैं. सो अगर आप ये स्पॉट बुक करते हैं दिवाली से पहले, जिसकी रजिस्ट्रेशन फीस इज़ जस्ट $500, लेकिन आप हैव अ चैट विद सन टूअर्स और आपको पता चलेगा कि इस पैकेज में क्या क्या है. आपको ईमेल किया जाएगा फुल डिटेल्स कि बाली और बैंकॉक में क्या क्या होने वाला है, फ्लाइट टिकट्स, अकोमोडेशंस के बारे में, तीनों टाइम का खाना, एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड इन दिस पैकेज. बेसिकली आपको बैग पैक करना है और निकल पड़ना है. लेकिन अगर आप दिवाली से पहले बुकिंग करते हैं तो यू कैन गेट फ्री 2-night 3-day कार्निवल क्रूज पैकेज एज वेल, जो कि सिडनी टू सिडनी है. तो इमेजिन कीजिए कि वहाँ की बुकिंग कर रहे हैं प्लस आपको एक क्रूज पैकेज मिल रहा है, वो भी 2-night and 3-days का कार्निवल क्रूज पैकेज है ये. और ये ट्रांसफ़र भी है, आप किसी और के नाम पे भी इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं एंड एक साल के लिए ये वैलिड है. सो इन्फॉर्मेशन के लिए सन टूअर्स में बात कीजिए. अगर आप गूगल भी करते हैं सन टूअर्स का नंबर, यू विल गेट द नंबर, अदरवाइज 0800-4 दैट इज़ नुमेरिक सन टूअर्स, विच इज़ 0800-4-786-868. वहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो आप डायरेक्ट अनिल भाटिया से बात कर सकते हैं फ्रॉम सन टूअर्स.
1: हॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड,
2: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ.
3: Brought
1: to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: 3:31 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं फिलहाल कॉफी ब्रेक आप यहाँ पे सुन रहे हैं. ओवर द कमिंग डेज वैसे काफ़ी अच्छे वीकेंड रहने वाले हैं, काफ़ी अच्छे वेदर रहने वाले हैं जहाँ पे इतनी सारी फेस्टिविटीज़ हो रही हैं. एंड अगर आप वॉकिंग हाइकिंग के लिए डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जाना चाहते हैं, काउरी ग्लेन रिजर्व, दिस इज़ वन वेरी वेरी ब्यूटिफुल प्लेस एक्चुअली में जहाँ पे आप जा सकते हैं. इसका वैसे आप व्यू वगैरह देखोगे तो बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही सुंदर व्यू है इसका. बुश है विच इज़ कवर्ड, इट कवर्स द रिजर्व एक्चुअली में, जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीज है आपको मिलेंगे. एंड दीज ट्रीज आर अबाउट 300 to 400 ईयर ओल्ड. सो एक 60 meter ट्री टॉप ब्रॉड वॉक है जहाँ पे आप ये वॉकिंग कर सकते हैं. 18 meter है अबव द ग्राउंड. सो अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी ट्री टॉप वाली वॉकिंग करनी है तो दिस वन इज़ फॉर यू. इट ऑल्सो गिव योर बर्ड्स आई व्यू ऑफ द ट्रीज एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ स्प्रेडिंग काउरी डायबैक डिजीज एज वेल. लेकिन ऑफकोर्स वॉक करने से पहले आपको अपने शूज़ जो है ये अच्छे से क्लीन करने हैं. आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा कि जब आप हाइकिंग के लिए एंटर करते हैं तो वहाँ पे शू क्लीन करने के लिए ऑलरेडी जगह बनी होती है. यू क्लीन योर शूज़ एंड देन यू गो. इससे जो डिजीज़ है वो आप साथ में कैरी करके ना लेके जाते हैं ना लेके आते हैं. लिमिटेड स्ट्रीट पार्किंग अवेलेबल है अराउंड द रिजर्व. यू मे नीड टू वॉक सम डिस्टेंस और यू कुड कंसिडर यूजिंग द पब्लिक ट्रांसपोर्ट एज वेल. सो जो नंबर 25 बस है ये स्टॉप होती है वैसे उनीवा रोड पर, जिसके थ्रू आप वहाँ पर जा सकते हैं. तो अगर आप मोर एडवेंचर करना चाहते हैं तो यू कैन ऑप्ट फॉर समथिंग लाइक पब्लिक बस एंड देन गो ओवर देयर. अदरवाइज थोड़े डिस्टेंस पे पार्किंग करके आप थोड़ा और चल सकते हैं, थोड़े और स्टेप्स आपके हो जाएंगे. सो एनिमल्स को लेके डॉग्स अलाउड है, मस्ट बी ऑन लीश एट ऑल द टाइम्स पार्क्स में, अनलेस वहाँ पे अगर लिखा हो या फिर अगर वहाँ पे डॉग वॉकिंग सेक्शन अलग हो. ऑफकोर्स अल्कोहल वहाँ पे बैंड है एंड यहाँ पे जितने भी पार्क्स है वो स्मोक फ्री है. लेकिन अगर आप उसके अराउंड पिकनिक करने के लिए जा रहे हैं तो मेक श्योर कि अपने साथ अपने रबिश बैग्स जो है ये साथ में आप डेफिनेटली लेके जा रहे हैं.
1: नॉनस्टॉप बॉलीवुड जो भी करते हैं शिद्दत के साथ करते हैं.
2: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन. प्रसिद्ध कलाकारों से फीजी भजन्स का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी. हम फीजी भजन्स दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फीजी भजन प्लेटफॉर्म. डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फीजी भजन्स.
3: At Bunnings, spring really does start in the garden. Come into Bunnings, bring the tamariki down, find something that we can all get involved in. Nothing better than getting outside to do your gardening.
4: Get watering with a Pope 30-meter True Blue garden hose, only $48.17. Tidy up the backyard with a Nazito PXC 18-volt cordless line trimmer kit, $209. And grab some Yates 4-liter hose on weed and feed, just $30.46.
3: We've got what you need for less. Bunnings Warehouse. Lowest prices are just the beginning.
5: क्या आपका लोन डिक्लाइन हुआ है? क्या आप हिम्मत हार चुके हैं? तो एक मौका मुझे देके देखिए. हाय, मैं हूं गुरु खंडोला फ्रॉम लॉजिक फाइनेंस. जो लोन्स डिक्लाइन और डिफिकल्ट होते हैं उनके अप्रूवल का मैं स्पेशलिस्ट हूं. लॉजिक फाइनेंस के गुरु खंडोला बातों में नहीं काम में विश्वास रखते हैं.
2: टर्म्स कंडीशन फीस एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई. कॉल लॉजिक फाइनेंस के गुरु खंडोला को ऑन 0800 लॉजिक जी व्हिच इज 0800 564424.
6: Busy day. Ah, looks like I'm on dinner tonight. With Woolworths Express Pickup, I can order what I need online and pick it up in under 60 minutes. Easy. That's my kind of Woolies.
7: T's and C's apply.
8: The kids depend on us for everything. Meals, rides, band-aids, bedtime stories. But who do we depend on?
9: Hi, I'm Nitesh Hira from Assure One. School holidays remind us how much our families rely on us. My job is making sure reliance never becomes a risk. Helping you understand your options so your family is covered whatever happens. Call Assure One on 0800-77-HIRA or visit assureone.co.nz. North and Vale Advisory Limited. Trading as Assure One is a licensed financial advice provider.
7: मैं हूँ हरीश लोडिया। दिवाली की धूम एट सोना संसार नया स्टॉक्स ऑफ 22 कैरेट ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी की स्टॉक्स आ गया है। सिल्वर स्टॉक्स और सोने और चांदी की बिस्किट्स आ गया है। लक्ष्मी गणेश और प्योर चांदी के मूर्तियाँ वो भी आ गई है। डायमंड ज्वेलरी इंक्लूडिंग न्यू अराइवल्स ऑल एट हाफ प्राइस। सोना संसार 190 स्टोरार्ड रोड माउंट रॉस्किल या फिर 138 ग्रेट साउथ रोड पेपरटोए कॉर्नर ऑफ ईस्ट तमाकी एंड ग्रेट साउथ रोड। हमारा फोन नंबर 6293333। फॉर स्पेशल डील्स विजिट आवर वेबसाइट sonasansar.co.nz।
10: Looking to turn business payments into points? With the American Express Gold Rewards business card, you could earn 100,000 bonus points worth up to $750 in Amex travel. Offer ends 14th December 26, 1.5k min spend in first 3 months. New card members only. Membership rewards, T's and C's apply.
11: MediaWorks complaints. How can I help?
12: Yeah, hi. You guys made some ads for my local business.
11: Nice.
12: And you talked me into creating this funny character.
11: Great.
12: And now everybody comes into the shop asking for Bobby.
11: Are you?
12: Yes.
11: Are you Bobby the Baker?
12: Yes.
11: What's that thing you do again?
12: Stop it.
11: You bring the mouse.
12: Stop it.
11: I'll bring the pie.
12: Stop it, please.
11: Okay.
12: Yeah, sure. I might have 3 stores now, but Bobby's more famous than me.
11: So what's the problem?
12: My name's Bruce.
13: Advertise with
14: MediaWorks.
11: New Zealand listens to us.
15: Huh? Free gold coins on diamond jewelry? Seriously, Mahi?
16: Yes, Bebo.
15: Catch kya hai?
16: Malabar gold and diamonds ke saath celebrations ko aur bhi khas banao. Diamond aur precious gem jewelry purchases par pao free gold coins. Saath hi selected jewelry par diamond value aur making charges mein up to 40% off ka fayda uthao.
15: I still can't believe it. No catch.
16: Catches sirf matches mein hote hai, Bebo. This is your festive gift from Malabar Gold and Diamonds, Botany Town Center, East Auckland.
17: PNC.

0: यू बाय 0800 रचना। इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।
1: सुबह का गाना भी आप यहाँ पे सुनने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैंने ये न्यूज़ पढ़ी है। एक साउथ एशियन वुमेन है जो कि स्ट्रैंडेड है कुक आइलैंड में सिंस नवंबर 2023। शी इज़ अनएबल टू रिटर्न टू हर होम बिकॉज उसको ट्रांजिट वीज़ा न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया से नहीं मिल रहा है। सो 49 ईयर ओल्ड शी अराइव्ड इन कुक आइलैंड इन नवंबर 2023 एंड शी इज़ देयर because she is not holding a visa to stay in the country though. So according to Cook Island, so wahan ke newspaper ke according, Cook Island ke jo immigration officials hai wo work kar rahe to find a way for her to leave. So in April 2025 country ki jo principal immigration officer thi unhone immigration New Zealand ko likha letter likha offering to arrange for someone to escort the woman through Auckland airport so that wo connecting flight jo Singapore ki hai wo le sake. लेकिन कोई भी सोल्यूशन नहीं आया सो फार। सो वुमेन रिपोर्टेडली केम टू न्यूजीलैंड मार्च 2023 में ऑन वर्क वीज़ा आफ्टर लिविंग हर होम कंट्री जिसकी बिकॉज उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी एंड शी हैड प्रीवियसली वर्कड इन हांगकॉन्ग एंड लेटर अप्लाइड फॉर असाइलम वाइल इन न्यूजीलैंड। सो शी क्लेम्स कि शी वॉज एडवाइज फॉर द लॉयर कि असिस्टिंग हर टू लीव न्यूजीलैंड एंड देन रिटर्न लेटर वाइल हर वीज़ा एप्लीकेशन वॉज बींग प्रोसेस्ड। सो कुक आइलैंड के जो ऑफिशियल्स हैं उनका ये कहना है कि शी कंटिन्यू टू स्टे इन बिकॉज डिफ़िकल्टीज थी इन ऑब्टेनिंग द ट्रांजिट डॉक्यूमेंट्स जो कि रिक्वायर्ड होते हैं अगर आप किसी कंट्री के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन योर पासपोर्ट, योर स्टेटस, इमिग्रेशन स्टेटस एंड ऑल दैट। इमिग्रेशन न्यूजीलैंड का ये कहना है कि इट विल रिस्पॉन्ड टू क्वेश्चन वंस इट रिसीव्ड ऑथराइजेशन टू डिस्कस द वुमेन्स केस। नाउ कंसेंट वॉज रिपोर्टेडली प्रोवाइडेड बट अ रिस्पॉन्स वॉज स्टिल पेंडिंग एट द टाइम ऑफ द रिपोर्ट। सो क्वेश्चन टू ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन जो है वो अभी भी अनआंसर्ड है। इस लेडी का कहना है कि उसकी फैमिली सपोर्टिंग हर एंड दैट शी वॉन्ट्स टू रिटर्न टू हर होम कंट्री बट सिक्योरिंग परमिशन टू ट्रांजिट थ्रू अनदर कंट्री जो है वो अभी भी ऑब्स्टेकल बन के रखा है। सो ये केस एक्चुअली में काफ़ी क्वेश्चन रेज भी करता है स्पेशली कि अबाउट द चैलेंजेस पीपल कैन फेस व्हेन इमिग्रेशन डिसीजन इन मल्टीपल कंट्रीज जो होते हैं उन्हें प्रिवेंट करते हैं टू कम्प्लीट इंटरनेशनल जर्नी। तो बेसिकली अभी वो ना ऑस्ट्रेलिया के थ्रू अपने घर जा पा रही है ना न्यूजीलैंड के थ्रू अपने घर जा पा रही है। यही दो कंट्रीज है जिसके थ्रू वो सिंगापुर की फ्लाइट ले सकती है बट देन शी इज़ नॉट एबल टू टेक इट येट।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: मौसम के हालचाल वेदर सर्विस के अनुसार इस समय टेम्परेचर बाहर का 18.7 डिग्रीज और आज का ओवरनाइट 14 डिग्रीज टेम्परेचर रहने वाला है। वैसे मौसम आज का ऑलमोस्ट फाइन, थोड़ा क्लाउडी जरूर रहा। सनसेट आज का 7:35 पर।
2: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Manukau and Pukekohe and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
0: Super Se Upar, brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
1: ड्राइव शो आपके लिए शुरू हो चुका है। अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। यू हमिंग अलोंग विद सैंडी राइट नाउ। अभी से लेके 7 बजे तक आपके लिए ड्राइव शो रहता है। थोड़ी देर में मेरे साथ यहाँ पे रुजबे के साथ भी हो जाएगा। सो कैसे हैं आप और आपका वीकेंड कैसा गया है? हाउ इज़ इट गोइंग सो फार? यहाँ पे इसके बारे में आप शेयर कर सकते हैं। रिमेंबर, दिवाली के कुछ स्पेशल सेगमेंट्स हमने आपके लिए शुरू किए हैं, जैसे कि रामायण ने गा था, जो कि आज 6:45 के अराउंड आप सुनने वाले हैं। यहाँ पे इट इज़ अ 1 to 2 मिनट की एपिक स्टोरी टेलिंग सेगमेंट जो ऑफ रामायण, जो आप यहाँ पे सुन पाएंगे। अगर आप मिस आउट कर देते हैं तो रोवा पे जाके भी आप सुन सकते हैं, या फिर दिवाली लिख के भेजिए 5599 पर, तो आपको ऑटो रिप्लाई में लिंक मिल जाएगा जहाँ पे आप ये सुन सकते हैं। आज ड्राइव शो में आपको चांस मिलने वाला है कॉल करने के लिए एक दिया एक कहानी को लेके, एंड और भी ढेर सारे कॉम्पिटिशन है जिसमें पार्टिसिपेट करने का आपको मौका मिल रहा है। बट ये मुझे बहुत सही लग रहा है, बिकॉज वी आर नॉट जस्ट welcoming Indian cricket team to play against black caps over here in New Zealand, but also Indian football team to play against all whites. तो इसी को celebrate करने के लिए हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं। जानने के लिए stay tuned.

ड्राइव शो फिलहाल आप यहाँ पे सुन रहे हैं एंड बहुत ही जल्दी इंडिया की टीम फुटबॉल के मैच के लिए ऑल वाइट्स के साथ यहाँ पे ऑकलैंड में खेलने वाली है. सो फुटबॉल फैंस के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है. ऑल वाइट्स आर टेकिंग ऑन इंडिया इन ऑकलैंड ऑन थर्सडे 12th of November. नवंबर में ये होने वाला है मैच थैंक्स टू न्यूजीलैंड फुटबॉल. आप भी वहाँ पे लाइव इसका एक्सपीरियंस ले सकते हैं, यहाँ पे टिकट जी सकते हैं. गो मीडिया स्टेडियम में ये होने वाला है एंड वी आर गिविंग अवे डबल पास टू वॉच न्यूजीलैंड टेक ऑन इंडिया. इफ़ यू वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ एक्शन, हम FM के फेसबुक पेज पे जाइए, वहाँ पे हमने

0: पोस्ट किया है ऑल वाइट्स वर्सेस इंडिया का पिन पोस्ट है, वहाँ पे कमेंट सेक्शन में टैग कीजिए अपने किसी फ्रेंड को जिसको आप लेके जाना साथ जाते हैं अपने साथ, एंड आपको क्या लगता है कि उस गेम का फाइनल स्कोर क्या होने वाला है, ये आपको प्रिडिक्ट करना है। हमें प्रिडिक्शन बड़े अच्छा लगता है ना कि भाई मेरे को लगता है कि इतने स्कोर बनेंगे दोनों टीम्स के, इस स्कोर से ये जो टीम है ये जीतने वाली है, इतने गोल्स बनने वाले हैं। तो जस्ट प्रिडिक्ट योर फाइनल स्कोर एंड वहाँ पर जाके लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में। फुल इन्फॉर्मेशन वैसे हमने वहाँ पर भी लिखी है एंड आप जीत सकते हैं डबल पास। सो क्या लगता है कि ऑल वाइट जीतेंगे या फिर इंडिया विल कम आउट ऑन टॉप? मेक योर प्रेडिक्शन, एंटर द कॉम्पिटिशन एंड यू कुड बी चेयरिंग योर टीम इन पर्सन ओवर देयर। गेम जो ये जो थी देवर अनाउंस्ड बाय मार्क मिचेल एज पार्ट ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज विजिट टू न्यूजीलैंड एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ सीरीज ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स टू सेलिब्रेट 100 years ऑफ यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स बिटवीन द बोथ नेशंस। तो इसीलिए ये मैचेस हो रहे हैं। सो ऑल वाइट्स ने वैसे प्रीवियसली फेस किया है इंडिया को ऑन 2 occasions, जहाँ पे ड्रॉ हुआ था नील के साथ इन 1981 एंड ऑल वाइट्स एक बार जीत चुकी है 2-1 के साथ इन 2018। नो आफ्टर दैट इट्स 2026, सो हिस्ट्री इन मेकिंग गाइस, ऑल वाइट्स वर्सेस इंडिया ये होने वाला है 12 नवंबर को गो मीडिया स्टेडियम में। इवन अगर आप यहाँ पे टिकट नहीं जीते तो मेक श्योर कि आप टिकट बाय ज़रूर करते हैं वहाँ पे टीम को जाके चेयर अप करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, बिकॉज ऐसे स्पोर्टिंग इवेंट्स ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ क्रिकेट ज़्यादा, डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्पोर्ट्स ज़्यादा नहीं होते, क्रिकेट के तो होते हैं लेकिन डिफरेंट बाकी स्पोर्ट्स के नहीं होते हैं। सो हम एफ एम इज़ ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर ऑन एंड ऑफ द पिच। तो फेसबुक पेज पर जाइएगा, वहाँ पर प्रिडिक्ट करो स्कोर, टैग करो अपने फ्रेंड को एंड यू आर इन The draw to win a double pass.
1: Daily dose of wisdom, wit and wild conversations.
2: The Drive Show with Sandy and Rusby.
3: आपका प्रोफाइल देखा, आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए।
4: Hey ChatGPT, दिवाली आने वाली है, ऐसा कोई आइडिया है कि मेरा दिवाला भी ना निकले और दिवाली भी मन जाए?
5: अगर आप अपना लिस्ट शेयर करेंगे तो मैं आपको पैसे बचाने के आइडियाज दे सकता हूँ।
4: बढ़िया है। अच्छा, ग्रोसरीज लेना है, पूरे घर की पेंटिंग करवानी है, नया सोफा लेना है, इतनी भाग दौड़ करनी है तो नेचुरली गाड़ी में फ्यूल भी तो चाहिए। और हाँ, कोई ऐसा स्कीम है क्या कि मेरे पैसे अकाउंट से जाए नहीं बल्कि अकाउंट में आए?
5: इंटरेस्टिंग, और कुछ?
4: बस इतना ही।
5: सर, मैं चैट जीपीटी हूँ, अंबानी नहीं, हमसे ना हो पाएगा।
2: दिस दिवाली लिसन टू हम ऑन 104.2 FM और रोवा एंड टेक पार्ट इन फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून एंड गेट इन द ड्रॉ टू विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस लाइक ग्रोसरी वाउचर्स, फ्यूल वाउचर्स, होम डेको एंड फर्नीचर वाउचर्स, बिल्डिंग एंड गार्डन सप्लाई वाउचर्स एंड कैश। फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स, हैरिंगटन लिविंग, मनोको, ब्यूटीफुल फर्नीचर विद 60 मंथ्स इंटरेस्ट फ्री, NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स, लॉजिक फाइनेंस एंड गुरु कंडोला, Household name in finance and insurance industry. And Fortune. Bring home the fortune.
6: TradeDepot.co.nz. Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery. Huge side-by-side black stainless steel fridge freezers, just $699. Midea inverter heat pumps with Wi-Fi from just $699. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply.
7: TradeDepot.co.nz.
8: Indulge in the sumptuous flavors of South Asia at Sudhima Auckland Airport's popular food festival. Their specialist chefs are preparing an exquisite buffet from India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal and more. Gather your family and friends for a memorable evening of food and fun this Labor Weekend, 24th and 25th October. Limited tickets available at just $89 per person with a welcome drink included. Kids 6 to 12 half price, under 5s free. Book now at sudhimahotels.com/foodfestival.
9: Ah, the in-laws are coming for dinner, so tonight's not the night to wing it. Luckily, delicious Woolworths New Zealand sirloin steak with garlic and herb butter lets me take all the credit. Oh, it was nothing. Just my kind of woolies.
10: Spruce your backyard for spring at Trade Tested. Smash the winter grime with a Karcher water blaster. Get a Hyundai chipper in to shred the branches or deal to the weeds with a fancy Greenworks electric garden sprayer. Be first up, best dressed this spring at Trade Tested.
8: Discover the magic at Go Bananas Childcare, jahan aapke bachche seekhenge in a fun way. With multiple branches across Auckland and Hamilton, ye hamesha aapke paas hai. Go Bananas Childcare's 12th birthday offer, 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. To jaldi join karo aur enjoy karo special offers. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
0: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो
7: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स नोटरी पब्लिक बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स
11: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी लीजेस सब डिविजन इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 0927994 39 और विजिट legalassociates.co.nz
12: Huh? Free gold coins on diamond jewelry? Seriously, Mahi?
13: Yes, Bebo.
12: Catch kya hai?
13: Malabar gold and diamonds ke saath celebrations ko aur bhi khas banao. Diamond aur precious gem jewelry purchases par pao free gold coins. Saath hi, selected jewelry par diamond value aur making charges mein up to 40% off ka fayda uthao.
12: I still can't believe it. No catch.
13: Catches sirf matches mein hote hai, Bebo. This is your festive gift from Malabar Gold and Diamonds. Botany Town Center, East Auckland.
14: PNC Supply.
15: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी जब खाने में होगी इतनी शुद्धता इतना स्वाद तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा
16: मुझे भी।
15: कशिश प्योर देसी घी अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड खुशियाँ पकाए खुशियाँ खिलाए
17: Drive Show with Sandy and Ruzbe, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Manukau and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
18: Super Se Upar, brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
0: Drive Show, फिलहाल आप यहाँ पे सुन रहे हैं. एंड यू नो विद चेंजिंग वेदर कई बार बहुत सारी चीज़ें हम फील भी करते हैं विद चेंजिंग वेदर विद चेंजेस इन आवर लाइफ एज वेल दिस मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वीक टेक अ मोमेंट टू रीच इन एंड नोटिस हाउ यू आर फीलिंग कई बार चेंज इन स्लीप मूड एपिटाइट या फिर रूटीन कैन बी साइन दैट इमोशनल सपोर्ट मे हेल्प यू कैन ऑल्सो रीच आउट टू समवन यू केयर अबाउट विद दिस वेरी सिंपल चेक इन एशियन फैमिली सर्विसेज प्रोवाइड करती है फ्री कॉन्फिडेंशियल इमोशनल सपोर्ट एशिया हेल्पलाइन के जरिए तो आप इन्हें कॉल कर सकते हैं कॉन्फिडेंशियल है 0800-862-342 पर इट्स 0800-862-342 इफ़ यू और समवन यू नो इज़ इन इमीडिएट डेंजर तब आपको सिर्फ 111 पे कॉल करना है सो एशिया हेल्पलाइन में आप कॉल कर सकते हैं 0800-862-342 पर
19: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

बॉलीवुड मोस्ट वांटेड सॉन्ग आप यहाँ पे सुन रहे थे। वैसे न्यूज़ में बोल रही थी कि नेशनल का जो प्लान है टू ड्रग टेस्ट जॉब सीकर्स, इट गेट्स वाइड बैकिंग फ्रॉम पब्लिक। सो 60% ने सपोर्ट किया है पॉलिसी का, वाइल 28% जो है ये अपोज करते हैं। सो ये एक सर्वे हुआ था पब्लिक का, एक न्यूज़ चैनल का। सो नेशनल का जो प्रपोजल है वो है कि दे विल कंडक्ट 10,000 रैंडम ड्रग टेस्ट इन द फर्स्ट ईयर इफ री इलेक्टेड। अ सेकेंड फेल्ड ड्रग जो टेस्ट होगा वो ट्रिगर अ क्लिनिकल एल्कोहल एंड ड्रग असेसमेंट। नाउ 52% जो रिस्पोंडेंट्स है हु इंटेंडिंग टू वोट अदर पार्टी सपोर्टेड द पॉलिसी, वाइल जो ग्रीन वोटर्स है दे वर ओनली पार्टी ग्रुप टू अपोज इट ओवरऑल। सो पॉलिटिकल डिवाइड है इसमें। नेशनल आर्ग्यू कर रहा है कि जो पॉलिसी है ये इनकरेज करेगी वर्क रेडीनेस को, फेयरनेस को टू टैक्स पेयर्स, एंड लेबर आर्ग्यू कर रहे हैं कि इट मेक्स इट हार्डर फॉर पीपल टू गेट द सपोर्ट दे नीड। व्हाट डू यू थिंक? वेल ये पोलिंग तो डिफरेंट हुई है, आप क्या कहते हैं? आपकी पोलिंग यहाँ पे लेते हैं। शुड पीपल रिसीविंग जॉब सीकर सपोर्ट फेस सेम ड्रग टेस्टिंग रिक्वायरमेंट एज पीपल अप्लाइंग फॉर सर्टन जॉब्स? आपको क्या लगता है, या फिर आपको क्या लगता है कि ये जो ड्रग टेस्टिंग है डज इट हेल्प पीपल बिकम वर्क रेडी और डज इट पनिश पीपल हु मे नीड ट्रीटमेंट एंड सपोर्ट? व्हाट साइड यू आर इन? 5599 पर अपना मैसेज यहाँ पे लिख के आप भेज सकते हैं। एंड आने वाले दिनों में हमने वैसे लास्ट थर्सडे को तो लेबर कैंडिडेट खड़ग सिंह से बात की थी, अगर आप एपिसोड सुनना चाहते हैं ड्राइव लिख के भेजिए, यू विल गेट द एपिसोड। और आने वाले दिनों में हम इस थर्सडे को अपॉर्चुनिटी पार्टी के लीडर से बात करने वाले हैं, इसके बारे में और डिटेल्स आपके साथ हम ज़रूर शेयर करेंगे।

0: with Sandy and Rusbane. Brought to you by Beds R Us, Manuku and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us, Manuku and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWN Havel and Omura Jaiku.
1: Drive show filhal aap yahan pe sun rahe hain. And aaj ka sawal aapke liye ye hai, kya aapko pata hai ki aisi kaun si country hai jiske flag mein bird hai? ऐसी कौन सी कंट्री है जिसके फ्लैग में बर्ड है, पंछी है जिसकी फ्लैग में? 5599 पर ड्राइव कीवर्ड के साथ अपना आंसर लिख के भेज डालिए।

0: में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: Accurate traffic.
2: You made it with Caboodle.
3: Bit of drizzle overnight. A low of 15 degrees on the northern heavy from the Harbour Bridge to Northcote Road. Town to Silverdale taking just under an hour now. On the northwestern heavy from Waterview to Tiata 2. The southern northbound, some slow patches between Sylvia Park and Green Lane. Town to Manukau 33 minutes. Drury 50. Southwestern's building across Mangere Bridge.
2: Impress even the toughest critics with Caboodle's stylish, affordable and easy to install kitchens.
4: What could I be? A teacher? A scientist, a builder. But first I need a chance. A chance to feel safe, to learn, to believe in myself. That's why Barnardo's is asking you to invest in children. Because when you invest in a child today, you can help them build a future full of possibilities. Invest in children at investinchildren.nz. Because the returns last a lifetime.
5: Now when you're in the loop with ANZ and jump on a bus, money loops back. Get 50% cash back on Wednesdays and weekends in October when you tag on and off AT buses with a personal ANZ Visa card. Eligibility, terms and conditions, fees and exclusions apply.
6: Oh, busy day. Ah, looks like I'm on dinner tonight. With Woolworths Express Pickup, I can order what I need online and pick it up in under 60 minutes. Easy. That's my kind of Woolies.
5: T's and C's apply.
7: Commonwealth Vault आपके precious belongings को रखता है safe और secure. Gold, bullion, अब precious metals की value जब all time high पे है, तब ये पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है कि आपके assets theft और natural disasters से protected रहें. जब आप अपने valuables Commonwealth Vault को entrust करते हैं, तो आपको मिलता है peace of mind. ये जानते हुए कि वो safe, secure और protected रहेंगे. Commonwealth Vault, securing your valuables for a lifetime and beyond. Details at commonwealthvault.go.nz. That's commonwealthvault.go.nz.
8: मैं हरीश लोडिया आप सबको दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ। मैं आप लोगों को इस समय नहीं बतलाऊंगा कि क्या क्या नया इस धनतेरस और दिवाली के लिए आया है। मैं आपको और आपके परिवार को आमंत्रित करता हूँ कि आप आए और अब तक का सबसे बड़ा और बढ़िया ज्वेलरी कलेक्शन एक बार जरूर देखें। तो मिलते हैं सोना संसार 190 स्ट्रडा रोड माउंट रॉस्किल या 138 ग्रेट साउथ रोड पापाटोईटोई में।
9: फ्री गोल्ड कॉइन्स ऑन डायमंड ज्वेलरी, सीरियसली माही?
10: यस बेबो।
9: कैच क्या है?
10: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के साथ सेलिब्रेशंस को और भी खास बनाओ। डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेसेस पर पाओ फ्री गोल्ड कॉइन्स, साथ ही सिलेक्टेड ज्वेलरी पर डायमंड वैल्यू और मेकिंग चार्जेस में अप टू 40% ऑफ का फायदा उठाओ।
9: आई स्टिल कांट बिलीव इट, नो कैच।
10: कैचेस सिर्फ मैचेस में होते हैं बेबो। दिस इज योर फेस्टिव गिफ्ट फ्रॉम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, बॉटनी टाउन सेंटर, ईस्ट ऑकलैंड।
11: DNC supply.

0: से ऊपर brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
1: फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून में पार्टिसिपेट करने का वक्त आ चुका है एंड यू कैन विन $1,000 वर्थ ऑफ फ्यूल वाउचर. यहाँ पे $1,000 के फ्यूल में कहाँ कहाँ नहीं आप जा सकते. सो पार्टिसिपेट करने के लिए आपको IH बिकॉज इनडेलेबल होम्स की ओर से है ये फ्यूल वाउचर, IH स्पेस अपना नाम लेके अभी भेज डालना है 5599 पर. सो यू कैन विन योर शेयर ऑफ $5,000 ऑफ वर्थ ऑफ प्राइजेस दिस दिवाली. तो डिफरेंट टाइमिंग्स पे आपको डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है. सो फॉर नाउ अभी आपका टाइम शुरू होता है, 5 मिनट का समय आपके पास. IH स्पेस अपना नाम लिख के भेज डालिए 5599 पर. आपका नाम इस ड्रॉ में शामिल हो जाएगा जहाँ पे $1,000 वर्थ ऑफ फ्यूल वाउचर आपके नाम हो सकता है. रिमेंबर 5599 पर जब भी आप मैसेज करते हैं स्टैंडर्ड करियर रेट्स अप्लाई.
0: स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI योर लोकल

0: FM.
1: Unfiltered with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं. यहाँ कहानियाँ होती हैं raw, emotions होते हैं real और conversations होते हैं बिना mask के.
2: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं.
1: Unfiltered with Sandy and Rizvi on Rowa, Spotify or anywhere you get your podcast.
3: Hum, accurate traffic.
4: Kappa Court and Curtin Studios 3-day sale starts Thursday.
5: Bit of drizzle overnight, a low of 15 degrees on the northern, heavy from West Haven to Oniwa Road. Town to Constellation Drive, 37 minutes on the northwestern, heavy from Point Sheep to Te Atatū. On the southern, heavy traffic northbound from Sylvia Park to just past Green Lane. Town to Manukau, 34 minutes to Brewery 50. Southwestern's heavy heading north from Massey Road to Mangere Bridge. Town to the airport, 28 minutes.
4: Massive savings on carpet, hard floor, curtains and blinds. 3 days only, starts Thursday.
6: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
7: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स.
8: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेज, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी. फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz.
9: सुनो, आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया, घर बेचने को कह रहे थे.
10: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं. डेवलप करना बेहतर लगता है, पर पैसों का डर है.
9: इसीलिए NZPMI से बात कर लो, वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं.
11: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं, आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है. आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए. NZPMI, टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस. कॉल पॉल ऑन 0800 4NZPMI.
12: Settle, win, escape. Finance World is about to take you further with a trip to Bali. Settle कीजिए अपना home loan of 500,000 या उससे ज्यादा Finance World के साथ. And you're automatically in the draw to win a trip to Bali for 2. 5 days, 4 nights, 2 lucky winners. Her eligible home loan of 500,000 या उससे ज्यादा automatically आपको draw में enter करता है. Terms and conditions apply. Visit financeworld.co.nz/Bali. Finance World Limited is a registered financial advice provider.
13: रुजबे, 2026 में ना बहुत काम कर लिया है, अब तो ब्रेक बनता है.
14: बिल्कुल, तो लेते हैं एक लग्जरियस हॉलिडे ब्रेक, बाली और बैंकॉक.
13: और आप भी चलिए सन टूर्स के साथ ईस्टर 2027 में.
14: बाली 6 दिन और बैंकॉक 5 दिन, कंप्लीट लग्जरियस हॉलिडे पैकेज. बुक कीजिए टिल दिवाली और पाइए फ्री 2 nights 3 days सिडनी टू सिडनी क्रूज पैकेज.
13: 2027 ईस्टर को बनाइए एक्स्ट्रा स्पेशल, बाली, बैंकॉक और फ्री क्रूज.
14: बुक नाउ विद सन टूर्स.
13: कॉल करें 0800 4786 86.
15: With BNZ Rapid Save, your money gets the salary it deserves. In the past year, Rapid Save paid out more interest per dollar saved than any other major bank. So give your money a pay rise, make it go to work. Because if your money's not collecting more interest, it's collecting less. Open a BNZ Rapid Save account today. Bank of New Zealand. Let's find a way. Based on advertised rates for personal savings accounts available to customers age 18 years and over with the other major NZ banks. T's and C's and fees apply.
1: Check.
16: Brought to you by Mann Tires. For all kinds of tires and mechanical services, open 7 days. Call Mann Tires on 0800 00010.
1: Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
17: Good evening, I'm Bridget Hasty with the latest at 5. One person has been taken to hospital in a serious condition after a firearms incident in Christchurch. It happened near the Palms shopping centre in Shirley around 3 this afternoon. Police do not believe there is any threat to public safety at this stage. ACT reckons Labor pinched its policy on allowing parents to buy some non-branded items as part of school uniform requirements. While Labor leader Chris Hipkins denies this, David Seymour says he's just happy the issue itself is getting attention.
18: If Labor copying the ACT Party's school uniform policy saves parents money in a cost of living crisis, I think we should welcome that. Parents have had it up to here with expensive branded items that they're forced to buy.
17: A section of State Highway 1, Tiro Road in Waikato is blocked after a crash. Northbound traffic is affected. A person is being airlifted to hospital in a serious condition. The Greens are pledging to bring in stronger laws on AI. The party wants to prevent it from replacing human decision-making and ensuring it does not use up too much water or power. Co-leader Chloe Swarbrick says AI should work for us and not the other way round.
19: Artificial intelligence is not a force of nature which we have to just surrender to.
17: To sport, the Rugby League World Cup kicks off on Thursday night. 35-year-old centre Dwayne Gagai has switched allegiance from Australia to New Zealand. He brings with him previous World Cup winning experience. And to cricket with General, formerly Fujitsu, still New Zealand's favourite heir. A change of format for the Super Smash starting December 27th. It will feature just 10 match days with three men's and women's games each day.
1: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
0: World's best, hamari koi brand nahi hai.
1: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
19: थोड़ी बहुत बारिश हो रही है, एक ग्रूमी पीरियड्स रहने वाले हैं. Feels like 18 degrees though. Overnight temperature is going to be as low as 14 degrees. एंड मोस्टली क्लाउडी रहने वाला इवनिंग तक. कल की सुबह बारिश भरी होगी. कल आफ्टरनून से क्लियर आउट हो रहा है.
20: Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Manukau and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
1: Power Drive at 5. Brought to you by Focus Kitchens, quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen. Drive Show with Sandy and Rusbe.
21: मस्ती करेंगे, मौज काटेंगे, गर्दा पार देंगे.
19: 5:03 and you're listening to Power Drive at 5. Good evening. Hi, Sandy.
6: Good evening, Rusbe. How are you?
19: आज I am good, यार. आज 12th of October.
6: Yeah, it is 12th October. And how was your weekend?
19: My weekend was good. Yeah, it was nice actually. Weather was good. Saturday ko bahut acha weather tha.
6: Bahut acha weather.
19: Sunday ko thoda sa on off tha. Barish ho rahi thi sham ko.
6: Yeah, wo sham ko hi, lekin mostly it was a good weather.
19: Yeah, mostly good day.
6: Yeah.
19: Nice. How was your weekend, Sandy?
6: Very good.
19: Very good. Kafi walking kiya aapne.
6: Yeah, Pink Ribbon Walk.
19: Kaisa tha wo, badhiya?
6: It was nice. Mujhe laga ki like 5 km wala opt kiya tha. But मुझे लगा बहुत जल्दी हो गया वो.
19: हाँ, 5 किलोमीटर है ना.
6: या
19: अगले बार अभी आप मैराथन करना 42 किलोमीटर.
6: 42 नहीं, 10 किलोमीटर होता है.
19: अच्छा.
6: So either it was 5 किलोमीटर or was 10 किलोमीटर. But it was more than 5 किलोमीटर because हमने जो पार्किंग करके जो चल के वहाँ पे गए वो सब चीज़ें करके, तो या क्योंकि ऑकलैंड डोमेन में था. So yeah, more than उतना ही था, but very easy because there was lot of crowd. काफ़ी लोग अपने pets के साथ थे.
19: अच्छा.
6: या काफ़ी लोग बच्चों के साथ थे, काफ़ी लोग प्रेम के साथ थे. So all together जब walk कर रहे होते तो मेरे को लगता है टाइम का पता नहीं चलता है.
19: तो प्रेम के साथ थे तो प्रेम में बच्चे तो होंगे ही ना.
6: या मतलब कि आई मीन कि कई बच्चे चल के जा रहे थे और कई बच्चे प्रेम में थे. इवन कई डॉग भी प्रेम में थे.
19: क्या बात कर रहे हो.
6: सो या वो डॉग कैरी करने वाला एक प्रेम होता है ना जो.
19: ओह.
6: वो भी होता है तो उसमें भी थे क्योंकि थक गया कोई डॉग तो बीच में उसको फिर रेस्ट करना है.
19: या सच डॉग्स जो है मेरे को लगता है दे चेंज द कहावत जो बोलते हैं ना डॉग्स लाइफ. डॉग्स लाइफ होनी चाहिए अगर ऐसा डॉग का लाइफ है तो.
6: अगर आप ओवरसीज में रहते हैं तो मतलब न्यूजीलैंड में तो मतलब सो फार मैंने देखी है डॉग लाइफ इज सुपर्ब.
19: या
6: बहुत ही अच्छी है. यहाँ पे उल्टा मतलब कैट लाइफ इज बिट ट्रिकी.
19: क्यों कैट लाइफ ट्रिकी है.
6: कैट इधर उधर चले जाती है ना.
19: कैट तो इंडिपेंडेंट है ना.
6: इंडिपेंडेंट है. या वही तो. या उसको पड़ी भी नहीं होती कई बार.
19: या मैं कैट लाइफ भी भारी है यार मेरे को तो. मेरा एक दोस्त है उसके घर पे आके उसके पड़ोसी की कैट आके खाना खाती है. और वो रूटीन है उसका, रेगुलर हो गया है अभी. वो आएगी, खाना खाएगी और चली जाएगी.
6: वो अपने घर पे भी खाती होगी.
19: अपने घर पे भी खाती है. बाहर भी खाती है. और फिर वो, और जब वो बाहर वाला है मतलब जो कैट का रियल ओनर है या जिसके यहाँ पे वो रहती है ऑफिशियली, वो उसको पसंद नहीं है कि वो यहाँ पे बाहर आके खाती है.
6: तो क्या कर सकते हैं, उसने रोकने की कोशिश की उसको. वो सुनेगी थोड़ी ना कैट है वो.
19: तो उसने मेरे
6: डॉग तो फिर भी इंस्ट्रक्शन सुन ले, कैट नहीं सुनेगी.
19: नहीं, तो उसने मेरे दोस्त को बोला कि तू मत खिलाए वो. तो मेरा दोस्त बोलता मैं क्या करूं, वो यहाँ पे आके ऐसा मुंह बनाएगी. तो मेरे को, मेरा तो दिल करे मैं क्यों अपने आप को ये करूं.
6: हमारे अंदर तो होता है.
19: इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू आस्क एक्चुअली. डू यू फीड अदर पीपल्स पेट.
6: डू यू रुज़बे.
19: ऑफ कोर्स आई डू. ऑफ कोर्स.
6: या मैंने एक्चुअली मैं नहीं किया है.
19: I was against it. मैं बिल्कुल नहीं करता था ये पहले.
2: मतलब मेरे घर में शायद कोई ऐसा before my own pet कोई आया भी नहीं खैर. तो इसके कारण शायद से नहीं किया, but मैंने नहीं किया है.
19: Yeah, मुझे नहीं लगता appropriate भी है कि अब किसी और के pet को खिलाओ. Because you don't know ना कि उनको क्या restrictions है, क्या allergies है, क्या है क्या नहीं है.
2: वो भी होती है.
19: हाँ. तो मैं तो कम्प्लीटली अगेंस्ट हूँ चीज के. बट अब क्या करूँ मैं ना, मेरे अकेले की नहीं चलती है. हम कोलिशन में हम लोग कुछ काम करना पड़ता
2: है. कोलिशन की गवर्नमेंट है.
19: कोलिशन की गवर्नमेंट है.
2: व्हाट अबाउट यू गाइस?
19: एंड आई एम अ माइनर पार्टी इन दैट.
2: ऐसा रुज़बे को लगता है. तो आप भी बताओ कॉल करके. ओके 0800 हम पर 0800 004866 पर कि आपने कभी, आपका क्या ख्याल है, और आपके घर पे कोई और पेट आता है, किसी और का पेट आता है, डू यू फीड देम विदाउट देयर सुपरविजन?
19: हैव यू फेड एन एनिमल दैट इज नॉट योर ओन? मतलब ऐसे नहीं कि वो जू गए और वहां पे ऐसा खिला दिया. वैसा नहीं बोल रहा हूँ मैं.
2: पेट किसी का.
19: हाँ, किसी पेट को ऐसा रेगुलर बेसिस पे कि आपने ऐसा खिलाया है बिना वो आपका हुए.
2: किसी का पेट है आपके घर पे?
19: मेरा एक दोस्त है इंडिया में. वो रेगुलरली वहां पे तो स्ट्रे डॉग्स होते हैं ना रस्ते पे, हर एरिया में अपने अपने होते हैं ना,
2: होते हैं.
19: तो वो उसका रेगुलर होता था, वो उनको सबको खिलाता था.
2: वो मैंने भी किया हुआ है इंडिया में. तो इंडिया में हमारे भी घर के बाहर जो स्ट्रे डॉग,
19: बट रेगुलर रूटीन लाइक एवरी नाइट 8 PM ही विल गो देयर एंड ही हैज टू.
2: वहां पे कॉमन है इंडिया में.
19: वो बोलेगा नहीं नहीं 8 बजे मेरे को खाना खिलाना है, उनको खिला के फिर. हाँ, वो उसका बहुत ऐसा पर्टिकुलर होता है.
2: टाइम पे ऐसा मैंने कभी नहीं किया है, बट ऐसा किया है. मतलब बहुत कि अगर डॉग, और डॉग की भी रूटीन होती है, इसको पता होता है कि यहाँ से मिलेगा तो वो आ जाते हैं.
19: या
2: तो या
19: देयर इज अ वेरी इमोशनल मूवी ऑन दैट. ओ माय डॉग.
2: ओ या, पंकज त्रिपाठी की. सो गाइस, आपका क्या ख्याल है इसके बारे में, आप भी बताइए, शेयर कीजिए 5599 पर. एंड दिवाली के कुछ कॉम्पिटिशन आपके लिए बस थोड़ी देर में है.

दिवाली सिर्फ घर नहीं रिश्ते भी रोशन करें। एक दिया एक कहानी के साथ जुड़िए दिवाली पूजा, पूजा विधि, दिवाली पूजा सामग्री और दिवाली रामायण गाथा के साथ। हर दिया एक कहानी कहेगा और हर दिल अपनों के और करीब आएगा। हम की ओर से आपको और आपके परिवार को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रॉट टू यू बाय फाइनेंस वर्ल्ड, रामायणा मूवी बाय फोरम फिल्म्स, इंडेलिबल होम्स, लोटस फॉरेन एक्सचेंज, एबीसी बिजनेस कंसल्टेंट्स, सोना संसार, पैशन लैंडस्केप, अम्मास फूड, पीएफएसएल, अर्जुन सुपरमार्केट।

0: Market, Big Bazaar and Fortune Foods.
1: Hum, accurate traffic.
2: Better traffic starts now.
3: Bit of drizzle overnight and a low of 15 degrees. Heavy traffic heading north through West Haven and then past Oniwa Road on the northern. Town to Silverdale, 47 minutes. Northwestern slow from Point Sheep to Rosebank. The southern is heavy for northbound traffic from Sylvia Park to just before Green Lane. But town to Manukau, 31 minutes and to Drury, 45. Southwestern heavy heading north through Mangere Bridge.
2: Want cheaper public transport? Vote Labour. Authorised by Rob Salmond to Gilmer Terrace, Wellington.
4: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना। उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस, ईट बेटर लिव बेटर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz. Available at all leading stores.
5: The big sale is on now at Beds R Us with amazing deals on selected sleepyhead beds like 60% off Swiss Tech Precision Queen Size now 3499. The big sale at Beds R Us Manukau and Pukekohe, where dreams begin.
6: At Woolworths, these back-to-school specials are a great way to save. Get Harvest Snaps 120 gram for just $2.99 each. And Mugget Yogurt 10-pack, just $9.99 a pack. Tea season exclusions apply. Only at Woolworths.
7: दिवाली आई खुशियां लाई PFSL स्पेशल ऑफर लेकर आया है अपने ड्रीम होम का सपना सजाएं PFSL के साथ होम लोन करवाएं $400,000 या उससे ज्यादा का एलिजिबल लोन सेटल करें और $250 का गिफ्ट कार्ड घर ले जाएं 50 इंच टीवी के लकी ड्रॉ में भी एंट्री पाएं तो इस दिवाली खुशियां बढ़ाएं PFSL के साथ अपना ड्रीम होम सजाएं सर्च PFSL और कॉल ऑनलाइन 8469934 टर्म्स एंड कंडीशंस एंड लेंडिंग क्राइटेरिया अप्लाई
8: बिग बाजार में बिगेस्ट रेंज ऑफ पूजा घर मिल रहे हैं प्योर मार्बल मूर्तिज कॉपर मूर्तिज गन मेटल मूर्तिज देवी देवताओं के वस्त्र सभी तरह के हार एंड एक्सटेंसिव रेंज ऑफ पूजा आइटम्स बिग रेंज ऑफ कंसोल टेबल्स मिरर्स कर्टन्स सोफा कवर्स वीना एंड लाहौर ब्रांड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी अवेलेबल है बिग बाजार 302 ग्रेट साउथ रोड पापटोईटोई योर वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन दिस नवरात्रि
9: Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us, Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us, Manukau and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
10: Power Drive at 5.
11: Brought to you by Focus Kitchens, quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen. Hollywood's most wanted.
12: Gundi Khadlo. सीधा अंदर आऊं
13: मैं लाऊं अपना ए गेम
11: ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स बिल्ड योर ड्रीम्स

0: देव नेगी और अकाशा सिंह की आवाज सुन रहे थे आप ये गाना ठुमक ठुमक स्टार्ट स्टॉप ऐसा गाने में है।
1: यस एंड रुजबे अभी वक्त आ चुका है एंट्रीज लेने के लिए, तो दिवाली के मौके पे फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून ये तो हम आपके लिए लेके आ ही रहे हैं जिसमें पार्टिसिपेट करने का मौका आपको थोड़ी देर में मिलेगा। बट फॉर नाउ एक दिया एक कहानी,
0: एक दिया एक कहानी।
1: सो व्हाट इज इट? यू नो हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई स्पेशल होता है, नॉट योर फैमिली
0: लगाता है आके,
1: नॉट फ्रॉम योर फैमिली या ब्लड, लेकिन समवन इन योर लाइफ, देयर इज ऑलवेज समवन स्पेशल। बिकॉज यहाँ पे जब हम ओवरसीज में आते हैं वी मेक कनेक्शंस, वी मेक फैमिली,
0: फ्रेंड्स फैमिली बन जाते हैं,
1: फ्रेंड्स फैमिली बन जाते हैं, आपके कोलीग फैमिली बन जाते हैं, या फिर आपका कोई मेंटोर होता है, देन सो मेनी फॉर्म्स एक्चुअली में। सो समवन हु हैज सपोर्टेड यू, इंस्पायर्ड यू, मेड यू स्माइल, और सिंपली मेड योर लाइफ ब्राइटर बाय बीइंग देयर, ऐसा कोई एक, उसको अगर आप दिवाली शाउट आउट देना चाहते हैं, सो उनके लिए आप यहाँ पे एक, हम कहते हैं ना कि इस दिवाली उनके लिए एक दिया जलाओ।
0: अरे क्या बात है,
1: समवन हु इज लाइट इन योर लाइफ। सो आप कॉल कीजिए यहाँ पे 0800-004-866, हमें नंबर पे कॉल कीजिए। एंड बिकॉज दिवाली है तो जीतने का मौका भी मिल रहा है, टेल अस व्हाई यू अप्रिशिएट हैविंग देम इन योर लाइफ एंड गो इन द ड्रॉ टू विन $300
0: और प्लस किसी का आप दिन लाइफ
1: दिवाली शाउट आउट
0: कर रहे हो, अलग ही बात है।
1: एंड विद दिस $300 यू कैन एक्चुअली अप्रिशिएट देम In other way also.
0: Don't push it.
1: Yeah, I'm just saying कि अगर आपका बाद में मन करे तो आप ये भी कर सकते हैं।
0: अभी आपने इतना ऐसा guilt trip दे दिया, अभी कोई call नहीं करेगा।
1: ऐसा नहीं है। यार, अरे वो तो आपके ऊपर है ना, आपके अकाउंट में आया, हमें क्या ट्रैक है।
0: बट अभी वो फिर वो सोचेंगे ना कि अरे यार अभी इसने बोल दिया ये, अब मैं खुद के पास अगर रखूंगी 300 तो फिर अभी मैं कैसे मुंह दिखाऊंगी।
1: So yeah, we are celebrating the people who light up your lives.
0: Yeah. बस आप बात करके उनकी मतलब पास ऑन द लाइट अप इन देयर लाइफ्स, क्योंकि उन लोग ने आपकी जिंदगी लाइट अप की है, योर फ्यू वर्ड्स विल लाइट अप देयर लाइफ।
1: 100% और मेरे को लगता है ना कि कभी कभी ये छोटी छोटी चीजें हमें लगती है कि किसी के बारे में बोलना, बट आई थिंक दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट,
0: वेरी इंपॉर्टेंट टू से। या हाय, गुड इवनिंग।
2: हाय, हाय रुस्बे, हाय सैंडी,
0: क्या नाम है आपका?
2: मैं बस बढ़िया, आई एम ड्राइविंग बैक फ्रॉम होम।
0: नहीं, क्या नाम है आपका?
1: नाम क्या है अगर बताना चाहते हैं? वैसे बताना अच्छा, पड़ेगा।
2: मैंने सॉरी, मैंने सुना क्या हाल है आपका।
0: अच्छा हाँ,
1: कोई बात नहीं।
2: या माय नेम इज जय,
1: जय ओके।
2: एंड या आई वांट टू गिव अ शाउट आउट टू माय प्राइमरी स्कूल टीचर, हर नेम इज राजेश्वरी चौबीसा। मैं उनको काफी टाइम से मिला नहीं हूँ, बट मैंने सुबह में भी पूजा और उन्होंने भी ये टॉपिक जब रिस किया, आई वांटेड टू कॉल बट आई कुडंट गेट कनेक्टेड टू द लाइन।
1: ओके,
2: सो या नाउ आई एम कॉलिंग। सो वन थिंग आई वांटेड टू कॉल अबाउट देम इज लाइक नॉर्मल टीचिंग एवरी टीचर कैन डू, राइट? मैथ्स इंग्लिश सब सबको ही पढ़ा सकते हैं, बट व्हाट शी डिड स्पेशली वाज शी टॉट अस मॉरल वैल्यूज एंड देयर इंपॉर्टेंस इन द लाइफ, एंड दैट वाज फ्रॉम द प्राइमरी स्टेज। एंड टू बी ऑनेस्ट आई फील लाइक जो उन्होंने जो सिखाया That's engraved on my soul, like कि कुछ चीज गलत है तो क्यों गलत है, कुछ चीज सही है तो क्यों सही है। That is helping me throughout the life to take the decision which are right and then differentiating between right and wrong. So yeah, it's not about money or anything to win the reward. I just it is an opportunity to call out their name here. And yeah, I really wish that when I go back in India sometime I can meet them. I think lately they had some health issues as well, but yeah, I really wish I can be, meet them. So yeah, this is a shout out for my primary teacher.
1: और आपने बहुत सही बोला जय, मेरे को लगता है कि प्राइमरी स्कूल में कोई अगर आपको ऐसी टीचिंग देता है जो आपकी मॉरल वैल्यूज को हेल्प करे आगे जाके लाइफ में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, देन आपका बेस बना देता है,
0: फाउंडेशनल।
2: यस एंड या फाउंडेशनल। एंड जस्ट टू गिव सम मोर बैकग्राउंड अबाउट इट, इट वाज नॉट सम प्राइवेट स्कूल और समथिंग, इट वाज अ गवर्नमेंट स्कूल एंड लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम नियर बाय एरिया व्हिच वर लाइक द पुअर फैमिलीज, दे यूज्ड टू कम एंड She loved them as her own kids, and at some point my parents decided because there were some poor kids, so they thought that it could not be good for upbringing. So उन्होंने मेरा स्कूल चेंज करके मुझे प्राइवेट स्कूल में रखा। So she personally came to our house and she taught my parents, no, this is the brightest student of our school, and I want her back. I want him back in to our school.
1: Wow.
2: So and that she literally convinced my parents. and then my parents agreed, and then I finished my whole primary schooling from under her, and she was the like the headmaster and the teacher as well. So it is really a special thing which I think I would remember throughout the life. I don't remember all of my teachers because I have done masters, like so many years of teaching and studying. But yeah, only it's her memories which I have remembered so far. So yeah, this is pretty special. I want to call out here.
0: क्या बात है जय? जय आपके पास नंबर है क्या आपकी ये टीचर का?
2: She's from same community I belong to. नंबर मेरे पास नहीं है but मेरे parents के पास है. So I will like I know you want to suggest that I call her. I definitely would like to call her and it's a good suggestion that इस दिवाली पे मैं उनको call कर पाऊँ और उनकी help पूछ पाऊँ.
0: मैं तो बोलता हूँ दिवाली तक रुको मत भाई, पहले ही call कर दो.
1: दिवाली तक नहीं तो आप number पता कीजिए ठीक है जय, और हमें बताना यहाँ पे,
0: हम call लगाएंगे आपके लिए.
2: Sure Sandy, sure Rujbe, I will find out number from my parents, you know.
0: Okay, perfect. Thank you so much for participating.
2: Thank you. Bye.
0: Thank you. Bye.
1: अच्छा, this is so cool ना. और मेरे को लगता है कि काफी के लाइफ में टीचर्स का रोल रहा होगा, ऐसा इम्पोर्टेंट रोल रहा होगा. दोनों वे से, अच्छे वे से भी बुरे वे से भी होता है. लेकिन अच्छे वे से भी मेरे को लगता है कि काफी की लाइफ में रहा है.
0: मुझे लगता है अच्छे वे से काफी बार होता है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो टीचर स्ट्रिक्ट भी होती है वो भी तुम्हें कुछ सिखा रही है. जो टीचर एंड मैंने ये अभी देखा है ऑफ लेट, लाइक इवन विथ किंडरगार्टन्स एंड ऑल, ओनली दोज कैन डू दैट जॉब हु आर बेसिकली नॉट जस्ट क्वालिफाइड बट आर आल्सो मेड फॉर दैट जॉब.
1: यस, इट्स नॉट
0: इजी, हर किसी के लिए नहीं है वो.
1: इट्स नॉट इजी, आई हैव सीन इट. या
0: हां,
1: मैं नेफ्यू जाते हैं और मैं वहां पे कई बार उनके अंदर पेशेंस जब देखती हूँ ना, तो इट्स नेक्स्ट लेवल पेशेंस एंड हाउ टू डील विद ईच एंड एवरी किड ओवर देयर. हर किसी की रिक्वायरमेंट्स नीड्स डिफरेंट होती है, तो मेरे को लगता है कि वो कई बार काफ़ी अंडर वैल्यू होते हैं.
0: एंड हैट्स ऑफ यार वो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बच्चे जो है वो उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं देन एक्चुअली विद देयर पेरेंट्स. क्योंकि 8-9 घंटे दिन के, उससे ज़्यादा 10 घंटे
1: स्कूल में चाइल्ड केयर में ज़्यादा टाइम जाता है.
0: ज़्यादा टाइम जाता है वहाँ पे. And those are the foundational years.
1: Yes.
0: So I think whoever is doing that job, hats off to you guys. Yeah, you're doing an incredible job.
1: Yeah.
0: And I think that's helping shape our society.
1: 100%. So at a time, एक ही person को इसमें entry भेजने का वक्त मौका मिलता है, because आपके पास बहुत समय होगा और भी बहुत सारे shows होंगे जहाँ पे आपको participate करने का मौका मिलेगा. But yeah, Festival of Fortune में भी participate करेंगे, उसके लिए भी stay tuned.

0: जॉश ब्राड की आवाज सुन रहे थे आप हम पे ये गाना गुजारा
1: गुजारा आप सुन रहे थे एंड अब ये आपका गुजारा और भी अच्छा करने के लिए फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून हम लेके आए हैं।
0: क्या बात है, क्योंकि गुजारा करना बहुत मुश्किल हो रहा है आजकल।
1: यू कैन विन $1,000 कैश, सो हम पे यू कैन विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस, जिसपे पार्टिसिपेट करने का मौका आपको अक्रॉस द रेडियो डिफरेंट शोज में मिल रहा है। सो $1,000 कैश आपके नाम हो सकता है थैंक्स टू फॉर्च्यून विद होल ग्रेन्स एसेंशियल विटामिन्स। फॉर्च्यून जो है वैसे फ्यूल करती है आपकी एवरी विन, बिग और स्मॉल। तो आपको करना क्या है, फॉर नाउ फॉर्च्यून स्पेस अपना नाम लिख के भेजना है 5599 पर। मेरे को लगता है ये तो मैनिफेस्टेशन है, अपने नाम के साथ अगर आप फॉर्च्यून लिख ले रहे हैं, लिख के भेज रहे हैं, इट्स अ जर्नलिंग की आपके साथ फॉर्च्यून जुड़ी हुई है।
0: क्या बात है,
1: नॉट खाने वाली फॉर्च्यून, दूसरी फॉर्च्यून भी। सो फॉर्च्यून स्पेस अपना नाम लिख के भेजो 5599 पर, यू आर इन टू विन $1,000 कैश।
0: $1,000 कैश आपके नाम हो सकता है, लेकिन देखो ज्यादा आप ये भी मत हो जाना, भावुक मत हो जाना सैंडी की बात सुनकर कि ये मैनिफेस्टेशन है।
1: स्टैंडर्ड करियर एड्स अप्लाई।
0: हां, स्टैंडर्ड करियर एड्स डू अप्लाई। हर मैसेज आप जब भेजते हो तो कुछ ना कुछ तो डिडक्ट होता है शायद
1: 100%। रुज़बे वैसे नवरात्रि शुरू हो चुकी है, तो ऐसे मौके पे आज ट्रेंड मेकर्स भी हर नवरात्रि स्पेशल लेके आ रहे हैं। एंड ऑल्सो क्विनिटी न्यूज़ में हम ट्रेंड मेकर्स में बताएंगे कि नवरात्रि के मौके पे आप कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं एंड ये सारी इन्फॉर्मेशन, गरबा खेलने के लिए एंड ये सब इवेंट्स जो डिफरेंट जगह पे हो रहे हैं आपको हम बताएंगे नेक्स्ट आवर में ही।
0: नवरात्रि की शुरू भी हो गई यार, मतलब माय गॉड
1: इट्स सो कूल, मतलब फेस्टिव सीजन इज हियर। मेरे को लगता है कि वन ऑफ द बिजिएस्ट टाइम शुरू हो चुका है, घर पे भी काफी लोगों के लिए, ऑफिसेज में भी काफी लोगों के लिए, बिकॉज बिफोर हॉलीडेज व्हेन दे रैप अप before the end of the year there are too many things to do.
0: Acha mujhe bol raha tha, mujhe laga bol rahe ho ki offices mein bhi bahut busy ho jata hai kyunki log Diwali ke celebrations plan kar rahe hain, organize
1: wo bhi karte hain, and also before because holidays aane wali hoti hai na, to usse pehle bhi it's lot busy.
0: That's right,
1: you have deadlines to complete and yeah wo sab kuch karna hota hai. To office ghar mere ko lagta hai ye jo time shuru ho chuka hai it's going to be really busy.
0: Kisi se baat karne ka man kar raha hai yaar, call karo yahan pe 0800 004866. Has it really been busy for you at work of late? Kaise humko hi aisa feel ho raha hai, mere ko to samajh mein nahi aa raha hai time kidhar, matlab kya ho raha hai mere sath,
1: it's तुम्हारी जिंदगी कहाँ जा रही है?
0: सुपर भागिंग, लाइक ऐसा फील हो। देखो ना 12 अक्टूबर और ऐसे मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी एंड ऑफ अक्टूबर में पहुंच गया हूं मैं, क्योंकि कैलेंडर इज पैक्ड फॉर अंटिल एंड ऑफ अक्टूबर।
1: वाओ, या
0: वाओ क्या आपने भरा है वो।
1: बढ़िया, आप भी बताइएगा गाइस कि आपका कैसा जा रहा है ये साल।
0: हाय,
2: हेलो,
1: यस हाय,
0: हाय,
2: टू इयर्स छोटी सी बच्ची, आपको हाय करे दोनों को।
1: ओ हाय, हाउ आर यू,
2: से हाय, व्हाट्स योर नेम?
0: आर्या।
1: हाउ वाज योर डे आर्या?
2: हाउ वाज योर डे आर्या? गुड, फैंटास्टिक,
1: गुड, फैंटास्टिक, ओके,
0: वेरी नाइस,
2: फैंटास्टिक,
0: वेरी गुड। बताइए
2: ओका, सॉरी गाइस,
1: अरे ऑल गुड, बताइए।
2: तुम लोगों ने बोला फोन करो तो हमने फोन कर लिया आपको।
0: बिजी टाइम,
1: तुम बताओ रुज़बे,
0: बिजी टाइम चल रहा है क्या? बिजी टाइम चल रहा है ओंकार, बहुत काम पे, बहुत ऐसा।
2: हाँ, मतलब हाँ भाई, हाँ मतलब देखो ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता मैं इसके बारे में, मतलब व्हाटएवर, लेकिन जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन, बिजी चल रहा है भाई थोड़ा सा, क्योंकि कुछ कमिटमेंट्स है जो अपने सानाओं और कम्युनिटी का। यस बेटी है, यस बेटी, तो कम्युनिटी के लिए अपने कमिटमेंट है, उसके लिए थोड़ा सा काम कर रहे हैं, तो ये।
0: अच्छा, आप पॉलिटिक्स में हो क्या?
2: तो मतलब अच्छा काम चल रहा है,
0: अच्छा काम चल रहा है, अच्छा अच्छा,
1: ओके।
0: तो कैसा, मतलब कैसा नीला नीला काम चल रहा है कि भगवा भगवा का? नहीं, लाल
1: या फिर कोई और, बहुत सारे 17 कलर्स है उसमें, 17
2: नीला है और मेरा खून लाल है।
0: इससे क्या याद आया आपको?
1: इससे याद आया कि इस थर्सडे को, बिकॉज इलेक्शन स्पेशल हम कर रहे हैं, एंड कमिंग दिस थर्सडे हम बात करने वाले हैं एक ऐसी पार्टी के साथ जो फिलहाल रिसेंटली बहुत न्यूज़ में आई है, न्यू पार्टी एंड द पर्सन, द पार्टी लीडर इज फर्स्ट टाइम स्टैंडिंग इन द पॉलिटिक्स, सो वी आर टॉकिंग अबाउट अपॉर्चुनिटी पार्टी।
0: टॉप
1: टॉप इनको बोला जा रहा है द अपॉर्चुनिटी पार्टी. सो इनकी लीडर से हम बात करेंगे बिकॉज काफी न्यूज में रही है पिछले हफ्ते भी फुल ऑन.
0: तो क्यूले वोंग ये इनसे बात करने वाले हम इस थर्सडे को. एंड काफी लोगों को तो पता भी नहीं होगा अपॉर्चुनिटी पार्टी के बारे में.
1: मैंने मैंने बहुत ज्यादा देखा इनके बारे में. मैंने अच्छा, बहुत न्यूज़ देख रही हूँ. या
0: नाइस
1: आई हैव सीन अ लॉट. आई डोंट नो इफ इट्स जस्ट मी, मेरे रास्ते में वो सारे बोर्ड्स आ रहे हैं या फिर आपने भी देखी है.
0: बोर्ड्स तो है काफी, मैं देख रहा हूँ बोर्ड्स
1: मतलब
0: तो लगे हैं
1: बहुत बोर्ड. मतलब
0: इनके बोर्ड्स पे अब तक किसी ने वो ग्रेफिटी नहीं की है.
1: हाँ, मैं भी इसलिए ज्यादा दिखाई
0: दे वो दिख रहे हैं. बाकी मुझे लग रहा है बाकी बहुत सारे बोर्ड्स पे बहुत ग्रेफिटी हुई है
1: फुल ऑन.
0: और नेशनल के बोर्ड पे तो बहुत ज्यादा ग्रेफिटी देखी है मैंने.
1: मैंने लेबर के भी देखी है बहुत देखी है मैंने या दोनों की देखी है मैंने. बट यू आर राइट पीपल हैव रिटन स्टफ एंड चलो पोस्टर तक की है. So,
0: पोस्टर तक ही मतलब और कहाँ पे आप उनके मुंह पे भी लिखना चाहते हो क्या?
1: अरे नहीं मतलब कि नथिंग. सो या गाइस अपॉर्चुनिटी पार्टी के साथ हम बात करने वाले इसी थर्सडे को. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो प्लीज हमें भेजिए 5599 पर ड्राइव कीवर्ड के साथ. थ्रोबैक ब्रॉट टू यू बाय 0800 रचना. इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना. दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन.

0: रोज पे।
1: अरे माशाल्लाह इंशाल्लाह क्या बात है, आप तशरीफ ले गए, मुलाकात हो गई आपसे।
0: हम
2: शुगर डैडी।

0: to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.
1: Hum, accurate traffic.
2: Corfe Festival this Saturday.
3: Bit of drizzle overnight, low of 15 on the northern town to Constellation Drive, taking 25 minutes to Silverdale, 38. On the northwestern to Massey, 23, it's busy by Point Shev. On the southern motorway, both directions heavy between Ellerslie-Panmure Interchange and Green Lane, town to Manukau, 26 minutes, another 10 to Drury. Southwestern's a bit heavy through Mangere Bridge.
2: Corfe Festival this Saturday in Warkworth. Live music, food trucks, free entertainment. Corfefestival.nz.
4: सुनो आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया घर बेचने को कह रहे थे
5: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं डेवलप करना बेहतर लगता है पर पैसों का डर है
4: इसीलिए NZPMI से बात कर लो वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं
6: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए NZPMI टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस कॉल पॉल ऑन 0800 4 NZPMI.
7: The enrolment deadline's coming soon, pup. We better remind people before voting starts.
8: Enrolled yet?
7: How about you?
8: Are you enrolled?
9: Last chance to enrol is midnight 25 October. Enrol now at vote.nz. Brought to you by the Electoral Commission.
10: Make the most of your deck with a stylish louver from Trade Tested. From tiny decks to massive decks, we've got a louver that'll suit you. Easy to put together and unbeatable value starting at only $3,000. Make your backyard great at Trade Tested today.
11: There's more to your everyday rewards. Shop, cruise, tap and pat your way to 2,000 points and $15 off your shop. More points, more rewards. T's and exclusions apply.
12: The Cooperative Bank's home loan crew are in the house. Check it. Got that home dream, but don't know where to start? Little KiwiSaver and lots of listings bookmarked. LIMS, LVRs, what does it all mean? Been checking out listings since 2019. Deposit, pre-approval. How much can I borrow? Let's make a plan today for your tomorrow. Talk to the Cooperative Bank's home loan crew. From first questions to front door keys, we got you. T's and C's apply.
13: दिवाली आ रही है और फॉर्च्यून ला रहा है आपके लिए जीतने का मौका लोटस मैनिकाओ माउंट रॉस्किल या बोटनी एंड नमस्ते इंडियन सुपरमार्केट से कोई भी टू फॉर्च्यून या सिंपली प्रोडक्ट्स खरीदिए और जीतिए $501 का ट्रॉली डैश साथ में हर हफ्ते 10 विनर्स को $101 का इन स्टोर क्रेडिट बस एंट्री फॉर्म भरो रिसीट लगाओ और एंट्री बॉक्स में डाल दो फॉर्च्यून दिवाली बी इन टू विन एंड 15th November टीज एंड सीज अप्लाई
0: Time check.
14: Brought to you by Mann Tires. For all kinds of tires and mechanical services, open 7 days. Call Mann Tires on 0800 00 00 10.
0: Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
15: Good evening, I'm Bridget Hasty with the latest at 6. National has confirmed there is no superannuation policy on the way as it releases its fiscal plan. Finance spokesperson Nicola Willis is still keen to slowly raise the age, but says Chris Hipkins said no.
16: I don't get to dance alone. And I invited people to the dance floor with me, and other politicians were quick to play politics and less quick to think about the long-term interests of the country.
15: Labor is vowing to make the cost of school uniforms cheaper. It's the party's latest school pledge, alongside bolstering the lunch program and supporting rural bus routes. Leader Chris Hipkins says these expenses together can be a major hit to wallets.
17: 38,000 families in the last year received hardship support because of the costs of sending their kids to school. We can do something about that.
15: Police continue to appeal for information on a reported assault in Norsewood in Tararua. The victim's condition has improved from critical to stable since the Saturday morning incident on State Highway 2. Kelly Clarkson is locked in a war of words with a New York store. The singer accuses Art of Play in Brooklyn of treating her as though she could not afford a certain item, comparing it to the famous scene from Pretty Woman. The store claims the disputed piece is a mechanical bird that is not for sale. To sport, the Rugby League World Cup kicks off on Thursday with the Kiwis playing the Aussies. Jerome Hughes is taking inspiration from the Warriors' NRL run and the 2008 Kiwis World Cup win. And cricket with General, formerly Fujitsu, still New Zealand's favourite air from 8:30, day 4 of the South Africa-Australia test in Durban. Australia leads by 139 with all 10 second innings wickets in hand.
0: Sports News. Brought to you by Sona Sensar, Papatoi and Mount Roskill.
18: हम पर शोक सूचनाएं आप तक लाते हैं एंड्स फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रीमेशंस
19: सूचित किया जाता है डॉक्टर अरविंद डॉक्टर सुभाष और डॉक्टर विजय रणछोड़ के पिता काशी रणछोड़ के पति गुडवुड हाइट्स के मगन रणछोड़ की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई अंतिम संस्कार कल दोपहर 1 बजे एंड्स फ्यूनरल होम में किया जाएगा डॉक्टर अरविंद डॉक्टर सुभाष डॉक्टर विजय रणछोड़ के पिता काशी रणछोड़ के पति गुडवुड हाइट्स के मगन रणछोड़ की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई अंतिम संस्कार कल दोपहर 1 बजे एंड्स फ्यूनरल होम में किया जाएगा
18: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी
0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
20: जो कि करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स The Drive Show with Sandy and Ruzbe, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Manukau and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
21: Let's go! 3, 2, 1.
0: Trend Makers, The Drive Show with Sandy and Ruzbe.
22: मस्ती करेंगे, मौज काटेंगे, गर्दा पार देंगे.
19: आज है 12 अक्टूबर और आप सुन रहे ड्राइव शो विद सैंडी एंड रिज़बे ट्रेंड मेकर्स शुरू हो गया है आपके लिए और सैंडी गुड इवनिंग
23: अ वेरी वेरी गुड इवनिंग रिज़बे ट्रेंड मेकर्स में आज नवरात्रि की हम सेलिब्रेशन करने वाले नवरात्रि शुरू हो चुकी है एंड जगह जगह पे जो नवरात्रि हो रही है यहाँ पे हमारी सुपर सिटी में इसके बारे में हम बात भी करेंगे
19: बताओ बताओ कहाँ पे हो रही है
23: ओके सो
19: मैं बोलूँ क्या एक हाथ दो जगह
23: हाँ बताओ
19: महात्मा गांधी सेंटर में होती है
23: ओके
19: वहाँ पे तो होता ही है 9 दिन
23: हाँ, वो हमारे पास नहीं है
19: वो नहीं है हमारे पास हाँ, क्योंकि वो पेड इवेंट है
23: तो जो हमारे पास है हम सिर्फ वही बोल सकते हैं उसमें अब तुम्हारी तनख्वाह से पैसा कट जाएगा
19: अच्छा ठीक है
23: या इसलिए हाँ। तुम बोले और मत बोलो
19: मैं बोल एक और जगह मेरे को पता
23: नहीं तुम्हें और पैसे कटवाने हैं
19: ठीक है
23: मैं इनवॉइस भेजती हूँ
19: बोलो बोलो
23: क्योंकि वो लोग पे नहीं कर रहे हैं
19: सही बोल रहे हो आप बट ठीक है यार वी आर डूइंग समथिंग फॉर द कम्युनिटी सैंडी
23: या कम्युनिटी के नाम पे बहुत कुछ होता है
19: बताओ क्या कौन है और कौन सी जगह है
23: सो हम बता रहे हैं रामकृष्ण मंदिर में भी हो रहा है
19: रामकृष्ण मंदिर में हो रहा है
23: 11th अक्टूबर से शुरू हो चुकी है सेलिब्रेशन 20th तक चलने वाली है फ्रॉम 6 PM गरबा डांडिया रास डेली है वहाँ पे आफ्टर कथा सो कथा के बाद कथा सुनने के बाद यू कैन डू गरबा एंड डांडिया रास वहाँ
19: वेरी नाइस मनुकाओ में नहीं है
23: मेनकाओ में श्री राम मंदिर वो वाला देन
19: श्री रामकृष्ण मंदिर
23: श्री रामकृष्ण मंदिर
19: श्री राम मंदिर तो अलग है
23: हाँ वो अलग है वो हेंडरसन में है सो श्री हनुमान मंदिर जो है जो कि नॉर्थ शोर में है सो इफ यू आर इन नॉर्थ सो वहाँ पे हो रहा है 6:15 PM ऑनवर्ड्स डीजे गरबा इज फ्रॉम 8:10 PM टू 9:30 PM
19: डीजे गरबा
23: या
19: क्या बात है
23: भजन जैमिंग एंड डीजे गरबा बेसिकली
19: अच्छा
23: ये दोनों वहाँ पे
19: ओके
23: 18th अक्टूबर को रहेगा फ्रॉम 6:30 PM ऑनवर्ड्स सो भजन जैमिंग रहेगा 18th अक्टूबर को एंड उससे पहले सिर्फ डीजे गरबा हो रहा है
19: बाकी दिनों पे आज जाएंगे तो डीजे गरबा होगा
23: डीजे गरबा लेकिन 18th को भजन जैमिंग एंड डीजे गरबा
19: वेरी नाइस यार
23: सो दिस इज नाइस और भी आपको बताएंगे तुम्हारी मेमोरीज कैसी है कनेक्टेड टू नवरात्रि या गरबा या डांडिया
19: माय मेमोरीज
23: योर मेमोरीज
19: मेरा बचपन का मेमोरी तो ये है कि हम लोग के यहाँ पे ना एक नासिक में हूँ ना मैं नासिक से हूँ तो एक नंदनवन लॉन्स करके एक लॉन्स होते थे जहाँ पे 9 के 9 दिन अलग अलग ग्रुप्स अपना डांडिया ऐसा होस्ट करते थे गरबा नहीं होता था डांडिया होता था बहुत
23: ओके
19: और वो होस्ट करते थे और बेसिकली उनका डीजे आके प्ले करेगा वहाँ पे डीजे या समथिंग ऐसा कुछ होता था और मेरी मेमोरी ये है कि मैं उस इवेंट के टिकट्स बेचता था
23: ओ वाओ
19: या
23: इतना रिस्पॉन्सिबल वाला काम
19: यहाँ पे नहीं होता थे हर एक दिन पे एक अलग अलग ग्रुप का होता था उनकी रैलीज निकलती थी प्रमोट करने के लिए क्रेजी होता था यार मेरे को बहुत मजा आता था वो टाइम
23: और तुम खेलते भी थे
19: नहीं
23: गरबा या डांडिया नहीं
19: नहीं
23: मैं तुमने यहीं पे आके खेलना शुरू किया
19: यहाँ पे भी मैं कहाँ खेलता था
23: मतलब बीच में तो जाते हो ना सर्कल में अब खेलते हो नहीं खेलते हो अलग बात है वहाँ पे तुमने क्या किया नहीं पता लेकिन
19: नहीं
23: सर्कल में तो गए तुम
19: हाँ मतलब मैं फॉलो करने की कोशिश करता हूँ फिर टकराता हूँ इधर उधर फिर मैं थक जाता हूँ फिर मैं साइड में आ जाता हूँ दैट इज यूज्ड टू बी माय रूटीन
23: ओके
19: आपने क्या किया है, आपकी क्या मेमोरी है?
23: तो मेरी मेमोरी नहीं है,
19: पंजाब में होता है क्या नवरात्रि गरबा?
23: आई डोंट थिंक सो, इतना ज्यादा होता है वहाँ पे गरबा डांडिया, मैंने वाइल्ड ग्रोइंग अप इतना नहीं देखा है वहाँ पे एक्चुअली. मैम आई हैव सीन डिफरेंट थिंग, माता की चौकी जो होती है रात को,
19: माता की चौकी
23: जगराता,
19: जगराता होता है,
23: सो वहाँ पे इज मोर ट्रेंड ऑफ जगराता, तो वो मैंने काफी देखा है.
19: इन मॉडर्न डे इट्स कॉल्ड भजन जैमिंग,
23: भजन जैमिंग, हाँ वो हो चुका है. सो मैंने जगराता काफी देखा है, हमारी कॉलोनी में जैसे वो जगराता करते थे, टेंट लगाते थे, तो वो सब चीजें वो काफी देखा है मैंने. नवरा डांडिया और गरबा मैंने यहीं पे आके न्यूजीलैंड आके ही एक्सपीरियंस किया एक्चुअली.
19: और यहाँ पे कभी किया है आपने गरबा?
23: मतलब ट्राई किया है, अलग है, ट्राई बहुत किया है, या डांडिया एक बार ट्राई किया, उसके बाद आई वाज लाइक गरबा इज मैं कर सकती हूँ, क्योंकि डांडिया में अब बज रहे थे किसी को डंडी.
19: मेरे को डांडिया ज्यादा इजी लगता है कंपेयर टू गरबा.
23: हाँ,
19: क्योंकि डांडिया में मेरे को मालूम है ऐसा एक हाथ दो ऐसा स्टेप है ऐसा करके, वो मेरे को थोड़ा बहुत आता है, लेकिन गरबा में मेरे को समझ में नहीं आता कब क्यों घूम रहे हैं
23: यार. मैंने जो नोटिस किया ना, some people they dress up, they take effort, they dress up and they go for all the days and do the garba and dandiya, which is amazing. मुझे ये बहुत अच्छा लगता है.
19: If you are one of them जो every night जाने वाला है garba करने के लिए,
23: yeah, let us know.
19: चाहे जहाँ पे भी हो, yeah, don't mention the name.
23: लेकिन बताइए अपने passion के बारे में, बताइए of doing it.
19: Yeah, yeah. Tell us about your garba story.
23: Yeah, your garba stories today. आप कॉल करके या फिर मैसेज करके बताइए. कॉल करना है तो अभी 0800 00 हम पर, अदरवाइज टेक्स्ट अस.
19: मैं तो एक को जानता हूँ, मेरा दोस्त है वो. तो वो गुजराती भी नहीं है, वो पंजाबी है, लेकिन वो इतना डेडिकेटेड गरबा प्लेयर है, मतलब डांसर है, प्लेयर है, प्लेयर ही बोलते, खेलने बोलते हैं ना गरबा, तो वो इतना डेडिकेटेड है कि वो पिछले कुछ सालों से तो वही जीतता है बेस्ट डांसर का.
23: ओह वेरी नाइस
19: यार, ही इज वेरी गुड, वेरी पैशनेट फॉर गरबा.
23: सो कूल. ओ शी इज वेरी पैशनेट,
19: ही
23: ओ ही, ओके.
19: हां, शी में भी बहुत है ऐसे पैशनेट, बट या अगर आप भी हो ऐसे पैशनेट टुवर्ड्स गरबा, गिव अस अ कॉल या 0800 00 4866 या फिर 5599 पे आप मैसेज कर सकते हो ड्राइव कीवर्ड के साथ. बट टू स्टार्ट ऑफ गरबा की बात करें तो ये गाना बनता ही है
23: 100%.

0: आप सुन रहे ट्रेंड मेकर्स और आज हम आपके लिए गरबा स्पेशल लेकर आ रहे हैं। गरबा स्पेशल पार्ट वन कह सकते हैं हम।
1: या पार्ट वन लेके आ रहे हैं।
0: बहुत गाने यार गरबा के।
1: या एक पार्ट टू टुवर्ड्स द एंड भी हम लेके आएंगे
0: जी दशहरे से पहले।
1: यस सो और भी बहुत सारे आज मुझे लगता है कि गरबा जब ये शुरू हो जाता है गरबा डांडिया ये सीजन जब शुरू हो जाता है रुजवे नवरात्रि का एंड हमारा इंस्टा जो है वो अलग ही दिखना शुरू हो जाता है। सो यू गोना सी लॉट ऑफ नवरात्रि स्टोरीज गरबा स्टोरीज एक्चुअली में यहाँ गए फिर हर कोई अपने ड्रेसअप का लहंगा का वो सब चीज़ें डालता है अच्छा लगता है ना बिकॉज इट्स ऑलरेडी अ फेस्टिव सीजन नाउ।
0: फेस्टिव सीजन शुरू है ना। अनफॉर्चुनेटली मेरा एल्गोरिदम अभी आज इस बार वो नहीं पकड़ा है मेरा एल्गोरिदम ने कुछ और ही पकड़ा है।
1: या या या आपको सेम सिर्फ एल्गोरिदम न्यूज़ चैनल ने भी पकड़ा है तो
0: या या इट्स क्वाइट सैड जो हो रहा है।
1: या
0: बट या एनीवे
1: मूविंग ऑन और भी बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं गरबा डांडिया को लेके एंड नवरात्रि की सेलिब्रेशन को लेके।
0: जी वैसे एक और जगह पे हो रहा है श्री आदि शक्ति दुर्गा माता मंदिर ये 11th अक्टूबर से लेके मतलब आज से कल से लेकर 20th अक्टूबर तक रोज 7 बजे से 9 बजे तक ये होने वाला है ओटाहूहू में
1: वहाँ पे आप जा सकते हैं।
0: दिव्य शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट भी इनवाइट कर रहे हैं आपको एवरीडे 6:30 PM से फॉर गरबा डांडिया एंड हुड्डा तासा रास आफ्टर कथा।
1: हुड्डा तासा मेरे को लगता है कि वो होता है ना जो ड्रम टाइप या वो ढोल टाइप ऐसा वो बजाते हैं।
0: अच्छा।
1: या So that's the one. वो after कथा आप वहाँ पे experience कर सकते हैं।
0: माँ दुर्गा temple भी कर रहे हैं celebrate 4x3 on slow F Papa Toy Toy 7 PM से लेकर until 19th October and then श्री राम मंदिर 11 Brick Street Henderson में भी आप every day जा सकते हो 8:30 बजे से वहाँ पे भी गरबा होने वाला है live.
1: And also there's a दुर्गा पूजा as well this year समृति जो है संप्रीति ये celebrate कर रहे हैं 2nd annual दुर्गा पूजा 17th and 18th October को। इस बार उनकी जो थीम है वो सिकर है जिसका मतलब है आवर रूट्स। सो इवेंट फ्री है ओपन टू एवरीवन ट्रेडिशनल दुर्गा पूजा एंड अंजलि भोग ये सब होगा बोथ डेज में। सो कल्चर परफॉर्मेंसेस विल बी 7 PM ऑनवर्ड्स। सो 17th एंड 18th अक्टूबर को पहुंच सकते हैं फ्री मैंस बे कम्युनिटी हॉल में जो कि यहाँ पे सेंट्रल ऑकलैंड में है।
0: एंड इसके साथ वर्ल्ड मेनोपॉज डे का सेलिब्रेशन होने वाले सेलिब्रेशन क्या हो रहे हैं सॉरी
1: अवेयरनेस
0: इवेंट होने वाला है संडे 18th अक्टूबर को
1: एंड यू कैन ज्वाइन ऑनलाइन दिस इवेंट
0: रजिस्टर ऑनलाइन इवेंट है ये
1: लेकिन आपको रजिस्टर करना पड़ेगा globalpowersearch.com इज अ वेबसाइट यू हैव टू रजिस्टर बिकॉज ओनली 200 पीपल विल बी देयर 200 एंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है।
0: Oh, that's so cool, yeah. तो इसको आप जरूर अटेंड कीजिए 20 मिनट्स आप रह सकते हो वहाँ पे या फुल 24 आवर्स आपके लिए ये फ्री टू अटेंड इवेंट रहने वाला है। सो फटाफट इस इवेंट का भी आप

0: ट्रेंड मेकर्स।
1: हे चैट जीपीटी, दिवाली आने वाली है, ऐसा कोई आइडिया है कि मेरा दिवाला भी ना निकले और दिवाली भी मन जाए?
2: अगर आप अपना लिस्ट शेयर करेंगे तो मैं आपको पैसे बचाने के आइडियाज दे सकता हूँ।
1: बढ़िया है। अच्छा, ग्रोसरीज लेना है, पूरे घर की पेंटिंग करवानी है, नया सोफा लेना है, इतनी भाग दौड़ करनी है तो नेचुरली गाड़ी में फ्यूल भी तो चाहिए। और हाँ, कोई ऐसा स्कीम है क्या कि मेरे पैसे अकाउंट से जाए नहीं बल्कि अकाउंट में आए?
2: इंटरेस्टिंग, और कुछ?
1: बस इतना ही।
2: सर, मैं चैट जीपीटी हूँ, अंबानी नहीं, हमसे ना हो पाएगा।
0: दिस दिवाली लिसन टू हम ऑन 104.2 FM और रोवा एंड टेक पार्ट इन फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून एंड गेट इन द ड्रॉ टू विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस लाइक ग्रोसरी वाउचर्स, फ्यूल वाउचर्स, होम डेको एंड फर्नीचर वाउचर्स, बिल्डिंग एंड गार्डन सप्लाई वाउचर्स एंड कैश। फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स, हैरिंगटन लिविंग, मनोको, ब्यूटीफुल फर्नीचर विद 60 मंथ्स इंटरेस्ट फ्री, NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स, लॉजिक फाइनेंस and Guru Gandola, a household name in finance and insurance industry. And Fortune, bring home the fortune.
3: From a change in geopolitics, to changes in the weather, to changes in the All Blacks, change is constant. And so is the news on this station. Your source for everything changing. In association with RNZ News, change is in the air.
4: Barbecue just got baconated at Wendy's. Meet the new barbecue baconator range. Go all in with the barbecue baconator or get cheesy with the barbecue cheesinator. Then top it off with a new coffee frosty shake. Available in store or on the app. Only at Wendy's.
5: बिग बाजार में बिगेस्ट रेंज ऑफ पूजा घर मिल रहे हैं। प्योर मार्बल मूर्तिज, कॉपर मूर्तिज, गन मेटल मूर्तिज, देवी देवताओं के वस्त्र, सभी तरह के हार एंड एक्सटेंसिव रेंज ऑफ पूजा आइटम्स, बिग रेंज ऑफ कंसोल टेबल्स, मिरर्स, कर्टन्स, सोफा कवर्स, बीना एंड लाहौर ब्रांड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी अवेलेबल है। बिग बाजार 302 ग्रेट साउथ रोड, पापटोटोए, योर वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन दिस नवरात्रि।
6: Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery. Huge side-by-side black stainless steel fridge freezers, just $699. Midea inverter heat pumps with Wi-Fi from just $699. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply.
7: मैं हूँ हरीश लोढ़िया। दिवाली की धूम एट सोना संसार, नया स्टॉक्स ऑफ 22 कैरेट ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी की स्टॉक्स आ गया है, सिल्वर स्टॉक्स और सोने और चांदी की बिस्किट्स आ गया है, लक्ष्मी गणेश और प्योर चांदी के मूर्तियाँ वो भी आ गई है, डायमंड ज्वेलरी इंक्लूडिंग न्यू अराइवल्स ऑल एट हाफ प्राइस, सोना संसार 190 स्टोरार्ड रोड माउंट रॉस्किल या फिर 138 ग्रेट साउथ रोड पेपरटोए कॉर्नर ऑफ ईस्ट तमाकी एंड ग्रेट साउथ रोड। हमारा फोन नंबर 629-3333। फॉर स्पेशल डील्स विजिट आवर वेबसाइट sonasansar.co.nz।
8: Your favorite parking app has changed names. The AT Park app is now the AC Parking app. It has a new name and looks a little different, but the way you park stays as easy as always. Your account, vehicles and login details stay the same too. To make it even more of a smooth ride, your app should have updated automatically or prompted you to do it. Search Auckland Council AC Parking for more. Tāmaki Tūriki, All Together Auckland.
9: सुनो, आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया, घर बेचने को कह रहे थे।
10: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं। डेवलप करना बेहतर लगता है, पर पैसों का डर है।
9: इसीलिए NZPMI से बात कर लो, वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं।
11: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं, आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है। आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए। NZPMI, टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस। कॉल पॉल ऑन 0800-4NZPMI।
12: क्या आपका लोन डिक्लाइन हुआ है? क्या आप हिम्मत हार चुके हैं? तो एक मौका मुझे देके देखिए। हाय, मैं हूँ गुरु केंडोला फ्रॉम लॉजिक फाइनेंस। जो लोन्स डिक्लाइन और डिफिकल्ट होते हैं उनके अप्रूवल का मैं स्पेशलिस्ट हूँ। लॉजिक फाइनेंस के गुरु केंडोला बातों में नहीं काम में विश्वास रखते हैं।
13: टर्म्स, कंडीशन, फीस एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई। कॉल लॉजिक फाइनेंस के गुरु केंडोला को ऑन 0800 लॉजिक जी, विच इज 0800-564-424।
0: Bollywood.
14: World's best. हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
0: Are you ready to go home?
15: द
14: The Drive Show with Sandy and Ruzbe, brought to you by Beds R Us Monaco and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Monaco and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
15: आप सुन रहे Trendmakers, आज नवरात्रि स्पेशल आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं इन Trendmakers.
16: या Trendmakers में नवरात्रि स्पेशल तो आप सुन ही रहे हैं, और इस बार दिवाली स्पेशल पे हमने हम पे क्या किया है, आपके लिए रामायण एक गाथा लेके आ रहे हैं, जो कि 1 to 2 मिनट की स्टोरी टेलिंग सेगमेंट्स है. अबाउट रामायण से ही ये लिए गए हैं स्टोरीज, एंड अक्रॉस डिफरेंट टाइमिंग्स आप सुनते हैं, सुबह 8:20 पे, देन दोपहर लंच बॉक्स में 1:30 PM, और ड्राइव शो में अराउंड 6:45. पावरफुल शॉर्ट स्टोरीज है जो आपके लिए हम यहाँ पे इस बार दिवाली पे कुछ डिफरेंट करने का भी सोच रहे हैं.
15: That's so cool यार. तो अभी इसमें रामायण के बारे में थोड़ा और पता चलेगा हमें.
16: Yes.
15: ये सुनकर
16: सम इंस्पिरेशन जो होती है ना, कई बार कुछ ऐसा किस्से या इंस्पिरेशन या लाइंस वहाँ की कुछ ऐसे.
15: That's pretty cool यार.
16: तो वहाँ से
15: सो यार उसके वो आपके लिए हम लेकर आएंगे, बस थोड़ी देर में सुनते रहना आप हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.

0: Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Manukau and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku. March 2027, a story that will change your life. Rusbe, tickets booked. Two
1: then late
2: what? Bali bula raha.
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी,
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन,
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर द ऑल इंक्लूसिव टो प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्बे, ओनली ऑन हम। Accurate traffic.
6: Switch your pool to swim at.
7: Bit of drizzle overnight, a low of 15 degrees. All clear on the roads now in the northern town to Constellation Drive, 16 minutes to Silverdale, 28. To Massey, 15 minutes on the southern, a quick 20 minutes to Manukau from town, and 30 to Drury. To the airport, 23 minutes on the trains. The South City line closed between Pukekohe and Pukenui after 9:30 tonight.
6: Switch to specialist pool and spa advice and service today. Call your nearest swim at now.
8: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते।
1: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा,
9: अब हमारा क्या होगा?
10: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना,
1: तो क्या करें?
11: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।
12: Ah, the in-laws are coming for dinner, so tonight's not the night to wing it. Luckily, delicious Woolworths New Zealand sirloin steak with garlic and herb butter lets me take all the credit. Oh, it was nothing. Just my kind of woolies.
13: Spruce your backyard for spring at Trade Tested. Smash the winter grime with a Karcher water blaster. Get a Hyundai chipper in to shred the branches, or deal to the weeds with a fancy Greenworks electric garden sprayer. Be first up, best dressed this spring at Trade Tested.

0: आप सुन रहे हैं हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स ट्रेंड मेकर्स में नवरात्रि स्पेशल सुना आपने आज।
1: ये इस नवरात्रि स्पेशल में जो बाकी आपकी रिक्वेस्ट यहाँ पे आई है यहाँ पार्ट टू में लेके आएंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ नवरात्रि।
0: हैव अ वंडरफुल नवरात्रि सीजन। यहाँ पे अगर आप गरबा करने जा रहे हैं रोज तो एंजॉय कीजिए, सेफ रहिए अपने। आपको पता है लोगों के काफी पैर छिल जाते हैं नवरात्रि के टाइम पे, तो अपने पैरों का ध्यान रखिए। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ and with that we will see you very soon.
1: Yeah, kal kal aapse mulaqat hone wali hai, so take care of yourself. Tata, bye bye.
0: कल हम आपके लिए कैरेक्टर गेस्ट लेकर आएंगे। कैरेक्टर गेस्ट में कल सैंडी का टर्न है।
1: ओह या, इट्स माय टर्न। जब आपको रुजबे को मिल के गेस करना होगा पांच सवालों में कि किसको सोच के रखा है मैंने।
0: तो कल 5 बजे के बाद ट्यून इन कीजिएगा और हमारा साथ दीजिएगा ड्राइव शो में 3 से 7। बाय
1: बाय।

उन बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Playing Bollywood's biggest hits.
1: इस दिवाली सिर्फ घर नहीं रिश्ते भी रोशन करें। एक दिया एक कहानी के साथ जुड़िए दिवाली पूजा, पूजा विधि, दिवाली पूजा सामग्री और दिवाली रामायण गाथा के साथ। हर दिया एक कहानी कहेगा और हर दिल अपनों के और करीब आएगा। हम की ओर से आपको और आपके परिवार को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। Brought to you by Finance World. Ramayana movie by Forum Films, Indelible Homes, Lotus Foreign Exchange, ABC Business Consultants, Sona Sansar, Passion Landscape, Amma's Food, PFSL, Arjun Supermarket, Big Bazaar and Fortune Foods.
2: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With multiple branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare's 12th birthday offer, 6 months completely free, and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो जल्दी join करो और enjoy करो special offers. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
3: रुजबे 2026 में ना बहुत काम कर लिया है, अब तो ब्रेक बनता है।
4: बिल्कुल, तो लेते हैं एक लग्जरियस हॉलिडे ब्रेक, बाली और बैंकॉक।
3: और आप भी चलिए सन टूर्स के साथ ईस्टर 2027 में।
4: बाली 6 दिन और बैंकॉक 5 दिन, कंप्लीट लग्जरियस हॉलिडे पैकेज। बुक कीजिए टिल दिवाली और पाइए फ्री 2 nights 3 days सिडनी टू सिडनी क्रूज पैकेज।
3: 2027 ईस्टर को बनाइए एक्स्ट्रा स्पेशल, बाली बैंकॉक और फ्री क्रूज।
4: बुक नाउ विद सन टूर्स।
3: कॉल करें 0800 478686।
2: इस मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वीक में एक पल निकालकर देखिए कि आप कैसा फील कर रहे हैं। स्लीप, मूड, एपेटाइट या रूटीन में चेंजेस, इसका साइन हो सकते हैं कि इमोशनल सपोर्ट मदद कर सकता है। आप किसी अपने से एक सिंपल चेक इन के साथ रीच आउट कर सकते हैं। एशियन फैमिली सर्विसेज फ्री कॉन्फिडेंशियल इमोशनल सपोर्ट देता है। एशियन हेल्पलाइन 0800-862-342 पर कॉल करें। अगर आप या आपका कोई जानने वाला इमीडिएट डेंजर में है तो 111 पर कॉल करें। कॉमनवेल्थ वॉल्ट आपके प्रेशियस बिलोंगिंग्स को रखता है सेफ और सिक्योर। गोल्ड, बुलियन और प्रेशियस मेटल्स की वैल्यू जब ऑल टाइम हाई पे है, तब ये पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है कि आपके एसेट्स थेफ्ट और नेचुरल डिजास्टर से प्रोटेक्टेड रहें। जब आप अपने वैल्यूएबल्स कॉमनवेल्थ वॉल्ट को इंट्रस्ट करते हैं तो आपको मिलता है पीस ऑफ माइंड, ये जानते हुए कि वो सेफ, सिक्योर और प्रोटेक्टेड रहेंगे। कॉमनवेल्थ वॉल्ट, सिक्योरिंग योर वैल्यूएबल्स फॉर अ लाइफटाइम एंड बियॉन्ड। डिटेल्स एट कॉमनवेल्थवॉल्ट.co.nz। That's commonwealthworld.go.nz. Smiley.

0: अमी ने बनाया जो जो हम ही से बिखर गया,
1: आओ नई ईंटों से वही आशियाना बनाए।
2: हैप्पी आवर ऑन हम
3: 80s के रेट्रो गाने।

0: Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: दिवाली आ रही है और फॉर्च्यून ला रहा है आपके लिए जीतने का मौका. लोटस मेनिकाओ, माउंट रॉस्किल या बोटनी इन नमस्ते इंडियन सुपरमार्केट से कोई भी टू फॉर्च्यून या सिंपली प्रोडक्ट्स खरीदिए और जीतिए $501 का ट्रॉली डैश. साथ में हर हफ्ते 10 विनर्स को $101 का इन स्टोर क्रेडिट. बस एंट्री फॉर्म भरो, रिसीट लगाओ और एंट्री बॉक्स में डाल दो. फॉर्च्यून दिवाली, बी इन टू विन, एंड्स 15th November. टीज एंड सीज अप्लाई.
2: Thinking of switching lanes? How about insurers? Switching to Tower is easy. Plus, get $100 off new comprehensive car insurance. Use promo code EASYSAVE. T's and C's apply. Switch to Kiwi, switch to Tower.
3: A message to all road users. You must now give way to buses that are leaving bus stops, the roadside, or bus lanes in areas where speed limits are 60 kilometres an hour or less. This will help buses rejoin traffic safely. Learn more at nzta.govt.nz.
4: My future is still being written. I don't know what I'll be when I grow up, but I know I want the chance to find out. Your investment in children can help me get there. With the right support, I can feel safe, learn, grow, build confidence, and discover what I'm capable of. That's why Barnardos is asking Aotearoa to invest in children. Invest in children at investinchildren.nz. And invest in me.
5: न्यूजीलैंड के रीसेंट फ्लड्स ने काफी डैमेज किया है. फोकस किचन सारे न्यूजीलैंडर्स की तरह इन विक्टिम्स के साथ खड़े हैं एंड आर हेल्पिंग देम गेट बैक टू नॉर्मल लाइफ बाय हेल्पिंग देम आउट विद देयर किचन कैबिनेट्स. फोकस किचन प्रोवाइड कर रहे हैं अ वेरी स्पेशल प्राइस फॉर पीपल विद फ्लड डैमेज किचन्स. कॉन्टैक्ट फोकस किचन ऑन 09281-3050, यूनिट के 33 वॉम्सली रोड, ओटाहूहू. फॉर इन्फो एंड डिजाइन आइडियाज विजिट focuskitchens.co.nz.
6: Brought to you by Mann Tires. For all kinds of tires and mechanical services, open 7 days. Call Mann Tires on 0800-00-00-10.
7: Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
8: Good evening to you with the latest at 8. I'm Jeff Bryan. One person's been taken to hospital in a serious condition after a firearms incident in Christchurch. It happened near the Palms shopping centre in Shirley around 3 this afternoon. Police continue to appeal for information on a reported assault in Norsewood in the Tararua district. The victim's condition has improved from critical to stable since the Saturday morning incident on State Highway 2. And Associate Education Minister David Seymour has called on other parties to front up to pupils over charter schools. Labour leader Chris Hipkins maintains he would transition them to the public system. In sport, one place in sport you would not want to be is at the upcoming defining debrief for Team 18 following the Bathurst disaster where they ran out of fuel on the last lap while leading. 3 years ago, both their cars ran out of fuel, leading to team changes. Motorsport with Magan Turbo's 80,000k tyre warranty. And Auckland FC star striker Sam Cosgrove will be eligible after all for the season opening game against Melbourne City in Auckland on Saturday. He served his two-match ban playing for the reserves.
9: Sports News.
7: Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
10: World's best, hamari koi branch nahi hai.
7: Hum. Night Cafe on Hum. Aapka moment. Krish ka magic. Only on Hum.
11: Hello everyone, a very good evening to all my lovely listeners. आपका स्वागत करते हैं. मैं क्रिश आ गया हूँ आज मंडे नाइट लेकर नाइट कैफे. एक और हफ्ता हमारे साथ होगा नाइट कैफे मंडे टू थर्सडे नाइट 8 टू मिडनाइट हम लेकर आते हैं ये सेगमेंट. आज जबकि मंडे है 12th अक्टूबर है तो जितने भी हमारे प्यारे लिसनर्स हमारे साथ हो गए थैंक यू सो मच फॉर योर ग्रेट कंपनी. और मैं चाहूँगा कि ऐसे ही भारत तक आप हमारा साथ दें. देर ना करते हुए जबकि आज मंडे है शुरू करते हैं आपके लिए स्पेशल 8 टू 9 सेगमेंट नो लॉजिक मंडे.
7: नो लॉजिक मंडे.
11: Yes, everyone, welcome to the show. No Logic Monday में मैं क्रिश आपका स्वागत करता हूँ. 9 बजे तक ये सेगमेंट चलेगा जिसमें No Logic से भरी बातें, गाने, सभी कुछ आपके लिए होगा. हम पेश करेंगे ऑन द एयरवेव्स ऑफ हम. आपको बस हमारा साथ देना है. कुछ इंटरेस्टिंग खबरें मैं लेकर आया हूँ जो सरप्राइजिंग है, शॉकिंग है, या फिर आपको सोचने पर मजबूर कर देगा. ये सभी कुछ आज हमारे साथ होगा. पहले तो आपको दो बैक टू बैक सॉन्ग्स सुनाता हूँ. एंजॉय एवरीवन एंड वेलकम टू द शो.

फोटोग्राफ क्वेश्चंस और हेल्प रिट्रीव आंसर्स, और वो भी एआई का इस्तेमाल करते हुए। जो ग्रीन लाइट विजिबल होता है थ्रू द लेंसेज, इससे इस डिवाइस को एक्सपोज किया गया है, मतलब टीचर ने पकड़ा कि कोई ऐसा डिवाइस का इस्तेमाल कर रहा है। और इस इंसिडेंट से अब ये कॉन्सर्न्स आने लगे हैं कि स्कूलों में किस हद तक अब स्टेप्स को लिया जाए ताकि टेक्नोलॉजी असिस्टेड चीटिंग को बंद किया जाए। मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूं, और भी इंटरेस्टिंग खबरें आपके लिए बहुत ही जल्दी। सुनते रहो नो लॉजिक मंडे।

0: Night Cafe, where sense takes a break. No Logic Monday.
1: सुनते रहो आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स क्रिश के साथ है. रात 12 तक तो हम आपके साथ देंगे, 9 तक आपके लिए नो लॉजिक मंडे जारी रहेगा. चाइना काफ़ी दिनों से सुर्खियों में है अबाउट टेक्नोलॉजी, अबाउट एआई, अबाउट रोबोटिक्स. अब यहाँ पर ये भी आपको शॉक करेगा क्योंकि चोंगकिंग चाइना की ये स्टोरी है. 7th July ऑफ दिस ईयर इसको पब्लिश किया गया है, जहाँ पर चोंगकिंग ईस्ट रेलवे स्टेशन covers approximately 1.22 million square meters. ये one of the world's largest railway stations बोला गया है. Construction तकरीबन 38 months लगे और enormous complex में 29 platforms है और 15 railway tracks है. ये scale demonstrate करता है China's investment in high speed rail और major transport infrastructure. ज़रा सोचिए, world's largest railway stations, one of the world's largest कहा गया है. ये चोंगकिंग ईस्ट रेलवे स्टेशन है जो चाइना में है. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ कुछ और इंटरेस्टिंग खबरें कुछ ही देर में आपके लिए.

0: बॉलीवुड का असली ब्लॉकबस्टर
1: पूरे शहर पे कब्जा होगा, राज होगा।
0: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स व्हेन नॉनसेंस मेक्स परफेक्ट सेंस, नो लॉजिक मंडे।
2: You're listening to number one, हम playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ और रात 12 तक हमारा साथ रहेगा। एक वुमन है जिन्होंने एक नोज पियर्सिंग को डिस्कवर किया विच वॉज लॉज्ड इन अ लंग। ये स्टोरी है मैक्सिको की 14th अप्रैल को पब्लिश किया गया है ऑफ दिस ईयर। मोनिका डयानीरा कैब्रेरा बराजस ने एक persistent cough सफ़ा किया फॉर अ मंथ और मेडिकल इमेजिंग से ये बात सामने आया है कि इनका जो नोज पियर्सिंग है, पियर्सिंग का कंपोनेंट इनफेक्ट लॉज डीप इन अ लंग और शी सस्पेक्टेड कि शी हैड इनहेल्ड इट वाइल अस्लीप विदाउट रियलाइजिंग इट इट वाज मिसिंग। और ये स्ट्रेंज डिस्कवरी हाईलाइट करता है कि किस तरह से अननोटिस्ड फॉरेन ऑब्जेक्ट कितना प्रोलॉन्ग्ड सिम्टम्स हमारे लिए कोस कर सकता है। मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ, नो लॉजिक मंडे आपके लिए जारी है।
3: कहीं

0: Cafe on Hum.
1: Hey ChatGPT, दिवाली आने वाली है, ऐसा कोई आइडिया है कि मेरा दिवाला भी ना निकले और दिवाली भी मन जाए?
2: अगर आप अपना लिस्ट शेयर करेंगे तो मैं आपको पैसे बचाने के आइडियाज दे सकता हूँ।
1: बढ़िया है। अच्छा, ग्रोसरीज लेना है, पूरे घर की पेंटिंग करवानी है, नया सोफा लेना है, इतनी भाग दौड़ करनी है तो नेचुरली गाड़ी में फ्यूल भी तो चाहिए। और हाँ, कोई ऐसा स्कीम है क्या कि मेरे पैसे अकाउंट से जाए नहीं बल्कि अकाउंट में आए?
2: इंटरेस्टिंग, और कुछ?
1: बस इतना ही।
2: सर, मैं चैट जीपीटी हूँ, अंबानी नहीं, हमसे ना हो पाएगा।
3: दिस दिवाली लिसन टू हम ऑन 104.2 FM और रोवा एंड टेक पार्ट इन फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून एंड गेट इन द ड्रॉ टू विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस लाइक ग्रोसरी वाउचर्स, फ्यूल वाउचर्स, होम डेको एंड फर्नीचर वाउचर्स, बिल्डिंग एंड गार्डन सप्लाई वाउचर्स एंड कैश। फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स, हैरिंगटन लिविंग, मनोको, ब्यूटीफुल फर्नीचर विद 60 मंथ्स इंटरेस्ट फ्री, NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स, लॉजिक फाइनेंस एंड गुरु गंडोला, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री, एंड फॉर्चून, ब्रिंग होम द फॉर्चून।
4: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं। पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना, बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस, ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस, और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन साइट क्रेमेटोरियम, और जब भी जरूरत हो, दिन हो या रात, हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा। मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए।
5: When you've got roads, rain and traffic, you get potholes.
6: Oh man, potholes are the worst.
5: Yes, we know. That's why we have the Auckland Council Pothole Promise.
6: Huh, how does it work?
5: Well, someone alerts us to a pothole via the website. Then our crews head out, spot the pothole, catch it and release it somewhere where it won't be a nuisance.
6: Really?
5: No. We fill them with an approved asphalt premix, usually within 24 hours. It's how we keep the city moving. Search Pothole Promise. Tāmaki Tūriki. All together, Auckland.
7: Get ready for massive savings at Carpet Court and Curtain Studio. Save on carpet, hardfloor, rugs, curtains and blinds. Don't miss these unbeatable deals. Only at Carpet Court and Curtain Studio. 3 days only, starts Thursday.
8: My future is still being written. I don't know what I'll be when I grow up, but I know I want the chance to find out. Your investment in children can help me get there. With the right support, I can feel safe, learn, grow, build confidence, and discover what I'm capable of. That's why Barnardos is asking Aotearoa to invest in children. Invest in children at investinchildren.nz. And invest in me.
9: The sky cracks open. Your nemesis descends. He's brought an army.
10: It's a bit dramatic.
9: And there you are, cape billowing, jaws set, underwear over your pants. The fate of Tāmaki Makaurau rests on your buff shoulders, so you leap into the sky, adjust your underwear, and shoot!
11: The next station is Te Waihorotiu.
12: Watch, scroll, draw, game, relax. Hop on for some me time on AT, buses, trains, and ferries.
13: Oops, the recipe says we need full fat cream.
14: New World Express Delivery. Get your groceries in as little as 60 minutes. T's and C's and exclusions apply. See online for details.
15: The beat of Bollywood.
16: World's best. Hamari good brands nahi hai.
15: Hum. Night Cafe on Hum. Where sense takes a break.
17: No Logic Monday.
18: आप सुन रहे हैं आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स नो लॉजिक मंडे में। आगे बढ़ते हुए कुछ और भी शॉकिंग खबरें आपके लिए। ये स्टोरी जो है फ्रांस से हमने लिया है और 18th मई ऑफ दिस ईयर की ये स्टोरी है। हॉबिस्ट और यूट्यूबर रेमी आरसी ने अनवेल किया है एक एनॉर्मस एयरबस A380 मॉडल, और ये एयरक्राफ्ट का वजन है 8,000 pounds और इट हैज़ अ विंग स्पैन ऑफ रफली 9.75 मीटर्स। फोर लार्ज इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल्स जो है इनको प्रोवाइड करते हैं थ्रस्ट नीडेड फॉर द फ्लाइट, और कहा गया है कि इट्स स्केल ब्लर्स द लाइन बिटवीन ट्रेडिशनल मॉडल एयरक्राफ्ट एंड फुल साइज्ड लाइट पैनल्स। तो ये देखने में बिल्कुल हवाई जहाज लगता है A380 का मॉडल है ये, और ज़रा सोचिए कि इनको ऑपरेट करने के लिए 4 लार्ज इलेक्ट्रिक मोटर्स का इस्तेमाल होता है टू प्रोवाइड द थ्रस्ट इट नीड्स फॉर द फ्लाइट। मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ, और भी खबरें आपके लिए बहुत ही जल्दी। सुनते रहो आपका नंबर 1 हम, प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।

0: तो क्या तू फिर भी जान है मेरी।
1: आपका मोमेंट क्रिश का मैजिक ओनली ऑन हम।
2: You're listening to number one, I'm playing Bollywood's biggest hits, Krish ke saath hai, aur Night Cafe aapke liye jaari hai. Festival of Fortune, win your share of $5,000 worth of prizes this Diwali with hum, aur abhi aapke paas mauka hai $1,000 worth of Harrington Living jeetne ka, jisme home decor ya furniture voucher aapko mil sakta hai. Ek winner ko milega ye sab, $1,000 worth of Harrington Living. Harrington Living Manukau Spring Sale abhi jaari hai, beautiful furniture with 60 months interest free. आपको मिल सकता है। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई होते हैं ओनली एट हैरिंगटन लिविंग मनुकाव। तो इसके लिए आप अभी अगर ये जो $1,000 वर्थ ऑफ हैरिंगटन लिविंग आप जीतना चाहते हैं वाउचर, तो HL, H और L, letter H, letter H, letter H and letter L आप हमारे पास 5599 पर अपने नाम के साथ भेजें। सो HL योर नेम and send it to 5599 to get into the draw to win $1,000 worth of Harrington Living home decor या furniture voucher. One winner only होगा इसके लिए। hum.rover.nz पर विजिट करें for terms and conditions.

0: Bollywood.
1: Hum.
0: Playing Bollywood's biggest hits. इस दिवाली सिर्फ घर नहीं रिश्ते भी रोशन करें। एक दिया एक कहानी के साथ जुड़िए दिवाली पूजा पूजा विधि दिवाली पूजा सामग्री और दिवाली रामायण गाथा के साथ हर दिया एक कहानी कहेगा और हर दिल अपनों के और करीब आएगा। हम की ओर से आपको और आपके परिवार को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रॉट टू यू बाय फाइनेंस वर्ल्ड रामायण मूवी बाय फोरम फिल्म्स इंडेलिबल होम्स लोटस फॉरेन एक्सचेंज एबीसी बिजनेस कंसल्टेंट्स सोना संसार पैशन लैंडस्केप अम्मास फूड पीएफएसएल अर्जुन सुपरमार्केट बिग बाजार एंड फॉर्चून फूड्स।
2: At Bunnings, you can make any home spooky this Halloween with our new range. We've got inflatables, stake lights, and even animatronics. Plus, we've got buckets for the kids trick-or-treating. Come and get more Halloween for less. Bunnings Warehouse.
3: इस मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वीक में एक पल निकालकर देखिए कि आप कैसा फील कर रहे हैं। स्लीप मूड एपेटाइट या रूटीन में चेंजेस इसका साइन हो सकते हैं कि इमोशनल सपोर्ट मदद कर सकता है। आप किसी अपने से एक सिंपल चेक इन के साथ रीच आउट कर सकते हैं। एशियन फैमिली सर्विसेज फ्री कॉन्फिडेंशियल इमोशनल सपोर्ट देता है। एशियन हेल्पलाइन 0800-862-342 पर कॉल करें। अगर आप या आपका कोई जानने वाला इमीडिएट डेंजर में है तो 111 पर कॉल करें।
4: Now there's a better way to a new phone with Spark Upgrader. Combine our huge phone deals with great trade-in savings, plus look out for exclusive offers just for you. See what you could save on a new phone at spark.co.nz/upgrader. Available interest-free, credit criteria and terms apply.
5: India aa raha hai Auckland, and the Blue Tigers need your voice behind them. देखिए इंडिया को ऑल व्हाइट्स के अगेंस्ट गो मीडिया स्टेडियम थर्सडे 12 नवंबर को एक रेयर चांस अपनी नेशनल टीम को न्यूजीलैंड की जमीन पर लाइव देखने का। ब्रिंग द फैमिली वेयर योर कलर्स एंड फिल द स्टेडियम विद प्राइड। अडल्ट टिकट सिर्फ $20 से शुरू किड्स $10 से प्लस बुकिंग फीस। बुक नाउ एट टिकटेक एंड बी देयर फॉर अ हिस्टोरिक नाइट।
6: Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery. Huge side-by-side black stainless steel fridge freezers, just $699. Midea inverter heat pumps with Wi-Fi from just $699. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
7: It's 10 a.m. And you forgot about dinner at yours tonight. Your fridge is empty. Your place is a mess after watching last night's game. And you're still painted the same blue as your team. No time to do the shop? Get what you need with New World online same day click and collect. T's and C's and exclusions apply. See newworld.co.nz for details.
0: Bollywood ka asli blockbuster.
8: Pure shehar pe kabza hoga, raaj hoga.
0: Playing Bollywood's biggest hits.
9: Hum.
0: Night Cafe on Hum.
10: सुनते रहो आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून जो कि बहुत ही धमाकेदार प्राइजेस जीतने का सिलसिला आपके लिए शुरू कर दिया गया है हम पर टू विन प्राइजेस दिस दिवाली विद हम। दिवाली बहुत ही करीब है तो ऐसे में ड्रॉ डेट भी बहुत ही करीब आ चुका है। 30 अक्टूबर को ड्रॉ होगा फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून के जरिए आप जीत सकते हैं शानदार इनाम। तो अभी $1,000 वर्थ ऑफ हैरिंगटन लिविंग अगर आपको जीतना है होम डेकोरेशन या फिर फर्नीचर वाउचर वन विनर ओनली होगा। तो इसके लिए आप HL टेक्स्ट करें अपने नाम के साथ 5599 पर टू बी इन द ड्रो। हैरिंगटन लिविंग मनुकाउ स्प्रिंग सेल शुरू कर दिया गया है। ब्यूटीफुल फर्नीचर विद 60 मंथ्स इंटरेस्ट फ्री आपको मिलेगा। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई होते हैं। दिस इज ओनली अवेलेबल एट हैरिंगटन लिविंग मनुकाउ। मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ। जल्दी जल्दी आप भी अपना नाम HL के साथ 5599 पर भेजे टू बी इन द ड्रो।

0: बस हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
1: आपका मोमेंट क्रिश का मैजिक ओनली ऑन हम.
2: आप सुन रहे हैं आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूं. अगर आज आपका जन्मदिन है, अ वेरी हैप्पी बर्थडे एवरीवन जिनका आज जन्मदिन है एंड दोज हु आर सेलिब्रेटिंग. आई एम श्योर आज बहुत कुछ घर पर किया गया है या फिर वीकेंड के लिए भी आपने प्लानिंग बनाकर रखा है, तो फिर टीम हम की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं. आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू विश एवरीवन अ हैप्पी बर्थडे जो ऑनलाइन हमें सुन रहे हैं. अगर आप आउटसाइड ऑफ न्यूजीलैंड हो या फिर आउटसाइड ऑफ ओकलैंड हो, आप हमें रोवर के जरिए सुन रहे हैं तो बिग शाउट आउट टू ऑल आवर रोवर लिसनर्स, क्योंकि आपको हम हमेशा याद करते हैं. आप हमसे दूर होकर भी हमें अपने बहुत ही करीब रखते हैं थ्रू रोवर. तो आपके लिए अगला गाना सुनते रहो हम. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ.

0: moment. Krish ka magic. Only on Hum.
1: आप सुनते रहो आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून में आप अपना शेयर ऑफ 5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस जीत सकते हैं दिस दिवाली विद हम. तो ड्रो 30 अक्टूबर को होगा. ड्रो डेट के और भी नज़दीक हम जाने लगे हैं और आपको बस इसमें पार्टिसिपेट करना है. कीवर्ड टेक्स्ट करें NZPMI अपने नाम के साथ 5599 पर और आप ड्रो में शामिल होकर जीत सकते हैं $1,000 वर्थ ऑफ माइटा 10 वाउचर्स. एक ही विनर होगा जिसको मिलेगा $1,000 वर्थ ऑफ माइटा 10 वाउचर्स. अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स फॉर ए फ्री साइट असेसमेंट. विजिट करें NZPMI.co.nz या फिर कॉल करें 0800-4NZPMI. तो कुछ टाइम के लिए मैं आपको मौका दे रहा हूँ. टेक्स्ट करें NZPMI अपने नाम के साथ 5599 पर. $1,000 वर्थ ऑफ माइटा 10 वाउचर्स जीतने का मौका है आपके पास.

0: हे चैट जीपीटी, दिवाली आने वाली है, ऐसा कोई आइडिया है कि मेरा दिवाला भी ना निकले और दिवाली भी मन जाए?
1: अगर आप अपना लिस्ट शेयर करेंगे तो मैं आपको पैसे बचाने के आइडियाज दे सकता हूँ।
0: बढ़िया है। अच्छा, ग्रोसरीज लेना है, पूरे घर की पेंटिंग करवानी है, नया सोफा लेना है, इतनी भाग दौड़ करनी है तो नेचुरली गाड़ी में फ्यूल भी तो चाहिए। और हाँ, कोई ऐसा स्कीम है क्या कि मेरे पैसे अकाउंट से जाए नहीं बल्कि अकाउंट में आए?
1: इंटरेस्टिंग। और कुछ?
0: बस इतना ही।
1: सर, मैं चैट जीपीटी हूँ, अंबानी नहीं, हमसे ना हो पाएगा।
2: दिस दिवाली लिसन टू हम ऑन 104.2 FM और रोवा एंड टेक पार्ट इन फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून एंड गेट इन द ड्रॉ टू विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस लाइक ग्रोसरी वाउचर्स, फ्यूल वाउचर्स, होम डेको एंड फर्नीचर वाउचर्स, बिल्डिंग एंड गार्डन सप्लाई वाउचर्स एंड कैश। फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स, हैरिंगटन लिविंग, मनोको, ब्यूटिफुल फर्नीचर विद 60 मंथ्स इंटरेस्ट फ्री, NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स, लॉजिक फाइनेंस एंड गुरु कंडोला, a household name in finance and insurance industry, and Fortune, bring home the fortune.
3: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे।
4: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
3: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है। शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो।
5: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो। सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर gold.
6: Looking for that unforgettable holiday in paradise? Get there in Apex world-class comfort with Fiji Airways, where the luxuries start from the moment you book. Get fast-track security, extra baggage, and priority check-in. Once you're there, enjoy even more time to relax with resort check-in. Complete your flight check-in from various Fiji resorts with your luggage transported securely to the airport. Travel in style with one of the world's top 10 airlines. Visit fijiairways.com.
7: Thinking of renovating or extending your home? Greystone Builders specializes in renovations and extensions of kitchen and bathrooms, decks and fences, and offer professional house painting. Licensed builders providing quality work at reasonable prices. Call Greystone Builders on 021-165-9362. That's 021-165-9362 for a free quote. Or visit greystonebuilders.co.nz.
8: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते।
9: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा,
10: अब हमारा क्या होगा?
11: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना
12: तो क्या करें?
13: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।
14: Media voice complaints. How can I help?
15: Yeah. Hello.
14: Hi.
15: Hi. Yeah. Can you guys take a radio jingle out of my brain?
14: Oh, you mean like a jingle extraction? It's our job to put advertising in there.
15: Well, okay. Well, what about something like a brain surgeon?
14: They'll probably just explain how repeat hearing puts things deep in your emotional memory, and I really don't think it's necessary. But yes, if you must, I do have the name of one.
15: Great. Sing it to me.
16: Advertise with
17: Media Works.
16: New Zealand listens to us.
18: The beat of Bollywood.
19: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
18: Night Cafe.
20: You're listening to number one. हम playing Bollywood's biggest hits. Krish के साथ है और ऐसे ही हमारा साथ रहेगा all the way till midnight. याद रहे जो मैंने आपसे कहा था, $1,000 worth of Might Attain vouchers जीतने के लिए एक ही विनर को मिलेगा ये. तो फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून के दौरान आप हमारे पास भेजे अपना नाम, पहले तो लिखे NZPMI अपने नाम के साथ और 5599 पर भेजे. जितने भी लोग टेक्स्ट करेंगे आपके नामों को ड्रो में शामिल कर दिया जाएगा. $1,000 worth of Might Attain vouchers जीतने का मौका है. अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स फॉर अ फ्री साइट असेसमेंट. आप विजिट करें NZPMI.co.nz या कॉल करें 0800 4NZPMI. मैं कृष आपका साथ दे रहा हूँ.

0: Murphy on Hum. Aapka Moment. Krish ka Magic. Only on Hum.
1: Welcome back everyone, you're listening to number one Hum, playing Bollywood's biggest hits. एक एक करके आपके फेवरेट सॉन्ग्स तो मैं लेकर आता रहूंगा. जितने भी हमारे नाइट शिफ्ट वर्कर्स हैं, अगर आप हमें सुन रहे हैं, हमारी आवाज़ अगर आप तक पहुंच रही है, तो स्वागत है आपका. नेक्स्ट जो 30 मिनट्स ऑफ नॉन स्टॉप म्यूजिक का सेगमेंट है, ये खासतौर पर आपको डेडिकेट कर रहे हैं. ट्रक ड्राइवर्स, ऊबर ड्राइवर्स, साथ में फैक्ट्री ऑपरेटर्स, मशीन ऑपरेटर्स, मुझे पता है कि हम की गूंज आपके आसपास होती है और ऐसे ही एंटरटेन्ड होकर आप काम करते हैं और आपका कंपनी हमें मिलता है और हमारा आपको. थैंक यू सो मच. इस घंटे पर आप से बातें करेंगे अबाउट फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून, जो कि बहुत ही धमाकेदार फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून, जो इनाम देने का सिलसिला है आपके लिए. तो इसमें बस भाग लेने के लिए आप तैयार रहे, क्योंकि वो भी बारी बारी से आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे, जिसमें बहुत ही ईजिली आप ड्रो में अपने नामों को शामिल कर पाएंगे. वेलकम बैक टू द शो एवरी वन. 30 मिनट्स ऑफ नॉन स्टॉप म्यूजिक अभी आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ.
2: बिछड़ के तुझसे अब मुझे मरना है, ये तजुर्बा इसी जिंदगी में कर.

0: Bollywood.
1: World's best. हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
2: You're listening to number one. हम playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ इलेक्शन स्पेशल इन ड्राइव शो. कुछ ऐसे सवाल पूछे गए हैं लेबर कैंडिडेट खड़ग सिंह तकनीनी और आप इनको आप सुन पाएंगे हम पॉडकास्ट के जरिए अनफिल्टर्ड ड्राइव में. कुछ मुद्दों पर बातें की गई है जैसे स्मॉल बिजनेस एंड द कॉस्ट ऑफ लिविंग, सुपर मार्केट कॉम्पिटिशन, रिटेल क्राइम एंड कम्युनिटी सेफ्टी, पुलिसिंग, ट्रैफिक और इंफ्रास्ट्रक्चर और इनके विजन फॉर तकनीनी एंड साउथ ओकलैंड. इनके आंसर्स क्या है, इनका लेटेस्ट पॉलिटिकल जो डिबेट अभी चल रहे हैं बिटवीन क्रिस हिपकिंस एंड क्रिस्टोफर लक्सन, इस पे इनका टेक क्या है, इनके आंसर्स क्या है, और व्हाट डज लेबर हैव प्लान्ड और व्हाट कुड दीज पॉलिसीज मीन फॉर आवर कम्युनिटी. फुल कन्वर्सेशन अभी अवेलेबल है आपके लिए. ड्राइव टेक्स्ट करें 5599 पर. फुल इंटरव्यू आपको मिल जाएगा विद खड़ग सिंह, लेबर कैंडिडेट फॉर तकनीनी ऑन हम. Outerova speaks, so hear the conversation before you make your decision. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ, सुनते रहो हम.

0: the moment. Krish ka magic. Only on Hum.
1: You're listening to number one, Hum playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. दिवाली की धूम सभी जगहों पर है, तो ऐसे में एक दिया एक कहानी. This Diwali on Hum. हम आपके लिए celebrate करना चाहता है उस शख्स को जो someone special है आपके ज़िंदगी में. Not family by blood, लेकिन family by heart. कौन है वो light of your life? आप हमें बताएं, जिन्होंने आपको support किया, inspire किया, made you smile, simply made your life brighter. By being in it, उनके होने से आपकी ज़िंदगी में एक अलग रोशनी है. 0800-004-866 पर आप कॉल कर एक स्पेशल दिवाली शाउट आउट उनको दे सकते हैं, उनके बारे में बता सकते हैं कि why you appreciate having them in your life and go into the draw to win $300 in fact, जीतने का मौका रहेगा. Draw will happen on Friday 6th November. तो this Diwali, we are celebrating the people who light up our lives. और हम ये मौका आपको दे रहे हैं एक दिया एक कहानी के दौरान. This Diwali only on Hum. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ. सुनते रहो हम.

0: Cafe on Hum.
1: इस दिवाली सिर्फ घर नहीं रिश्ते भी रोशन करें। एक दिया एक कहानी के साथ जुड़िए दिवाली पूजा, पूजा विधि, दिवाली पूजा सामग्री और दिवाली रामायण गाथा के साथ। हर दिया एक कहानी कहेगा और हर दिल अपनों के और करीब आएगा। हम की ओर से आपको और आपके परिवार को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। Brought to you by Finance World. Ramayana Movie by Forum Films. Indelible Homes. Lotus Foreign Exchange. ABC Business Consultants. Sona Sansar. Passion Landscape. Amma's Food. PFSL. Arjun Supermarket. Big Bazaar. And Fortune Foods.
2: सुनो, आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया। घर बेचने को कह रहे थे।
3: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं। डेवलप करना बेहतर लगता है, पर पैसों का डर है।
2: इसीलिए NZPMI से बात कर लो, वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं।
4: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं, आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है। आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए। NZPMI, टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस। कॉल पॉल ऑन 0800-4NZPMI.
5: You know a restaurant's good when you can't get a table for 3 weeks. Just like it's a great sign if a specialist is booked till next month. And if a builder can't fit you in till the summer, you know it's probably worth the wait. So when we tell you that Diocesan School for Girls is generally booked 2 years ahead, that should tell you everything you need to know. So if you're thinking about what's next for your daughter, join us at our open day on Thursday, the 22nd of October from 9 till 11 a.m. Register at diocesan.school.nz.
6: 35 minutes and we've moved 3 kilometers.
7: Welcome to Peak Hour Commute, bye.
6: Maybe I should use this time to check if I'm eligible to vote.
7: Over 18? Lived here for more than a year? And a resident for electoral purposes?
6: Yeah, that sounds like me.
7: Then why don't you enroll now? Only takes a few minutes.
6: Well, you're driving, so I'll do it now. That was quick and easy.
8: Last chance to enroll is midnight 25 October. Enroll now at vote.nz. Brought to you by the Electoral Commission.
9: दिवाली आई खुशियां लाई, PFSL स्पेशल ऑफर लेकर आया है। अपने ड्रीम होम का सपना सजाएं, PFSL के साथ होम लोन करवाएं। $400,000 या उससे ज्यादा का एलिजिबल लोन सेटल करें और $250 का गिफ्ट कार्ड घर ले जाएं। 50-inch टीवी के लकी ड्रॉ में भी एंट्री पाएं। तो इस दिवाली खुशियां बढ़ाएं, PFSL के साथ अपना ड्रीम होम सजाएं। सर्च PFSL और कॉल ऑनलाइन 8469934। टर्म्स एंड कंडीशंस एंड लेंडिंग क्राइटेरिया अप्लाई।
10: It's New Zealand Wool Month, so don't miss sheepishly good deals on wool carpet at Flooring Extra. Shop the wool sale now and save on a range of luxurious New Zealand wool carpet. Warm, durable and beautifully sustainable. Plus, you can enjoy 36 months interest-free. So discover the comfort and style of wool that suits your space and budget. Visit your local Flooring Extra showroom today for expert advice you can rely on. TC's fees and credit criteria apply.
11: Flooring Extra.

अब तो हमें हमारा जाने का समय हुआ दोस्तों, थैंक यू सो मच, आपने हमारा साथ दिया, थैंक यू सो मच, बहुत ही प्यारा साथ रहा है। अभी कल मुलाकात होती है आपका साथ देने के लिए, मैं आ जाऊंगा रात 8 पर कल ट्यूसडे, तो कोक स्टूडियो रिलोडेड भी लेकर आऊंगा। अपना बहुत ही ख्याल रखें, हैव अ वंडरफुल रेस्ट ऑफ योर नाइट, कल मिलते हैं, क्रिश का बहुत सारा प्यार।

0: flight on Hum.
1: Yeah,

0: Bollywood.
1: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
0: Wow.
2: Listen up, yo. It's Valentine's Day. Groove.

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
3: That is very that is a very acceleration.
2: Very acceleration. That's a very acceleration. Yeah.
3: Amazing acceleration.
2: This is my fancy English. That's a very.
3: अरे होता है यार, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Monaco.
0: Weekdays, 6 to 10 a.m.
5: इस मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वीक में एक पल निकालकर देखिए कि आप कैसा फील कर रहे हैं. स्लीप, मूड, एपेटाइट या रूटीन में चेंजेस इसका साइन हो सकते हैं कि इमोशनल सपोर्ट मदद कर सकता है. आप किसी अपने से एक सिंपल चेक इन के साथ रीच आउट कर सकते हैं. एशियन फैमिली सर्विसेज फ्री कॉन्फिडेंशियल इमोशनल सपोर्ट देता है. एशियन हेल्पलाइन 0800-862-342 पर कॉल करें. अगर आप या आपका कोई जानने वाला इमीडिएट डेंजर में है तो 111 पर कॉल करें. कॉमनवेल्थ वॉल्ट आपके प्रेशियस बिलोंगिंग्स को रखता है सेफ और सिक्योर. गोल्ड, बुलियन और प्रेशियस मेटल्स की वैल्यू जब ऑल टाइम हाई पे है, तब ये पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है कि आपके एसेट्स थेफ्ट और नेचुरल डिजास्टर से प्रोटेक्टेड रहें. जब आप अपने वैल्यूएबल्स कॉमनवेल्थ वॉल्ट को इंट्रस्ट करते हैं तो आपको मिलता है पीस ऑफ माइंड, ये जानते हुए कि वो सेफ, सिक्योर और प्रोटेक्टेड रहेंगे. कॉमनवेल्थ वॉल्ट, सिक्योरिंग योर वैल्यूएबल्स फॉर अ लाइफटाइम एंड बियॉन्ड. डिटेल्स एट commonwealthvault.co.nz. That's commonwealthvault.co.nz.
6: दिवाली आई, खुशियाँ लाई. PFSL स्पेशल ऑफर लेकर आया है. अपने ड्रीम होम का सपना सजाएं, PFSL के साथ होम लोन करवाएं. $400,000 या उससे ज्यादा का एलिजिबल लोन सेटल करें और $250 का गिफ्ट कार्ड घर ले जाएं. 50 इंच टीवी के लकी ड्रॉ में भी एंट्री पाएं. तो इस दिवाली खुशियाँ बढ़ाएं, PFSL के साथ अपना ड्रीम होम सजाएं. सर्च PFSL और कॉल 09846-9934. टर्म्स एंड कंडीशंस एंड लेंडिंग क्राइटेरिया अप्लाई.
7: Want to give your bathroom or kitchen a fresh new look?
8: Then check out Voda and Green's tapware at Elite Bathroomware.
7: Because right now, you can save 25% across both ranges.
8: That means big savings on basin, bath, shower and kitchen tapware.
7: And there's plenty of finishes to choose from, so you can get the look you want.
8: See the range at Elite's huge 670 square meter showroom, 59 Allens Road, East Tamaki.
7: Or shop online at elitebathroomware.co.nz.
8: Elite Bathroomware, a reflection of you.
9: Thinking of renovating or extending your home? Greystone Builders specializes in renovations and extensions of kitchen and bathrooms, decks and fences, and offer professional house painting. Licensed builders providing quality work at reasonable prices. Call Greystone Builders on 021-165-9362. That's 021-165-9362 for a free quote. Or visit greystonebuilders.co.nz.

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: अंडा अंडा अंडा अंडा हम सबने देखा है कई बार देखा है पर क्या कभी सोचा है इस अंडे का क्या फंडा है ये कितना गहरा है इस टकले सर के अंदर एक ब्रेन सुनहरा है ये कुछ समझाता है ये कुछ सिखलाता है जरा गौर से सुनिएगा हम गा के सुनाता है।

0: Radio.
1: Streaming on Rover.
2: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते।
3: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा,
4: अब हमारा क्या होगा?
5: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना,
3: तो क्या करें?
6: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।
7: The kids depend on us for everything. Meals, rides, band-aids, bedtime stories. But who do we depend on?
8: Hi, I'm Nitesh Hira from Assure One. School holidays remind us how much our families rely on us. My job is making sure reliance never becomes a risk. Helping you understand your options so your family is covered whatever happens. Call Assure One on 0800-77-HIRA or visit assureone.co.nz. North and Vale Advisory Limited, trading as Assure One, is a licensed financial advice provider.
1: This Diwali, send love home with Lotus Foreign Exchange. Enjoy great rates on international money transfers. Visit the new Lotus West City Henderson branch or your nearest Lotus branch. Visit lotusfx.com or call 0800-44-2288. Lotus Foreign Exchange, getting more value from your money. Happy Diwali. Terms and conditions apply.
9: Proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111. Indelible Homes, your building expert.
10: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है।
11: हाँ। अच्छा
10: बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस, साडा कुछ नहीं।
11: मिसेस सिंह,
12: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
13: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहुहु। कॉल 0928130 और विजिट focuskitchens.co.nz।
14: The beat of Bollywood,
15: world's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
14: Nightfly।

0: यार नाटक ना कर, नाचु ना यार, नाचु ना।
1: अरे अरे छोड़ो यार, मैं नहीं नाचूंगा वाचूंगा।
2: ओए पुत्र नाचना, पहनती सगाई च पाइनो नचना ही पैंदा।
1: हाँ हाँ तो फिर बड़े भैया को नचाओ ना।
3: क्यों, तेरी भी तो पैन है।
4: ए गल चंगी बोली।
5: ओ कम ऑन शेखर, नाचो ना।
1: नहीं नहीं मुझे नहीं नाचना।

0: में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and on-site cremations. 11 Boulderwood Place, Beery. Call 24/7 on 0927-88600.
2: सुनो, आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया। घर बेचने को कह रहे थे।
3: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं। डेवलप करना बेहतर लगता है, पर पैसों का डर है।
2: इसीलिए NZPMI से बात कर लो, वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं।
4: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं, आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है। आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए। NZPMI, टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस। कॉल पॉल ऑन 0800-4NZPMI.
5: It's New Zealand Wool Month, so don't miss sheepishly good deals on wool carpet at Flooring Extra. Shop the wool sale now and save on a range of luxurious New Zealand wool carpet. Warm, durable and beautifully sustainable. Plus, you can enjoy 36 months interest-free. So discover the comfort and style of wool that suits your space and budget. Visit your local Flooring Extra showroom today for expert advice you can rely on. TC's fees and credit criteria apply.
6: Flooring Extra. Adore your floor.
7: Tired of compromising between taste and nutrition? Introducing Amma's Foods Multigrain Dosa Batter. Made with 8 super grains, it's packed with the goodness your family deserves.
8: Busy subah ho ya sham ka jaldi ka khana, Amma's Foods Multigrain Dosa Batter banaye. Har meal healthy aur delicious. High protein, rich in fiber aur swad se bharpoor. Ye hai har ghar ka best choice. Amma's Foods Multigrain Dosa Batter, 100% authentic aur maa ke pyar jitna shuddh. Aaj hi kare try, aapke najdeeki store mein uplabdh hai. Swad bhi, sehat bhi.

0: रिश्ते भी रोशन करें। एक दिया एक कहानी के साथ जुड़िए दिवाली पूजा, पूजा विधि, दिवाली पूजा सामग्री और दिवाली रामायण गाथा के साथ। हर दिया एक कहानी कहेगा और हर दिल अपनों के और करीब आएगा। हम की ओर से आपको और आपके परिवार को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। Brought to you by Finance World, Ramayana Movie by Forum Films, Indelible Homes, Lotus Foreign Exchange, ABC Business Consultants, Sona Sansar, Passion Landscape, Amma's Food, PFSL, Arjun Supermarket, Big Bazaar and Fortune Foods.
1: The big sale is on now at Baths R Us with amazing deals on selected sleepyhead beds like 60% off Swiss Tech Precision Queen Size now 3499. The big sale at Baths R Us Manukau and Pukekohe, where dreams begin.
2: Get ready for massive savings at Carpet Court and Curtain Studio. Save on carpet, hard floor, rugs, curtains and blinds. Don't miss these unbeatable deals. Only at Carpet Court and Curtain Studio. 3 days only. Starts Thursday.
3: दिवाली बस आने ही वाली है तो द कॉस्मेटिक क्लिनिक सिल्विया पार्क हैज अ स्पेशल ऑफर अब से लेके मंडे तक गेट 50% ऑफ सिलेक्टेड स्किन एंड लेजर ट्रीटमेंट्स स्किन रिजुविनेशन से लेके लेजर ट्रीटमेंट्स तक द एक्सपीरियंस टीम विल हेल्प क्रिएट अ प्रोग्राम टेलर्ड फॉर यू और सबसे बढ़िया बात आपकी कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है बुक ऑनलाइन एट thecosmeticclinic.co.nz सिलेक्टेड ट्रीटमेंट्स पर 50% ऑफ ऑन नाउ द कॉस्मेटिक क्लिनिक सिल्विया पार्क की तरफ से हैप्पी दिवाली
4: Playing Bollywood's biggest hits.
5: But you hit the gun,
4: Night Flight.

0: हे चैट जीपीटी, दिवाली आने वाली है, ऐसा कोई आइडिया है कि मेरा दिवाला भी ना निकले और दिवाली भी मन जाए?
1: अगर आप अपना लिस्ट शेयर करेंगे तो मैं आपको पैसे बचाने के आइडियाज दे सकता हूँ।
0: बढ़िया है। अच्छा, ग्रोसरीज लेना है, पूरे घर की पेंटिंग करवानी है, नया सोफा लेना है, इतनी भाग दौड़ करनी है तो नेचुरली गाड़ी में फ्यूल भी तो चाहिए। और हाँ, कोई ऐसा स्कीम है क्या कि मेरे पैसे अकाउंट से जाए नहीं बल्कि अकाउंट में आए?
1: इंटरेस्टिंग। और कुछ?
0: बस इतना ही।
1: सर, मैं चैट जीपीटी हूँ, अंबानी नहीं, हमसे ना हो पाएगा।
2: दिस दिवाली लिसन टू हम ऑन 104.2 FM और रोवा एंड टेक पार्ट इन फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून एंड गेट इन द ड्रॉ टू विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस लाइक ग्रोसरी वाउचर्स, फ्यूल वाउचर्स, होम डेको एंड फर्नीचर वाउचर्स, बिल्डिंग एंड गार्डन सप्लाई वाउचर्स एंड कैश। फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स, हैरिंगटन लिविंग, मनोको, ब्यूटीफुल फर्नीचर विद 60 मंथ्स इंटरेस्ट फ्री, NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स, लॉजिक फाइनेंस एंड गुरु गंडोला, a household name in finance and insurance industry, and Fortune, bring home the fortune.
3: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे।
4: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
3: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है। शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो।
5: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो। सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर गोल्ड।
6: क्या आपका टैक्स रिटर्न अप टू डेट है? फाइल करने में एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए?

0: Visit abcsolutions.co.nz for more details.
1: Settle, win, escape. Finance World is about to take you further with a trip to Bali. Settle kijiye apna home loan of 500,000 ya usse zyada Finance World ke saath. And you're automatically in the draw to win a trip to Bali for 2, 5 days, 4 nights, 2 lucky winners. Har eligible home loan of 500,000 ya usse zyada automatically aapko draw mein enter karta hai. Terms and conditions apply. Visit financeworld.co.nz/Bali. Finance World Limited is a registered financial advice provider. दिवाली बस आने ही वाली है तो द कॉस्मेटिक क्लिनिक सिल्विया पार्क हैज अ स्पेशल ऑफर अब से लेके मंडे तक गेट 50% ऑफ सिलेक्टेड स्किन एंड लेजर ट्रीटमेंट्स स्किन रिजुविनेशन से लेके लेजर ट्रीटमेंट्स तक द एक्सपीरियंस टीम विल हेल्प क्रिएट अ प्रोग्राम टेलर्ड फॉर यू और सबसे बढ़िया बात आपकी कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है बुक ऑनलाइन एट thecosmeticclinic.co.nz सिलेक्टेड ट्रीटमेंट्स पर 50% ऑफ ऑन नाउ द कॉस्मेटिक क्लिनिक सिल्विया पार्क की तरफ से हैप्पी दिवाली क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन कोरमा या चना मसाला रेसिपीज चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है तो इंतजार किस बात का आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए शान फूड्स असली स्वाद हर घर के लिए

0: 2027. एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुस्बे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक, स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर द ऑल इंक्लूसिव टो प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्बे, ओनली ऑन हम।
6: बॉलीवुड का असली ब्लॉकबस्टर,
7: पूरे शहर पे कब्जा होगा, राज होगा।
6: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।
0: हम नाइट फ्लाइट ऑन हम।
8: सोनम गुप्ता,

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स

0: स्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: कृपया ध्यान दें दिल्ली से मुंबई आने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 12 के बदले प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे आएगी

0: हे चैट जीपीटी, दिवाली आने वाली है, ऐसा कोई आइडिया है कि मेरा दिवाला भी ना निकले और दिवाली भी मन जाए?
1: अगर आप अपना लिस्ट शेयर करेंगे तो मैं आपको पैसे बचाने के आइडियाज दे सकता हूँ।
0: बढ़िया है। अच्छा, ग्रोसरीज लेना है, पूरे घर की पेंटिंग करवानी है, नया सोफा लेना है, इतनी भाग दौड़ करनी है तो नेचुरली गाड़ी में फ्यूल भी तो चाहिए। और हाँ, कोई ऐसा स्कीम है क्या कि मेरे पैसे अकाउंट से जाए नहीं बल्कि अकाउंट में आए?
1: इंटरेस्टिंग, और कुछ?
0: बस इतना ही।
1: सर, मैं चैट जीपीटी हूँ, अंबानी नहीं, हमसे ना हो पाएगा।
2: दिस दिवाली लिसन टू हम ऑन 104.2 FM और रोवा एंड टेक पार्ट इन फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून एंड गेट इन द ड्रॉ टू विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस लाइक ग्रोसरी वाउचर्स, फ्यूल वाउचर्स, होम डेको एंड फर्नीचर वाउचर्स, बिल्डिंग एंड गार्डन सप्लाई वाउचर्स एंड कैश। फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स, हैरिंगटन लिविंग, मनोको, ब्यूटीफुल फर्नीचर विद 60 मंथ्स इंटरेस्ट फ्री, NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स, लॉजिक फाइनेंस एंड गुरु गंडोला, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री, एंड फॉर्चून, ब्रिंग होम द फॉर्चून।
3: कॉमनवेल्थ वॉल्ट आपके प्रेशियस बिलोंगिंग्स को रखता है सेफ और सिक्योर। गोल्ड, बुलियन और प्रेशियस मेटल्स की वैल्यू जब ऑल टाइम हाई पे है, तब ये पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है कि आपके एसेट्स थेफ्ट और नेचुरल डिजास्टर से प्रोटेक्टेड रहें। जब आप अपने वैल्यूएबल्स कॉमनवेल्थ वॉल्ट को इंट्रस्ट करते हैं तो आपको मिलता है पीस ऑफ माइंड, ये जानते हुए कि वो सेफ, सिक्योर और प्रोटेक्टेड रहेंगे। कॉमनवेल्थ वॉल्ट, सिक्योरिंग योर वैल्यूएबल्स फॉर अ लाइफटाइम एंड बियॉन्ड। डिटेल्स एट commonwealthvault.go.nz। दैट्स commonwealthvault.go.nz।
4: फ्री गोल्ड कॉइन्स ऑन डायमंड ज्वेलरी? सीरियसली माही?
5: यस बेबो।
4: कैच क्या है?
5: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के साथ सेलिब्रेशंस को और भी खास बनाओ। डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेसेस पर पाओ फ्री गोल्ड कॉइन्स, साथ ही सिलेक्टेड ज्वेलरी पर डायमंड वैल्यू और मेकिंग चार्जेस में अप टू 40% ऑफ का फायदा उठाओ।
4: आई स्टिल कांट बिलीव इट, नो कैच।
5: कैचेस सिर्फ मैचेस में होते हैं बेबो। दिस इज योर फेस्टिव गिफ्ट फ्रॉम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, बॉटनी टाउन सेंटर, ईस्ट ऑकलैंड,
6: PNC सप्लाई।
7: नाइट फ्लाइट ऑन

0: driving you home. The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हुआ.
2: ये गलत बोल दिया यार.
1: और पहनता भी नहीं है उसको.
2: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूँ मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
1: इंटरेस्ट
3: ब्रांड हो गया अभी वो.
2: अभी ब्रांड हो गया ना.
1: रुस्बे के बाल लगे उससे.
0: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us, Manuku and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us, Manuku and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GW and Havel and Omura J2.
4: Diwali bas aane hi wali hai. So the cosmetic clinic Sylvia Park has a special offer. Up se leke Monday tak, get 50% off selected skin and laser treatments. Skin rejuvenation se leke laser treatments tak. The experienced team will help create a program tailored for you. Aur sabse badhiya baat, aapki consultation bilkul free hai. Book online at thecosmeticclinic.co.nz. Selected treatments par 50% off on now. The Cosmetic Clinic Sylvia Park ki taraf se. Happy Diwali!
5: The beat of Bollywood.
6: World's best, hamari koi branch nahi hai.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: रिवाइंड सिर्फ रोवा पर।
1: फ्री गोल्ड कॉइन्स ऑन डायमंड ज्वेलरी, सीरियसली माही?
2: यस बेबो।
1: कैच क्या है?
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के साथ सेलिब्रेशंस को और भी खास बनाओ। डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेसेस पर पाओ फ्री गोल्ड कॉइन्स, साथ ही सिलेक्टेड ज्वेलरी पर डायमंड वैल्यू और मेकिंग चार्जेस में अप टू 40% ऑफ का फायदा उठाओ।
1: आई स्टिल कांट बिलीव इट, नो कैच।
2: कैचेस सिर्फ मैचेस में होते हैं बेबो। दिस इज योर फेस्टिव गिफ्ट फ्रॉम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, बॉटनी टाउन सेंटर, ईस्ट ऑकलैंड।
3: PNC Supply.

0: ಕಮಲಂ ಹಾರ್ಮಜರೆ ಚ ತಥಾಂಬರೆ ಚೂಡಾಮಣಿಂ ತಥಾ ದಿವ್ಯಂ ಕುಂಡಲೆ ಕಟಕಾನಿ ಚ ಅರ್ಧಚಂದ್ರಂ ತಥಾ ಶುಭ್ರಂ ಕೇಯೂರಾನ್ ಸರ್ವಾಹುಷು ನೂಪರೌ ಬಿಮಲೌ ತದ್ವದ್ ಗ್ರೈವ್ಯಕ್ಮನುತ್ತಮಂ ಅಂಗುಲೀಯಕೃತ್ನಾನಿ ಸಮಸ್ತಾಸ್ವಂಗುಲೀಷು ಚ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಾ ದದೌ ತಸ್ಯೈ ಪರಶುಂ ಚಾತಿ ನಿರ್ಮಲಂ. क्षीर सागर ने उज्ज्वल हार तथा कभी जीर्ण न होने वाले दो दिव्य वस्त्र भेंट किए, साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, दो कुंडल कड़े उज्ज्वल अर्धचंद्र तथा बाहुओं के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नूपुर, गले की सुंदर हंसली और सब अंगुलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी अंगूठियां भेंट की. विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया. अस्त्राण्यनेक रूपाणि तथा भेद्यम च दंशनम अमलान पंकजाम मालाम शिरसयूरसी चापराम अदद्ध जलधिस्तस्यै पंकजम चातिशोभितम हिमवान वाहनम सिंहम रत्नानि विविधानि च ददाव शून्यम सूर्या पान पात्रम धनाधिपः शेषश्च सर्वनागेशो महामणि विभूषितम नागहारं ददौ तस्यैः धत्ते यः पृथ्वीमिमाम् अन्यैरपि सुरैर्देवी भूषणैरायुधैस्तथा. साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद्य कवच दिए. इनके सिवा मस्तक और वक्षस्थल पर धारण करने के लिए कभी ना कुम्हलाने वाले कमलों की मालाएं दी. जलधि ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया. हिमालय ने सवारी के लिए सिंह दिया तथा भांति भांति के रत्न समर्पित किए. धनाध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा मधु पात्र दिया तथा संपूर्ण नागों के राजा शेष ने, जो इस पृथ्वी को धारण किए हुए हैं, उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया. इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया. सम्मानितः ननाद्वैच्चैः साट्टहासं मुहुर्मुहुः तस्यानादेन घोरेण कृत्स्नम् आपूरितं नभः अमायताति महता प्रति शब्दो महानुभूत चक्षुभु सकला लोकः समुद्राश्च कंपिरे चचाल वसुधा चेलुः सकलाश्च महीधरः जयति देवाश्च मुदा तामुच्चुः सिंहवाहिनी. तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की. उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा. देवी का वह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कहीं समा न सका. आकाश उसके सामने लघु प्रतीत होने लगा. उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे. पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे. उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंहवाहिनी भवानी से कहा, तुष्टुवुर्मन्नश्चैनाम् भक्ति नम्रतात्मूर्तयः दृष्ट्वा समस्तम् संक्षुब्धम् त्रैलोक्यमरारयः सन्नदाखिल सैन्यास्ते सुमुत्तु स्थुरुदायुधः अहक्मेद्दिति क्रोधादाभाष्य महिषासुरा अभ्यधावत् तम् शब्दम् अशेषैर्सुरैर्वृतः साददर्शततो देवीम् व्याप्तलोकत्रयीम् तुषा. देवता बोले, हे देवी, तुम्हारी जय हो. साथ ही महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनका स्तवन किया. संपूर्ण त्रिलोकी को क्षोभग्रस्त देख दैत्यगण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले सहसा उठकर खड़े हो गए. उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, आह, ये क्या हो रहा है? फिर वह संपूर्ण असुरों से घिरकर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी. पादाक्रांत्या नतभुवम किरीटोल्लिखतांबराम शोभिता शेष पातालाम धनुर्जा निस्वनेनताम दिशो भुज सहस्रेण समन्ता व्याप्य संस्ताम तथा प्रवृत्ते युद्धम तया देव्या सुरद्विषाम शस्त्रास्त्रैर बहुधा मुक्तैरा दीपित दिगंतरम महिषासुर सेना निश्च चक्षुराख्यो महासुरः. उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी. माथे के मुकुट से आकाश में रेखा सी खींच रही थी तथा वे अपने धनुष की टंकार से सातों पातालों को क्षुब्ध किए हुए थी। देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदनंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उद्भासित होने लगी। चिक्षुर नामक महान असुर महिषासुर का सेना नायक था। युयुधे चामृश्चान्यैश चतुरंग बलान्विता रथानाम युतैः खड्विरुद्राक्षो महासुरः अयुध्यता युतानाम च सहस्रेण महाहनुः पञ्चाशद्भिश्च नियुतैर्शिलोमा महासुरः अयुतानाम शतैः खड्भिर् वाष्कलो युयुधेरणे गजबाजि सहस्रौ घेरन् नैकैः परिवारितः। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चतुरंगिणी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर उदग्र नामक महादैत्य ने लोहा लिया। 1,00,000 रथियों को साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा, जिसके रोएं तलवार के समान तीखे थे। वह अभिलोमा नाम का महादैत्य 5,00,000 रथी सैनिकों सहित युद्ध में आ डटा। 60,00,000 रथियों से घिरा हुआ वाष्कल नामक दैत्य भी उस युद्ध भूमि में लड़ने लगा। परिवारित नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवारों के अनेक दलों तथा 1,00,000,000 रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। वृतोरथानाम कोट्याच युद्धे तस्मिन् युद्धयत् विडालाख्यो अयुतानाम च पञ्चाशद् भिरथायुतैः युयुधे संयुगे तत्र रथानाम परिवारितः अन्ये च तत्रायुत्सो रथनाग यैर्वृतः युयुधु संयुगे देव्या सह तत्र महासुरः कोटि कोटि सहस्रैस्तु रथानाम दंतिनाम तथा। विडाल नामक दैत्य 5,000,000,000 रथियों से घिर कर लोहा लेने लगा। इनके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ हाथी और घोड़ों की सेना साथ लेकर वहां देवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्र रथ हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। हयानाम च वृतो युद्धे तत्रा भवून महिषासुरः तोम्रैर्भिन्दी पालैश्च शक्तिभिर्मूसलैस्तथा। युयुधु संयुगे देव्या खड्गैः परशुपट्टिशैः केचित् चिक्षुपुः शक्तिः केचित् पाशांस्तथा परे देवीं खड्ग प्रहारैस्तु ते ताम हन्तुं प्रत्क्रमुः सापि देवी ततस्तानि शस्त्राणस्त्राणि चंडिका। वे दैत्य देवी के साथ तोमर भिंदीपाल शक्ति मूसल खड्ग परशु और पट्टिश आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पाश फेंके तथा कुछ दूसरे दैत्यों ने खड्ग प्रहार करके देवी को मार डालने का प्रयास किया। लील्य प्रचिच्छेद निज शस्त्रास्त्र वर्षिणी अनायस्तानना देवी स्तूयमाना सुरशिर्भि मुमोच्चासुर देहेषु शस्त्राण्यस्त्राणि चेश्वरी स्वपि क्रुद्धो धुत्सटो देव्या वाहन केशरी चचारासुर सैन्येषु वनेष्विव हुताशनः निश्वासान मुमुच्चेयांश्च युद्धमाना अरण्यम्बिकः। देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम या थकावट का रंच मात्र भी चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते थे और वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध से भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा, मानो वनों में दावानल फैल रहा। ताएव सद्या संभूता गणहा शत सहस्रशः युयुधुस्ते परशुभिर् भिन्दीपालास पट्टिशैः नाशयन्तो असुरगणान् देवी शक्त्युपबृंहितः अवादयन्त् पट्टान् गणहा शंखास्तथा परे मृदंगाश्च तैवान्ने तस्मिन् युद्ध महोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्ति वृष्टिभिः। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निश्वास छोड़े वे सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए और परशु भिंदीपाल खड्ग तथा पट्टिश आदि अस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगे।
1: देवी की शक्ति से बढ़े हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंखादि बजाने लगे। उस समय संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। तदनंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा से और खड़गादि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। खड़गादिभिश्च शतशो निजघान महासुरान पात्यामास चैवान्यान घंटास्वन विमोहितान असुरान भुवि पाशेन बद्ध्वा चान्यान कर्षयत् केचिद्विधा कृतास्तीक्ष्णैः खड्गपातैस्तथा परे विपोथिता निपातेन गदया भुवि शेरते वेमुश्च केचिद् रुधिरं मुसलेन भृशं हता केचिन् निपतिता भूमौ भिन्नाः शूलेन वक्षसि निरन्तराक्षरौ घेन कृता केचिद् रणाज्रे। कितनों को घंटे के भयंकर नाद से मूर्छित करके मार गिराया, बहुतेरे दैत्यों को पाश से बांधकर धरती पर घसीटा, कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार की मार से दो दो टुकड़े हो गए, कितने ही दैत्य गदा की चोट से घायल हो धरती पर सो गए, कितने ही मूसल की मार से अत्यंत आहत हो रक्त वमन करने लगे। कुछ दैत्य शूल से छाती फट जाने

अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छिन्न भिन्न हो गईं, कितनों की गर्दनें कट गईं, कितने ही दैत्यों के मस्तक कट कट कर गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग में ही विदीर्ण हो गए, कितने ही महादैत्य जांघें कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों को ही देवी ने एक बांह, एक पैर और एक नेत्र वाले करके दो टुकड़ों में चीर डाला। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर भी गिरकर फिर उठ जाते और केवल धड़ के ही रूप में अच्छे अच्छे हथियार हाथ में ले देवी के साथ युद्ध करने लगते थे। दूसरे कबंध युग के बाजों की लय पर नाचते थे। कबंधाश्चिन्न शीर्षा खड़ग शक्तिवृष्टि पाण्या तिष्ठ तिष्ठेति भाषन्तो देवी मन्ये महासुरा पातितै रथ नागाश्वै सुरैश्च वसुंधरा अगम्या सा भवत्तत्र यत्राभूत स्महारणः शोणितौधा महानद्या सद्यस्तत्र प्रसुश्रुभु मध्ये चासुरसैन्यस्य वारणासुरवाजिनाम। कितने ही बिना सिर के धड़, हाथों में खड्ग शक्ति और अरिष्टि लिए दौड़ते थे तथा दूसरे दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो यह कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे। जहां यह घोर संग्राम हुआ था वहां की धरती देवी के गिराए हुए रथ हाथी घोड़े और असुरों की लाशों से ऐसी पट गई थी कि वहां चलना फिरना असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना में हाथी घोड़े और असुरों के शरीरों से इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ था कि थोड़ी ही देर में वहां खून की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। क्षणे तन महासैन्यम असुराणाम तथाम्बिका निन्ये क्षेम तथा वहनिश तृणदारु महाचयम साच सिंहो महानादम उत्सिजिन्धुत केशरः शरीरेभ्यो मरारीणाम असूनिव विचन्वति देव्या गणैश्च तैस्तत्र कृतम युद्धम।

महापातम में महिषासुर सैन्यवधो नाम द्वितीयो अध्याय। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया, ठीक उसी तरह जैसे तृण और काठ के भारी ढेर को आग कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है। और वह सिंह भी गर्दन के बालों को हिला हिलाकर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीरों से मानो उनके प्राण चुने लेता था। वहां देवी के गणों ने भी उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे आकाश में खड़े हुए देवता गण उन पर बहुत संतुष्ट हुए और फूल बरसाने लगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मन्वंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर की सेना का वध नाम का यह दूसरा अध्याय समाप्त हुआ।

0: सूचित किया जाता है कि डॉक्टर अरविंद, डॉक्टर सुभाष और डॉक्टर विजय रणछोड़ के पिता काशी रणछोड़ के पति यानी गुडवुड हाइट्स के मगन रणछोड़ की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार आज दिन में 1 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑन साइट क्रिमेशंस 11 बॉलीवुड प्लेस वीरी में किया जाएगा। याद रहे, सूचित किया जाता है कि डॉक्टर अरविंद, डॉक्टर सुभाष और डॉक्टर विजय रणछोड़ के पिता काशी रणछोड़ के पति यानी गुडवुड हाइट्स के मगन रणछोड़ की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार आज दिन में 1 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑन साइट क्रिमेशंस 11 बॉलीवुड प्लेस वीरी में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए परिवार वालों को संपर्क कर सकते हैं।
1: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी।
2: ब्रेकफास्ट कैच अप वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय गो बनानास चाइल्ड केयर वेयर लर्निंग इज फन। कॉल 0800 462626।
0: सुपर सिटी ऑकलैंड में फिलहाल आज का वेदर अगर देखा जाए तो बताया गया है मोस्टली क्लाउडी वेदर रहेगा विद मॉर्निंग एंड इवनिंग लो क्लाउड्स, और आज रह रहकर बारिश होने की संभावना है। शाम से पहले ज़्यादा गंभीर बारिश होगी ऐसा बताया जा रहा है। सनराइज इसी घंटे 6:39 AM पर होगा, आज का सनसेट 7:36 PM पर। करंट टेम्परेचर 16.1 डिग्रीज, हाई ऑफ 21 एक्सपेक्टेड है बाद में चलकर। ओवरनाइट टेम्परेचर 15 डिग्रीज तक आज रहने वाला है।
2: The Breakfast Show with VJ and Pooja.

0: Hello, Kira. Good morning. Namaste and welcome to Hum Playing Bollywood's Biggest Hits. This is The Breakfast Show with Vijay and Pooja. Filhal hamare studios mein 5 minute ho rahe hain, ya maaf kijiyega 6 minute ho rahe hain, 6 bajkar. Very good morning aap sabhi ko, jahan kahin bhi aap saath hamara de rahe hain 104.2 FM par ya fir Rova app ke zariye. Aapko bhi a very good morning.
1: Good morning.
0: और आप सब जहां पर भी हैं सुबह सुबह हमारे साथ शामिल हो चुके हैं. सबसे पहले तो आपके कीमती समय और साथ के लिए वंस अगेन थैंक यू वेरी मच.
1: और अभी से लेकर ठीक 10 बजे तक हमारा और आपके साथ इस प्रोग्राम में एक बार फिर होगा ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. और इस सुबह को देखें तो आज मंगलवार है और 13 तारीख अक्टूबर पहुंच चुके हैं हम. आज का दिन आपके लिए शायद स्पेशल है, तो इस दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं.
0: तो चलिए आज की सुबह की शुरुआत करते हैं आप सभी के साथ. और जबकि फिलहाल समय की ओर देखें तो 7 मिनट हो रहे हैं, 6 बजकर. याद रहे दिस इज ब्रेकफास्ट कैचअप. खबरों के साथ एक क्विक कैचअप हम जरूर करेंगे, क्या कुछ हो रहा है दुनिया भर में ये आपको हम जरूर बताएंगे. और अपार्ट फ्रॉम दैट, आज यानी कि 13th ऑफ अक्टूबर, इसके बारे में भी कुछ जरूरी जानकारियां आपके लिए लेकर आएंगे.

0: दिवाली सिर्फ घर नहीं रिश्ते भी रोशन करें। एक दिया एक कहानी के साथ जुड़िए दिवाली पूजा, पूजा विधि, दिवाली पूजा सामग्री और दिवाली रामायण गाथा के साथ। हर दिया एक कहानी कहेगा और हर दिल अपनों के और करीब आएगा। हम की ओर से आपको और आपके परिवार को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रॉट टू यू बाय फाइनेंस वर्ल्ड, रामायणा मूवी बाय फोरम फिल्म्स, इंडेलिबल होम्स, लोटस फॉरेन एक्सचेंज, एबीसी बिजनेस कंसल्टेंट्स, सोना संसार, पैशन लैंडस्केप, अम्मास फूड, पीएफएसएल, अर्जुन सुपरमार्केट, बिग बाजार एंड फॉर्चून फूड्स।
1: Indulge in the sumptuous flavors of South Asia at Sudema Auckland Airport's popular food festival. Their specialist chefs are preparing an exquisite buffet from India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal and more. Gather your family and friends for a memorable evening of food and fun this Labor Weekend, 24th and 25th October. Limited tickets available at just $89 per person with a welcome drink included. Kids 6 to 12, half price. Under 5s, free. Book now at sudemahotels.com/foodfestival.
2: Neela Outlet Store is having a huge three-day sale. From Wednesday to Friday, there'll be huge savings with up to 60% off a range of selected Neela appliances. Your kitchen, your sanctuary, your chance to grab quality Neela appliances at amazing prices, but for 3 days only. Don't miss out on Neela Outlet Store's huge three-day sale. Starts Wednesday and only at 880 Great South Road, Penrose. For more info, go to steelfort.co.nz.
3: Your favourite parking app has changed names. The AT Park app is now the AC Parking app. It has a new name and looks a little different. But the way you park stays as easy as always. Your account, vehicles and login details stay the same too. To make it even more of a smooth ride, your app should have updated automatically or prompted you to do it. Search Auckland Council AC Parking for more. Tāmaki Turiki. All together Auckland.
4: Huh? Free gold coins on diamond jewelry? Seriously, Mahi?
5: Yes, Bebo.
4: Catch kya hai?
5: Malabar gold and diamonds ke saath celebrations ko aur bhi khas banao. Diamond aur precious gem jewelry purchases par pao free gold coins. Saath hi selected jewelry par diamond value aur making charges mein up to 40% off ka fayda uthao.
4: I still can't believe it. No catch.
5: Catches sirf matches mein hote hai, Bebo. This is your festive gift from Malabar Gold and Diamonds, Botany Town Center, East Auckland.
6: PNC Supply.
7: The beat of Bollywood.
8: World's best. Hamari koi branch nahi hai.
7: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
9: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Manuka. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Manuka.
10: Global headlines.
11: सुबह के मुख्य समाचारों में ईरान अलाइंड हौतीस के डेडली अटैक्स के बाद रियाद का किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगले नोटिस तक और कम से कम 17 अक्टूबर तक बंद रहेगा। सीसीटीवी फुटेज में मिसाइल हमले के दौरान सीलिंग गिरने और पैसेंजर्स को जान बचाने के लिए भागते हुए टेरिफाइंग मोमेंट्स कैद हुए हैं, जिसमें 13 लोगों की मौत हुई थी। सऊदी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने सेफ्टी और ऑपरेशनल रेडीनेस चेक करने के लिए 600 से ज़्यादा फ्लाइट्स कैंसिल करते हुए एयरपोर्ट को फिलहाल बंद रखने का फैसला किया है। भारत में राहुल गांधी और ऑपोजिशन लीडर्स द्वारा इलेक्टोरल इरेगुलरिटीज और एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल ज्वाइंट पिटीशन में 14 यानी 14 एरर्स पाए गए हैं, जिसमें 220 रुपीस की कोर्ट फी कम होना भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक दूसरी कमियां 9 पिटिशनर्स के मिसिंग ऑथराइजेशन और कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे के आईडी कार्ड के इलिजिबल

0: रविवार से शुरू होने को है। इस साल के वर्ल्ड कप का पहला खेल इसी रविवार या इसी बृहस्पतिवार की रात 10 बजे से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। शुक्रवार को 7:45 PM पर फ्रांस सामोआ से खेलेगा। शनिवार को 5:25 PM पर पापुआ न्यू गिनी लेबनान का सामना करेगा। रात 10 बजे इंग्लैंड टोंगा से खेलेगा। रविवार को शाम 6 बजे फिजी और कुक आइलैंड्स का मैच खेला जाएगा। उधर ए लीग के मैचेस भी इस सप्ताह से शुरू हो रहे हैं। पहले राउंड के मैचेस इसी शुक्रवार से शुरू होंगे और पहला मैच शुक्रवार को रात 10 बजे सिडनी FC और वेस्टर्न सिडनी वंडरर्स के बीच खेला जाएगा। मैचेस पर अपडेट्स आपके लिए हम पर हम लेकर आएंगे। ये रहे सुबह के मुख्य समाचार।
1: Hollywood's most wanted.
2: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ।
3: मैं लाऊं अपना A game.
1: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: देव नेगी और साथ में इनके साथियों को आप सुन रहे थे ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजयन पूजा आज ट्यूसडे 13th ऑफ अक्टूबर की ये सुबह, जहां पर आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं ब्रेकफास्ट कैचअप। कैचअप करते हैं वैसे खबरों के मामले में, तो देखते हैं कि बॉलीवुड में क्या कुछ लेटेस्ट हमारे हाथ लगा है। सबसे पहले तो एक प्रोमो जो है ये सामने आया है फॉर कॉफी विद करण द फाइनल सीजन 9 के लिए, और इसके तहत जो पहले गेस्ट कंफर्म हुए हैं, आई थिंक आपने इसके बारे में बातें की थी, यू हैड मेंशन सम अदर नेम्स, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस प्रोमो द फर्स्ट गेस्ट जो आने वाले हैं सीजन वुड बी सलमान खान।
1: यस, सलमान खान ऑब्वियसली पहले, और उसके अलावा लिस्ट हमने प्रोवाइड की थी कि कौन कौन से लोग आ रहे हैं और आ सकते हैं, जिनमें खुशी कपूर, सारा अली खान, उनके भाई का नाम क्या है, इब्राहिम अली खान, सैफ अली खान, करीना कपूर, एंड देयर वर लॉट्स ऑफ सेलिब्रिटीज जो इस लिस्ट में शामिल हैं।
0: राइट, तो वैसे कहा गया है कि सलमान खान जो है कॉफी विद करण में आ तो रहे हैं एज द फर्स्ट गेस्ट फॉर द लास्ट सीजन, लेकिन साथ ही साथ वो लॉन्च करने वाले हैं अपना ऑफिशियल YouTube चैनल बीइंग सलमान खान।
1: आई थिंक लॉन्च कर चुके हैं वो।
0: हाँ, बट ऑफिशियली इसके बारे में यहाँ पर
1: अच्छा
0: बातें करेंगे, यू नो, बिकॉज ही लॉन्च्ड इट ऑन हिज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स।
1: हाँ, इन्होंने आई थिंक इंस्टा पर जाकर जो अपना यूट्यूब चैनल है इसके बारे में डिटेल्स जो है ये शेयर किए थे, एंड विद इन एन आवर आई थिंक ओवर 14,000 पीपल सब्सक्राइब्ड टू हिज चैनल इन द फर्स्ट आवर।
0: सलमान खान है वो ना, इसलिए। चले दूसरी ओर आपको ये भी बता दें कि राजपाल यादव का जो केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने आज तक का डेडलाइन उनको दिया है, और ही हैज बीन डायरेक्टेड टू डिपॉजिट 2 crores as part of his long running check bounce case जो उनकी 2010 film अता पता लापता से related है। Court ने उनको warning दी है कि अगर वो ये नहीं करते हैं तो उनको fail to meet the payment की वजह से उनके sentence को enhance जो है ये किया जा सकता है।
1: So let's see updates और क्या मिलते हैं कि आपके लिए हम पर हम जरूर लेकर आएंगे। हमारे साथ ही आपको शामिल रहना है on the breakfast show with Vijay and Pooja। फिलहाल 6:30 बज रहे हैं।
2: Breakfast show with Vijay and Pooja।
3: Don't mind, लेकिन आप दोनों की जोड़ी बड़ी क्यूट है।
4: Accurate traffic.
5: Your new home awaits in Strathmill, Ottawa.
6: Cloudy today, some drizzle, even foggy patches, and a high of 21. Into the city, starting to slow a little bit. Southern 22 minutes, Manukau to town, 42 from Drury, slow Papakura to Manurewa and at Penrose, Mount Wellington area. Southwestern looking pretty quick. The northern, 18 minutes in from Constellation, 35 from Silverdale, slowing at Silverdale and slow Constellation to Milford. Northwestern just slowing down close to the city.
5: Strathmill, discover your new home in beautiful Ottawa. Visit strathmill.co.nz.
4: How does one person finance on a new Jeku sound? Right now at West City Omura Jeku, get one person per annum fixed finance for 36 months with a 20% deposit on the Jeku J7 SHS. And it's just dropped $2,000 in price, now starting from $47,990 plus on-road costs. Talk to Jimmy Taylor and team at West City Omura Jeku. For full terms and conditions, head to westcityautogroup.nz.
7: I mean, Barcelona, wow. The Sagrada Familia just blew me away. Beautiful, really. And the food was unreal. We found this little tapas place by accident, ended up staying half the night singing.
8: In September, Ed's luggage went missing en route to Europe, thanks to AA Travel Insurance. That wasn't the story he came home with. AA Travel Insurance. On with the trip. Travel insurance issued by Zurich Australian Insurance Limited. Illustrative example only. Limits, sublimits, conditions and exclusions apply. Consider your own needs and read the policy wording.
4: India comes to town. आओ तियारोवा का फील ही कुछ अलग हो जाता है. Tickets अब अवेलेबल है nzc.nz पर. Be there. क्योंकि ये सिर्फ क्रिकेट नहीं, ये है Black Caps versus India.
9: There's more to your everyday rewards. From points on weekly shops to cents off at fuel stops. Get more value on everyday spending. It really is never ending. Enjoy more rewards and more value today. TCs and exclusions apply.
10: This Diwali, send love home with Lotus Foreign Exchange. Enjoy great rates on international money transfers. Visit the new Lotus West City Henderson branch or your nearest Lotus branch. Visit lotusfx.com or call 0800-442-88. Lotus Foreign Exchange, getting more value from your money. Happy Diwali. Terms and conditions apply.
11: The Breakfast Breakfast Show with Vijay and Pooja.
12: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Manuko. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Manuko.
0: द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा आपके लिए जारी है और फिलहाल देखा जाए आज 13th अक्टूबर को क्या कुछ मार्क किया जा रहा है.
1: आज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स जिसके बारे में शायद उतनी बातें नहीं होती हैं हमारी सोसाइटी में, मे बी आई एम नॉट रियली श्योर. आज ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस डे स्पेशली USA में मार्क किया जा रहा है. इसके अलावा आज वर्ल्ड थ्रोम्बोसिस डे ये मार्क किया जाता है. ये एक हेल्थ कंडीशन है जो शायद अननोटिस्ड होता है या लोगों को इसके बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं होता है. एंड इट्स ऑल अबाउट ब्लड क्लॉट्स.
0: ओके,
1: ये क्लॉट्स जो हैं ये शरीर में जो ब्लड फ्लो है इसको रोकते हैं, जिसकी वजह से डीप वेन थ्रोम्बोसिस या फिर लंग ब्लॉकेजेस जो है ये होने हो जाते हैं. और कहीं कहीं पर ये स्ट्रोक और हार्ट अटैक की वजह जो है ये बन सकते हैं. बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि वो किन खतरों पर हैं और व्हाट साइंस दे नीड टू वॉच आउट फॉर. और यहीं पर ये ग्लोबल एफर्ट जो है ये आता है जहाँ पर क्लियर इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, लोगों से मांग की जाती है कि आप अपने हेल्थ का ख्याल रखें. गोल बहुत ही सिंपल लेकिन अर्जेंट है, स्टॉप प्रिवेंटेबल डेथ्स.
0: ओके,
1: ब्लड क्लॉट्स जो हैं कॉज 1 in 4 डेथ्स अक्रॉस द ग्लोब, येट लोगों को इसके बारे में उतना पता नहीं होता है.
0: इमेजिन समथिंग सो सीरियस एंड येट पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ इट ना.
1: तो शायद सुना भी होगा, अब तो ज्यादा अवेयरनेस हो रहा है लेकिन उतना अटेंशन नहीं पे करते हैं.
0: राइट, बट आज के दिन इसके बारे में जितनी ज्यादा बातें की जाए उतना अच्छा, सो दैट इट रीचेस आउट टू पीपल.
1: आज देखें कई लोग अपना बर्थडे जो है ये सेलिब्रेट कर रहे हैं और उनमें एक बहुत ही स्पेशल पर्सन जो है ये शामिल हैं जिनके बारे में मैं पढ़ रहा था. पुनीता अरोड़ा इनका नाम है. ये एक फॉर्मर मिलिट्री पर्सनल है. ये इंडिया की पहली महिला थी जिन्होंने जो सेकंड हाईएस्ट रैंक है लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस और फर्स्ट वाइस एडमिरल इंडियन नेवी की अपॉइंट हुई थी.
0: वाओ, ओके.
1: इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था. इसके अलावा बहुत ही मशहूर अभिनेता जो है दादामुनि, इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था, अशोक कुमार जी का. इनके अलावा आज पूजा हेगड़े ये भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं.
0: सो देयर यू गो, सो मेनी पीपल जो आज यानी कि 13th अक्टूबर को अपना बर्थडे जो है ये सेलिब्रेट कर रहे हैं या फिर इनकी बर्थ एनिवर्सरी है. और अगर आप भी इनमें से एक है तो जरूर हमारे पास अपने मैसेजेस आप टेक्स्ट कर सकते हैं. 5599 हमारा टेक्स्ट प्लेटफॉर्म नंबर है और इस पर जब भी आप मैसेज टेक्स्ट करिए याद रहे स्टैंडर्ड कैरियर रेट सप्लाई पर. ऑन द अदर हैंड ये मत भूलिएगा कि आपको 7 बजे से पहले अपने मैसेजेस भेज देने हैं ताकि आपको हम अ वेरी हैप्पी बर्थडे जो है ये विश कर सकें. तो चलिए इधर आज आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं एक सवाल, और सवाल ऐसा जहाँ पर विल बी टॉकिंग अबाउट अ फिल्म. एंड आज आपको हम स्टारकास्ट जो है ये बताने वाले, इनफैक्ट वेरी क्लियरली विल बी टेलिंग यू अबाउट द लीड्स जो इस फिल्म में थे. और इनका नाम हम रिवील करेंगे जिसके बाद आपको फिल्म का नाम जो है ये गेस करना है. आई थिंक दिस पर्टिकुलर मूवी जिस साल ये रिलीज हुई थी उस साल और भी कई फिल्में आई थी. सो इन द बिगिनिंग दिस मूवी वेंट अ बिट अननोटिस्ड, लेकिन बाद में चलकर जब लोगों ने ये फिल्म देखी, इसे पसंद किया और उसके बाद में चलकर इसे रिकग्निशन जो है ये प्राप्त की हुई, तो धीरे धीरे आज भी कई सालों बाद लोग जब इस फिल्म को देखते हैं इसके गाने तो अप्रिशिएट करते हैं पर कहानी भी लोगों को पसंद आती है. तो आज की हमारी फिल्म दैट यू हैव टू गेस और स्टार कास्ट इज रणबीर कपूर एंड कोंकणा सेन शर्मा. रणबीर कपूर एंड कोंकणा सेन शर्मा.
1: ओके, तो
0: कौन सी फिल्म हो सकती है ये?
1: BF अपना आंसर और अपना नाम ये 5599 पर आप हमारे पास भेजे. लेट सी, रणबीर सिंह,
0: रणबीर कपूर एंड कोंकणा सेन शर्मा. ये कैसा कॉम्बिनेशन है जो सुनने में आपको थोड़ा नया लगेगा एंड ऐसा जो शायद आप सोच रहे कि यार ऐसी कौन सी फिल्म आई थी कि इसमें इन दोनों ने काम किया, बट देयर इज अ मूवी जिसमें इन दोनों ने एक साथ काम किया, एक दूसरे के ऑपोजिट काम किया बाय द वे. तो लेट्स सी क्या आप जवाब हमारे पास भेज पाते हैं या नहीं. आपको BF लिखना है, फिर अपना आंसर अपना नाम सेंड करना है 5599 पर. 22 मिनट बाकी है समय हमारे स्टूडियोज में 7 बजने में.
13: Let's go. Straight from the heart.
10: unlock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800-4-NZPMI.
0: कलम बातें कर रहे थे अबाउट द मैजिक ऑफ अरिजीत सिंह कि ये कितने खूबसूरत गाने जो है ये गाते हैं और स्पेशली रोमांटिक गानों के बारे में बातें करें तो इनका नाम तो बेशक लोगों के जहन में आता ही है एज वन ऑफ दोज अमेजिंग रोमांटिक सिंगर्स. आज चलिए आपके लिए लेकर आ रहे हैं स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट द वेरी फर्स्ट वन ऑन द शो इन्हीं की आवाज़ में लेकिन अ वेरी लीस्ट नोन सॉन्ग ऑफ हिज.
1: Okay.
0: क्योंकि ये गाना जो है इसी साल रिलीज हुआ लेकिन उतना नहीं चला क्योंकि फिल्म के बाकी दो गाने हैं जो वो ज्यादा चले जो इन्होंने नहीं गाए हैं. लेकिन ये गाना आज आपके नाम फ्रॉम द मूवी ओ रोमियो हम शामिल कर रहे हैं. होपफुली एंजॉय द सॉन्ग जो कि अरिजीत सिंह की आवाज में है.

0: विशाल भारद्वाज के कॉम्पोजिशन पर आपके लिए गाना हम लेकर आ रहे थे. द टाइटल ऑफ द सॉन्ग इज इश्क का फीवर. एंड एज सेड कि इस फिल्म के बाकी गाने जिसमें पान की दुकान, आशिकों की कॉलोनी, ये गाना ज्यादा पॉपुलर हुआ था. तो उसी फिल्म ओ रोमियो का ये गाना आपके लिए हम शामिल कर रहे थे. फिलहाल समय की ओर देखें तो 17 मिनट बाकी है समय हमारे स्टूडियोज में 7 बजने में. और फिलहाल हमने जो सवाल पूछा था कि वो कौन सी बॉलीवुड फिल्म है जिसमें एक साथ काम किया था रणबीर कपूर और कोंकणा सेन शर्मा ने. व्हेन आई आस्क्ड द क्वेश्चन, क्या आपको कोई आइडिया था कि ये क्या सही जवाब हो सकता है?
1: नो, नॉट एट ऑल.
0: बट आफ्टर सीइंग द मैसेजेस, आपने फिल्म देखी ये वाली?
1: मैसेजेस भी नहीं देखे मैंने.
0: अच्छा, नहीं देखे आपने? नहीं देखे तो खैर, अच्छा वो तो आउट ऑफ द क्वेश्चन हो ही जाता है. बट एनीवेज हम आपको फाइनल 2 मिनट्स दे रहे हैं क्योंकि आफ्टर द स्पॉट ब्लॉक आपके लिए हम लेकर आएंगे थ्रोबैक. एंड दैट्स व्हेन हम रिवील करने वाले हैं आज के हमारे सवाल का सही जवाब, यानी आज के हमारी बॉलीवुड मूवी का नाम. वो कौन सी फिल्म है जिसमें एक साथ काम किया है रणबीर कपूर और कोंकणा सेन शर्मा ने. एंड दे वर्क्ड ऑपोजिट ईच अदर. अभी तक खुशहाल है, अश्मिता है, जसमीत है, रोनल्ड, नितिका एंड जश, आप सब ने एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर्स दिए हैं. पर देखते हैं क्या किसी और का सही जवाब आता है या नहीं.

0: Mattress Pe on Rova, Spotify or anywhere you get your podcast.
1: Hum, accurate traffic.
2: KFC's 9.99 Wicked 6 deal.
3: A cloudy one today with some drizzle, got a high of 21 degrees. Coming into the city, Northern Motorway, 20 minutes, Constellation Drive to town, 38 in from Silverdale. We're slowing at Silverdale and slow Constellation to Milford. Northwestern, 24 minutes, Massey to the city, slow at Te Aratu, Patiki and Greyland to the city. Southern, half an hour in from Manukau, we're slow Papakura to Manurewa and around Penrose.
2: Six Wicked Wings plus chips for just $9.99. Wicked value only at KFC.
4: All right, Pepper, now we're going to do a radio ad.
5: Can't you just use my line from the TV ad?
4: Well, let's just do it again, please, Pepper.
5: Phone dollars are for phones. Obviously.
4: Yeah, okay, another one, but without the obviously.
5: Phone dollars are for phones. Ring, ring, ka-ching. Obviously.
4: Q's and C's.
5: Eligibility and T's and C's apply. For more info, visit 1NZ/1Wallet.
4: Cool, and the end bit.
5: One New Zealand. Let's get connected.
6: मैं हरीश लोडिया आप सबको दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ मैं आप लोगों को इस समय नहीं बतलाऊंगा कि क्या क्या नया इस धनतेरस और दिवाली के लिए आया है मैं आपको और आपके परिवार को आमंत्रित करता हूं कि आप आए और अब तक का सबसे बड़ा और बढ़िया ज्वेलरी कलेक्शन एक बार जरूर देखें। तो मिलते हैं सोना संसार 190 स्ट्रडा रोड माउंट रॉस्किल या 138 ग्रेट साउथ रोड पापाटोईटोई में
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
7: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Manukau. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Manukau.
0: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
8: अभी देखिए तो 14 मिनट रह गए हैं 7 बजने में 7 पर न्यूज़ एंड स्पोर्ट्स अपडेट जो है ये हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं और आज एक बार फिर आपको याद दिलाते बहुत सारे इनाम जीतने के मौके जो है ये हम आपको दे रहे हैं ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा और हम पर इस दिवाली के मौके पर फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून साथ में हमारा जो दिवाली कैंपेन है इसमें भी इनाम जीतने के मौके प्लस ऑल वाइट्स वर्सेस इंडिया मैच देखने के लिए पासिस भी आप जीत सकते हैं
5: इतने सारे इनाम हम आपको दे रहे हैं कि कभी कभी ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं खुद भूल जाती हूँ कि हम क्या क्या कर रहे हैं बट ऑन द अदर हैंड आपको हम याद दिलाते रहेंगे आपको हम पार्टिसिपेट कर कर विजेता बनने की अपॉर्चुनिटी जो है ये समय समय पर देते रहेंगे अब आपके लिए ज़रूरी ये है कि आप सुनते रहें और जैसे ही कोई एक मौका आपको आपके लिए ओपन हो मेक द मोस्ट ऑफ इट और अपनी एंट्रीज जो है हमारे साथ आप ज़रूर सिक्योर करें फिलहाल हमने जो सवाल आपसे पूछा था चलिए उसका सही जवाब जो यहाँ पर रिवील करते हैं जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था सो द करेक्ट आंसर फॉर दैट वुड बी वेक अप सिड ये फिल्म जो है ये आई थी इन द ईयर 2009 और इसे डायरेक्ट किया था अयान मुखर्जी ने अयान मुखर्जी जिनके बारे में आपको बताएं ये एक बड़े कमाल के डायरेक्टर साबित हुए आफ्टर द इयर्स जब इन्होंने और भी बहुत सी अमेजिंग मूवी जो है ये बनाई जिनमें ये जवानी है दीवानी भी शामिल है और उसके अलावा इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर रहे वस करण जौहर कोंकणा सेन शर्मा एंड रणबीर कपूर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन दोनों ने एक दूसरे के साथ और अपोजिट काम किया अनुपम खेर और सुप्रिया पाठक ये भी इस फिल्म में शामिल थे एंड दे प्लेड रणबीर कपूर्स पेरेंट्स और इसके साथ साथ फिल्म के गाने जो है ये भी बहुत खूबसूरत थे अमित त्रिवेदी और साथ में शंकर एहसान लोए बीइंग क्रेडिटेड फॉर दैट आई थिंक इस फिल्म का एक गाना दैट आई पर्सनली लव जो बहुत ज़्यादा चला था वॉज एक तारा अगर आपने एक तारा गाना सुना हो तो
8: या
5: हाँ तो रेखा भारद्वाज ने गाया था ना वो तो बहुत पॉपुलर हुआ था वो गाना और उसी फिल्म यानी वेक अप सिड से ये गाना जो है चला था इस फिल्म के बारे में कहा गया है कि इसे बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला था 55th फिल्म फेयर अवार्ड्स के तहत टू अयान मुखर्जी एंड रणबीर कपूर को बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स का जो अवार्ड है ये भी दिया गया था उस साल बट इट वॉज नॉट फॉर दिस पर्टिकुलर मूवी अनफॉर्चुनेटली ओ नो सॉरी इट वॉज फॉर दिस मूवी बट इसके साथ साथ उन्हें दो और फिल्मों के लिए नॉमिनेट किया गया था बिकॉज दीज टू अदर फिल्म्स रिलीज्ड इन द सेम ईयर तो रणबीर कपूर की 3 फिल्में आई थी अजब प्रेम की गजब कहानी वेक अप सिड और रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर और बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का जो अवार्ड है ये मिला था कविता सेठ को फॉर द सॉन्ग एक तारा, नॉट रेखा भारद्वाज, सॉरी.
8: ओके,
5: सो या तो काफी अवार्ड्स भी जीते थे इस फिल्म ने. वेक अप सिड अगर आपने नहीं देखी है, आई थिंक इट्स अ इंटरेस्टिंग मूवी, इट्स अ नाइस मूवी टू वॉच. कभी कभी ये रियलाइजेशन होना कि यू कैन नॉट जस्ट हैव फन इन लाइफ ऑल द टाइम, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ और राइट डिसीजंस लेते हुए अपने लाइफ को सही डायरेक्शन देना भी इक्वली इम्पोर्टेंट है. तो इस फिल्म से कहीं ना कहीं वो सीख भी मिलती है.
8: तो आपके लिए कॉम्पिटिशन से इनाम जीतने के मौके और साथ में आपके मनचाहे गानों का ये सफ़र जारी है और कुछ बहुत ही दिलचस्प खबरें भी हाथ लगी हैं. सिंगापुर ने कुछ शुरू किया है और उसका क्या असर हो रहा है, इसके बारे में भी डिटेल्स आज ऑन द ब्रेकफास्ट शो.
5: और इसी साल दिसंबर महीने में न्यूजीलैंड में कुछ होने जा रहा है, समथिंग यू ऑल मस्ट हैव ग्रोन अप वॉचिंग, इसके बारे में भी आपसे हम बातें करेंगे. बट बिफोर यू मूव ऑन आज के थ्रोबैक के साथ, चलिए गुड मॉर्निंग के कई मैसेजेस आए हैं. राज ड्राइविंग फॉर आरवी प्रकाश ट्रांसपोर्ट, आपने हमारे पास अपना मैसेज भेजा है, थैंक यू आपके मैसेज के लिए.
8: और उसके अलावा राम राम, हैप्पी ट्यूसडे एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे. मिस्टर मटा मटा, आपको भी ये सुबह मुबारक हो.
5: और इनके अलावा अगर देखा जाए तो एक और एक गुड मॉर्निंग मैसेज हमारे पास आज आया है और ये है सोनिया, जिन्होंने कहा गुड मॉर्निंग विजयन पूजा, हैव अ ब्लेस्ड डे, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए. एक बर्थडे मैसेज भी आया है तो ये तो खैर अगले घंटे हम जरूर विश करेंगे, बट हाउ कैन वी फॉरगेट बॉबी मान जी, जिनका आज का गुड मॉर्निंग मैसेज हमें मिल चुका है. गुड मॉर्निंग पूजा एंड विजय, तीसरी नवरात्रि की शुभकामनाएं, जय माता दी, जय सियाराम, जय श्री हनुमान, आपका दिन मंगलमय हो, आपका भी दिन बहुत ही खुशियों से भरा हो और शुक्रिया आपके साथ के लिए बॉबी जी, बहुत बहुत शुक्रिया. चलिए 8 मिनट बाकी हैं 7 बजने में, एंजॉय कीजिएगा आज का हमारा ये पहला थ्रोबैक शान, प्रिया, नीरज श्रीधर और शजीन की आवाजों में.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: सुपर सिटी ऑकलैंड में आज के मौसम के लिए बताया गया है ज्यादातर क्लाउडी रहेगा विद मॉर्निंग एंड इवनिंग लो क्लाउड्स एज वेल एंड आइसोलेटेड शावर्स जो शाम के समय होंगे. सनसेट 7:36 PM पर होगा. टेम्परेचर 16.1 डिग्रीज है. हाई ऑफ 21 एक्सपेक्टेड है. बाद में चलकर ओवरनाइट 15 डिग्रीज टेम्परेचर रहेगा आज.
0: मॉर्निंग मैडनेस
2: brought to you by Mega Finance. Home loans made easy with 30 years of banking and finance experience. Call 0800-634-234.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
3: Puri ki puri gang ke logo, kaan ke saath sab kuch khol ke sun lo.
4: दो मिनट हो रहे हैं 7:00 मेगा फाइनेंस की ओर से आपका हम स्वागत कर रहे हैं मॉर्निंग मैडनेस में. और याद रखें कि मेगा फाइनेंस की टीम तैयार हमेशा आपको मिलेगी व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल मैटर्स. चाहे आप अपना पहला घर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं या फिर रीफाइनेंसिंग के बारे में सोच रहे हैं और कई अन्य चीज़ों को लेकर भी वो अपनी सर्विसेज उनकी टीम जो है ये प्रोवाइड कर सकती है. इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ जानकारी चाहिए परमेश और उनकी टीम से ज़रूर आप बातें कर सकते हैं. मेगा फाइनेंस .co.nz आप विजिट कर सकते हैं. इस घंटे 7:30 न्यूज हेडलाइंस तो है ही, लेकिन एक खबर जिसने पूरी दुनिया में अभी तहलका मचा रखा है और हिंदुस्तान टाइम्स पर इसके बारे में रिपोर्ट जो है ये मैं पढ़ रहा था, जहां पर पुलिस ने एक रोबोट को सीज कर लिया है.
1: रोबोट को?
4: हाँ.
1: क्यों? लेकिन
4: रोबोट को सीज कर लिया है क्योंकि आरोप है कि इस रोबोट ने गलत तरीके से 16 साल की एक लड़की को हाथ लगाया था.
1: Oh. What?
4: अब सोचने में या फिर यकीन करने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बट ऐसा हुआ है. और ये इंसिडेंट जो है रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीम भी हुआ था.
1: ओके.
4: और दो टीनेजर्स हैं, इन पर सस्पेक्ट किया जा रहा है ऑफ फिल्मिंग द एनकाउंटर एंड कमेंटेटिंग ऑन इट. डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये इंसिडेंट संडे को हुआ था, जहां पर पुलिस का कहना है कि लड़की अपने एक फ्रेंड के साथ एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी थी जब एक रेड एंड गोल्ड रोबोट जो है जो लगभग 1.2 मीटर टॉल था ये पीछे से उसके पास गया और गलत तरीके से लड़की को हाथ लगाया. पुलिस का कहना है कि रॉबर्ट का 16 साल का मालिक और 19 ईयर्स का उसका दोस्त जो है उन्होंने इस को फिल्म किया और सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीम किया और इसकी कमेंट्री भी की. एंड पुलिस को इसकी जानकारी जो है ये दी गई. ऑफिसर्स ने इन दोनों को थोड़ी देर बाद पकड़ा. हाँ. और उन्होंने बताया है कि द 16 ईयर ओल्ड ओनर उन्होंने इस डिवाइस को प्लेस किया था इन द व्हीकल बिफोर द ऑफिसर्स अराइव्ड और तब जाकर पुलिस ने गाड़ी से इसको निकाला. दो मोबाइल फोन्स जो है ये भी जब्त किए. बट जस्ट इमेजिन,
1: तो उसे इस तरह से प्रोग्राम किया गया है ना.
4: Obviously,
1: it was
4: किया
1: intentionally
4: गया होगा.
1: made to do that, and of course, the people who are responsible are the owners, owner and उनका जो दोस्त, because
4: उन्होंने. And just imagine, 16 साल और 19 years के.
1: कैसा चलता है इनका दिमाग ना? It's really, I mean, I'm sorry to say, but it's quite disgusting कि ऐसा भी आजकल के इतने कम उम्र के लोग जो ये ऐसा भी सोचते हैं और ऐसी हरकतें करते हैं. It's really like, you know, something to think about. Anyways. 5:30 हो रहे हैं इस समय हमारी स्टूडियोज़ में 7:00 और इधर हमने कहा था कि आपको हम कुछ ऐसी चीज़ के बारे में बताएंगे जो कि न्यूजीलैंड में होने जा रहा है कई सालों बाद. एंड टॉकिंग अबाउट द सेम, तो न्यूजीलैंड में वापसी हो रही है WWE की.
4: Oh, yes, इसके बारे में मैं पढ़ रहा था.
1: जी, तो WWE is actually returning to Auckland in New Zealand और ये करीबन एक डेकेड बाद होने जा रहा है, जहां पर एक सुपरस्टार्स का जो इवेंट है, लाइनअप है, ये भी अनाउंस किया गया है. अपेरेंटली जितने भी लोग रेसलिंग जो है ये पसंद करते हैं, यू कैन गेट रेडी, क्योंकि WWE जबकि वापसी कर रहा है आफ्टर वन डेकेड, और ऐसे में जो बिगेस्ट नेम्स इन प्रोफेशनल रेसलिंग है कहा गया है दे विल बी कमिंग डाउन टू स्पार्क अरेना दिस डिसम्बर. जो लाइनअप है जो एडवर्टाइज की गई है एज ऑफ नाउ, इसमें सेथ रॉलिंस ये नाम शामिल है.
4: वाओ.
1: बेकी लिंच, लिव मोगन, एली नाइट, ओबा फैमी एंड जेवॉन एवंस. वैसे आई मस्ट से कि इसमें कुछ नाम मेरे लिए बहुत नए हैं, लेकिन सेथ रॉलिंस इज क्वाइट पॉपुलर. इनका नाम जो है इवन आई वुड नो ग्रोइंग अप, कहीं ना कहीं I was not a wrestling fan, but I watched a lot of wrestling.
4: Yeah, ek time par main bhi bahut dekhta tha.
1: But us time just jab I used to watch Triple H, Batista, you know, these names were quite popular.
4: Ek aur tha, aise aise haath karte
1: John Cena.
4: John Cena.
1: Rey Mysterios.
4: Ek aur tha.
1: Remember
4: Rey
1: Mysterios?
4: He looked a little bit like Akshay Kumar.
1: Haan. अरे मैं उनका एक्चुअली लंबे लंबे बाल थे उनके, मैं भी उनका नाम भूल गई.
4: चलो छोड़ो, कोई बात नहीं.
1: बट यू नो, ये एक चीज़ है जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी बचपन से ये जुड़ा है, और यू नो, लोग काफ़ी एसोसिएट कर सकते हैं कि ये एक चीज़ है जिसके साथ आप बड़े हुए हैं. यू वॉच रेसलिंग एंड यू एंजॉयड वॉचिंग रेसलिंग. और जो रेसलर जिनके बारे में बोल रहे थे लुक लाइक अक्षय कुमार, उनका नाम है शॉन माइकल्स.
4: शॉन माइकल्स.
1: तो यस, वी आर एंड दैट रेसलर. जो दो भाई थे यार, एक मर गया था फिर वापस आ जाता था. द होल कॉन्सेप्ट ऑफ हिम कमिंग ऑन द स्टेज वाज वो कॉफिन में आता
4: दुबले
1: था. नहीं, पतले दुबले, वाज क्वाइट ह्यूज. अरे क्या नाम, अंडरटेकर. अंडरटेकर और उनके भाई थे ना केन.
4: अच्छा, वो वाले.
1: एंड खली, द ग्रेट खली. सो इफ वी,
4: अभी तो एक और आया है, अभी रिसेंटली मैं देख रहा था इंडिया का एक और रसला, उनका नाम मैं भूल गया हूँ. उनके भी लंबे लंबे बाल हैं और वो थोड़ा ऐसे देखने में शिव भक्त टाइप लगते हैं.
1: मुझे नहीं पता. बिग शो, पता है आपको, बिग शो भी एक टाइम पे बहुत पॉपुलर हुए थे. तो एनीवेज, व्हाट वी आर सेइंग इज लाइक कि जैसे हम दोनों बातें करके थोड़ा एक्साइटेड हो गए अबाउट रेसलिंग. सो वी नो कि वी हैव ग्रोन अप वॉचिंग दीज रेसलर्स, वी हैव ग्रोन अप वॉचिंग रेसलिंग. हाउएवर, थोड़ा बाद में चलकर मुझे इसे थोड़ा स्टेज लगने लगा था वो, एंड आई डिडंट रियली एंजॉय इट, एंड दैट्स व्हेन आई स्टॉप्ड वॉचिंग इट. बट अभी भी काफ़ी पॉपुलर है ये. एंड द लास्ट टाइम WWE जब ऑकलैंड में हुआ था, इट वॉज इन ऑगस्ट 2016. उस टाइम पे करीबन 12,000 लोग जो है ये गए थे वेक्टर अरेना में इस पर्टिकुलर शो को देखने. लेकिन ये जो इवेंट है उस टाइम पर रोमन रेंज जैसे, सेथ रोलिंस, जॉन सीना और एजे स्टाइल्स जैसे रेसलर्स जो है ये आए थे. एंड दिस टाइम अराउंड वी कैन सी कि ग्लोबल रीच जो है इसे सिग्निफिकेंटली मिल चुका है. एक स्पेशल प्रोग्राम भी रहता है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर नेटफ्लिक्स और ESPN पर भी रेसलिंग प्रोग्राम्स जो है ये दिखाए जाते हैं. सो डिसम्बर शो जो है ये एडवर्टाइज हुआ है, एंड इट इज़ बींग सेट कि ये सूटेबल है फॉर ओल्ड एजेस. ऑल दो रेसलिंग का जो लाइनअप है, सब्जेक्ट है, काफी चेंज हो चुका है इतने सालों में. सो यू मेक द डिसीजन कि क्या ये आपके लिए या आपके बच्चों के लिए एप्लीकेबल रहेगा या नहीं. बट इफ यू आर अ WWE फैन, तो WWE हैज कम या इज सेट टू मेक अ कमबैक टू ऑकलैंड इन डिसम्बर. 17th ऑफ डिसम्बर को स्केड्यूल्ड है ये, और दिस थर्सडे 15th ऑफ अक्टूबर को 2 बजे से टिकट सेल्स जो है ये शुरू होगा. सो इंटरेस्टिंग है, काफी इंटरेस्टिंग है. लेट्स सी व्हेन इट हैपेंस तो क्या कमाल होता है.

0: finance experience. Call 0800-634-234.
1: Rashi Vibes.
2: सबसे पहले मैं शनि एरिस, आज ऑफिस में कुछ चीज़ों को लेकर एक नई शुरुआत हो सकती है, पुराने इन्वेस्टमेंट से फायदा होगा, फाइनेंशियली आपका दिन अच्छा रहेगा।
3: उसके बाद वृषणी टोरस, आपके लिए बताया जा रहा है कि आज नौकरी के मामले में जल्दबाजी से बचे, संयम रखें यानी पेशेंस रखें, ऐसा आपके लिए कहा गया है। बिजनेस है अगर आपका तो कोई नया रिस्क ना ले क्योंकि इसकी वजह से आज नुकसान संभव है। परिवार में आपके जो सदस्य हैं इनका साथ जो है आपके साथ बना रहेगा, जिसकी वजह से आज कुछ मुश्किल घड़ी का भी सामना अगर करना पड़ा आपको तो यू वुड नॉट फील यू नो वेरी वरीड अबाउट इट।
2: मिथुन यानी जेमिनी, आज आपके आइडियाज़ को प्रेज किया जाएगा, बिजनेस में मुनाफे के नए रास्ते आपको मिलेंगे और हेल्थ आज आपका बहुत बढ़िया रहेगा।
3: कर्क ने कैंसर, परिवार में सुख और शांति बनी रहेगी, अचानक से पैसे के प्राप्त होने के योग बताए जा रहे हैं जिसकी वजह से यू फील रियली वेरी हैप्पी और फाइनेंशियली थोड़ा रिलीव्ड भी। सेहत आपके लिए सामान्य नहीं रहेगा, मतलब कुछ चेंजेस रहेगा, उतार चढ़ाव रहेगा, इसलिए थोड़ा अपनी तबीयत पर भी ध्यान दीजिए, ख्याल रखिए खुद का, बहुत ज़रूरी है ये।
2: सिंह यानी लियो, मान सम्मान आज आपका बढ़ेगा, बिजनेस में कुछ नए डील्स फाइनल हो सकते हैं और आज पैसों का फायदा आपको हो सकता है।
3: और इसके बाद अगर देखा जाए तो आज कन्या यानी वर्गो के लिए कहा गया है कि काम करते समय पेशेंस बनाकर रखें क्योंकि हो सकता है जल्दबाजी में गलतियां हों जिससे आपका भारी नुकसान हो सकेगा। और परिवार में बड़ों की यू नो राय जो है ये भी मान लीजिए, कभी कभी हमें लगता है कि नहीं यार हम अपना सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, वी आर ऑल्सो एल्डर्स एंड वी हैव अ माइंड टू थिंक, तो हम अपना क्यों ना करें, अपना क्यों ना समझें, लेकिन एट टाइम्स अगर कुछ सलाह आपको कुछ बड़े दे रहे हैं वो आपके फायदे का हो सकता है, इसीलिए पे अटेंशन टू दैट एज वेल। थकावट दूर करने के लिए आज आपको आराम करने की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी।
2: तुला यानी लिब्रा, फाइनेंशियली दिन बहुत मजबूत होगा, परिवार में खुशहाली होगी, हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा और आज जो प्रोफेशनल लाइफ है इसमें तरक्की करेंगे आप।
3: वृश्चिक ने कि स्कॉर्पियो, आपके लिए कहा गया है कि बिजनेस रिलेटेड कोई भी आप प्लान बना रहे हैं ये सफल होगा, आज आप काफ़ी यू नो प्रोग्रेसिव माइंड से सोचेंगे, काम करेंगे तो अच्छी तरह से चीज़ों को इवेल्युएट करके डिसीजन आप लेने वाले हैं, फ्यूचर में बहुत बेनिफिशियल साबित होगा। परिवार का पूरा सहयोग भी आपको मिलेगा, विच इज़ वाई यू वॉन्ट फील स्ट्रेस्ड एट ऑल। अचानक से पैसों के मामले में आपके हाथ फायदा लगने की संभावनाएं भी आज बताई जा रही है।
2: धन यानी सजिटेरियस, आज कोई नई योजना शुरू करने के लिए अच्छा दिन है, बिजनेस में थोड़ी तेजी आप देखेंगे जिसकी वजह से आपका इनकम जो है ये बढ़ेगा और काफी एनर्जेटिक आप फील करेंगे।
3: और उसके बाद अगर देखा जाए मकर यानी कैप्रिकॉर्न, काम करते समय रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ सकती है लेकिन हद से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके लिए बोझ भी साबित हो सकती है, इसीलिए व्हेन इट्स टाइम टू से नो Make sure you do say no. सोच समझ कर ही लेन देन करें, otherwise इस मामले में पैसों का काफ़ी नुकसान आज हो सकता है। शारीरिक रूप से काफ़ी थकावट महसूस करेंगे, तबीयत पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है आपके।
2: कुंभ यानी एक्वेरियस, आज आपकी डिप्लोमेसी की वजह से इश्यूज ऑफिस में रिजोल्व होंगे और दोस्तों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। आज जहाँ तक पैसों का सवाल है या फाइनेंशियल सिचुएशन का सवाल है, कुछ इम्प्रूवमेंट्स आप नोटिस करेंगे।
3: आखिर में मीन यानी पाइसेस, आपके लिए कहा गया है कि जहाँ नौकरी करते हैं वहाँ पर आपकी बात का सम्मान रखा जाएगा जिसकी वजह से यू विल फील वैल्यूड एंड रेस्पेक्टेड एट द सेम टाइम। बिजनेस में भी फायदे के बहुत से मौके हाथ लग सकते हैं, परिवार में शुभ काम की चर्चा होगी और भविष्य में चलकर जब होगा तो इसमें आपको भाग लेने का भी मौका मिलेगा। ये थे आज के आपकी राशि वाइब्स, उम्मीद करते हैं दिन आपका सभी का बहुत ही बढ़िया और कमाल का गुजरे। कमिंग अप नेक्स्ट, आपको देने वाले हैं आज का हमारा वो बहुत ही ग्रैंड अपॉर्चुनिटी जहां पर आप हमारे साथ आज

0: करेंगे तो मैं आपको पैसे बचाने के आइडियाज दे सकता हूँ।
1: बढ़िया है। अच्छा, ग्रोसरीज लेना है, पूरे घर की पेंटिंग करवानी है, नया सोफा लेना है, इतनी भाग दौड़ करनी है तो नेचुरली गाड़ी में फ्यूल भी तो चाहिए। और हाँ, कोई ऐसा स्कीम है क्या कि मेरे पैसे अकाउंट से जाए नहीं बल्कि अकाउंट में आए?
0: इंटरेस्टिंग। और कुछ?
1: बस इतना ही।
0: सर, मैं चैट जीपीटी हूँ, अंबानी नहीं, हमसे ना हो पाएगा।
2: दिस दिवाली लिसन टू हम ऑन 104.2 एफएम और रोवा एंड टेक पार्ट इन फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून एंड गेट इन द ड्रॉ टू विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस लाइक ग्रोसरी वाउचर्स, फ्यूल वाउचर्स, होम डेको एंड फर्नीचर वाउचर्स, बिल्डिंग एंड गार्डन सप्लाई वाउचर्स एंड कैश। फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स, हैरिंगटन लिविंग, मनोको, ब्यूटीफुल फर्नीचर विद 60 मंथ्स इंटरेस्ट फ्री, NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स, लॉजिक फाइनेंस and Guru Gandola, a household name in finance and insurance industry. And Fortune, bring home the fortune.
3: The enrollment deadline's coming soon, pup. We better remind people before voting starts.
4: Enrolled yet?
3: How about you?
4: Are you enrolled?
5: Last chance to enroll is midnight 25 October. Enroll now at vote.nz. Brought to you by the Electoral Commission.
6: इस दिवाली घर को दियो के साथ सोना संसार के गहनों से भी रोशन कर डालिए।
7: अरे तेजल, चल जल्दी जाइए धनतेरस माटे शॉपिंग करवा सोना संसार में। तने जे पसंद पड़े ए बाय करी लेजे। लेटेस्ट ज्वेलरी कलेक्शन के लिए एक ही पता, सोना संसार।
6: दिल वाली दिवाली सोना संसार के साथ 190 स्टोनाट रोड माउंट रॉस्किल। कॉल 09629333।
8: Octopus factory farms in New Zealand? Sounds unthinkable, but your tax dollars have been funding the research. Sign the petition and keep octopuses wild. Go to banoctopusfarming.co.nz.
9: Huh? Free gold coins on diamond jewelry? Seriously, Mahi?
10: Yes, Bebo.
9: Catch kya hai?
10: Malabar gold and diamonds ke saath celebrations ko aur bhi khas banao. Diamond aur precious gem jewelry purchases par pao free gold coins. Saath hi selected jewelry par diamond value aur making charges mein up to 40% off ka fayda uthao.
9: I still can't believe it. No catch.
10: Catches sirf matches mein hote hai, Bebo. This is your festive gift from Malabar Gold and Diamonds. Botany Town Center, East Auckland.
11: TNC supply.
12: डिब्बा खुल गया।
13: भरत भाई, टिफिन खुल गयो छे। संजना का डिब्बा खुल गया।
14: जब कशिश स्पाइसेस से खाना बनेगा तो सारे ऑफिस की नजर में रहेगा। फिर यही तो होगा, डिब्बा खुल गया। हल्दी, मिर्ची, गरम मसाला, कशिश मसाले, अच्छे वाले। Buy any Kashish product and be in the draw to win up to $10,000 worth of cash prizes, gold coins and gift vouchers. Terms and conditions apply.
15: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
16: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Monaco.
6: तो चलिए, हमने आपसे कहा था कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है हमारे साथ आज फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून में हिस्सा लेकर आप भी जीत सकते हैं कुछ शानदार इनाम। सबसे पहले तो आपको ये याद दिला दें कि फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून में यू कैन विन योर शेयर ऑफ $5,000 बोथ ऑफ प्राइजेस। दीज प्राइजेस इंक्लूड $1,000 कैश फॉर्च्यून की ओर से, इसके अलावा लॉजिक फाइनेंस जिनकी ओर से आप जीत सकते हैं $1,000 बोथ ऑफ न्यूअल के शॉपिंग वाउचर्स,
17: ओके,
6: और इसके अलावा इंडेलिबल होम्स इनकी ओर से आप जीत सकते हैं $1,000 वर्थ ऑफ फ्यूल वाउचर्स,
17: हैरिंगटन लिविंग की ओर से $1,000 वर्थ ऑफ फर्नीचर या होम डेको आइटम्स जो है ये आप जीत सकते हैं, इसका वाउचर जो है ये आपको मिल सकता है।
6: और इसके साथ साथ NZPMI जिनकी ओर से आप जीत सकते हैं $1,000 बोथ ऑफ MITATEN के वाउचर्स। तो ये जो इनाम है आपका इंतजार कर रहे हैं, पर शर्ते अगर आपको ये इनाम जीतने हैं तो कम से कम इसके लिए थोड़ा एफर्ट तो करना पड़ेगा। दिस टाइम अराउंड आपको हम दे रहे हैं मौका इंडेलिबल होम्स की ओर से $1,000 बोथ ऑफ फ्यूल वाउचर्स जो है ये जीतने के लिए। और ये जो फ्यूल वाउचर्स है $1,000 का, ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा किसी के बीच।
17: हाँ।
6: जो भी जीतेगा उसको पूरा का पूरा $1,000 का फ्यूल वाउचर मिलेगा। सो यू डोंट हैव टू शेयर $1,000 का फ्यूल वाउचर आपका। आप जब चाहे जितना चाहे उतना इस्तेमाल करते अपनी गाड़ी में फिल अप करा सकते हैं, और इफ यू वांट टू शेयर इट विद अदर्स यू कैन डू दैट एज वेल, इट्स टोटली अप टू यू, बट यू हैव टू विन दिस टू डिसाइड दैट फर्स्ट ना।

0: सो इसे जीतने के लिए आपको हम दे रहे हैं द नेक्स्ट 5 मिनट्स,
1: और इन 5 मिनटों के अंदर आपको अपना टेक्स्ट जो है ये हमारे पास भेजना होगा 5599 पर, और ये जीतने का मौका इनडेलिबल होम्स की ओर से जो बिल्डिंग एक्सपर्ट्स, indelibalehomes.co.nz आप विजिट कर सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस डू अप्लाई, hum.rover.nz आप विजिट कर सकते हैं, और जब भी 5599 पर आप टेक्स्ट करते हैं स्टैंडर्ड कैरियर रेट्स डू अप्लाई।
0: तो 5 मिनट्स के अंदर अंदर व्हाट यू नीड टू डू इज सबसे पहले आपको लिखना है IH यानी Indelible Homes का शॉर्ट फॉर्म, I for Indelible और H for Homes, IH लिखे। फिर उसके बाद में आपको बताना है when was the last time you did full tank, अपनी गाड़ी में पूरा का पूरा जो फुल टैंक है ये आपने फिलअप कराया, आप वो हमें बताइए। यू कैन राइट द डे एज इन मंडे को, लास्ट वीक मंडे को, या टुमोरो यस्टरडे आपने फिलअप कराया, टुमोरो आप कराने वाले, व्हाटएवर। तो यू कैन जस्ट लेट अस नो ऑफ द डे और उसके साथ अपना नाम आपको लिखना है, दैट्स इट। सो IH द लास्ट टाइम व्हेन यू डिड अ फुल टैंक, फिर उसके बाद अपना नाम और भेज दीजिए 5599 पर। बस इतना इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करना है, जस्ट दीज बेसिक सिंपल इन्फॉर्मेशन, और बदले में यू विल बी पार्ट ऑफ द ड्रॉ जहां पर $1000 का फ्यूल वाउचर हम आपको देने के लिए एकदम रेडी हैं।
1: और याद रखें प्रणीता, आय और हेज के बीच में कोई स्पेस नहीं होगा। जब आप सही तरीके से अपना मैसेज जो है ये भेजेंगे तो आपके पास एक ऑटो रिप्लाई आएगा आपके फ़ोन पर, जिसमें लिखा होगा योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स विजिट indelibalehomes.co.nz। सो आपको बस इतना ही करना है, आई और हेज, कनिका आपने भी जो स्पेस है ये दे दिया है, सो आपकी एंट्री इनवैलिड हो गई है।
0: कनिका, शीना और प्रणीता, आप तीनों की एंट्री इनवैलिड हो गई है।
1: तो आई और हेज के बीच में कोई स्पेस नहीं होगा, आई हेज, उसके बाद व्हेन वाज द लास्ट टाइम आपने फुल टैंक किया था अपने व्हीकल में, और अपना नाम लिखकर 5599 पर जल्दी से हमारे पास भेजें।
0: राइट, 5 मिनट्स का टाइम है एंड विद इन 5 मिनट्स जितने लोग अपनी एंट्री सेंड करेंगे उन्हीं का नाम हम ड्रॉ में शामिल करेंगे। रिमेंबर, सवाल $1000 वो तो फ्यूल वाउचर का है, ऑल थैंक्स टू इंडेलिबल होम्स।
2: बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड,
3: गुंडी खड़ गाओ या सीधा अंदर आओ,
4: मैं लाऊं अपना ए गेम।
2: ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स।

0: बॉलीवुड मोस्ट वांटेड आज का हम आपके लिए लेकर आ रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज में। इधर आपके पास फाइनल 3 मिनट्स है अपनी एंट्री सेंड करने के लिए। अगर आप भी ड्रो में शामिल होकर जीतना चाहते हैं हमारे साथ इनडेलिबल होम्स की ओर से $1,000 worth of fuel vouchers।
1: Irene, आपने तो आई हेज की जगह हाई लिखकर भेज दिया। एंट्री आपकी इनवैलिड हो गई। जब ड्रो होगा तो आपका नाम उस ड्रो में शामिल नहीं होगा। तो भेजने से पहले एक बार अपना
0: मैसेज चेक कर ले।
1: अपना मैसेज जो है अच्छी तरह से आप टेक्स्ट या चेक कर ले। और उसके अलावा इमरान, आपने कहीं पर भी स्पेस नहीं दिया है।
0: राइट,
1: आई हेज उसके बाद स्पेस एंड देन जो आंसर है वो सारी चीजें आपको ख्याल रखना है कि आप सही तरीके से। शाइना ने स्पेस नहीं दिया है बट बीच में डैश लगा दिए।
0: राइट, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपने एंट्री सही तरीके से भेजें, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होगा आपका ये मैसेज सेंड करने का, बिकॉज योर नंबर और योर मैसेज वोंट बी पिक्ड अप व्हेन द ड्रॉ विल हैपन, क्योंकि आप राइट कीवर्ड के साथ अपना जवाब जो ये नहीं भेज रहे हैं। एंड ऑन द अदर हैंड, अगर आपको नहीं याद है तो आप यू नो ये आइडिया, शीतल का आइडिया इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्होंने बड़े अच्छे से अपना एंट्री भेजा है, सेइंग आई हेज कांट रिमेम्बर व्हेन शीतल शर्मा, बट एटलीस्ट शी हैज सेंट एन एंट्री। राइट, और इन्होंने ऑनेस्टली ये भी बताया कि इनको याद नहीं पिछली बार कब इन्होंने फुल टैंक किया था। सो ऑल यू नीड टू डू इज आई हेज लिखना है और हमें ये बताना है व्हेन वाज द लास्ट टाइम आपने अपनी गाड़ी में फुल टैंक फ्यूल जो है ये फिल कराया था। एंड आई हेज लिखकर, जवाब लिखकर, यू कैन राइट द डेट और द डे और फिर उसके बाद अपना नाम लिखकर 5599% करें। बदले में ड्रो में शामिल होकर यू कैन विन योरसेल्फ $1,000 वो तो फ्यूल वाउचर्स हमारे फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून के तहत। रिमेंबर, फाइनल 2 मिनट्स टू गो। राइट नाउ इट्स टाइम फॉर

0: 0800 634 234.
1: News headlines.
2: सुबह के मुख्य समाचारों में, ऑकलैंड ट्रांसपोर्ट ने फॉल्टी बस कार्ड रीडर्स से ओवरचार्ज हुए यात्रियों को $400,000 से ज्यादा रिफंड कर दिए हैं, जिसमें एक को मीटर से $433 एक्स्ट्रा ले लिए गए थे। टाइमिंग सिंक्रोनाइजेशन फॉल्ट के कारण 14,400 पैसेंजर्स की 19,500 जर्नीज प्रभावित हुई और एजेंसी अभी भी 1,615 लोगों के $48,000 लौटाने की कोशिश कर रही है। इस ग्लिच पर कॉमर्स कमीशन ने इन्वेस्टिगेशन पर विचार किया है, जबकि यात्रियों से इस गड़बड़ी के लिए माफी मांगी गई है। हेल्थ एंड डिसेबिलिटी कमिश्नर मोराग मैकडोवेल ने कहा है कि भीड़भाड़ वाले इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स, वेटिंग रूम्स और कॉरिडोर्स में पेशेंट की मेडिकल डिटेल्स पर बात करना उनके प्राइवेसी राइट्स का उल्लंघन हो सकता है। नर्सेस ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक, डॉक्टर, फार्मासिस्ट और पेशेंट्स के बीच सेंसिटिव डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की बातचीत पब्लिक एरिया में विटनेस्ड की जा रही है। कमिश्नर ने बताया कि कॉन्फिडेंशियल बातें प्राइवेट स्पेस में होनी चाहिए, क्योंकि इससे पेशेंट्स का कम्युनिकेशन और प्राइवेसी राइट्स दोनों प्रभावित होते हैं। रग्बी लीग वर्ल्ड कप की जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। न्यूजीलैंड अपना पहला मैच इसी बृहस्पतिवार को रात 10 बजे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगा। उधर इंग्लिश प्रीमियर लीग का एक मैच जो है, या इंग्लिश प्रीमियर लीग के दो मैचेस जो हैं ये खेले जाएंगे। आज सुबह कोवेंट्री सिटी न्यूकासल के खिलाफ सुबह 8 बजे खेलेगा। और इसके अलावा उधर आई लीग के पहले राउंड के मैचेस में वेलिंगटन फिनिक्स इसी रविवार को 3 बजे मेलबर्न विक्ट्री का सामना करेगा, जबकि शनिवार को शाम 5 बजे ऑकलैंड मेलबर्न सिटी एफसी को होस्ट करने जा रहा है। इन मैचेस पर अपडेट्स आपके लिए हम लेकर आएंगे। ये रहे सुबह के मुख्य समाचार।

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Monaco. Hum. Accurate traffic.
2: Unlock hotel savings with Webjet.
3: Some drizzle on a cloudy day, high of 21. A breakdown on the southern before Beach Road blocking the right lane. It is heavy at Papakura and then slow all the way from there. Heavy patches again from Otahu. Slow northbound on the southwestern through Whitty. The northwestern 35 minutes in from Massey. Heavy on and off from Upper Harbour. Northern 26 from Constellation. Hour from Silverdale. Heavy at Silverdale and heavy patches from Greville.
2: Add your flight to cart for hotel savings with webjet.co.nz. T's and C's apply.
4: Coffee? The usual?
5: How about the unusual?
6: Can't wait for coffee? Then don't! Turn into Wild Bean Cafe at BP and try our new barista-made hojicha latte. Something a bit different at BP.
7: The big sale is on now at Beds R Us with amazing deals on selected sleepyhead beds like 60% off Swiss Tech Precision. Queen size now 3499. The big sale at Beds R Us Manukau and Pukekohe, where dreams begin.
8: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे.
9: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे.
8: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है. शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड इस्तमा की लाइट्स, पापा टोटो.
10: सोना संसार 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो. सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर गोल्ड.
11: क्या आपका लोन डिक्लाइन हुआ है? क्या आप हिम्मत हार चुके हैं? तो एक मौका मुझे देके देखिए. हाय, मैं हूँ गुरु खंडोला फ्रॉम लॉजिक फाइनेंस. जो लोन्स डिक्लाइन और डिफिकल्ट होते हैं उनके अप्रूवल का मैं स्पेशलिस्ट हूँ. लॉजिक फाइनेंस के गुरु खंडोला बातों में नहीं काम में विश्वास रखते हैं.
12: टर्म्स, कंडीशन, फीस एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई. कॉल लॉजिक फाइनेंस के गुरु खंडोला को ऑन 0800 लॉजिक जी, विच इज 0800 564424.
13: Neela Outlet Store is having a huge three-day sale. From Wednesday to Friday, there'll be huge savings with up to 60% off a range of selected Neela appliances. Your kitchen, your sanctuary, your chance to grab quality Neela appliances at amazing prices, but for 3 days only. Don't miss out on Neela Outlet Store's huge three-day sale. Starts Wednesday and only at 880 Great South Road, Penrose. For more info, go to steelfort.co.nz.
0: The beat of Bollywood.
14: World's best, hamari koi branch nahi hai.
0: Birthday greetings.
15: Iska birthday bhai?
16: Mera bhi birthday hai, chalo line mein aa jao.
15: Happy birthday to you.
17: अ वेरी हैप्पी बर्थडे आपको विश करने का समय हो रहा है. तो आज जहाँ कहीं भी अपना बर्थडे आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं. सबसे पहले तो हैवी हैप्पी बर्थडे आज हम विश करना चाहते हैं. अपना बर्थडे आज मना रहे हैं, जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं. टू माई ब्यूटिफुल मॉम, लॉट्स ऑफ लव एंड बेस्ट विशेज कविश की ओर से. कविश ने मैसेज तो लिखा है लेकिन अपनी मम्मी का नाम नहीं लिखा है. So we don't know Kavish, aapki mummy ka naam, but Kavish ki mummy, happy birthday to you, lots of love and best wishes aaj aapke janmdin ke mauke par.
18: शांति सिंह जी हैं माउंट एल्बर्ट में, मंजू मेहरा हैं नोचो में, और गुरचरण सिंह पापेटोयटोय में. आज आप सभी भी अपना जन्मदिन मना रहे हैं. आज के इस खास दिन पर आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाइयां हम देना चाहेंगे. अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे.
0: द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा,
1: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून. विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस, फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरी विन, बिग और स्मॉल. ब्रिंग होम द फॉर्च्यून एट हैरिंगटन लिविंग मोनाको. Big on style, great on price, perfect for your home. Harrington Living Monaco.
0: Celebrity Alarm. Hit it.
17: तो आज जो आवाज़ है आपके लिए लेकर आए हैं सेलिब्रिटी अलार्म, के सुनाने से पहले याद दिला दें जितने लोगों ने हमारे पास अपनी एंट्री सेंड की है फॉर आवर फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून टू विन $1,000 वर्थ ऑफ फ्यूल वाउचर इन डेलबल होम्स की ओर से. थैंक यू सो मच. कंपटीशन तो हमने रैप अप कर दिया है, बट नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी में क्या जीत सकते हैं जानने के लिए आपको सुनते रहना है. फिलहाल आज के सेलिब्रिटी की आवाज़ पे अटेंशन, हियर वी गो.
19: पराठा, आलू इन इंग्लिश, पटाटो पटाटो, वाटर फायर, पटाटो इन फाइव मिनट, पटाटो पटाटो आउट, कुट्टो पटाटो फिर चक्कर रोटी, एंटर पटाटू, सेंड रू तंदूर, टू मिनट पराठा रेडी जी।
17: तो ये कौन है आपको बताना है, किसकी आवाज है ये? बड़ा इंटरेस्टिंग रेसिपी है ना पराठा बनाने का। तो चलिए देखते हैं कि क्या आप पहचान पाते हैं कि ये किनकी आवाज है। अगर आपने इनकी आवाज पहचान ली है तो जल्दी से अपना जवाब हमारे पास आप टेक्स्ट कीजिए, लिखिए सबसे पहले BF, फिर उसके बाद में अपना आंसर, और 5599 पर आपको सेंड करना है अपना जवाब अपने नाम के साथ। लेट्स सी क्या आज की हमारी सेलिब्रिटी को आप पहचान पाते हैं या नहीं। इफ यू आर फेसिंग सम डिफिकल्टीज, वन लास्ट टाइम, हियर वी गो, पे अटेंशन टू दिस वॉइस।
19: पराठा, आलू इन इंग्लिश, पटाटो पटाटो, वाटर फायर, पटाटो इन 5 मिनट, पटाटो पटाटो आउट, कुत्तो पटाटो, फिर चक्कर रोटी, एंटर पटाटो, सेंड रू तंदूर, 2 मिनट पराठा रेडी जी।
17: वेरी वेरी इंटरेस्टिंग रेसिपी। चलिए विल गेट बैक टू द रेसिपी, बट राइट नाउ आप हमारे पास अपना जवाब जरूर सेंड कीजिए और बताइए किसकी आवाज है ये।
0: स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI, योर

0: 1800-634-234.
1: मन फूला फूला मेरे जगत में कैसा रहता रे।
2: हर दिन की भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
3: Fuel savings at gas today.
4: A high of 21, cloudy with some drizzle. Southern Motorway got a breakdown block in the right lane before Beach Road. We're heavy Papakura to Takanini and then heavy on and off from Manukau to Green Lane. Southwestern slow northbound from Whitty up to the airport link. Northwestern 36 minutes Massey to town, heavy on and off from Upper Harbour. Northern half an hour from Constellation, heavy at Silverdale and heavy patches from Greville.
3: Save 15 cents per litre on fuel today at gas with your everyday rewards card.
5: It's Macca's 50th birthday and to celebrate, we're giving you 1 in 3 chances to win food prizes. Order ticketed items using the Macca's app to play. The more the merrier at Macca's 50th. T's and C's apply.
6: Indulge in the sumptuous flavors of South Asia at Sudhima Auckland Airport's popular food festival. Their specialist chefs are preparing an exquisite buffet from India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal and more. Gather your family and friends for a memorable evening of food and fun this Labor Weekend, 24th and 25th October. Limited tickets available at just $89 per person with a welcome drink included. Kids 6 to 12, half price. Under 5s, free. Book now at sudhimahotels.com/foodfestival.
7: क्या आपका लोन डिक्लाइन हुआ है? क्या आप हिम्मत हार चुके हैं? तो एक मौका मुझे देके देखिए। हाय, मैं हूं गुरु केंडोला फ्रॉम लॉजिक फाइनेंस। जो लोन्स डिक्लाइन और डिफिकल्ट होते हैं उनके अप्रूवल का मैं स्पेशलिस्ट हूं। लॉजिक फाइनेंस के गुरु केंडोला बातों में नहीं काम में विश्वास रखते हैं।
8: टर्म्स कंडीशन फीस एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई। कॉल लॉजिक फाइनेंस के गुरु केंडोला को ऑन 0800 लॉजिक जी व्हिच इज 0800-564-424।
9: Make a splash with Instant Kiwi for your chance to win up to $50,000. Dive into your local Lotto NZ store and ask for a $3 Sequest ticket or play online at mylotto.co.nz. It's one quest with two ways to play. You never know. R18.
10: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
11: Don't mind, lekin aap dono ki jodi badi cute hai.
10: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
12: 7 मिनट रह गए हैं अभी 8 बजने में। 8 पर न्यूज़ एंड स्पोर्ट्स अपडेट आपके लिए हम लेकर आएंगे अगले घंटे। कल हमने दिवाली के मौके पर रामायण गाथा जो है ये शुरू किया और आप में से कई लोगों ने कहा कि 9:15 का टाइम सही नहीं होगा, तो 8 बजे के बाद ये आपके लिए हम लेकर आएंगे ऑन द ब्रेकफास्ट शो।
13: बिल्कुल, तो तैयार रहिएगा इसके लिए। और आज अगर हो सके, इफ़ योर किड्स आर ट्रैवलिंग विद यू, मेक श्योर एनकरेज देम कि वो भी इसे ध्यान से सुने। जो आपको समझ में आए वो आप उनको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, बट इफ़ यू नीड एनी हेल्प you can get in touch with us for that as well.
12: So around 10:08, 8:15?
13: Yeah, around that time.
12: Around that time, आपके लिए रामायण गाथा हम लेकर आएंगे। आज की सेलिब्रिटी अलार्म की ओर देखें तो क्या आंसर्स आए। किसी ने तो लिखा, she isn't a Hindi actress and having an interview.
13: She is a Hindi actress, मतलब हिंदी फिल्मों में इन्होंने काम किया हुआ है। और ये फिल्म का जो सीन जिससे हमने ये डायलॉग लिया है वो एक हिंदी फिल्म का ही डायलॉग है। एंड शी इज डेलिब्रेटली स्पीकिंग लाइक दैट, क्योंकि उनका कैरेक्टर जो है उनको इंग्लिश नहीं आती और वो इंटरव्यू दे रही होती है, तो दैट्स व्हाई शी स्पीक्स लाइक दैट द कैरेक्टर।
12: बाकी सभी लोगों ने एक ही आंसर भेजा है और वो है तापसी पन्नू।
13: दैट इज द करेक्ट आंसर। तो सभी ने आज सही सही पहचाना एंड यस इट इज तापसी पन्नू आज की हमारी सेलिब्रिटी इन सेलिब्रिटी अलार्म। अगले घंटे आपके लिए हम लेकर आने वाले हैं ट्रेंड पेट्रोल और आज के ट्रेंड पेट्रोल के लिए रहिएगा एकदम तैयार। इट माइट एक्चुअली स्टार्ट अ कन्वर्सेशन एज वेल अबाउट सर्टन थिंग्स या सर्टन परसेप्शंस जो हमारे होते हैं लोगों के बारे में, किसी कंट्री के बारे में। तो इसके बारे में कुछ बातें होंगी आज।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: सुपर सिटी ऑकलैंड में आज बताया गया है मौसम ज्यादातर क्लाउडी रहेगा और थोड़ी थोड़ी बारिश होने की संभावना. शाम के समय हालांकि बारिश थमती हुई नजर आ सकती है, बट लिटिल बिट ऑफ शावर्स आज प्रिडिक्ट किए जा रहे हैं. सनसेट 7:36 PM पर होगा. हाईएस्ट अराउंड 21 डिग्रीज टेम्परेचर आज हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं. ओवरनाइट 14 डिग्रीज रहेगा.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Monaco.
0: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton. Trend Patrol.
1: द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं और ट्रेंड पेट्रोल की बारी है. तो मैंने कहा था कि ट्रेंड पेट्रोल में आपके लिए आज हम कुछ इंटरेस्टिंग लेकर आएंगे, टॉकिंग अबाउट क्या कुछ जो है ये हुआ है जिससे कि एक कॉन्वर्सेशन भी छिड़ सकता है अबाउट परसेप्शन. बट आई थिंक आई विल सेव दैट इन्फॉर्मेशन फॉर अ लिटिल व्हाइल. आई माइट नॉट यूज इट फॉर ट्रेंड पेट्रोल क्योंकि मैंने कल कुछ देखा एंड आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट इट एंड आई फॉरगॉट कि यार मैंने इसके बारे में कल देखा था एंड आई थॉट कि आज ट्रेंड पेट्रोल में इसके बारे में बातें करना बनता है. रीजन बींग क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो डेफिनेटली अभी ट्रेंड कर रही है एंड आई वुड नॉट वांट टू लूज द यू नो मोमेंटम. तो ये जो चीज जिसके बारे में हम बातें करना चाहते हैं इज अबाउट एन आर्टिस्ट जो अनफॉर्चुनेटली अभी तो हमारे बीच इस दुनिया में है नहीं है. लेकिन बावजूद उसके इन्होंने एक सोल्ड आउट शो जो है ये किया. नाउ इफ यू थिंकिंग हाउ इज दैट पॉसिबल तो आपको बता दें हम आई एम टॉकिंग अबाउट सिद्धू मूसेवाला और इनका जो ग्राउंड ब्रेकिंग होलोग्राम शो जो है ये हुआ. 4 years after his tragic death, Sidhu Moosewala, जो कि an iconic legend, superstar माने जाते हैं, इनका जो comeback हुआ on stage in a remarkable way, high-tech hologram concert experience इनके fans को मिला है. Title था इस show का Signed to God और ये जो hologram experience है, इसमें दरअसल late singer का जो music है, उनका presence है on stage, three-dimensional होलोग्राफिक प्रोजेक्शंस के जरिए, ओरिजिनल वोकल्स और सिनेमेटिक विजुअल्स के जरिए, स्पेशल इफेक्ट्स के जरिए स्टेज पर लाइव लोगों को एक्सपीरियंस करने को मिला. एंड द वर्ल्ड टूर जो है इट ओपन्ड इन टोरंटो इन कनाडा और ये इसी महीने हुआ. आई थिंक जस्ट ओवर द वीकेंड ये हुआ है इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. तो ये ओवर द वीकेंड हुआ जहाँ पर जो फैंस हैं इनको मौका मिला टू एक्सपीरियंस दिस वन इन अ लाइफ टाइम काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इट फेल्ट लाइक लाइव परफॉर्मेंस फ्रॉम द आर्टिस्ट हिमसेल्फ जिनके बारे में कह सकते हैं इन्होंने करोड़ों लोगों को इन्फ्लुएंस किया था अपनी म्यूजिक के जरिए फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड. एंड इस शो में कहा गया है कि इनका जो म्यूजिक है स्पेशली इनका जो म्यूजिक वीडियो द वेरी पॉपुलर ट्रैक 295 इसका जो म्यूजिक वीडियो है ये भी अनवेल किया गया. 295 का म्यूजिक वीडियो नहीं था तो उसको भी इस शो के जरिए अनवेल किया गया. एंड वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल एस्पेक्ट्स ऑफ दिस प्रोडक्शन वाज कि जो इल्यूजन क्रिएट किया गया था इट वाज एक्सेप्शनल, इट वाज अमेजिंग. लोगों का एक्सपीरियंस जो है जो लोग इस शो को अटेंड करने गए थे इट वाज अमेजिंग. एंड अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन टीम ये जो शो है इट डज नॉट यूज AI टू जनरेट सिद्धू मूसेवाला परफॉर्मेंस लेकिन होलोग्राम का इस्तेमाल कर उनको यहाँ पर स्टेज पर ऐसे क्रिएट किया गया था. इंस्टेड एक बॉडी डबल प्रोस्थेटिक्स के जरिए ये हुआ था और केयरफुली रिक्रिएट किया गया था ताकि डिटेल्ड डिटेल्स का ख्याल रखा जाए इनके अपीयरेंस को लेकर, मूवमेंट को लेकर और इनका जो प्रोडक्शन है से टू लाइव लाया गया था. आई थिंक बहुत साल पहले मैंने एक फिल्म देखी थी जीन्स जिसमें एक गाने के लिए ऐश्वर्या राय जो है उनका एक होलोग्राफिक इमेज जो ये तैयार किया गया था. एंड दैट टाइम इट सीम लाइक कि ये क्या है यार ऐसा थोड़े ना होता है. बट इमेजिन इन 2026 इट्स एक्चुअली हैपनिंग जहाँ पर एक ऐसे आर्टिस्ट को स्टेज पर उनके फैंस के साथ परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है, देखने फैंस को देखने का मौका मिल रहा है. इज नो लॉन्गर इन दिस वर्ल्ड उनको होलोग्राम के जरिए जो है स्टेज पर रिक्रिएट किया गया है. सो काफ़ी डिटेल्ड तरीके से ये पूरा का पूरा शो जो है क्रिएट किया गया, इसे एग्जीक्यूट किया गया. एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट वॉज कि इस शो की ओपनिंग के लिए सिद्धू मूसेवाला के जो पेरेंट्स हैं बलकौर सिंह और चरण कौर ये दोनों मौजूद थे और उनके जो छोटे भाई है जिसे लोग प्यार से निक्का सिद्धू या छोटा सिद्धू जो है ये भी कहते हैं जिसका नाम शुभदीप सिंह सिद्धू है जो 2004 में इनफेक्ट जिनकी पैदाइश हुई थी ये भी आए थे अपने पेरेंट्स के साथ इस शो को अटेंड करने के लिए और उन्होंने सिद्धू मूसेवाला का जो आइकॉनिक थप्पी है जो वो करते थे वो उन्होंने किया, रिक्रिएट किया स्टेज पे, लिटिल बॉय. तो पीपल लव्ड इट एंड दे वेंट क्रेजी. जो फैंस हैं उन्होंने एंजॉय किया, एंड ऑफ कोर्स पीपल गॉट इमोशनल एज वेल इस ओकेजन के दौरान इसको अटेंड करते हुए. इनके म्यूजिक को तो बहुत अटेंशन मिला और लोगों ने इसे पसंद भी बहुत ज़्यादा किया. और अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट कहा गया है कि 11th ऑफ अक्टूबर को 295 जो है इनका गाना जो बहुत हिट हुआ था, इसे 900 मिलियन व्यूज जो है यूट्यूब पर तब तक मिले हैं. फॉर मैनी फैंस इट वॉज नॉट जस्ट अ कॉन्सर्ट, ये एक अपॉर्चुनिटी था to celebrate the voice, the identity of this musical legend, एक ऐसे artist जिनके मौत के बाद भी लोग उन्हें आज भी याद करते हैं, पसंद करते हैं. And imagine, एक ऐसे artist who had a sold out show despite not being there present physically, लेकिन hologram के through. तो isn't that amazing?
3: Yeah, amazing for all the Sidhu Moosewala fans. ना होकर भी वो हमारे बीच हैं.
1: तो इनके बारे में जबकि हम बातें कर रहे थे, तो चलिए उनका गाना 295 जो इतना पॉपुलर हुआ और इसका म्यूजिक वीडियो भी रिसेंटली लॉन्च हुआ, ये आप सभी के नाम कर रहे हैं. स्पेशली सुख एंड कुश, आपके मैसेज के लिए थैंक यू. आप दोनों को भी इस गाने में हम पर्टिकुलरली याद कर रहे हैं.

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: Thinking of renovating or extending your home? Greystone Builders specializes in renovations and extensions of kitchen and bathrooms, decks and fences, and offer professional house painting. Licensed builders providing quality work at reasonable prices. Call Greystone Builders on 021-165-9362. That's 021-165-9362 for a free quote. Or visit greystonebuilders.co.nz.
2: With BNZ Rapid Save, your money gets the salary it deserves. In the past year, Rapid Save paid out more interest per dollar saved than any other major bank. So give your money a pay rise, make it go to work. Because if your money's not collecting more interest, it's collecting less. Open a BNZ Rapid Save account today. Bank of New Zealand. Let's find a way. Based on advertised rates for personal savings accounts available to customers age 18 years and over with the other major NZ banks. T's and C's and fees apply.
3: दिवाली आ रही है और फॉर्च्यून ला रहा है आपके लिए जीतने का मौका। लोटस मैनिकाओ, माउंट रॉस्किल या बोटनी इन नमस्ते इंडियन सुपरमार्केट से कोई भी टू फॉर्च्यून या सिंपली प्रोडक्ट्स खरीदिए और जीतिए $501 का ट्रॉली डैश। साथ में हर हफ्ते 10 विनर्स को 100।
4: When you've got roads, rain and traffic

0: even, big or small, bring home the fortune at Harrington Living Monaco. Big on style, great on price, perfect for your home. Harrington Living Monaco.
1: The Rush Hour, brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
2: What's your take?
3: 22 मिनट हो रहे हैं अब 9:08 बजकर द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा आपके लिए जारी है और आज व्हाट्स योर टेक में हम कुछ खास बातें करने जा रहे हैं. चुनाव जो है बस जस्ट अराउंड द कोना और इलेक्शन को लेकर बहुत सारी चीज़ें जो है कि हो रही हैं, कैंपेन्स वगैरह किए जा रहे हैं और पॉलिटिकल जो कैंडिडेट्स हैं, पार्टी लीडर्स हैं, ये अलग अलग जगह पर जा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, अपने पार्टी के व्यूज़ वगैरह शेयर कर रहे हैं. अभी हाल ही में न्यूजीलैंड फर्स्ट पार्टी लीडर है विंस्टन पीटर्स, इन्होंने कहीं पर कुछ कहा था.
4: यस एंड गिविंग यू डिटेल्स अबाउट दिस बिफोर वी प्ले, आई फील कि ये काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल आज का हमारा व्हाट्स अ टेक टॉपिक हो सकता है. एंड ये जो इन्फॉर्मेशन है अपेरेंटली ये दिस पर्टिकुलर इंटरव्यू जिसके दौरान इन्होंने जो कुछ भी कहा जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, इट वाज डन बाय न्यूजीलैंड इंडियन सेंट्रल एसोसिएशन और एक शो आई थिंक विच इज कॉल्ड अनबॉक्स्ड. उसके दौरान विंस्टन पीटर्स वाज वन ऑफ द गेस्ट्स जहां पर उन्होंने ये स्टेटमेंट जो है ये बोली और ये इसके तहत वी रीच्ड इट रीच्ड टू अस एंड वी वर लाइक कि चलो let's ask the people who are you know in our community jinke bare mein is particular community ke bare mein baat ho rahi hai to unhi se poochte hain na.
3: To Indians ke bare mein unhone ye baat kahi aur itna hum aapko bata de ye interview hamara nahi hai. Ye अनबॉक्स्ड के दौरान उन्होंने कहा था और इससे आगे पीछे और क्या बातें हुई थी उसका हमें पता नहीं, लेकिन उन्होंने
4: because we have not seen the entire interview but this bit is what we have come
3: generic terms में जो उन्होंने कहा है उसे आप पहले बहुत ध्यान से सुन लें.
4: Right, here we go, pay attention to this.
5: There are two types of Indians. There are those that have fully adopted this country for their future and forever. And there are some who still salute India first. How do I know that? Well, I saw when Modi arrived exactly what the diaspora looked like. It was not our first rodeo. I'm having a good loud look and I thought, which country do these people salute? It's their business, it's their democracy. But you've asked me for an honest answer and I'll give you an honest answer back. Because I'm trying to build a country where we also, no matter what our background is, we think a country called New Zealand is the most important part of our ownership.
4: राइट तो ये इन्होंने कहा इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड.
3: इन्होंने जो होस्ट थे उन्होंने शायद विंस्टन पीटर्स से ऑनेस्ट ओपिनियन की मांग की थी एंड वन थिंग आई मस्ट से अबाउट विंस्टन पीटर्स
4: व्हेदर यू लाइक हिम और यू हेट हिम,
3: चाहे हम उन्हें पसंद करें, उनकी पॉलिसीज से सहमत हो या ना हो, उनको जो कहना होता है वो एकदम क्लियर शब्दों में कहते हैं. ही डजंट मिंस हिज वर्ड्स. और उन्होंने सवाल उठाया एंड जो बात उन्होंने कही है वो शायद उन्होंने इंडियंस जो इंडिया से हैं उनसे रिलेटेड कही थी, बट इट अप्लाइज टू
4: एवरीवन,
3: ऑल ऑफ अस जो हम लोग अलग अलग कंट्रीज से आए हैं, दैट वी सल्यूट टू आवर होम कंट्री मोर देन वी सल्यूट टू न्यूजीलैंड. तो उन्होंने कहा है कि
4: दो किस्म के इंडियंस हैं.
3: हाँ,
4: एक जो उस कंट्री को ज्यादा सल्यूट करते हैं या ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं जिस कंट्री से वो आए हैं, एंड दूसरे वो जो इस कंट्री को पूरी तरह से अपना चुके हैं, इसे अपना मानते हैं
3: न्यूजीलैंड
4: और इसे पहला प्रेफरेंस देते हैं.
3: यस, और उन्होंने कहा है कि वो एक ऐसी कंट्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर सिटीजन्स जो है उनके लिए प्राथमिकता और प्रायोरिटी जो है
4: न्यूजीलैंड. नो मैटर विच कंट्री यू कम फ्रॉम, नो मैटर व्हाट योर बैकग्राउंड इज, लेकिन आपकी प्रायोरिटी एज अ कंट्री बिकम्स दिस कंट्री यानी न्यूजीलैंड.
3: सो अब इस पर आपकी राय हम जानना चाहेंगे
4: कि क्या आप बीइंग पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर कम्युनिटी जिनके बारे में ये स्टेटमेंट इन्होंने कही है कि दे आर टू टाइप्स ऑफ इंडियंस, क्या आप हमारे साथ फ्री हैं टू शेयर एन ओपिनियन वेदर यू अग्री और डिसएग्री विद व्हाटएवर विंस्टन पीटर्स द लीडर ऑफ न्यूजीलैंड फर्स्ट हैज सेड.
3: तो लाइंस हम खोल चुके हैं. गुड मॉर्निंग, हेलो.
6: गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू गाइस?
4: बढ़िया जी, आप कैसे हो?
6: बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा टॉपिक है. सुबह सुबह ही ऐसे खून खोल गया तो मैंने सोचा मैं फोन करती हूँ. तो इसके दो पहलू है देखने के लिए. एक तो ये है कि ऑलमोस्ट ब्रायन तामकी वाला ही आ रहा है कि कैसे पता चलेगा

0: आप न्यूजीलैंड को सपोर्ट कर रहे हो, इज इट बीइंग अ क्रिश्चियन, इज दैट हाउ दे सी इट और हाउ वुड दे सी इट, राइट? पंजाबी में एक सॉन्ग है कि लख परदेसी होइए अपना देश नहीं भुलीदा, जेड़े मुल्क दा खाइए उसका बुरा नहीं मनीदा, विच मीन्स नो मैटर हाउ वेयर एवर यू गो ऑलवेज रिमेंबर योर रूट लाइक योर देश, बट वेयर एवर यू आर मेक श्योर यू ऑलवेज doing the right thing for that country as well. So, before that, you could coexist. You could celebrate where you came from, but also respect where you are, right? Just celebrating your own country doesn't mean ki aap New Zealand ko follow nahi kar rahe ho. So, almost aise wahi hogi ki apni deshbhakti prove karo, but how? Right? Agar aap New Zealand mein aake aise, jaise main bahut sari videos dekhti ki New Zealand mein ye nahi hai, ye nahi hai, ye nahi hai. Don't be like that, right? ki aap, agar India achha lag raha, then you guys can go back to India, live there. But also, you can still celebrate your culture while you're in New Zealand.
1: All right.
0: So ye wahi baat hai ki kaise prove karenge ki aap New Zealander ho. What do they wanna see? Ki agar sab kuch Indian bhool jao, kuch bhi Indian mat karo aur TV values karo, or is it more like a value system ki aap honest living ye sab kar rahe ho kind of thing?
2: Okay. So thank you so much for sharing your views. But before we let you go, आपने इनके स्टेटमेंट पर एक सवाल उठाया है, वेरी राइटली आस्क्ड क्वेश्चन, बट ऑन द अदर हैंड एक सवाल जो हमने पूछा था, वेदर यू अग्री और डिसएग्री विद दैट स्टेटमेंट,
1: देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडियंस,
2: आप क्लियरली वो बताइए, अग्री और डिसएग्री. आई मीन आई कैन मेक आउट फ्रॉम योर पॉइंट्स जो आपने शेयर किए कि आप क्या कहना चाहती है, बट आई वुड लाइक यू टू से इट आउट लाउड.
0: आई थिंक आई डू अग्री देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडियन, बट देन व्हाट्स रॉन्ग विद दैट?
1: Okay. All right.
2: Thank you, ma'am.
0: Right?
2: Thank you, ji. Thank you so much aapke call ke liye. Thank you. Have a nice day.
0: Thank you.
2: You too. Bye. So, good morning aapko. Aapka kya kehna hai?
3: Good morning, ji. I agree.
2: You agree.
3: The statement Minister Peter made. So, usme definitely two type ke Indians hai. एक जो health fast उस पे bend है कि जी उन्होंने अपना वर्जन यहाँ लेके आना है. आई वॉन्ट सिंगल आउट कम्युनिटीज, बट जब हम अपने रिलीजन को बहुत ज्यादा शोकेस करते हैं पब्लिकली सड़कों पे जाके, यू नो एवरीबॉडी हैज एंटाइटलमेंट ऑफ शोइंग देयर रिलीजन, बट आप अपने घर में करें, मंदिर में करें, धर्म स्थानों पे करें, यू डोंट नीड टू मेक अ शोकेस अबाउट इट. ठीक है, जो खुश है वो आपके साथ जुड़ेगा, जो खुश नहीं है वो नहीं आएगा. तो आपको सड़कों पर जाके इसको दिखाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए.
2: Okay.
3: एक पुरानी कहावत है, जैसा देश वैसा भेस. तो आप इस देश में आए हैं, आपको इस देश का बनना पड़ेगा नाना करते हुए भी, क्योंकि दैट्स द चॉइस यू मेड. अगर आपको अपने कम्युनिटी से ज्यादा और वो वाला सारा फॉलो करना है, देन यू स्टे वे यू आर.
2: ओके,
3: आई थिंक दैट्स व्हाट विंस्टन पीटर आल्सो सेज इन मेनी वेज. एंड अगेन, आप उस चीज को अडेप्ट करेंगे तो आप एक ज्यादा होमोजीनियस तरीके से रहेंगे, यू विल एक्सेप्ट द कल्चर यू आर इन. बट कई लोग हैं जो कहते हैं जी हमारा कल्चर बेटर है इनसे, कि वो कहता कहा जाता है गोरों को क्या पता. तो फिर कुछ तो पता है उनको, जिस करके हम उनकी कंट्री में आए हैं अपनी कंट्री छोड़ के.
2: ओके जी, थैंक यू सो मच आपके भी राय के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.
3: थैंक यू
2: जी. गुड मॉर्निंग. हेलो जी, गुड मॉर्निंग जी. जी गुड मॉर्निंग.
4: आई एम 99% विद अंकल बेनी.
2: Oh God.
4: 99%. 1% when it comes to Indian cricket team, I support India. Otherwise, I know Uncle Vinny from his common friends as well. He's not that bad what he looks like.
2: Achha.
4: I think, but main 99% agree uska. Meri family bhi agree hai.
2: Sirf cricket ke maamle mein nahi, usse nahi khelne ka.
4: नहीं, 1% अंकल मैंने उसको बोल दिया. हाँ, रग्बी में आई एम विद ऑल ब्लैक्स
2: पूरा.
4: बट आई थिंक ही इज राइट मेरे हिसाब से.
2: ओके,
4: ये मेरे ही भी जो दोस्त थे इंडियन सर्कल में मेरे, तो वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे न्यूज को.
2: ओके,
4: मैं सीधा बोलता हूँ, अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो आप चले जाओ जहाँ आप खुश हो.
2: इंटरेस्टिंग, थैंक यू जी.
1: थैंक यू,
2: बहुत बहुत शुक्रिया आपके भी कॉल के लिए. गुड मॉर्निंग.
5: गुड मॉर्निंग
2: जी, आपका क्या कहना है?
5: I'm 100% disagreed with him.
2: Okay.
5: Yeah. Who are they to decide? Like, कोई भी हमें caller भी call कर रहा है. Who are they decide to tell us what we want to do? अगर हम आए हैं यहाँ पे, हमारी choice थी, ठीक है? आप जैसे भी रहे, तो मैं क्या भाई? अब हम रह रहे हैं, हम टैक्स भर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, तो अपनी रूट्स को तो नहीं बोलेंगे, दैट फॉर श्योर.
2: ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच आपके कॉल के लिए. वंडरफुल डे, थैंक यू. गुड मॉर्निंग.
6: गुड मॉर्निंग. आई जस्ट फील दैट यू नो एवरीवन इज अलाउड टू हैव देयर व्यूज ऑन व्हिच कंट्री दे वांट टू बी पेट्रियोटिक विद. सेम वे पीपल फ्रॉम न्यूजीलैंड हु आर इन ऑस्ट्रेलिया, डू यू थिंक दे विल से दे विल बी सिंगिंग प्रेजेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया? No, they will be singing praises of their own country. Shouldn't be criticized if we are singing praises of our own country.
1: Okay.
2: So
6: there's no harm in that.
2: Agree or disagree?
6: I agree and I don't see any harm or any flaw in that.
2: Okay, ji. Thank you. Aapke call ke liye. A wonderful day. Good morning.
7: Good morning.
2: Ji, aapka kya kehna hai?
7: I partially agree. There are definitely two types of Indians. और ये मैं देखता हूँ जब मैं travel करता हूँ trains में और you know कहीं you know जाता हूँ जहाँ पे जैसे specially trains के अंदर you see quite a lot of जो अभी recently आए हैं students हैं maybe you know they're talking back home और you know they're not aware of their public space. वो ना इस बात कर रहे हैं video call पे बात कर रहे हैं. And you could see the looks of other co-passengers that they are not comfortable or they are, you know, they want their quite peaceful time before they are traveling to office या फिर वापस आ रहे हैं office से. वो चीजें दिखती हैं थोड़ी बहुत और उसकी वजह से you know जो बाकी co-passengers को थोड़ी परेशानी होती है तो उस type का एक behavior सामने आता है कई बार because I commute daily. And you know जैसे जुलूस वगैरह हुए हैं अभी रिसेंटली जहाँ पे ब्रायन तमाकी ने आके भी इंटरवीन किया था तो आई डू नॉट एग्री विद व्हाट ही डिड बट यू नो पब्लिक डिस्प्ले एक कंटेन्ड एनवायरनमेंट में आप दिवाली फेस्टिवल होता है यू नो आप लोग कराते हैं बीएनजेड वालों करा रहे हैं तो दैट इज कंटेन्ड इन अ प्लेस प्रॉपर परमिशन है सब कुछ है कम्युनिटी ऑर्गेनाइज कर रही है एज अपोज टू यू नो एक रोड पे आप ब्लॉक कर रहे हैं ये सारी चीजों से मैं एग्री नहीं करता.
2: ओके,
7: डेफिनेटली टू टाइप्स ऑफ इंडियन बट आई स्टिल सपोर्ट माय कंट्री. क्रिकेट हो या फिर पॉलिटिक्स हो वी आर ऑलवेज इंक्लाइन टुवर्ड्स आवर कंट्री बट ऐसा नहीं है कि वी मीन बैड फीलिंग्स फॉर द कंट्री वेयर वी लिव इन.
2: ओके,
7: सो व्हाई कांट अ पर्सन हैव टू ओपिनियंस और सपोर्ट टू कंट्रीज इट्स मेक वी वो नहीं है वी कैन ऑल सपोर्ट मल्टीपल थिंग्स एज लॉन्ग एज दोस टू आर नॉट क्लैशिंग विद ईच अदर. In a harmful way.
2: Okay, जी.
1: Black Caps versus India?
2: इन्होंने बताया ना India.
1: Okay.
2: Cricket बोला था इन्होंने.
1: Thank you
2: जी. Thank you आपके भी call के लिए. Obviously India इन्होंने कहा. Thank you so much. So number of calls we've received. A few messages also. किसी ने लिखा है I agree with Mr. Peters. किसी ने कहा I agree with Mr. Peters. और किसी ने कहा है totally agree. So आज हमने ये सवाल उठाया and we asked to the community. ऑफ पीपल जिनके बारे में ये कहा गया और इंटरेस्टिंग आई वुड से जिस तरह से रिस्पॉन्स हमें मिला है कि सपोज इफ वी से आई थिंक इट वॉन्ट बी रॉन्ग इफ वी से 80% ऑफ द कॉलर्स अग्री और कॉलर्स ऑफ टेक्स्ट इज अग्री विद व्हाट मिस्टर विंस्टन पीटर्स हैज सेड. यस, अराउंड 80% एंड अराउंड 20% डू नॉट अग्री. There was only one caller who directly said कि आई 100% disagree. Two callers who kind of partially agreed on some situations or some situations pe wo disagree kar rahe hai. So that's why we're giving the benefit of doubt as to 20%. So interesting result jo hai samne aaye hai. And iske alawa ek aur ek message aaya hai. Inhone kaha hai, good morning, totally agree with Mr. Peters. If us Indians we're not happy how he's mentioned it all, but remember it was our choice to come here, so follow the country where you are. If not happy, go back to where we are from. Ye inhone kaha hai. I think ज़्यादा इंटरेस्टिंग सिनारियो तब होगा जब विंस्टन पीटर्स फाइंड्स आउट द फैक्ट कि द कम्युनिटी ही इज टॉकिंग अबाउट हैज समवट द सेम सेंटिमेंट्स और द सेम व्यूज जो वो शेयर करते हैं.
1: ऑब्वियसली देयर वुड बी सम पीपल इन सपोर्ट एंड सम अगेंस्ट वो सारी चीजें बट
2: रिमेंबर आज का हमारा व्हाट्स योर टेक टॉपिक जो हमने आपसे पूछा है वी हैव शेयर्ड अ पर्टिकुलर ऑडियो फ्रॉम एन इंटरव्यू जो किया गया था विंस्टन पीटर्स का ड्यूरिंग अ शो, और ये जो इंटरव्यू है इसके दौरान इन्होंने कुछ बातें कही, दैट दे आर टू टाइप्स ऑफ इंडियंस, वन जो फुली इस देश को एक्सेप्ट कर चुके हैं, इसे प्रायोरिटाइज करते हैं, एंड देयर इज द अदर टाइप्स ऑफ इंडियंस जो उस पर्टिकुलर कंट्री को प्रायोरिटाइज करते हैं जहाँ से वो आए हैं रदर देन न्यूजीलैंड. तो आप इस बात से एग्री करते हैं या डिसएग्री, ये आज का हमारा टॉपिक है. यू कैन शेयर योर व्यूज बाय सेंडिंग अस अ मैसेज नाउ ऑन 5599.
8: बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड, गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ, मैं लाऊं अपना ए गेम. ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स.

0: Breakfast Show with VJ and Pooja.
1: Chubo jao, papi ho. Chubo jao.
2: Accurate traffic.
3: Corfe Festival this Saturday.
4: Mostly cloudy, got a high of 21. Into the city, Northern Motorway, half an hour Constellation Drive to town, 50 minutes from Silverdale. Heavy at Silverdale and most of the way from Greville. Northwestern, 36 minutes, Massey to town. Heavy on and off from Upper Harbour, easing at St Luke's. Southern, 50 in from Manukau, slow from Manurewa, heavy Otahuhu to Green Lane. Southwestern, heavy northbound through Whitty, slow right up to the airport link.
3: Corfe Festival this Saturday in Warkworth. Live music, food trucks, free entertainment. Corfefestival.nz.
5: It's Mental Health Awareness वीक में एक पल निकालकर देखिए कि आप कैसा फील कर रहे हैं. स्लीप, मूड, एपेटाइट या रूटीन में चेंजेस इसका साइन हो सकते हैं कि इमोशनल सपोर्ट मदद कर सकता है. आप किसी अपने से एक सिंपल चेक इन के साथ रीच आउट कर सकते हैं. एशियन फैमिली सर्विसेज फ्री कॉन्फिडेंशियल इमोशनल सपोर्ट देता है. एशियन हेल्पलाइन 0800-862-342 पर कॉल करें. अगर आप या आपका कोई जानने वाला इमीडिएट डेंजर में है तो 111 पर कॉल करें.
6: क्या आपका लोन डिक्लाइन हुआ है? क्या आप हिम्मत हार चुके हैं? तो एक मौका मुझे देके देखिए. हाय, मैं हूं गुरु केंडोला फ्रॉम लॉजिक फाइनेंस. जो लोन्स डिक्लाइन और डिफिकल्ट होते हैं उनके अप्रूवल का मैं स्पेशलिस्ट हूं. लॉजिक फाइनेंस के गुरु केंडोला बातों में नहीं काम में विश्वास रखते हैं.
7: टर्म्स, कंडीशन, फीस एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई. कॉल लॉजिक फाइनेंस के गुरु केंडोला को ऑन 0800 लॉजिक जी, विच इज 0800-564-424.
8: Spotlight, it's the final day to save a mega 30% off store-wide, including Manchester Home Decor, Fabric Craft, Knitting Yarn Party, Curtains and Blinds. Yes, that's 30% off. Sale must end tonight. At Spotlight, it's what you make it.
9: Discounts apply to full-price products. Excludes clearance. See website for details.
10: Hey you, your scrolling just got rewarding. Renew 3 times in a row with Skinny to collect everyday rewards points. Skinny and everyday rewards accounts must be linked. See skinny.co.nz for eligible plans and T's and C's. Get the Skinny. Happy, happy.

0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Monaco.
0: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
2: तो आज का वन से टेक टॉपिक वी आर ब्रिंगिंग इट टू एन एंड और उसके साथ साथ सिर्फ एक ही एक्स्ट्रा मैसेज हमारे पास आया है. एक मैसेज इन्होंने किया है, कहा है कि यू हैव एनकाउंटर्ड इंडियंस हु आर बोर्न हियर. स्प्लिटिंग इंडियंस इनटू दोज हु हैव इंटीग्रेटेड एंड दोज हु हैवंट इज फार टू सिंप्लिसिस्टिक. तो थैंक यू सो मच. आपके भी मैसेज, आई डोंट अंडरस्टैंड कि इन्होंने वैसे किसके लिए कहा है. हमारे लिए कहा है कि विंस्टन पीटर्स के लिए कहा है. नो आइडिया, बट शुक्रिया आपके भी मैसेज के लिए. और जितने लोगों ने हमारे पास आज अपने अपने व्यूज शेयर किए, थैंक यू सो मच वंस अगेन आपके कंट्रीब्यूशन के लिए. फिलहाल
3: 14 मिनट रह गए हैं अब 9 बजने में. 9 पर न्यूज इन स्पोर्ट्स अपडेट जो है ये भी आपके लिए इस प्रोग्राम में हम लेकर आएंगे. लेकिन जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं और इसके अलावा और भी तमाम चीज़ें हैं जिसके बारे में तो बातें हम करते रहते हैं, लेकिन इनाम की बातें कैसे भूल सकते हैं.
2: बिल्कुल, और याद दिला दे कि अब आपके पास मौका है एक और एक शानदार इनाम जीतने का हमारी ओर से. हैरिंगटन लिविंग जो है ये आपको दे रही है अपॉर्चुनिटी टू विन $1,000 वर्थ ऑफ हैरिंगटन लिविंग के वाउचर्स, जहां से आप होम डेको या फर्नीचर वगैरह जो है अपना ये ले सकते हैं.
3: और ये अगर देखें तो इस पर जो इनाम है इसके बारे में आपको बताएं. हैरिंगटन लिविंग, जिनका जो हैरिंगटन लिविंग मैनुकाओ में स्प्रिंग सेल फिलहाल जारी है. ब्यूटीफुल फर्नीचर जो है ये आप ले सकते हैं. 60 मंथ्स इंटरेस्ट फ्री टर्म आपको दिया जा रहा है. टर्म्स एंड कंडीशंस डू अप्लाई. हैरिंगटन लिविंग मैनुकाओ आप जा सकते हैं और उनकी ओर से $1,000 वर्थ ऑफ होम डेको या फर्नीचर वाउचर अगर जीतना है, ये आप में से किसी एक को ही मिलेगा.
2: तो इसके लिए अब हम आपको दे रहे हैं 5 minutes and all you need to do is HL यानी Harrington Living इसका शॉर्ट फॉर्म लिखना है. फिर उसके बाद में आपको अपना नाम लिखकर हमारे पास 5599 पर सेंड कर देना है. रिमेंबर नेक्स्ट 5 minutes में HL लिखे, अपना नाम लिखे और 5599 पर सेंड कर दे. Whenever you text, also remember standard carrier rates apply and terms and conditions के लिए around the promotion hum.rover.nz आप विजिट कर सकते हैं.
4: Let's go.
0: Straight from the heart. Unlock your property's true sale value with

0: accurate traffic.
1: Experience Picasso like never before.
2: Mostly cloudy, got a high of 21. Into the city, Northern Motorway, half an hour. Constellation Drive to town, 50 minutes from Silverdale. Heavy at Silverdale and most of the way from Greville. Northwestern, 36 minutes, messy to town. Heavy on and off from Upper Harbour, easing at St Luke's. Southern, 50 in from Manukau, slow from Manurewa, heavy or Tahuhu to Green Lane. Southwestern, heavy northbound through Whitty, slow right up to the airport link.
1: Picasso, designed by Paul Smith, 80 original works, on now at Auckland Art Gallery.
3: You know a restaurant's good when you can't get a table for 3 weeks. Just like it's a great sign if a specialist is booked till next month. And if a builder can't fit you in till the summer, you know it's probably worth the wait. So when we tell you that Diocesan School for Girls is generally booked 2 years ahead, that should tell you everything you need to know. So if you're thinking about what's next for your daughter, join us at our open day on Thursday, the 22nd of October from 9 till 11 a.m. Register at diocesan.school.nz.
4: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना। उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस, ईट बेटर लिव बेटर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स।
5: फ्री गोल्ड कॉइन्स ऑन डायमंड ज्वेलरी, सीरियसली माही?
6: यस बेबो,
5: कैच क्या है?
6: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के साथ सेलिब्रेशंस को और भी खास बनाओ। डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेसेस पर पाओ फ्री गोल्ड कॉइन्स, साथ ही सिलेक्टेड ज्वेलरी पर डायमंड वैल्यू और मेकिंग चार्जेस में अप टू 40% ऑफ का फायदा उठाओ।
5: आई स्टिल कांट बिलीव इट, नो कैच।
6: कैचेस सिर्फ मैचेस में होते हैं बेबो। दिस इज योर फेस्टिव गिफ्ट फ्रॉम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, बॉटनी टाउन सेंटर, ईस्ट ऑकलैंड,
7: PNC सप्लाई।
8: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
9: brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Manukau, big on style, great on price, perfect for your home. Harrington Living Manukau.
8: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.

0: Glad I got my enrollment sorted the other day.
1: See, I told you it was easy.
2: Enrollment for voting? I still haven't done mine. The election isn't until November. I've got time, right?
1: No, not this year. You need to be enrolled by the 25th of October. You can't enroll and vote on the same day.
2: Really? What if I miss it?
1: Well, your vote won't count for this year's election.
2: Achcha! You've convinced me. I'll enroll tonight.
3: Last chance to enroll is midnight 25 October. Enroll now at vote.nz. Brought to you by the Electoral Commission.
4: Check. Brought to you by Mann Tyres. For all kinds of tyres and mechanical services, open 7 days. Call Mann Tyres on 0800 00 00 10.
5: Good morning, it's Simitik Nobajri here.
6: Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
7: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 9. Serious failures have been uncovered at the Teaching Council for failing to intervene as a sex offender fronted classrooms. A review found Timothy Fisher could have been excluded much sooner with at least 10 opportunities over a decade to act against him. He was jailed last year, including for indecent assault against 9 girls. Education Minister Erica Stanford says the children should have been protected and they were badly let down. The Teaching Council apologises. One person has died following a crash in Waikato this morning. The single vehicle crash happened on State Highway 26. 4 in 5 young people are confident they'll eventually buy their own home. Trade Me found most plan to use their KiwiSaver, despite only a third seeing property as a good investment. Spokesperson Gavin Lloyd says they're willing to make sacrifices.
8: Smaller houses, renting out a room in a house, shared ownership.
7: Actress Selma Blair has been hospitalised after reportedly trying to open a plane door mid-flight. Police responded to a call about a physically abusive passenger on board a Delta Airlines flight arriving in Los Angeles. TMZ reports she bit one flight attendant and punched a second. The actress also allegedly assaulted a nurse and a police officer. To sport, where patience is paying off for Beauden Barrett, the 35-year-old made his first All Blacks start of the year in last weekend's win over the Wallabies at Eden Park. Barrett says his non-selection earlier in the year took its toll mentally.
9: I'd be lying if I said that it hasn't affected me, but the important thing is just being able to bounce back.
7: The second test is on Saturday. The Wallabies had a training session in Sydney with the Kangaroos, who face the Kiwis in the Rugby League World Cup opener on Thursday night.
6: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
10: World's best. Hamari koi branch nahi hai.
6: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
11: 17 degrees temperature abhi Auckland mein aap feel kar rahe hain. Aaj ka high 21, overnight kam se kam 14 degrees. Aaj badal chaye rahenge, kabhi kabhar subah aur sham ke waqt kuch barish jo hai ye bhi ho sakti hai. Sunset 7:36 pm par hoga.
6: The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
12: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Manukau. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Manukau.
6: What's going on? Kya bakte ho?
13: Are kehna kya chahte ho?
5: You know, आज की क्या बकते हो स्टोरी आपके लिए हमने कराई है. It's all the way from Thailand, जहां पर कहा गया है कि एक वीडियो ये सामने आया from the 4th of October, जिसे शेयर किया गया ऑनलाइन, और दिस वीडियो वेंट वायरल आफ्टर द रिएक्शन जो कैप्चर किया गया था इसमें. अपेरेंटली इसमें दिखाया गया है कि दो रेस्क्यू ऑफिसर्स हैं जो थाईलैंड के किसी एक शहर के स्ट्रीट से एक लाश जो है ये लेने आए. एंड दिस पर्टिकुलर डेड बॉडी इज ऑफ अ स्ट्रे डॉग, जो उनको वहाँ पर रिपोर्ट की गई थी. एंड देन दे वेंट टू पिक इट अप, और उसे लेकर वो जा रहे थे आई गेस टू क्रीमेट इट राइटफुली. रेसिडेंट जो है एलिया, दे हैड कॉल्ड द रेस्क्यू टीम, और उन्होंने रिपोर्ट किया कि एक डॉग जो है ये वहाँ पर उनके स्ट्रीट पर मृत जो है ये पड़ा था. एंड द डेड डॉग जो है इनको वहाँ से क्लियर करने के लिए इस रेस्क्यू टीम को बुलाया गया. सो द टीम व्हेन दे टुक द डेड बॉडी, दे पुट इट इन द ट्रक, और वो चल पड़े अपनी मंजिल की ओर. हाउएवर व्हाइल दे वर गोइंग टुवर्ड्स व्हेयरएवर दे वर सपोज्ड टू गो, अचानक से उनके गाड़ी में, उनके ट्रांसपोर्ट में उनका जो मरा हुआ कुत्ता था वो जिंदा हो गया, उठकर ऐसे बैठ गया. और फिर सांस ले रहा था और उनको देख रहा था कि ये क्या हो रहा है. एंड दिस होल मोमेंट वाज कैप्चर्ड बाय द अदर टू पीपल हु वर इन द ट्रक, द अदर टू रेस्क्यूअर्स अपार्ट फ्रॉम द ड्राइवर, जिन्होंने ये पूरा यू नो मोमेंट जो है ये कैप्चर किया एक वीडियो में और फिर इसे इंटरनेट पर पोस्ट किया था. इट इज स्टिल अनक्लियर कि एक्चुअली हुआ क्या था और कैसे इस डॉग के बारे में प्रिज्यूम किया गया था कि इट वाज डेड, और वेदर वो एक्चुअली में डेड थे या फिर अनकॉन्शियस हो गए थे या सो रहे थे, नो आइडिया. वैसे डॉग अगर सो रहा हो उसे आप उठाओगे तो जाग जाएगा, बट मोस्ट प्रोबेबली दिस डॉग वाज अनकॉन्शियस, दैट्स व्हाट दे कैन मेक आउट. क्योंकि ऐसे में किसी एक मृत डॉग का जिंदा हो जाना इज क्वाइट शॉकिंग फॉर द टीम, बट दे आर सेइंग, दे आर प्रिज्यूमिंग कि हो सकता है कि वो बेहोश था और उसे मृत जो है ये मान लिया गया, जिसके बाद चलकर उनको रिपोर्ट किया गया था. So this whole video is actually going quite viral. और जो rescue team थे जो लेने गए थे इस dog के लाश को, वो शुरू में तो काफी घबरा गए डर के मारे, they just you know moved to one corner of the vehicle, of the moving vehicle, और एक corner में ही तुपक कर बैठे थे वो. But then later on I guess they realized कि शायद you know it's not that ये dog जो है ये मर कर जिंदा हो गया, it's basically कि ये dog जो है शायद बेहोश
14: था.
5: Yes. Okay. So the whole video is going quite viral. और अगर आपको मौका मिले तो आप जरूर चेक आउट कीजिएगा.
14: इस घंटे थोड़ी देर बाद कम्युनिटी की खबरें हम लेकर आएंगे और प्लस एक दिया एक कहानी,
5: $300 जीतने का मौका भी आपको हम देंगे इसके साथ. बट राइट नाउ बिफोर यू मूव ऑन, मेंटल हेल्थ, ये है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वीक एंड इट्स दैट टाइम जहां पर वी हैव टू टेक अ मोमेंट, रीच इन एंड नोटिस हाउ यू आर फीलिंग. चेंजेस इन स्लीप, मूड, एपेटाइट या रूटीन कैन बी साइंस दैट इमोशनल सपोर्ट मे हेल्प. You can also reach out to someone you care about with a simple check-in. Asian Family Services jo hai, they provide free confidential emotional support through Asian Helpline 0800-862-342 par. 0800-862-342 par. If you or someone you know is in immediate danger, aap 111 par call kar sakte hai.

0: going on?
1: What's up?
0: What's up, Auckland?
2: चलिए व्हाट्सएप ऑकलैंड की बारी आई है एंड लेट्स हैव अ लुक कि क्या कुछ हो रहा है हमारे आसपास हमारी कम्युनिटी में।
3: नवरात्रि सेलिब्रेशंस में आप जाकर हिस्सा ले सकते हैं श्री राम कृष्ण मंदिर 25 ऑनस्लो मेनुकाउ में और ये अगले मंगलवार तक जारी रहेगा। गरबारास और डांडिया भी हर दिन कथा के बाद यहाँ पर होता है।
2: राम कृष्ण मंदिर 25 ऑनस्लो मेनुकाउ में या माफ कीजिएगा श्री हनुमान मंदिर 14 बे पार्क प्लेस बर्गडेल नोट शो में भी नवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है फ्रॉम 6:15 PM और यहाँ पर डीजे गरबा फ्रॉम 8:10 PM टू 9:30 PM तक रहता है जिसके बाद भजन जैमिंग एंड डीजे गरबा 18 अक्टूबर को 6:30 PM से रहेगा।
3: श्री आदिशक्ति दुर्गा माता मंदिर 38A वॉम्सली रोड ओटहू में रात 7 से लेकर 9 बजे तक कथा होती है
2: और उसके अलावा दिव्य शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट यहाँ पर भी ट्यूजडे 20 अक्टूबर तक नवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा एट द केव 5/57 कैवेंडिश ड्राइव मेनुकाउ। ये हॉल है जो कि राइट ऑपोजिट वे हाउस है। यहाँ पर वैसे गरबा डांडिया और हुड्डा तासा रास जो है ये डेली होता है आफ्टर कथा।
3: माँ दुर्गा मंदिर 4/3 ऑनस्लो पापाटोयोटो में हर रात 7 बजे से कथा होती है। कन्या पूजन 18 और 19 अक्टूबर को होगा
2: और इसके साथ साथ आपको याद दिला दे श्री राम मंदिर 11 ब्रिक स्ट्रीट हेंडरसन यहाँ पर भी अंटिल 20 अक्टूबर हर रोज 6 PM से लाइव गरबा के साथ फ्रॉम 8:30 PM आप नवरात्रि का पर्व जो है ये मना सकते हैं।
3: संप्रीति द्वारा जो सालाना दुर्गा पूजा है ये 17 और 18 अक्टूबर को होने जा रही है। इसमें आप मुफ्त में हिस्सा ले सकते हैं दोनों दिन। ट्रेडिशनल दुर्गा पूजा और अंजलि भोग जो है ये आपके लिए अवेलेबल रहेगा और यहाँ पर आप जाकर कल्चरल परफॉर्मेंस जो है इसमें भी हिस्सा ले सकते हैं, देख सकते हैं दोनों रातों को सिंदूर खेला और कई अन्य ट्रेडिशनल सेलिब्रेशंस वगैरह जो है ये रहेगा। तो जो बंगाली कम्युनिटी है किस तरह से दुर्गा पूजा जो है ये करते हैं इसका पता आपको चलेगा। 17 और 18 अक्टूबर को फ्रीमेंस बे कम्युनिटी हॉल आप पहुंच सकते हैं और इसमें हिस्सा ले सकते हैं।
2: एंड ऑल्सो रिमाइंडिंग यू ऑल की मेनोपॉज ग्लोबल प्रेजेंस वर्ल्ड मेनोपॉज डे ये सेलिब्रेट करते हुए ग्लोबल पावर सर्ज एक फ्री ऑनलाइन इवेंट एक फ्री ऑनलाइन कोर्स लेकर आ रहे हैं न्यूजीलैंड में जिसे आप जरूर अटेंड कर सकते हैं। globalpowersurge.com यहां पर आप विजिट करते हुए फॉर फ्री रजिस्टर कर सकते हैं और ये जो फ्री कोर्स है इसमें 4 फ्री गाइड्स आप एक्सेस कर सकते हैं। देयर इज ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ स्पेसेस अवेलेबल जिसमें आप भी एनरोल कर सकते हैं। सो इफ यू वांट टू एक्सेस दिस फ्री कोर्स ग्लोबल पावर सर्ज द्वारा वर्ल्ड मेनोपॉज डे के तहत तो आप जल्द से जल्द globalpowersurge.com विजिट करते हुए खुद को जरूर रजिस्टर करें।
0: द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा।
4: हे देखो आ गए।
5: हे चैट जीपीटी, दिवाली आने वाली है, ऐसा कोई आइडिया है कि मेरा दिवाला भी ना निकले और दिवाली भी मन जाए?
6: अगर आप अपना लिस्ट शेयर करेंगे तो मैं आपको पैसे बचाने के आइडियाज दे सकता हूँ।
5: बढ़िया है। अच्छा, ग्रोसरीज लेना है, पूरे घर की पेंटिंग करवानी है, नया सोफा लेना है, इतनी भाग दौड़ करनी है तो नेचुरली गाड़ी में फ्यूल भी तो चाहिए। और हाँ, कोई ऐसा स्कीम है क्या कि मेरे पैसे अकाउंट से जाए नहीं बल्कि अकाउंट में आए?
6: इंटरेस्टिंग। और कुछ?
5: बस इतना ही।
6: सर, मैं चैट जीपीटी हूँ, अंबानी नहीं, हमसे ना हो पाएगा।
7: दिस दिवाली लिसन टू हम ऑन 104.2 FM और रोवा एंड टेक पार्ट इन फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून एंड गेट इन द ड्रॉ टू विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस लाइक ग्रोसरी वाउचर्स, फ्यूल वाउचर्स, होम डेको एंड फर्नीचर वाउचर्स, बिल्डिंग एंड गार्डन सप्लाई वाउचर्स एंड कैश। फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स, हैरिंगटन लिविंग, मनोको, ब्यूटिफुल फर्नीचर विद 60 months इंटरेस्ट फ्री, NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स, लॉजिक फाइनेंस and Guru Gandola, a household name in finance and insurance industry. And Fortune, bring home the fortune.
8: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते।
9: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा,
10: अब हमारा क्या होगा?
11: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना
12: तो क्या करें?
13: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।
2: The kids depend on us for everything. Meals, rides, band-aids, bedtime stories. But who do we depend on?
4: Hi, I'm Nitesh Hira from Assure One. School holidays remind us how much our families rely on us. My job is making sure reliance never becomes a risk. Helping you understand your options so your family is covered whatever happens. Call Assure One on 0800-77-HIRA or visit assureone.co.nz. North and Vale Advisory Limited. Trading as Assure One is a licensed financial advice provider.
10: India aa raha hai Auckland and the Blue Tigers need your voice behind them. Dekhiye India ko All Whites ki against Go Media Stadium Thursday 12th November ko. Ek rare chance apni national team ko New Zealand ki zameen par live dekhne ka. Bring the family, wear your colours and fill the stadium with pride. Adult tickets sirf $20 se shuru, kids $10 se plus booking fees. Book now at Ticketek and be there for a historic night.
12: Get ready for massive savings at Carpet Court and Curtain Studio. Save on carpet, hard floor, rugs, curtains and blinds. Don't miss these unbeatable deals. Only at Carpet Court and Curtain Studio. 3 days only. Starts Thursday.
14: A message for all parents. Kids age 12 and under can now ride their bikes on footpaths, and parents or caregivers can ride with them. Remember to look out for children on bikes when driving in and out of driveways. Learn more at nzta.govt.nz.
15: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes Bombay biryani ho ya butter chicken korma ya chana masala recipes chahe vegetarian ho ya non vegetarian Shan recipe mixes har dish ko bilkul ghar jaisa banati hain to intezar kis baat ka aaj hi apne nazdeeki supermarket se Shan recipe mixes khareediye Shan Foods asli swad har ghar ke liye
16: सुनो आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया घर बेचने को कह रहे थे
17: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं डेवलप करना बेहतर लगता है पर पैसों का डर है
16: इसीलिए NZPMI से बात कर लो वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं
18: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए NZPMI टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस कॉल पॉल ऑन 0800-4-NZPMI
19: This Diwali, send love home with Lotus Foreign Exchange. Enjoy great rates on international money transfers. Visit the new Lotus West City Henderson branch or your nearest Lotus branch. Visit lotusfx.com or call 0800-442-288. Lotus Foreign Exchange, getting more value from your money. Happy Diwali. Terms and conditions apply.

0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Manuka. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Manuka.
2: 22 मिनट हो रहे हैं समय हमारे स्टूडियोज में 9 बजकर और वादे अनुसार अब समय है कि आप हमारे पास 0800 00 4866 पर कॉल करें और हमें बताएं कि हु इज दैट

0: वी आर अवेयर ऑफ इट, बट हमें आज उन शख्स को याद करना है जिनके बारे में शायद नॉर्मली आपको नहीं पता.
1: पता होता है बट
0: अप्रिशिएट नहीं करते आप.
1: हाँ, और वो शायद आपके फैमिली सर्कल से बाहर होते हैं. तो आओ 800-00-4866 इस नंबर पर आप कॉल करें और आज आप हमें बताइए कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में जो सबसे उजाला दिया है वो कौन है.
0: ओके,
1: जिन्होंने मे बी आपके प्रोफेशनल लाइफ का बेस्ट एडवाइस आज तक का आपका आपको दिया हो.
0: Interesting. Okay.
1: Who would that person be?
0: Someone जिन्होंने आपको professionally, you know, enlighten किया या grow करने में help किया.
1: Yeah.
0: Good morning, हम.
1: Hello.
0: चले गए.
1: अच्छा चले गए.
0: हाँ, आए line पर, मैंने receive भी किया call. पर कट कर दिया.
1: अच्छा कोई नहीं, तो आप चाहें तो कॉल कर सकते हैं. $300 कैश, बस इतना आप बताएं और आपका नाम हम ड्रो में शामिल करेंगे. इस दिवाली के मौके पर $300 आप जीत सकते हैं. कोई एक शख्स हम सभी के लाइफ में तो ज़रूर ऐसा होता है जो हमारे काम को लेकर, हमें हमारे करियर को लेकर कुछ ना कुछ एडवाइस हमें देता है.
0: उत्साहित करते हैं बेसिकली. हाँ,
1: एंड हु डू यू थिंक इन योर लाइफ इज दैट पर्सन जिन्होंने आपको बेस्ट एडवाइस दिया है आज तक का, outside of your family circle. कोई दोस्त या फिर कोई कोलीग, कोई भी हो सकता है.
0: Yes, professional life से related हम पूछ रहे हैं सवाल. तो आज आप हमें बता सकते हैं who is that light of your life जिन्होंने professionally आपको enlighten किया, grow करने में आपकी help किया, फिर एक ऐसा advice आपके साथ share किया which has made your life much easier and better professionally अगर देखा जाए तो. And इसके लिए आप बस call कीजिए और share कीजिए.
1: Good morning, hello. हेलो
2: हेलो
1: जी, कैसे हो भाई?
2: या बढ़िया, आप कैसे?
1: गुड. क्या नाम है आपका?
2: संपत.
1: ओके संपत, तो आप बताइए संपत, आपकी जिंदगी में वो कौन से शख्स हैं जो हु केम एज अ लाइट इनटू योर लाइफ, जहां तक प्रोफेशनल करियर का सवाल है.
2: मैं जब मैं हिंदी में काम करता था, मेरा मैनेजर She was really great and she saw some potential in me and she suggested me to take a different path. And who worked. To be honest, I'm here just because of her in New Zealand.
0: Oh, that's beautiful.
1: Yeah, that's very nice.
0: So, ye jo manager hai aapki, ye India mein thi aapke saath.
2: Yeah.
0: So, unhone aapko guide kiya and that's how you are saying you ended up here in New Zealand and you followed a different path.
1: Would you want to share ki kya advice unhone diya tha?
2: हाँ, क्योंकि मैं आईटी में काम करता हूँ. आई यूज़ टू वर्क इन अ डिफरेंट टेक्नोलॉजी साइड ऑफ या फील्ड. सो शी सॉ सम पोटेंशियल इन मी एंड वो गाइड किया था कि मे बी यू आर वेस्टिंग योर टाइम हियर, बेटर यू टेक अनदर अदर टेक्नोलॉजी. एंड शी गाइडेड मी एंड शी इनफैक्ट शी स्पोक विद अदर टीम एज वेल. वो बात करके उस मैनेजर से डायरेक्टली मुझे इंटरव्यू शेड्यूल किया और उसके बाद आई मीन आई मूव्ड इनटू दैट टीम. And it really helped, to be honest.
0: That's amazing, yeah. Thank you so much, Sampath. Bahut bahut shukriya aapke call ke liye. And thank you so much for sharing that. Thank you. You're part of the draw, so all the best to you.
1: तो आज संपत का नाम इस ड्रो में शामिल हुआ है. ऐसी और भी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती रहेंगी.
3: एक दिया एक कहानी, brought to you by Fortune Foods with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win. Big Bazaar, your one-stop Diwali superstore. Shop online at bigbazaar.co.nz. Indelible Homes, your building experts known for subdivisions. Visit indelibleHomes.co.nz. Finance World, your trusted finance advisory in South Auckland. Lotus Foreign Exchange, getting more value from your money. Arjun Supermarket and Food for Less, located in New Lynn and Botany. Sona संसार, परंपरा की चमक, त्योहार की पसंद. Shine out with specials. Visit Sona Sansar, Papa Doi and Mount Roskill. Amma's Food, 100% authentic and pure as mother's love. And PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today. Bollywood's most wanted.
4: Gundi khad rao ya seedha andar aao.
5: Main laun apna A game.
3: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: सो हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स पर आपको याद दिला दे, दिस इज व्हाट्स गोइंग ऑन, जहां पर हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं कुछ जरूरी अपडेट्स. पिछले घंटे व्हाट्स अप टेक में हमने इलेक्शन स्पेशल के दौरान बातें की थी कि विंसेंट पीटर्स जिन्होंने इंटरव्यू दिया उस पर चर्चा भी हमने किया, बट डोंट फॉरगेट हमारा खुद का एक इलेक्शन स्पेशल भी ड्राइव शो में चल रहा है, दैट यू कैन डेफिनेटली चेक आउट. और इस बार ड्राइव शो में ये इलेक्शन स्पेशल के दौरान सैंडी हेन रूसबे जो है, दे हैव पुट अप क्वेश्चंस टू लेबर कैंडिडेट खरग सिंह जो कि तकनीनी से हैं, और यू कैन हियर व्हाट ही हैड टू से स्मॉल बिजनेसेस के बारे में, कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में, सुपरमार्केट कंपटीशन, रिटेल क्राइम एंड कम्युनिटी सेफ्टी के बारे में, यहाँ तक कि पुलिसिंग, ट्रैफिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में उनका विजन फॉर तकनीनी इन साउथ ऑकलैंड क्या है. दे ऑल्सो गॉट अ चांस टू टेक ऑन द लेटेस्ट पॉलिटिकल डिबेट जो कि क्रिस हिपकिंस और क्रिस्टोफर लक्सन के बीच हुआ था, उस पर भी कुछ चर्चा उन्होंने की है. एंड इफ़ यू वॉन्ट टू नो वट डज लेबर हैज प्लान्स ऑन, और क्या कुछ पॉलिसीज जो है लेबर की ये मीन कर सकती है फॉर आवर कम्युनिटीज़, और उनके क्या जवाब रहे हैं, तो ये जो पूरा का पूरा इलेक्शन स्पेशल है ये आप सुन सकते हैं बाय टेक्सटिंग ड्राइव 5599 पर ड्राइव लिखकर भेजेंगे तो ये इलेक्शन स्पेशल जो है ये आप चेकआउट कर सकते हैं.
1: दूसरी तरफ मत भूले ऑल व्हाइट्स वर्सेस इंडिया 12th ऑफ नवंबर को ये रहेगा ऑकलैंड में, और उसके बाद अगला मैच जो है ये 15th ऑफ नवंबर को क्राइस्टचर्च में होगा. पहली बार इंडियन फुटबॉल टीम जो है ये न्यूजीलैंड आ रही है. वैसे दो बार दोनों टीमों के बीच खेल हो चुका है, 1981 में इंडिया न्यूजीलैंड नील ऑल से बराबर ठहरे, और 2018 में ऑल व्हाइट्स की जीत इंडिया के खिलाफ 2-1 से हुई थी. टिकट्स अब आप ले सकते हैं, और साथ ही में एक डबल पास जीतने का मौका हम आपको दे रहे हैं टू गो एंड वॉच द मैच एट गो मीडिया स्टेडियम 12th ऑफ नवंबर को. अगर आप ये मैच देखना चाहते हैं तो आप हमारा जो फेसबुक पेज है ये विजिट करें. फीचर्ड फोल्डर में आपको कंपटीशन पोस्ट मिलेगा, वहां पर आपको बस इतना करना है अपने किसी एक फ्रेंड या फैमिली मेंबर को टैग करें और प्रिडिक्ट करें कि इस मैच का फाइनल स्कोर क्या होगा. इतना ही करके आप ड्रॉ में शामिल हो जाएंगे और आप जीत सकते हैं एक डबल पास टू वॉच द ऑल व्हाइट्स वर्सेस इंडिया सॉकर मैच ऑन 12th of November.
0: Remember, coming up next, आपके लिए लेकर आएंगे डेली राउंड अप, जहां पर we will be talking about what's making news in New Zealand today.
2: Mornings made better.
3: दो फ्राइंडा, चार टोस्ट, बटर जैम और एक स्पेशल चाय.
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: 80s के रेट्रो गाने.

0: डिस्को हो या रॉक एंड रोल, डाउनलोड रोवा टू लिसन हम 80s जुकबॉक्स।
1: इंतहा हो गई इंतजार की।
2: हम व्हाइट सेपरेटेड, पॉकेट्स चेक्ड, कोल्ड वॉश, जेंटल साइकिल, पाउडर मेजर्ड जस्ट राइट। You close the door and push start. Then you see it. One red sock. One sock can ruin the whole wash. It's the same when you put soft plastics in your recycling bin. Let's sort it out. Search Auckland Council recyclable items. Tāmaki Tūtaki. All together Auckland.
3: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते।
4: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा,
5: अब हमारा क्या होगा?
6: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना,
4: तो क्या करें?
7: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना। That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
8: You know a restaurant's good when you can't get a table for 3 weeks. Just like it's a great sign if a specialist is booked till next month. And if a builder can't fit you in till the summer, you know it's probably worth the wait. So when we tell you that Diocesan School for Girls is generally booked 2 years ahead, that should tell you everything you need to know. So if you're thinking about what's next for your daughter, join us at our open day on Thursday, the 22nd of October from 9 till 11 a.m. Register at diocesan.school.nz.
9: Thinking of switching lanes? How about insurers? Switching to Tower is easy. Plus, get $100 off new comprehensive car insurance. Use promo code EASYSAVE. T's and C's apply. Switch to Kiwi, switch to Tower.
10: This Diwali, send love home with Lotus Foreign Exchange. Enjoy great rates on international money transfers. Visit the new Lotus West City Henderson branch or your nearest Lotus branch. Visit lotusfx.com or call 0800-44-2288. Lotus Foreign Exchange, getting more value from your money. Happy Diwali. Terms and conditions apply.
11: मैं हूँ हरीश लोडिया। दिवाली की धूम एट सोना संसार, नया स्टॉक्स ऑफ 22 कैरेट ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी की स्टॉक्स आ गया है, सिल्वर स्टॉक्स और सोने और चांदी की बिस्किट्स आ गया है, लक्ष्मी गणेश और प्योर चांदी के मूर्तियाँ वो भी आ गई है, डायमंड ज्वेलरी इंक्लूडिंग न्यू अराइवल्स ऑल एट हाफ प्राइस। सोना संसार 190 स्टोरार्ड रोड माउंट रॉस्किल या फिर 138 ग्रेट साउथ रोड पेपरटॉय कॉर्नर ऑफ ईस्ट तमाकी एंड ग्रेट साउथ रोड। हमारा फोन नंबर 6293333। फॉर स्पेशल डील्स विजिट आवर वेबसाइट sonasansar.co.nz।
12: दिवाली बस आने ही वाली है, तो द कॉस्मेटिक क्लिनिक सिल्विया पार्क हैज अ स्पेशल ऑफर। अब से लेके मंडे तक गेट 50% ऑफ सिलेक्टेड स्किन एंड लेजर ट्रीटमेंट्स। स्किन रिजुविनेशन से लेके लेजर ट्रीटमेंट्स तक द एक्सपीरियंस टीम विल हेल्प क्रिएट अ प्रोग्राम टेलर फॉर यू। और सबसे बढ़िया बात, आपकी कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। बुक ऑनलाइन एट thecosmeticclinic.co.nz। सिलेक्टेड ट्रीटमेंट्स पर 50% ऑफ ऑन नाउ। द कॉस्मेटिक क्लिनिक सिल्विया पार्क की तरफ से हैप्पी दिवाली।
13: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
14: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Monaco.
15: What's going on?
16: डेली राउंडअप का वक्त है और कल आखिरी टाइम के स्कूल का पहला दिन था, लेकिन वाइकाटो के एक स्कूल के कुछ बच्चे जो हैं ये स्कूल समय पर नहीं पहुंच सके क्योंकि बस उनको लेने के लिए नहीं आई। बस लेने के लिए क्यों नहीं आई? गाहिनापौरी स्कूल जो है ये टियावामुटू और हैमिल्टन से तकरीबन 15 मिनट दूर है और सब कुछ प्लान अनुसार ही होना था, लेकिन सुबह सुबह जो इस ग्रामीण प्राइमरी स्कूल का जो कम्युनिटी पेज है वहाँ पर डिटेल शेयर किया गया कि देयर इज नो बस रनिंग, किसी ने बस से डीजल की चोरी कर ली।
17: माय गॉड,
16: तो उसके बाद तहकीकात जो है ये की जा रही है और ये कंट्री स्कूल अहोपो में लोकेटेड है जहां पर ये घटना घटी थी।
5: दूसरी ओर एक नया रिपोर्ट जो है ये सामने आया है, दिस इज आल्सो इन कंसर्न विद किड्स, जहां पर काफी कंसर्न्स रेज किए जा रहे हैं अबाउट एक्सेस टू स्पेशलिस्ट रेस्पिरेटरी केयर फॉर चिल्ड्रन इन न्यूजीलैंड, जहां पर जो ट्रीटमेंट है पोटेंशियली ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ रहते हैं इसके ऊपर। एक ऑडिट जो है ये सामने आया है अस्थमा न्यूजीलैंड द्वारा एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड, जिसमें ये पता चला है कि देयर आर जस्ट 9 पब्लिक पीडियाट्रिक रेस्पिरेटरी स्पेशलिस्ट्स जो मोर देन 600,000 बच्चों को सर्व करते हैं अक्रॉस न्यूजीलैंड, 9 फॉर 600,000 चिल्ड्रन। और ये जो सारे के सारे 9 पीडियाट्रिक रेस्पिरेटरी स्पेशलिस्ट हैं ये ऑकलैंड और क्राइस्ट चर्च में बेस्ड है। इसका मतलब ये है कि बाकी के 4 डिस्ट्रिक्ट जिनमें चेरावाफिटी, फंगानुई, साथ में वैरारापा और वेस्ट कोस्ट शामिल है, यहाँ पर कोई भी रेस्पिरेटरी फिजिशियन मौजूद नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड के एक्सपर्ट हैं एमी चेन, इनका कहना है कि सम चिल्ड्रन दे एक्चुअली रिलाई ऑन स्पेशलिस्ट जो ट्रेवल करते हैं फ्रॉम मेजर सेंटर्स, और वो वॉर्न कर रही हैं कि दैट द सिस्टम कुड बी वल्नरेबल अगर डॉक्टर्स रिटायर हो जाए या फिर वो नौकरी छोड़ दे। तो ये रिपोर्ट जो है हाईलाइट करता है द इम्पैक्ट ऑफ रेस्पिरेटरी इलनेस विद एस्थमा द लीडिंग कॉज ऑफ पोटेंशियली एक अवॉइडेबल हॉस्पिटल एडमिशन जो अमंग चिल्ड्रन अंडर 5 पाया गया था इन द ईयर 2025। और हेल्थ न्यूजीलैंड ने कहा है कि उनको ये ऑडिट भी मिल चुका है, स्ट्रेटजी भी मिल चुकी है और फिलहाल वो इसे रिव्यू कर रहे हैं, फाइंडिंग्स जो है ये स्टडी कर रहे हैं बिफोर कमेंटिंग या रेकमेंडिंग एनीथिंग इन रिगार्ड्स विद दिस।
16: तो ये रहा आज का आपका डेली राउंड अप।
14: लेट्स गो
13: स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local

0: by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction. Do baate.
1: पहली बात आज की, कभी मासूमियत इतनी थी कि हर चीज पर भरोसा था. कभी मासूमियत इतनी थी कि हर चीज पर भरोसा था, अब तजुर्बा इतना है कि सच्चाई पर भी यकीन नहीं होता.
2: ओह, दैट इज डीप मैन.
1: और आज की दूसरी बात
2: जी,
1: अपनों के साथ चले या ना चले, अपनों के साथ चले या ना चले, लेकिन अपनों के साथ चाल ना चले.
2: Again, very nice. मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, वो ये कि आपकी दो बातें जो होती है ये actually makes me thinking. I don't know about everyone else जो सुनते हैं, but मैं तो बहुत सोचती हूँ इसके बारे में. एंड दूसरी ओर ये भी कह सकती हूँ कि बहुत से लोग हमारे पास मैसेजेस भी करते हैं कि आपकी जो दो बातें होती है ये बहुत कमाल की होती है, आई ओपनर्स होती है बेसिकली. बट आई फील लाइक कि दो बातें ना जब हो तो आपको ही बोलनी चाहिए, बिकॉज मैं थोड़ा ऐसे एस्टोनिश्ड हो जाती हूँ ये सुनकर. और मेरा जो रिएक्शन है शायद वर्बली इतना अच्छा नहीं होता जितना मेंटली मैं अपने दिमाग में प्रोसेस करती हूँ ना. सो फ्रॉम टुमारो विल ट्राई दिस, आई विल कीप शट. एंड आप जब दो बातें शेयर कर रहे हैं, विल जस्ट शेयर इट इन वेरी मच साइलेंस में. बट आज की दो बातों के साथ
1: अब तो जाने का टाइम हो चुका है. एंड विल टेक योर लीव टू बी बैक टुमारो
2: Sharp 6 a.m. with the breakfast show with Vijay and Pooja. Tab tak ke liye apna aur apno ka khayal rakhiyega.

0: driving you home? The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हुआ.
2: ये गलत बोल दिया यार.
1: और पहनता भी नहीं है उसको.
2: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूँ मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
1: इंटरेस्ट
3: ब्रांड हो गया अभी.
2: अभी ब्रांड हो गया ना.
1: रुस्बे के बाल लगे उस.
0: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Monaco and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Monaco and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GW and Havel and Omura J Crew.
4: Welcome to Kebabs Kitchen. I am Chef Alex, and this is my guest Sarah.
5: क्या बनाते हैं कबाब को स्पेशल शेफ एलेक्स?
4: परफेक्ट ब्लेंड ऑफ स्पाइसेस, टेंडर मीट और फ्रेश वेजिटेबल्स. हर कबाब बनता है विद लव एंड पैशन.
5: वाओ, दीस कबाब्स आर अमेजिंग. स्पाइसेस एकदम राइट एंड मीट इज सो ज्यूसी.
4: ये है अम्मास कबाब्स प्रॉमिस, डिलीवरिंग हैप्पीनेस बाइट बाय बाइट. अम्मास फूड एट योर नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी और हलाल बुचरी स्टोर्स.
5: 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव.
6: My future is still being written. I don't know what I'll be when I grow up, but I know I want the chance to find out. Your investment in children can help me get there. With the right support, I can feel safe, learn, grow, build confidence, and discover what I'm capable of. That's why Barnardos is asking Aotearoa to invest in children. Invest in children at investinchildren.nz. And invest in me.
7: Your data just found a plus one. Join or renew on an eligible Spark prepaid value pack and get double the data. Offer ends 30 November 2026. Double data doesn't roll over. Join Spark prepaid today. T's and C's apply.
8: Diwali bas aane hi wali hai. So the cosmetic clinic Sylvia Park has a special offer. Up se leke Monday tak, get 50% off selected skin and laser treatments. Skin rejuvenation

0: experience.
1: एक हेरिटेज प्रोटेक्टेड फॉर्मर साइकेट्रिक हॉस्पिटल जो थी, एक फ्रस्ट्रेशन बन चुका है विद द कम्युनिटी फॉर मेनी मंथ्स. और ये वीकली प्रोटेस्ट वहाँ पे होती जाती हैं, जहाँ पे कहते हैं रूफ फिक्स करो, ये करो. ये बिल्डिंग एकदम अकेली सुनसान पड़ी हुई है सिंस 2021, और 5 साल से वैंडलिज्म, थेफ्ट, वेदर, इसने अपना टोल वहाँ पे ले लिया है. अब ये पॉलिटेक्निक जो लैंड है, इट वॉज सोल्ड टू जिस पे ये बिल्डिंग क्राउन 2018 में रेडी हुई थी. 4,500 होम डेवलपमेंट जो थे वहाँ पे बन के आने वाले थे. बट इफ़ यू गो टू सी, इट्स द कैरिंगटन डेवलपमेंट जहाँ पे इसे पर्टिकुलरली सारे के सारे जो अभी इलेक्शंस होने वाले हैं, इस दौरान लोग कहते हैं किसी का मत होना चाहिए कि हमें एक काम तो एक साथ मिलके करना है, चाहे कोई भी पार्टी आए, और वो है वर्किंग टूवर्ड्स दिस ब्यूटिफुल हेरिटेज बिल्डिंग. वैसे आपको बता देती हूँ, हम के फैंस जितने भी हैं, आप फुटबॉल खेलते हैं तो इंडिया की टीम आ रही है ऑल राइट्स के साथ, वो 12 नवंबर के दिन खेलने वाली है, और आप जाकर इसे लाइव देख सकते हैं एट गो मीडिया स्टेडियम. ये डबल पास देखने के लिए आप किस तरह से आतुर होंगे, एक्साइटेड होंगे. आई नो ये गेम अनाउंस किया था बाय ऑनरेरी मार्क मिशेल एज पार्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इज विजिट टू न्यूजीलैंड, और फिर 100 ईयर्स ऑफ यूनिटी थ्रू स्पोर्ट, ये दोनों नेशंस मिलकर एक साथ करने चाहते हैं. तो हमारी फेसबुक के पेज पे आ जाइए और आकर बिग थैंक यू टू द न्यूजीलैंड फुटबॉल, एंड हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं. यहाँ पे जाइए, जाके ड्रॉ में भाग लीजिए.

0: better.
1: Eat better, live better and win better. क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं ये इस फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून में. हम $5,000 वर्थ के प्राइजेस जो है आपके लिए लेकर आते हैं और ये ड्रॉ 30th अक्टूबर के दिन होगा. ओके, अब आज मेरे पास मेरे पिटारे में क्या है. NZPMI के बारे में आपको बता देती हूँ. अपनी प्रॉपर्टी को अनलॉक कीजिए जहाँ ट्रू सेल वैल्यू आपको पता चलते हैं अपनी प्रॉपर्टी की विद NZPMI. ये लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट हैं, आपकी फ्री साइट का असेसमेंट भी करेंगे. विजिट कीजिए NZPMI.co.nz या कॉल करें उन्हें ऑन 0800 4 numeric 4 NZPMI. ओके, अब आपको क्या करना है, ये क्या दे रहे हैं आपको, $1,000 वर्थ का MITRE 10 के वाउचर्स दे रहे हैं. एक ही विनर इसे लेके जाएगा, इस शेयर नहीं होगा. तो अब आपको क्या करना है, आपको मुझे ये बताना है कि आप मुझे माई टाइम को, तो आपने लोगों ने बता ही दिया कहाँ से कितना कितने बार सुनते चले आ रहे हैं. क्या आपको याद है एक कोई स्पेशल मोमेंट माई टाइम का जो आपको आपको मेमोरेबल है आपके लिए, माई टाइम का एक स्पेशल मोमेंट जो आपके लिए मेमोरेबल है. आपको NZPMI लिखना है, एक मेमोरेबल मोमेंट कुछ भी आप एक दो लाइन में लिख दीजिए, एक लाइन में लिख दीजिए और अपना नाम लिख के भेजिए. आपका नाम मैं ड्रॉ में ऐड करने वाली हूँ. And this is valid for the next 5 minutes.
0: The Breakfast Show with VJ and Pooja.
2: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएं.
3: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
4: That is very that is a very acceleration.
3: That's a very acceleration. Yeah.
4: Amazing acceleration.
3: This is my fancy English. That's a very.
4: अरे होता है, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
0: The Breakfast Show with VJ and Pooja.

0: School.
1: Weekdays, 6 to 10 a.m.
2: Spruce your backyard for spring, trade tested. Smash the winter grime with a Karcher water blaster. Get a Hyundai chipper in to shred the branches or deal to the weeds with a fancy Greenworks electric garden sprayer. Be first up, best dressed this spring at trade tested.
1: This Diwali, send love home with Lotus Foreign Exchange. Enjoy great rates on international money transfers. Visit the new Lotus West City Henderson branch or your nearest Lotus branch. Visit lotusfx.com or call 0800-442-288. Lotus Foreign Exchange, getting more value from your money. Happy Diwali. Terms and conditions apply.
3: Get fresh dinner deals at New World North Island, like skinless chicken breast fillets, $12.99 per kilo, and loose or truss tomatoes, $6.99 per kilo. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
4: Big Bazaar mein biggest range of puja ghar mil rahe hain. Pure marble murtis, copper murtis, gunmetal murtis, devi devtao ke vastra, sabhi tarah ke haar and extensive range of puja items, big range of console tables, mirrors, curtains, sofa covers, Bina and Lahore brand of musical instruments bhi available hai. Big Bazaar 302 Great South Road, Papatoetoe, your one-stop shopping destination this Navratri.
5: Tired of compromising between taste and nutrition? Introducing Amma's Foods Multigrain Dosa Batter. Made with 8 super grains, it's packed with the goodness your family deserves.
6: Busy subah ho ya sham ka jaldi ka khana, Amma's Foods Multigrain Dosa Batter banaye. Har meal healthy aur delicious. High protein, rich in fiber aur swaad se bharpoor. Ye hai har ghar ka best choice. Amma's Foods Multigrain Dosa Batter, 100% authentic aur maa ke pyar jitna shuddh. Aaj hi kare try, aapke najdeeki store mein uplabdh hai. Swaad bhi, sehat bhi.
7: मैं हरीश लोढ़िया आप सबको दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ। मैं आप लोगों को इस समय नहीं बतलाऊंगा कि क्या क्या नया इस धनतेरस और दिवाली के लिए आया है। मैं आपको और आपके परिवार को आमंत्रित करता हूँ कि आप आए और अब तक का सबसे बड़ा और बढ़िया ज्वेलरी कलेक्शन एक बार जरूर देखें। तो मिलते हैं सोना संसार 190 स्ट्रडार रोड माउंट रॉस्किल या 138 ग्रेट साउथ रोड पापाटोएटोए में।
8: दिवाली बस आने ही वाली है तो द कॉस्मेटिक क्लिनिक सिल्विया पार्क हैज अ स्पेशल ऑफर अब से लेके मंडे तक गेट 50% ऑफ सिलेक्टेड स्किन एंड लेजर ट्रीटमेंट्स स्किन रिजुविनेशन से लेके लेजर ट्रीटमेंट्स तक द एक्सपीरियंस टीम विल हेल्प क्रिएट अ प्रोग्राम टेलर्ड फॉर यू और सबसे बढ़िया बात आपकी कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है बुक ऑनलाइन एट thecosmeticclinic.co.nz सिलेक्टेड ट्रीटमेंट्स पर 50% ऑफ ऑन नाउ द कॉस्मेटिक क्लिनिक सिल्विया पार्क की तरफ से हैप्पी दिवाली
9: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ बोली बस मेरा फोकस है
10: हाँ। अच्छा
9: बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं
10: मिसेस सिंह
11: अरे पम्मी जी मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने
12: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन फोकस किचन यूनिट के

0: ड्रीम डायरी,
1: ड्रीम डायरी में हम बातें कर रहे हैं अबाउट यू नो हाउ, कल बात की थी डांसिंग यू नो ड्यूरिंग योर ड्रीम, इन योर ड्रीम्स. तो आपको सपना है कि आप कम्युनिटी में बहुत खुश होके डांस करें. ऑफकोर्स भाई गरबा के दिन हैं, डांडिया के दिन हैं, अब डांसिंग टुगेदर पर्टिकुलरली इन सर्कल्स, इससे क्या होता है, एक पर्सनल जो ईगोइज्म होती, ईगोइज्म ये जो होती है ये हट जाती है, ये निकल जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, और फिर आप एक कलेक्टिव यूनिटी के साथ, कनेक्शन के साथ बना के हाई पावर क्रिएट करते हैं. सो दिस इज़ व्हाट, इफ़ यू हैव ड्रीम्ड अबाउट यू डांसिंग इन द कम्युनिटी, दिस प्रोबेबली माइट बी द रीज़न. चलो भाई यहाँ तक तो पहुँच गए हैं, लेकिन अभी टेक्स्ट की तरफ देखते हैं.
0: दिल से दिल तक, अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स. फॉर अ फ्री साइट असेसमेंट विजिट nzpmi.co.nz और कॉल 0800-4NZPMI.
1: तो आपको हेल्थ की टिप्स पसंद है, मितेश धारा आपने लिखा, ए स्किन केयर टिप्स अश्विन चंद, आपको मैं फेस्टिवल टाइम्स बहुत पसंद आते हैं विशाल, आपको आपको ये रेसिपीज पसंद आती हैं, आपको जो मैं सुझाव देती हूँ वो बहुत पसंद आते हैं, आपको मेरी डांट बहुत पसंद आती है, ओ माई गॉड जब मैं कहती हूँ टाइम इज मनी, ओ यस यस.

0: यू बाई 0800 रचना। इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।
1: वैसे बात कर रहे हैं जब त्योहारों के बारे में, नवरात्रि के बारे में, कई जगह गरबा वगैरह भी चल रहा है, तो रामकृष्ण मंदिर में 20 तारीख तक 6 बजे से श्री हनुमान मंदिर आप नॉट शो में भी पहुंच सकते हैं। 8:10 से 9:30 तक यहां पर मस्ती होने वाली 18 तारीख को। साथ साथ श्री आदि शक्ति दुर्गा मंदिर में भी आप पहुंच सकते हैं नवरात्रि के सेलिब्रेशंस के लिए। ओटाहोहो में दिव्य शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट में भी आपके लिए 6:30 से डांडिया गरबा बहुत कुछ ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। माँ दुर्गा टेम्पल में भी आपके लिए हर रोज़ 7:00 से प्रोग्राम शुरू हो जाता है। देवी माँ के लिए कन्या पूजन वगैरह 18-19 को होने

वाला है। श्री राम मंदिर में हर रोज 6 बजे शाम से गरबा होगा और फिर साथ साथ एनुअल दुर्गा पूजा का सेलिब्रेशन 17 और 18 अक्टूबर के दिन शिखर, जहाँ पे रूट्स मतलब होते हैं, यहाँ पे भोग और प्रसाद का आयोजन किया जा रहा है। 7 बजे से आप पहुँच सकते हैं फ्रीमैन्स बे कम्युनिटी हॉल में। एंड ग्लोबल पावर सर्च जो है, ग्लोबल पावर सर्च के ज़रिए आप 20 मिनट्स के लिए या 24 आवर्स के लिए रहना चाहते हैं, गाइड आपके लिए एकदम तैयार हो जाता है टू नो मोर एंड मोर अबाउट द फर्स्ट लाइट ऑफ आउटरोआ एंड अराउंड द वर्ल्ड।

0: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।
6: Get the bold new flavors of Subway rice bowls, like chicken teriyaki or green goddess falafel, packed with protein, fiber, warm brown rice and your choice of salads from just $11. Eat fresh with new Subway rice bowls.
7: Now when you're in the loop with ANZ and take public transport, money loops back. Get 50% cash back on Wednesdays and weekends in October when you tag on and off AT public transport with a personal ANZ Visa card. Eligibility terms and conditions, fees and exclusions apply.
8: मैं हरीश लोढ़िया आप सबको दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ। मैं आप लोगों को इस समय नहीं बतलाऊंगा कि क्या क्या नया इस धनतेरस और दिवाली के लिए आया है। मैं आपको और आपके परिवार को आमंत्रित करता हूँ कि आप आए और अब तक का सबसे बड़ा और बढ़िया ज्वेलरी कलेक्शन एक बार जरूर देखें। तो मिलते हैं सोना संसार, 190 स्ट्रडार रोड माउंट रॉस्किल या 138 ग्रेट साउथ रोड पापाटोईटोई में।
9: दिवाली बस आने ही वाली है, तो द कॉस्मेटिक क्लिनिक सिल्विया पार्क हैज अ स्पेशल ऑफर। अब से लेके मंडे तक गेट 50% ऑफ सिलेक्टेड स्किन एंड लेजर ट्रीटमेंट्स। स्किन रिजुविनेशन से लेके लेजर ट्रीटमेंट्स तक द एक्सपीरियंस टीम विल हेल्प क्रिएट अ प्रोग्राम टेलर्ड फॉर यू। और सबसे बढ़िया बात, आपकी कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। बुक ऑनलाइन एट thecosmeticclinic.co.nz। सिलेक्टेड ट्रीटमेंट्स पर 50% ऑफ ऑन नाउ। कॉस्मेटिक क्लिनिक सिल्विया पार्क की तरफ से हैप्पी दिवाली।
10: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है।
11: हाँ। अच्छा
10: बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस, साडा कुछ नहीं।
11: मिसेस सिंह
12: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
13: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहोहो। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
14: Time check.
15: Brought to you by Maan Tires. For all kinds of tires and mechanical services, open 7 days. Call Maan Tires on 0800-00010.
14: Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
16: Morning, I'm Glenn Stewart with the latest at 11. The Teaching Council says it deeply regrets the harm caused to children following a review into its failings. It found the body had at least 10 opportunities to intervene to exclude sex offender Timothy Fisher. Governing Council Chair Patrick Walsh says the report is confronting.
17: When I first got it, it made me feel sick to my stomach. Parents clearly expect their children to be safe in the care of teachers.
16: The Greens have promised to rebuild New Zealand and create 64,000 more jobs on top of Treasury's forecast 220,000. The party has released its economic development plan. It includes rescoping what's being called a directionless investment boost and restoring core science funding. There's a push here to halt screen time for babies and toddlers. Auckland Uni's Samantha Marsh says almost two-thirds are exceeding recommended limits and wants a coordinated approach to help parents.
18: Embedding brief, non-judgmental discussions at any kind of touch points, and actually how to offer those families alternatives to screens.
16: And overseas, Breaking Bad actor RJ Mitter has died. The 34-year-old played Walter White Jr. on the popular TV show, a representative confirming his death to Variety. Like his character, Mitter had cerebral palsy, with his high-profile performance raising awareness of his condition. In sport, Rugby First and former All Blacks coach Steve Hansen thinks the second Bledisloe Cup test will be much tighter than last weekend's blowout at Eden Park. He's told the Rugby Unity podcast the Wallabies will be much better in Sydney.
19: I'm picking there'll be a stronger performance in the weekend, because maybe New Zealand might drop off a little bit if they don't turn up with the right attitude, and Australia will definitely turn up with a good one.
16: Kickoff on Saturday is 6 p.m. And in football, Coventry have thumped Newcastle 4-1 in the English Premier League this morning. It was the home team's second win on the trot.
0: Sports News.
14: Brought to you by Sona Sansar, Papatoi and Mount Roskill.
20: हम पर शोक सूचनाएं आप तक लाते हैं एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस।
21: सूचित किया जाता है कि डॉक्टर अरविंद, डॉक्टर सुभाष, डॉक्टर विजय रणछोड़ के पिता, काशी रणछोड़ के पति, गुडवुड हाइड के मगन रणछोड़ की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार आज 1 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस में किया जाएगा। सूचना दोबारा सुनें, डॉक्टर अरविंद, डॉक्टर सुभाष, डॉक्टर विजय रणछोड़ के पिता, काशी रणछोड़ के पति, गुडवुड हाइट के मगन रणछोड़ की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार आज दोपहर 1 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस में किया जाएगा।
20: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: मौसम की तरफ अगर हम देखें तो दी हाइस ऑफ 21 ओवरनाइट टेम्परेचर ऑफ 14 आज का फोकस बताया जा रहा है. कुछ आवर्स शाम को शायद आज बढ़ सकती है. इट फील्स लाइक 17 डिग्रीज राइट नाउ.

नमस्कार एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू पीपल. हाउ आर यू? स्टूडियो की घड़ी में समय सुबह के 11:04 होने वाले हैं. आपका साथ मैं काशिका निभा रही हूँ 12 बजे तक. और ऐसे में आपके साथ एक बात तो मुझे डेफिनेटली शेयर करनी है, और वो बात है बहुत इंपॉर्टेंट. यानी कि अगर मैं आज की बात करती हूँ तो हमारे प्रोग्राम्स बहुत अच्छे. रामायण एक कथा जो है ये 8:20 पे 1:30 बजे दोपहर को 6:45 PM पर आप सुन सकते हैं. 1 से 2 मिनट स्टोरी टेलिंग के सेगमेंट्स आपको सुनने को मिलेंगे. और ये फेस्टिवल ऑफ लाइट्स में आप रामायण जब सुनेंगे तो मज़ा ज़रा अलग ही आता है. इसी के साथ साथ आपको और भी बताना चाहती हूँ दैट इलेक्शन स्पेशल में देवर क्वेश्चंस विच वर शेयर्ड विद खड़क सिंह टाका नीनी के जो हैं, और उन्होंने बताया स्मॉल बिजनेसेस, कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में, रिटेल क्राइम, कम्युनिटी सेफ्टी के बारे में, क्या टाका नीनी एंड साउथ ऑकलैंड में चल रहा है. तो ऐसे में आप के साथ कॉन्वर्सेशन किया नन अदर देन सैंडी एंड्रूज पे ने. आउटरोआ स्पीक्स, हियर द कॉन्वर्सेशन. और 5599 पे आप ये पूरा कॉन्वर्सेशन डेफिनेटली सुन सकते हैं. बचाओ क्या? पूजा हेगड़े आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं.

0: Chai Time with Kashika. Brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
1: तो मैं बात कर रही हूँ अबाउट अ कॉल. अब मैं कॉल लेने वाली हूँ. एक लिसनर कोई होगा भाई, आपके ब्लड रिलेटिव नहीं हो सकते, लेकिन आपकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा है. कल कितनी अच्छी अच्छी कॉल्स आपकी आई, कितने अच्छी तरह से आप लोगों ने बताया. लाइफ में आपके कोई एक ऐसा है जिसको आप अपना एक दिया या गाइडिंग लाइट मानते हैं, और वो आपकी लाइफ में शायद एक स्माइल लेकर आए हैं या आपकी लाइफ को ब्राइट करने में खुश रहे हैं. 0800-004-866 पर आपने मुझे कॉल करना है. एक दिवाली का शाउट आउट भी दे दीजिए उनको. आप अपनी ज़िंदगी के अंदर किस तरह से अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपका नाम मैं ड्रॉ में ऐड करूँगी फॉर $300 कैश. ये ड्रॉ 6th of November के दिन होने वाला है. मेक श्योर आप मुझे कॉल करें ताकि मैं आपका नाम डेफिनेटली ड्रॉ के अंदर ऐड करूँ. जब ये मैं इस तरह की बातें करती हूँ ना, ये चीज़ें जो चांसेस होते हैं ना, बहुत मुश्किल से मिलती हैं. और जब मैं कहती हूँ कि हाँ कॉल करो, तो जल्दी जल्दी कॉल करो. 0800-00 हम. आप बताइए, आपकी ज़िंदगी के एक रास्ते को दिखाने के लिए, या आप कभी भी लाइफ में मायूस हुए हैं, तो आपकी लाइफ में कौन एक दिया बनकर आया, आपको वो रोशनी दिखाता हुआ उस रास्ते से निकाल के ले गया. कोई है ऐसा तो मुझे आप ज़रूर कॉल करके बताएं. यहाँ पे आपका नाम मैं $300 कैश के ड्रॉ में ऐड करना चाहती हूँ. आई एम वेरी श्योर बहुत से लोगों ने बहुत सारी चीज़ें की होंगी आपकी लाइफ में. कल सनिल, संगीता एंड सुनील, आप लोगों ने मुझे कॉल किया था. इट वॉज़ ब्यूटिफुल टू हियर योर पार्ट ऑफ द स्टोरी. बट अगर आपने अभी कोई कहानी, आपकी कोई ऐसा है जो आप जिनको चाहते हैं, ज़रूर मुझे बताएं. दिस रिमाइंड्स मी, 6-word स्टोरी कमिंग अप नेक्स्ट. लेकिन 6-word स्टोरी के साथ साथ मैं आपके लिए ये फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून, उसमें भी आपकी एंट्री लेना चाहती हूँ. बट बिफोर दैट आई वुड डेफिनेटली लाइक यू टू गिव मी अ कॉल ऑन 0800-00 हम. द लाइट ऑफ योर लाइफ कौन है, ज़रूर मुझे बताएं. अगर मैं अपनी लाइट ऑफ माई लाइफ बताऊँ, पहली बात तो मेरे बच्चे, जो मुझे हमेशा मेरे लिए गाइडिंग फोर्स की तरह बन जाते हैं, फॉलोड बाय माई हस्बैंड. आई मीन से आई एम टॉकिंग अबाउट टुडेज लाइफ, टुडेज करंट लाइफ. एंड आई वुड लाइक टू थैंक माई फैमिली. बट आपने जैसे कहा कि ब्लड रिलेटिव्स नहीं हो सकते, तो उसके बाद आते हैं मेरे दोस्त. जो मेरे दोस्त हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल मेरे लिए प्ले करते हैं. जब मेरी आवाज़ ज़रा सी भी हल्की सी कम होने लग जाती है ना, या लो होने लग जाती है, तो उन्हें कैसे पता चल जाता है मालूम नहीं. फिर फ़ोन आ जाता है, तुम ठीक हो? अच्छा, तुम्हें कैसे पता कि मुझे कुछ हुआ है? अरे भाई पता नहीं, ऐसे जस्ट फेल्ट लाइक गिविंग अ कॉल. इस तरह की चीज़ें जब होती हैं ना, तो एक पर्सनल कनेक्शन आपका बहुत खूबसूरत बन जाता है. और फिर वो आपसे कहती है, चलो हम तुम्हें एक ड्राइव पे लेके चलते हैं, आ जाओ घर के बाहर फटाफट, 5 मिनट बाद आपको पिक करते हैं, जाके आइसक्रीम खा के आते हैं मिशन बे में, या फिर कॉफ़ी पी कर आते हैं. दिस इज़ द काइंड ऑफ पीपल यू एक्चुअली नीड इन योर लाइफ, डोंट यू थिंक सो? या मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस.
2: हे चैट जीपीटी, दिवाली आने वाली है, ऐसा कोई आइडिया है कि मेरा दिवाला भी ना निकले और दिवाली भी मन जाए?
3: अगर आप अपना लिस्ट शेयर करेंगे तो मैं आपको पैसे बचाने के आइडियाज दे सकता हूँ.
2: बढ़िया है. अच्छा, ग्रोसरीज लेना है, पूरे घर की पेंटिंग करवानी है, नया सोफा लेना है, इतनी भाग दौड़ करनी है, तो नेचुरली गाड़ी में फ्यूल भी तो चाहिए. और हाँ, कोई ऐसा स्कीम है क्या कि मेरे पैसे अकाउंट से जाए नहीं बल्कि अकाउंट में आए?
3: इंटरेस्टिंग. और कुछ?
2: बस इतना ही.
3: सर, मैं चैट जीपीटी हूँ, अंबानी नहीं, हमसे ना हो पाएगा.
0: दिस दिवाली लिसन टू हम ऑन 104.2 FM और रोवा एंड टेक पार्ट इन फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून एंड गेट इन द ड्रॉ टू विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस लाइक ग्रोसरी वाउचर्स, फ्यूल वाउचर्स, होम डेको एंड फर्नीचर वाउचर्स, बिल्डिंग एंड गार्डन सप्लाई वाउचर्स एंड कैश. फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स, हैरिंगटन लिविंग, मनोको, ब्यूटिफुल फर्नीचर विद 60 months इंटरेस्ट फ्री, NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स, लॉजिक Finance and Guru Gandola, a household name in finance and insurance industry, and Fortune. Bring home the fortune.
4: सुनो, आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया, घर बेचने को कह रहे थे.
5: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं. डेवलप करना बेहतर लगता है, पर पैसों का डर है.
4: इसीलिए NZPMI से बात कर लो, वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं.
6: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं, आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है. आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए. NZPMI, टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस. कॉल पॉल ऑन 0800-4NZPMI.
4: The kids depend on us for everything. Meals, rides, band-aids, bedtime stories. But who do we depend on?
7: Hi, I'm Nitesh Hira from Assure One. School holidays remind us how much our families rely on us. My job is making sure reliance never becomes a risk. Helping you understand your options so your family is covered whatever happens. Call Assure One on 0800-77-HIRA or visit assureone.co.nz. North and Vale Advisory Limited, trading as Assure One, is a licensed financial advice provider.
8: The enrollment deadline's coming soon, pup. We better remind people before voting starts.
9: Enrolled yet?
8: How about you?
9: Are you enrolled?
10: Last chance to enroll is midnight 25 October. Enroll now at vote.nz. Brought to you by the Electoral Commission.
11: Ruzbe, 2026 mein na bahut kaam kar liya hai. Ab to break banta hai.
12: Bilkul, to lete hai ek luxurious holiday break. Bali aur Bangkok.
11: Aur aap bhi chaliye Sun Tours ke saath Easter 2027 mein.
12: Bali 6 din aur Bangkok 5 din complete luxurious holiday package. Book kijiye till Diwali aur paiye free 2 nights 3 days Sydney to Sydney cruise package.
11: 2027 Easter ko banaiye extra special. Bali, Bangkok or free cruise.
12: Book now with Sun Tours.
11: Call kare 0800-478686.
13: Get the bold new flavors of Subway rice bowls, like chicken teriyaki or green goddess falafel, packed with protein, fiber, warm brown rice and your choice of salads from just $11. Eat fresh with new Subway rice bowls.
14: Settle, win, escape. Finance World is about to take you further with a trip to Bali. Settle kijiye apna home loan of 500,000 ya usse zyada Finance World ke saath. And you're automatically in the draw to win a trip to Bali for 2, 5 days, 4 nights. 2 lucky winners. Har eligible home loan of 500,000 ya usse zyada automatically aapko draw mein enter karta hai. Terms and conditions apply. Visit financeworld.co.nz/Bali. Finance World Limited is a registered financial advice provider.
15: My future is still being written. I don't know what I'll be when I grow up, but I know I want the chance to find out. Your investment in children can help me get there. With the right support, I can feel safe, learn, grow, build confidence, and discover what I'm capable of. That's why Barnardos is asking Aotearoa to invest in children. Invest in children at investinchildren.nz. And invest in me.
16: How does one person finance on a new Jeku sound? Right now at West City Omura Jeku, get one person per annum fixed finance for 36 months with a 20% deposit on the Jeku J7 SHS. And it's just dropped $2,000 in price, now starting from $47,990 plus on-road costs. Talk to Jimmy Taylor and team at West City Omura Jeku. For full terms and conditions, head to westcityautogroup.nz.
0: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Six word story.
1: कोई बात नहीं, आप शर्मा गए हैं, लेकिन इट डजंट मैटर. ओके, मेरी सिक्स वर्ड की स्टोरी जो है, मैंने कहा था कि नवरात्रि के आसपास और डांस के आसपास हो सकती है. सो ये नवरात्रि में आपने लिख के भेजा कि गॉडेस दुर्गाज विक्ट्री इज ओवर ईवल. गॉडेस दुर्गाज विक्ट्री इज़ ओवर ईवल. वाह, वेरी वेल सेड. थैंक यू सो मच. आपका टेक्स्ट आया है एंड ये जब आप इस तरह से आप लोग मैसेजेस करते हैं, बताते हैं, इट वर्क्स आउट ब्यूटिफुली फॉर अस. एंड नाउ इज़ द टाइम जहाँ पर मुझे बताना है आपको एक और खूबसूरत सा अंदाज, जहाँ आपको फ़ोन उठाना है. आपका शेयर $5,000 में मेरे को चाहिए कि आप कोई ना कोई जीत ज़रूर जाओ. और इस बार जीत सकते हैं फ्यूल वाउचर. अब फ्यूल वाउचर आपके लिए, एक विनर हमें चाहिए, $1,000 का फ्यूल वाउचर आपको मिलेगा. तो इंडेलिबल होम्स जो आपके लिए बिल्डिंग एक्सपर्ट्स हैं, वो आपके लिए घर बिल्कुल रेडी बना देते हैं, ब्रांड न्यू ब्यूटिफुल हाउसेज. एंड इंडेलिबल होम्स .co.nz की वेबसाइट पे आप जाके बिल्कुल देख सकते हैं. मैं अगला गाना जो बजाने जा रही हूँ, और वो बहुत ही अच्छा एक गाना है, वेर आई क्विट लाइक द फिल्म एंड आई सेड द वन. इसका इस पिक्चर भी अच्छी थी, इंटेंस भी थी, अच्छी लगी मुझे. तो हाँ, वो गाना है, उस गाने के एंड तक IH लिख के भेजना है आपको. आपको मुझे बताना है कि ओरिजिनली आप जैसे जहाँ कहाँ से हैं. आप सपोज करो, जैसे आप मेरा ले लो, मेरा ओरिजिनलिटी कहाँ की होगी. बेसिकली फ्रॉम UP, ब्रॉट अप इन दिल्ली, मैरिड इन मुंबई, सेटल्ड इन दुबई, एंड फाइनली नाउ इन न्यूजीलैंड. तो मेरा डेस्टिनेशन कौन सा होगा? मैं सोचूँ मेरा पहला घर. सो अब लिख के भेजे IH योर फर्स्ट हाउस और योर फर्स्ट हाउस इच यू बॉट वॉज इन विच कंट्री. डेफिनेटली 5599 पे टेक्स्ट कीजिए IH विच कंट्री यू हैड योर फर्स्ट हाउस एंड योर नेम. जल्दी जाइए, जल्दी कीजिए, क्योंकि बस 5 मिनट का टाइम रह गया. स्टैंडर्ड करियर चार्जेस डू अप्लाई एंड योर नेम विल गेट इन टू द ड्रॉ टू विन $1,000. अच्छा, प्रीत विहार दिल्ली के हैं आप, गौरव वर्मा किन्नरी ऑस्ट्रेलिया, अश्विन फर्स्ट हाउस इज इन फिजी, IH इज योर कीवर्ड.
0: Top hit of the hour brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

तो मैं बताना चाहती हूँ, टोंगाट साउथ अफ्रीका से प्रवीण महाराज, आप वहाँ के रहने वाले हो, क्या बात है। आप वही हो ना जो अपने घर में गार्डन में घूमते रहते हैं दिन भर और पूरे टाइम आप म्यूजिक लगा के रखते हैं। हमका फिजी से पायल, आपका भी का दिल्ली, ज्योति न्यूजीलैंड, निमी, अरे पहला कोई मिला न्यूजीलैंड वाला। धारा, आपने अपना एड्रेस तो डाला नहीं कहाँ के हैं। सोनाली फ्रॉम मुंबई, NZ, मितेश पठानकोट, सारिका, क्या बात है। ये देखिए कितने सारे, और साथ में पुष्पा न्यूजीलैंड, शारन फिजी, आपने लिख के भेजा। शारन आपने 3 बार मैसेज कर दिया, 4 बार मैसेज कर दिया। सूरत, हाँ ये मैं बता चुकी हूँ। हरी, आपका भी बता चुकी हूँ कि आपने फिजी से आपने लिया था घर। चलो ये दिस इज़ रियली नाइस। निमी आपने बताया न्यूजीलैंड ना, तो न्यूजीलैंड वाले, आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ देम टू गिव न्यूजीलैंड आंसर, बट फर्स्ट ऑफ बायस लगता है आप न्यूजीलैंड के नहीं बने, तो वो टीम, वो जो चीज़ें हैं आपकी अभी भी वैलिड हैं, जो शायद अगर आप अपना कुछ प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं।

0: Kashika.
1: Wah.
2: How?
1: I'm good.
3: बातें अद्भुत होती ही हैं और मेरे साथ कभी कभी अद्भुत पने में कुछ और भी हो जाता है, बट डजेंट मैटर. इतना ही कहना चाहती हूँ दैट आप लोग की कम्युनिटी में जब खास होता है कुछ, तो डेफिनेटली हमने आपके साथ शेयर कर ही दिया कि हम लोग क्या क्या खास करते हैं. लेकिन थोड़ी देर बाद जो मैं लेकर आने वाली हूँ ना, दिस इज़ रिलेटेड टू नन अदर दैन हम किस तरह से अपनी चीज़ों को रिसाइकिल करते हैं. और ऑकलैंडर्स को एक छोटी सी वार्निंग आई है, और वो क्या वार्निंग है बस थोड़ी देर में बताती हूँ.
0: क्या

0: रेस्क्यू मी रिसाइकिल में। बस देखिए, कल मैं आपको फिर से इस बारे में बताने वाली हूँ, लेकिन ऑकलैंड से कहा जा रहा है टू कीप द बैटरी एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आउटसाइड द कर्ब बिन्स। अब ये इंटरनेशनल ई वेस्ट डे कल का दिन मनाया जाने वाला है, जहाँ बैटरीज आर लिंक्ड टू एटलीस्ट 11 फायर्स इन ऑकलैंड रिसाइकिलिंग फैसिलिटीज और 17 रबिश और रिसाइकिलिंग ट्रक फायर्स इन द पास्ट वन ईयर। तो मेक श्योर दैट आप बिल्कुल केयरफुल हो जाएं और आप इन चीज़ों का ख़ास तौर पर ध्यान ज़रूर रखें। होता है ऐसा भाई, और आई एम वेरी श्योर यू ऑल विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग सो मेनी थिंग्स। सो मेनी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ हम कुछ कर पाते हैं, कुछ आपके लिए लेकर भी आते हैं। बाय द वे, आप हमारी रामायण की जो गाथा है उसके बारे में तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि आप डेफिनेटली इसे सुनते चले जाइएगा, हमारे म्यूज़िक स्टेशंस को भी आप सुनते चले जाइएगा। और साथ साथ आप लोगों के लिए ये जो फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून जो हम लेकर आ रहे हैं, थोड़ा डिफरेंट होता है इस बार, हमने सोचा और भी तड़का मारें।
1: Lock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800 4NZPMI.

0: to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
1: तो चलिए फिर इसी के साथ साथ कीजिए स्वीकार, काशिका का नमस्कार। आज का दिन कहलाता है आपके लिए मंगलवार, मेरी मुलाकात होगी दिन कहलाएगा हमवार या बुधवार। और जितने भी लोग गरबा में जा रहे हैं, डांडिया में जा रहे हैं, आई एम श्योर यू मस्ट बी रियली इन्जॉइंग योर सेल्फ, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो मैं समझती हूँ बहुत अच्छी रहती हैं। तो चलो इसी के साथ साथ यहाँ से चलती हूँ, कल सुबह 10 बजे आपसे फिर मुलाकात करने की पूरी पूरी कोशिश करती हूँ। लुक आफ्टर योरसेल्फ्स। अभी थोड़ी देर बाद आपके लिए केतन आ रहे हैं और केतन का साथ आप ज़रूर दीजिएगा। टेक केयर, दिस इज़ काशिका साइनिंग ऑफ, बाय बाय।

क्या नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, आपका स्वागत करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के खूबसूरत शो में जिसका नाम है लंच बॉक्स शो। वेलेस बने रहिए और बहुत ही खूबसूरत दिन है आज। वैसे बारिश आज भी हो रही है बट अगेन डिपेंड्स ऑन व्हाट लोकेशन यू आर एट। हर जगह बारिश नहीं हो रही, कहीं कहीं बारिश हो रही, कहीं कहीं नहीं हो रही। जैसे सिटी में बारिश हो रही यहाँ पे, वहाँ पे जब मैं घर से निकला था वहाँ पे नहीं हो रही थी। सो यस, हो सकता है आपके यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही हो। बड़ा आप बने रहिए, अभी से लेकर 3 बजे तक मैं यहाँ पे हूँ। बहुत सारी बातें करेंगे, स्टार्टिंग ही एकदम बहुत ही बढ़िया वाले गाने से करेंगे। सो यस, होम सिक रेमेडीज के लिए आप मुझे टेक्स्ट भेज दीजिए और वो यहाँ पे जैसे आप मुझे भेजेंगे उसके बाद मैं पिक करूंगा एंड देन आई विल बी रीडिंग आउट द बेस्ट व्हाट आई फील सो। बट यस, आप बने रहिए एंड लेट्स प्ले दिस सॉन्ग।

0: वाले एक खबर आई है यहाँ पे, खबर तो क्या मैसेज आया है, उसे भी खबर ही कहते हैं राइट। मैसेज को अगर अपन उस तरीके से देखे तो मैसेज आना खबर आना, हाँ आई थिंक सो राइट इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वेल ये आया है खबर, ये खबर आई है देव भाई से। वो कहते हैं woke up yesterday morning to bright blue skies, checked my weather app which said sunny all day, so I washed 3 full loads of laundry and hung them outside on the clothesline. Within 3 hours Auckland served me scorching sun, a sudden heavy downpour, gale force winds that blew 2 shirts into the muddy lawn, and then sunshine again. My clothes went from dry to soaked to muddy in 30 minutes. Back home when the sun comes out, it sails out for the entire day. Sitting in my room surrounded by wet jeans hanging off my curtain rods and dining chairs made me feel so defeated. Well, ye to khair kuch naya nahi aaga. I'm pretty sure agar aap naye hain to fir to yaar definitely aapke liye naya hai. But this is quite common and we are very very famous to to experience the four season. Aisa log kehte hain ki four season in a day. It might be very sunny, और थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो गई, थोड़ी देर बाद एकदम सूखा है लेकिन हवा तेज है, एंड देन इट इज़ कोल्ड अगेन। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आराम से हमें मिलती रहती है, सो वी आर क्वाइट यूज टू इट नाउ, एंड दैट्स व्हाई कहते हैं कि चाहे गर्मी हो या ठंड, जैकेट आप हमेशा अपने साथ रखो। ठंड के टाइम तो डेफिनेटली आप रहोगे लेकिन गर्मी के टाइम आप अपनी कार में रखो। बट एक मस्त सा देसी जुगाड़ में आपको बताता हूँ। सबसे पहले गोल्डन रूल, ऑकलैंड में आउटडोर क्लोथ्स लाइन को भूल जाओ जब तक आप खुद घर पर बैठकर आसमान पर नजर नहीं रखते हो। तो इंडो क्लोथ्स ड्राइंग रैक, जिसे यहाँ क्लोथ्स हॉर्स भी कहते हैं, उसे खरीद लो और उसे रूम के अंदर रखो, या फिर समवेयर इन द सम रूम, आई वुड प्रेफर नॉट इन द बेडरूम, नहीं तो वो सॉगी और वो हो जाएगा डीह्यूमिडिफाइड और फिर आपको यूज करना पड़ेगा। एयर फ्लो से कपड़े बिना बारिश के डर के, सॉरी आई मिस्ड आउट, हाँ जैसा कि मैं बता रहा था कि आप सन रूम में रखो, खिड़की हल्की सी खुली रखो और पास में $15 का छोटा सा डेस्क फैन जो है उसे चला लो, इफ़ इट इज़ यू नो यू हैव द स्विच ओवर देयर। उसके बाद खिड़की हल्की सी खुली रखो और एयर फ्लो से कपड़े बिना बारिश के डर से 12 घंटे में सूख जाएंगे, और अगर हैवी ब्लैंकेट्स या जीन्स हैं तो $5 लेकर लोकल लॉन्ड्री मार्ट जाओ और कमर्शियल ड्रायर में 20 मिनट में सुपर ड्राई करके आप वापस ले आ सकते हैं। हम ऐसे ही करते हैं एक्चुअली, हम मोस्टली पीछे रख लेते हैं लाइक इन आवर सनरूम, बट लगता है कि ये कुछ अर्जेंसी है तो फिर हम ड्रायर में ही बाहर जो कमर्शियल ड्रायर्स होते हैं उनमें सुखा देते हैं, सस्ता भी पड़ता है। इट्स नॉट, मेरे ख्याल से एक मिनट का आई थिंक $5 से $10 तक चलता है वो, तो ऐसा कुछ प्राइस होती है। Depends on where, what location you are at, but har jagah alag alag prices hain. But thank you so much, and thank you so much Dev bhai aapke message ke liye, and to those as well jinhone mujhe message bheja hai. Bane rahiye office shout out ke liye, aap mujhe message bhej sakte hain kya kha rahe hain, kahan se aapne order kiya hai, do let me know 5599 pe. Lunchbox with Ketan, mujhe pasand hai ladka.
1: इस दिवाली सिर्फ घर नहीं रिश्ते भी रोशन करें। एक दिया एक कहानी के साथ जुड़िए दिवाली पूजा, पूजा विधि, दिवाली पूजा सामग्री और दिवाली रामायण गाथा के साथ। हर दिया एक कहानी कहेगा और हर दिल अपनों के और करीब आएगा। हम की ओर से आपको और आपके परिवार को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रॉट टू यू बाय फाइनेंस वर्ल्ड, रामायण मूवी बाय फोरम फिल्म्स, इंडेलिबल होम्स, लोटस फॉरेन एक्सचेंज, एबीसी बिजनेस कंसल्टेंट्स, सोना संसार, पैशन लैंडस्केप, अम्मास फूड, पीएफएसएल, अर्जुन सुपरमार्केट, बिग बाजार एंड फॉर्चून फूड्स।
2: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With multiple branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare's 12th birthday offer, 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो जल्दी join करो और enjoy करो special offers. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
3: सुनो, आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया, घर बेचने को कह रहे थे।
4: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं। डेवलप करना बेहतर लगता है, पर पैसों का डर है।
3: इसीलिए NZPMI से बात कर लो, वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं।
2: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं, आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है। आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए। NZPMI, टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस। कॉल पॉल ऑन 0800-4NZPMI।
5: क्या आपका लोन डिक्लाइन हुआ है? क्या आप हिम्मत हार चुके हैं? तो एक मौका मुझे देके देखिए। Hi, मैं हूं गुरु खंडोला फ्रॉम लॉजिक फाइनेंस। जो लोन्स डिक्लाइन और डिफिकल्ट होते हैं उनके अप्रूवल का मैं स्पेशलिस्ट हूं। लॉजिक फाइनेंस के गुरु खंडोला बातों में नहीं काम में विश्वास रखते हैं।
6: टर्म्स कंडीशन फीस एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई। कॉल लॉजिक फाइनेंस के गुरु खंडोला को ऑन 0800 लॉजिक जी विच इज 0800-564-424।
7: It's Woolworths Health and Body Sale. Refresh your routine for less with up to 40% off on Oral-B products and up to 25% off on Schwarzkopf. Stock up and save on your everyday favourites. T's and exclusions apply. Only at Woolworths.
8: When you've got roads, rain and traffic, you get potholes.
9: Oh man, potholes are the worst.
8: Yes, we know. That's why we have the Auckland Council Pothole Promise.
9: Huh, how does it work?
8: Well, someone alerts us to a pothole via the website. Then our crews head out, spot the pothole, catch it and release it somewhere where it won't be a nuisance.
9: Really?
8: No. We fill them with an approved asphalt premix, usually within 24 hours. It's how we keep the city moving. Search Pothole Promise. Tāmaki Tūriki. All together, Auckland.
10: When India comes to town, Aotearoa feels different. Tickets are on sale now at nzc.nz. Be there, because this isn't cricket. This is Black Caps versus India.

0: दिवाली आई खुशियाँ लाई, PFSL स्पेशल ऑफर लेकर आया है। अपने ड्रीम होम का सपना सजाएं, PFSL के साथ होम लोन करवाएं, $400,000 या उससे ज्यादा का एलिजिबल लोन सेटल करें और $250 का गिफ्ट कार्ड घर ले जाएं। 50 इंच टीवी के लकी ड्रॉ में भी एंट्री पाएं। तो इस दिवाली खुशियाँ बढ़ाएं, PFSL के साथ अपना ड्रीम होम सजाएं। सर्च PFSL और कॉल ऑनलाइन 8469934। टर्म्स एंड कंडीशंस एंड लेंडिंग क्राइटेरिया अप्लाई।
1: Non-stop Bollywood.
2: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
1: हम playing Bollywood's biggest hits.
3: Lunchbox with Ketan.
4: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
3: हम office shout out.
5: Office shout out के ये रहे बातें। Working from home today. एक मैसेज आया है अमन भाई का। I made some chicken noodles for lunch. And that's so cool. उसके बाद लीना का मैसेज आया, वो बोलती है आई ब्रॉट लेफ्ट ओवर लैम्ब करी एंड राइस फ्रॉम लास्ट नाइट। नाइस, टेस्टी तो हो गया। माई हस्बैंड पैक्ड इट फॉर मी दिस मॉर्निंग। अरे दैट्स सो कूल यार, दैट्स सो कूल। बट अगेन थैंक यू सो मच। आप बस बने रहिए और लेके आता हूँ मैं हिस्ट्री ऑफ न्यूजीलैंड की बातें।
1: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

चलिए बात करते हैं आज की न्यूजीलैंड की हिस्ट्री की। 13 अक्टूबर 1975 को न्यूजीलैंड हिस्ट्री में एक काफी इंपॉर्टेंट डे के रूप में याद किया जाता है। उस दिन 79-year-old माओरी लीडर डेम फीना कूपर ने माओरी लैंड राइट्स के लिए एक हिस्टोरिक हिकोई यानी कि मार्च लीड की थी। मार्च 14 सितंबर को नॉर्थलैंड के टे हापुआ से शुरू हुई थी जिसमें पहले सिर्फ 50 लोग थे, लेकिन रास्ते में लोग जुड़ते गए। उनका मेन मैसेज था नॉट वन मोर एकर ऑफ माओरी लैंड यानी कि माओरी की और जमीन नहीं जानी चाहिए। लगभग एक महीने बाद करीब 5,000 मार्चर्स वेलिंगटन में पार्लियामेंट पहुंचे और प्राइम मिनिस्टर बिल रोलिंग को 60,000 सिग्नेचर वाली पेटिशन प्रेजेंट की। फीना कूपर को ये मार्च न्यूजीलैंड में माओरी लैंड राइट्स और प्रोटेस्ट हिस्ट्री का एक लैंडमार्क मोमेंट माना जाता है।

0: चलिए अभी तो सबसे पहले बता देते हैं कि इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, जी हाँ, फुटबॉल फैंस गेट रेडी, द ऑल वाइट्स आर टेकिंग ऑन इंडिया इन ऑकलैंड ऑन थर्सडे, 12 नवंबर को ही होने वाला है। एंड ऑफ कोर्स थैंक्स टू न्यूजीलैंड फुटबॉल, आप इस मैच को लाइव देख सकते हैं गो मीडिया स्टेडियम में। वेल, हम आपको गिव अवे दे रहे हैं डबल पास का, जीतने का, और आप देख सकते हैं ये मैच वर्सेस इंडिया। वांट टू बी पार्ट ऑफ एक्शन, आप हमारे फेसबुक पेज पे जाइए, हम एफएम के फेसबुक पेज पे उस पोस्टर को के कमेंट सेक्शन में जाइए और टैग करिए उस शख्स को जिसके साथ आप ये मैच देखना चाहेंगे। एंड यस, वहां पे ये भी प्रेडिक्ट करिए कि फाइनल स्कोर क्या रहने वाला है, एंड विल इट बी विन फॉर द ऑल वाइट्स और विल इट बी इंडिया कम ऑन टॉप। सो यस, आप अपना प्रेडिक्शन लगाइए और कॉम्पिटिशन में आप पार्ट ले सकते हैं। The games were announced by Honorable Mark Commercial as part of Indian Prime Minister Narendra Modi visit to New Zealand and will form part of a series sporting events to celebrate 100 years of unity through sports between both nation. So yes, all whites जो कि पहले खेल चुके इंडिया से दो बार, और पहली बार तो 1981 में जहां पे ड्रॉ हुआ था मैच, और दूसरा जो है वो जीती थी 2-1 से इन 2018 में। सो ऑल वाइट्स वर्सेस इंडिया नवंबर 12th एट गो मीडिया स्टेडियम, आप अभी जाइए और हम एफएम के फेसबुक पेज पे और अपना लक जो है वहां पे ट्राई करिए। एंड थैंक्स टू न्यूजीलैंड फुटबॉल, आप यू कुड बी गोइंग टू द गेम, एंड ऑफ कोर्स हम एफएम ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर ऑन एंड ऑफ द पिच।
1: लंच बॉक्स विद केतन,
2: इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं।
1: इसके पीछे
3: हम,
1: वो दिन जब मोहब्बत खत्म होती थी।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वीक में एक पल निकालकर देखिए कि आप कैसा फील कर रहे हैं। स्लीप, मूड, एपेटाइट या रूटीन में चेंजेस इसका साइन हो सकते हैं कि इमोशनल सपोर्ट मदद कर सकता है। आप किसी अपने से एक सिंपल चेक इन के साथ रीच आउट कर सकते हैं। एशियन फैमिली सर्विसेज फ्री कॉन्फिडेंशियल इमोशनल सपोर्ट देता है। एशियन हेल्पलाइन 0800-862-342 पर कॉल करें। अगर आप या आपका कोई जानने वाला इमीडिएट डेंजर में है तो 111 पर कॉल करें।
1: Media Works Complaints. How can I help?
2: Yeah. Hello.
1: Hi.
2: Hi. Yeah. Can you guys take a radio jingle out of my brain?
1: Oh, you mean like a jingle extraction? It's our job to put advertising in there.
2: Well, okay. Well, what about something like a brain surgeon?
1: They'll probably just explain how repeat hearing puts things deep in your emotional memory, and I really don't think it's necessary. But yes, if you must, I do have the name of one.
2: Great. Sing it to me.
3: Advertise with
4: Media Works.
3: New Zealand listens to us.
5: India aa raha hai Auckland and the Blue Tigers need your voice behind them. Dekhiye India ko All Whites ki against Go Media Stadium Thursday 12th November ko. Ek rare chance apni national team ko New Zealand ki zameen par live dekhne ka. Bring the family, wear your colors and fill the stadium with pride. Adult tickets sirf $20 se shuru, kids $10 se plus booking fees. Book now at Ticketek and be there for a historic night.
6: It's Macca's 50th birthday, and to celebrate, we're giving you 1 in 3 chances to win food prizes. Order ticketed items using the Macca's app to play. The more the merrier at Macca's 50th. T's and C's apply.
7: When India comes to town, Aotearoa feels different. Tickets are on sale now at nzc.nz. Be there, because this isn't cricket. This is Black Caps versus India.
8: रुजबेन 2026 में ना बहुत काम कर लिया है, अब तो ब्रेक बनता है।
9: बिल्कुल, तो लेते हैं एक लग्जरियस हॉलिडे ब्रेक, बाली और बैंकॉक।
8: और आप भी चलिए सन टूर्स के साथ ईस्टर 2027 में।
9: बाली 6 दिन और बैंकॉक 5 दिन, कंप्लीट लग्जरियस हॉलिडे पैकेज। बुक कीजिए टिल दिवाली और पाइए फ्री 2 nights 3 days सिडनी टू सिडनी क्रूज पैकेज।
8: 2027 ईस्टर को बनाइए एक्स्ट्रा स्पेशल, बाली बैंकॉक और फ्री क्रूज।
9: बुक नाउ विद सन टूर्स।
8: कॉल करें 0800-478-686।
10: दिवाली आई, खुशियाँ लाई, PFSL स्पेशल ऑफर लेकर आया है। अपने ड्रीम होम का सपना सजाएं, PFSL के साथ होम लोन करवाएं, $400,000 या उससे ज्यादा का एलिजिबल लोन सेटल करें और $250 का गिफ्ट कार्ड घर ले जाएं। 50 इंच टीवी के लकी ड्रॉ में भी एंट्री पाएं। तो इस दिवाली खुशियाँ बढ़ाएं, PFSL के साथ अपना ड्रीम होम सजाएं। सर्च PFSL और कॉल 09846-9934। टर्म्स एंड कंडीशंस एंड लेंडिंग क्राइटेरिया अप्लाई।
11: How does one person finance on a new Jeku sound? Right now at West City Omura Jeku, get 1% per annum fixed finance for 36 months with a 20% deposit on the Jeku J7 SHS. And it's just dropped $2,000 in price, now starting from $47,990 plus on-road costs. Talk to Jimmy Taylor and team at West City Omura Jeku. For full terms and conditions, head to westcityautogroup.nz.
12: Lunchbox with Ketan.
13: ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज मेरी आवाज गूंजेगी।
14: चटनी शॉट्स।
15: वेल, ये रही चटनी शॉट्स के सेगमेंट में कुछ फटाफट खबर। टेपू के से क्राइम अपडेट, फैटल कार क्रैश के बाद एक मैन पर मर्डर चार्जेस लगाए गए हैं और इस इंसिडेंट में एक पर्सन की डेथ भी हुई है और दूसरा सीरियसली इंजर्ड है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू कर रही है। जॉब सीकर बेनिफिट और ड्रग टेस्टिंग पर डिबेट, नेशनल पार्टी के प्रपोजल को पब्लिक से वाइड बैकिंग मिलने की रिपोर्ट है। प्लान के अंडर जॉब सीकर बेनिफिट लेने वाले कुछ लोगों को रैंडम ड्रग टेस्ट की जा सकती है, पर्टिकुलरली एम्प्लॉयमेंट रेडीनेस के लिए। सोलोमन आइलैंड में ड्रामेटिक रेस्क्यू, इंजन फेलियर के बाद सी में स्ट्रैंडेड बोट पर मौजूदा करीबन 73 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स को रेस्क्यू कर लिया गया है। बोट फ्राइडे से ड्रिफ्ट कर रही थी और रेस्क्यू ऑपरेशंस में सेवरल कंट्रीज ने हेल्प की। रशिया यूक्रेन वॉर में सीज फायर कंफ्यूजन, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने क्लेम किया है कि दोनों कंट्रीज एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक रोकने के लिए एग्री हो गई है, लेकिन यूक्रेन प्रेसिडेंट वोल्मर उनका कहना है कि अनाउंसमेंट के बाद भी यूक्रेन एनर्जी साइट्स पर अटैक कंटिन्यू रहे। थोड़ी बहुत तो कंफ्यूजन है यहाँ पे। और रग्बी वर्सेस रग्बी लीग नेम्स को लेकर लीगल बैटल। न्यूजीलैंड रग्बी ने कोर्ट से रिक्वेस्ट की है कि पापुआ न्यू गिनी की जो न्यू NRL टीम को चीफ्स नेम से यूज करने से रोका जाए। न्यूजीलैंड रग्बी का कहना है कि इसे एग्जिस्टिंग चीफ्स ब्रांड के साथ कन्फ्यूजन हो सकती है, जबकि NRL ने लीगल एक्शन पर अपोज करने की बात भी कही है। क्रिकेट फैंस के लिए सुपर स्मैश अपडेट। अपकमिंग सीजन दिसंबर 27 से स्टार्ट होगा और इस बार कॉम्पिटिशन में 10 राउंड 10 मैच डेज और मेंस और वुमेन्स गेम के डबल हेडर होंगे। ये डोमेस्टिक टूर्नामेंट का फाइनल सुपर स्मैश सीजन होगा।
12: दिल से दिल तक अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स। फॉर अ फ्री साइट असेसमेंट विजिट nzpmi.co.nz और कॉल 0800 4NZPMI।

0: Bollywood.
1: World's best, hamari koi branch nahi hai.
0: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
2: चलिए आज का सवाल बहुत ही बढ़िया है. ये कैसे फिल्म एक्टर है जो आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं, जो काफी फिल्मों में आए हैं काफी टाइम से, चाहे अलग अलग किरदार हो या फिर एक काफी सपोर्टिंग रोल्स हो, काफी मूवीज में इन्होंने काम किया है. चश्मा पहनते हैं और अभी रिसेंटली आई थिंक मेरे को याद नहीं आ रहा, एक लेटेस्ट फिल्म भी कोई थी, मेरे को याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली. बट अभी क्या करने वाला हूँ, मैं एक डायलॉग चलाने वाला हूँ यहाँ पे और ये डायलॉग बेसिकली है मूवी दुनिया 1984 की. तो ये डायलॉग सुनिए और मुझे बताइए कि कौन महाशय, कौन से एक्टर ये डायलॉग बोल रहे हैं. ऑफकोर्स उनके साथ दिलीप कुमार है, दिलीप कुमार की आवाज़ आपको सुनाई देगी, पर आपका काम है जो दिलीप कुमार के अलावा एक और जो है वो कौन है और वही आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं. अब हमारे बीच नहीं रहे ये, लेकिन यस आप मुझे टेक्स्ट करके बताइए कौन है जो अपना जन्मदिन इनकी फैमिली आज मनाएगी और इनके फैंस भी. सो देयर यू गो, लेट मी ब्रिंग डाउन दिस वॉल्यूम एंड देयर यू गो.
3: ये बताएगा नहीं कुमार, जिंदगी भर मेरा तेजा जैसे लोगों से वास्ता पड़ा है. आई नो द टाइप, कितनी कोशिश कर लो ये बताने वाला नहीं है.
4: ये बताएगा पुरी साहब, राज ही बताएगा, इसलिए कि आज 18 तारीख है.
2: एंड दैट्स ऑल. जी हाँ, तो अब मुझे बताइए जल्दी से 5599 पे किन्होंने ये डायलॉग बोला था.

0: with Ketan.
1: मुझे पसंद है लड़का.
0: हम. The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: बुरी प्लानिंग से आए हैं. शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
3: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
4: That is very that is a very acceleration.
3: That's a very acceleration. Yeah.
4: Amazing acceleration.
3: This is my fancy English. That's a very.
4: अरे होता है यार, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.